حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم.

और अगर अहले ईमान में से दो ग्रोह आपस में लड़ जाएं, तो उनके दरमियान सुलह कराओ। फिर अगर उनमें से एक ग्रोह दूसरे ग्रोह पर ज्यादती करे तो ज्यादती करने वाले से लड़ो यहां तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ पलट आए। फिर अगर वो पलट आए तो उनके दरमियान आदल के साथ सुलह करा दो और इंसाफ करो कि अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। मोमिन तो एक दूसरे के भाई हैं, लिहाजा अपने भाइयों के दरमियान ताल्लुकात को दुरुस्त करो और अल्लाह से डरो, उम्मीद है कि तुम पर रहम किया जाएगा। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, न मर्द दूसरे मर्दों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हों, और न औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हों। आपस में एक दूसरे पर तान न करो और न एक दूसरे को बुरे अलकाब से याद करो। ईमान लाने के बाद फिस्क में नाम पैदा करना बहुत बुरी बात है। जो लोग इस रविश से बाज न आए वो जालिम है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, बहुत गुमान करने से परहेज करो, बाज गुमान गुनाह होते हैं। तजस्सुस न करो और तुम में से कोई किसी की गइबत न करे। क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसा है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? देखो तुम खुद इससे घिन खाते हो। अल्लाह से डरो, अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला और रहीम है।

लोगो, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और फिर तुम्हारी कौमें और बिरादरियां बना दी ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। दर हकीकत अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा परहेजगार है। यकीनन अल्लाह सब कुछ जानने वाला और बाखबर है। ये बदवी कहते हैं कि हम ईमान लाए, इनसे कहो तुम ईमान नहीं लाए, बल्कि यूं कहो कि हम मुती हो गए। ईमान अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ है। अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी इख्तियार कर लो तो वो तुम्हारे आमाल के अजर में कोई कमी न करेगा। यकीनन अल्लाह बड़ा दरगुजर करने वाला और रहीम है। हकीकत में तो मोमिन वो है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर उन्होंने कोई शक न किया और अपनी जानों और मालों से अल्लाह की राह में जिहाद किया, वही सच्चे लोग हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन मुद्दईयान ईमान से कहो, क्या तुम अल्लाह को अपने दीन की इत्तला दे रहे हो? हालांकि अल्लाह जमीन और आसमानों की हर चीज को जानता है और हर चीज का इल्म रखता है। ये लोग तुम पर एहसान जताते हैं कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इनसे कहो, अपने इस्लाम का एहसान मुझ पर न रखो, बल्कि अल्लाह तुम पर अपना एहसान रखता है कि उसने तुम्हें ईमान की हिदायत दी, अगर तुम वाकई अपने दावाए ईमान में सच्चे हो। अल्लाह जमीन और आसमानों की हर पोशीदा चीज का इल्म रखता है और जो कुछ तुम करते हो वो सब उसकी निगाह में है।

0: लोगो, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और फिर तुम्हारी कौमें और बिरादरियां बना दी ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। दर हकीकत अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा परहेजगार है। यकीनन अल्लाह सब कुछ जानने वाला और बाखबर है। ये बदवी कहते हैं कि हम ईमान लाए, इनसे कहो तुम ईमान नहीं लाए, बल्कि यूं कहो कि हम मुती हो गए। ईमान अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ है। अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी इख्तियार कर लो तो वो तुम्हारे आमाल के अजर में कोई कमी न करेगा। यकीनन अल्लाह बड़ा दरगुजर करने वाला और रहीम है। हकीकत में तो मोमिन वो है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर उन्होंने कोई शक न किया और अपनी जानों और मालों से अल्लाह की राह में जिहाद किया, वही सच्चे लोग हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन मुद्दईयाने ईमान से कहो, क्या तुम अल्लाह को अपने दीन की इत्तला दे रहे हो? हालांकि अल्लाह जमीन और आसमानों की हर चीज को जानता है और हर चीज का इल्म रखता है। ये लोग तुम पर एहसान जताते हैं कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इनसे कहो, अपने इस्लाम का एहसान मुझ पर न रखो, बल्कि अल्लाह तुम पर अपना एहसान रखता है कि उसने तुम्हें ईमान की हिदायत दी, अगर तुम वाकई अपने दावाए ईमान में सच्चे हो। अल्लाह जमीन और आसमानों की हर पोशीदा चीज का इल्म रखता है और जो कुछ तुम करते हो वो सब उसकी निगाह में है। सदकल्लाहुल अज़ीम।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में फजर की अजान का वक्त हो गया है।
2: अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے۔ روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل و

और लोगों के लिए एक नई दुनिया। और यही नेस्बिट ने इस बैकग्राउंड को यूज करके एक फैमिली की कहानी लिखी जो हार्डशिप्स के बावजूद होप और यूनिटी से जीतती थी। तो दोस्तों कहीं भी मत जाइएगा, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बुक्स दैट चेंज द वर्ल्ड। छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, यूं गए यूं वापस आए और आने के बाद जानेंगे कि आज की बुक का खास मैसेज क्या है।

0: एक सफर अल्फाज का जो दुनिया को बदल गया, किताबें जो सिर्फ लिखी नहीं गईं, बल्कि सोचने का रंग भर गईं, जिन्होंने तारीखों को जन्म दिया और इंसानियत को नए रास्ते दिखाए। हम आपको ले जाएंगे किताबों की उसी जहान में जो तारीख और तहजीब दोनों को रोशन करती हैं।
1: वेलकम बैक, अहलन व सहलन, खुश आमदीद। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बुक्स दैट चेंज द वर्ल्ड सरवर मिर्जा के साथ। और अभी तक की कहानी में हमने बहुत कुछ समझाने और समझने की कोशिश की है, आइए अब आगे का सफर करते हैं। दोस्तों, किताब की थीम्स मुख्तलिफ चीजों पे है, जैसे फैमिली बॉन्ड, कहानी तीन बच्चों रोबर्टा, पीटर और साइलिस के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने वालिद के अनजस्ट इम्प्रिजमेंट के बाद नए शहर में शिफ्ट होते हैं। रेजिलियंस के हवाले से बात करें तो हर मुश्किल के बावजूद वो अपनी माँ के साथ मिलकर जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। किताब के हवाले से काइंडनेस एंड कम्युनिटी पे भी जोर डाला गया है। भाई, बच्चों का रेलवे स्टाफ और लोकल लोगों के साथ बॉन्ड दिखाता है कि इंसानियत हर दौर में जरूरी है। अगर हम जनरल एग्जाम्पल दें तो आज भी जब कोई फैमिली क्राइसिस से गुजरती है, सबसे पहले यूनिटी और सपोर्ट सिस्टम ही काम आता है। और नेस्बिट ये मैसेज 100 साल पहले दे चुकी हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेस्बिट ने अपनी कहानियों में बच्चों को हीरो बनाया है, जो उस वक्त अनकॉमन था। पहले लिटरेचर में एडल्ट्स डोमिनेट करते थे, लेकिन नेस्बिट ने दिखाया कि बच्चों की इनोसेंस और करेज सोसाइटी को इंस्पायर कर सकती है। दोस्तों, इस किताब का दुनिया भर पे जो इम्पैक्ट पड़ा है, उसके हवाले से अब बात करते हैं कि किस तरह इस किताब का असर जो है वो काफी जोरों शोरों से पड़ा। द रेलवे चिल्ड्रन ने सिर्फ लिटरेचर पर नहीं बल्कि सोसाइटी पर भी गहरा असर डाला। सोचिए, उस वक्त बच्चों की कहानियां ज्यादातर फैंटेसी पर बेस्ड होती थी, जादू, परियों की कहानी और इमेजिनरी वर्ल्ड वगैरह वगैरह। लेकिन नेस्बिट ने एक बोल्ड स्टेप लिया और रियल लाइफ स्ट्रगल्स को पोर्ट्रे किया। ये एक नई सोच थी जहां बच्चों को सिर्फ इनोसेंस का सिंबल नहीं बल्कि स्ट्रेंथ और रेजिलियंस का रोल दिया गया। इस किताब पर मल्टीपल स्टेज प्लेस और फिल्म्स भी बनी हैं। सबसे फेमस 1970 की ब्रिटिश फिल्म एडेप्टेशन। हर एडेप्टेशन ने एक नई जनरेशन को ये कहानी इंट्रोड्यूस की और हर दौर में लोगों ने अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इस कहानी को अप्रिशिएट किया। दोस्तों, मॉडर्न रेलेवेंस से बात करें तो आज के दौर में जब हम फैमिली ब्रेकडाउन्स, इकोनॉमिक चैलेंजेस और माइग्रेशन वगैरह देखते हैं, ये कहानी हमें रिमाइंड करती है कि होप और काइंडनेस कभी आउटडेटेड नहीं होती। रेलवे का सिंबल आज भी प्रोग्रेस और कनेक्टिविटी का है, चाहे वो ट्रेन्स हो या इंटरनेट। दोस्तों, जब हम अपने शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट्स देखते हैं या जब हम अपने मोबाइल फोन्स पर दुनिया से कनेक्टेड होते हैं, ये सब एक तरह का मॉडर्न रेलवे है। नेस्बिट के जमाने में भी रेलवे ने लोगों को फिजिकली कनेक्ट किया और आज टेक्नोलॉजी हमें वर्चुअली कनेक्ट करती है। लेकिन एक चीज कॉमन है, इंसानी कनेक्शन और एम्पैथी। तो दोस्तों, कहीं भी मत जाइएगा, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बुक्स दैट चेंज द वर्ल्ड। छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, यूं गए यूं वापस आए और आने के बाद जानेंगे कि आज की बुक का खास मैसेज क्या है।

0: सफर अल्फाज का जो दुनिया को बदल गया, किताबें जो सिर्फ लिखी नहीं गईं, बल्कि सोचने का रंग भर गईं, जिन्होंने तारीखों को जन्म दिया और इंसानियत को नए रास्ते दिखाए। हम आपको ले जाएंगे किताबों की उसी जहान में जो तारीख और तहजीब दोनों को रोशन करती हैं।
1: वेलकम बैक, अहलन व सहलन, खुश आमदीद। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बुक्स दैट चेंज द वर्ल्ड सरवर मिर्जा के साथ। और अभी तक की कहानी में हमने बहुत कुछ समझाने और समझने की कोशिश की है, आइए अब आगे का सफर करते हैं। तो दोस्तों, इस किताब के हवाले से जो आज हमें सबक मिला है वो ये कि हर क्राइसिस टेम्परेरी होता है, पेशेंस और यूनिटी से ओवरकम किया जा सकता है। वहीं कम्युनिटी सपोर्ट हर सोसाइटी का बैकबोन होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम सबको जिम्मेदारी से समझना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी हम सबको उठानी चाहिए। एक छोटी सी रिफ्लेक्शन उस पे रोशनी डालता हूं कि अगर हम अपने आसपास देखें तो सोशल मीडिया पर भी हम एक वर्चुअल कम्युनिटी बनाते हैं जो सपोर्ट और अवेयरनेस स्प्रेड करती हैं, बिल्कुल नेस्बिट के जमाने की रेलवे कम्युनिटी की तरह। जब कोई मुसीबत आती है लोग हैशटैग्स के जरिए हेल्प करते हैं, डोनेशन ऑर्गेनाइज करते हैं और अवेयरनेस कैंपेन्स चलाते हैं। ये सब मॉडर्न वर्जन है उसी काइंडनेस का और सॉलिडेरिटी का जो नेस्बिट ने अपनी कहानी में हाईलाइट किया। और एक और एग्जांपल, जब हम नेचुरल डिजास्टर के वक्त रिलीफ एफर्ट्स देखते हैं, चाहे वो फ्लड्स हों या अर्थक्वेक्स वगैरह हों, तो हम देखते हैं कि स्ट्रेंजर एक दूसरे की मदद करते हैं। नेस्बिट ने यही मैसेज दिया था कि इंसानियत और एम्पैथी हर दौर में जरूरी है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि द रेलवे चिल्ड्रन ने सिर्फ एक कहानी के तौर पे ही अपना किरदार नहीं निभाया, बल्कि एक टाइमलेस मैसेज बनी। फैमिली, होप और काइंडनेस का एक सबक दिया। नेस्बिट ने जो वैल्यूज 1906 में लिखी वो आज भी रेलेवेंट है। तो दोस्तों, आज की कहानी से कुछ टेक अवेज पे बात करते हैं। लिटरेचर सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सोसाइटी का आईना है। हर जनरेशन को रेजिलियंस और एम्पैथी की जरूरत होती है। हाँ, और एक और बात, किताबें हमें सिर्फ कहानी नहीं देती बल्कि सोचने का नजरिया भी बदलती हैं। जब हम नेस्बिट की कहानी पढ़ते हैं तो हमें अपनी जिंदगी के चैलेंजेस और उनके सॉल्यूशंस पर भी सोचने का मौका मिलता है। आप सबका शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया। अगले एपिसोड में हम एक और ऐसी ही किताब पर बात करेंगे जिसने सोच बदली और सोसाइटी पर गहरा असर डाला। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा याद रखिए, किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं समझने के लिए होती हैं। फिलहाल आज के लिए सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए। सुनते और देखते रहिए FM 107, दिल से देसी।
0: The books that changed the world. RJ सरवर मिर्जा के साथ only on FM 107, दिल से देसी। अल्फाज जो तारीफ लिखते हैं।

0: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी यह हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें।
1: अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सामने कराम प्रोग्राम कुरान के मोती के आज के इस हलके में आप सबका खैर मकदम है। कुरान की अकौमियत के हवाले से हमने पिछले हलके में भी गुफ्तगू की थी और अकौमियत का मतलब आपने सुना होगा कि सबसे ज़्यादा दुरुस्त रास्ता और सबसे ज़्यादा अहम और काबिल एतमाद रास्ता ये कुरान है। कुरान अकवम रास्ता दिखाता है, हमारी फ़िक्र की इस्तलाह करता है और हमारे लिए मीज़ान भी बनता है। अब अक़वमियत कुरान का मंसूबा, इसका मतलब है कि अल्लाह के हुक्म और इंसान की मौजूदा हकीकत के दरमियान जो फासला है उसे कम करते चले जाना। अब सवाल ये कि इस रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट क्या है। पहली सबसे बड़ी रुकावट सामने किराम जो हमें नज़र आती है वो ये है कि कुरान से हजर या कुरान से दूरी। ये ज़रूर है कि आज नौजवानों में कुरान की तरफ एक नई रग़बत महसूस होती है। ये उम्मीद की खूबसूरत किरण है, शायद इसके मुकम्मल नतायज अभी हमारे सामने न आए हों, लेकिन अगर ये शौक कायम रहा, कुरान के साथ ताल्लुक महज जज्बाती नहीं बल्कि शऊरी फिक्री और बसीरत पर मबनी बनता गया तो आने वाले वक्त में मुस्लिम जहन की इल्मी पैदावार भी बदल सकती है। मगर मजमूई सूरत हाल को देखिए तो मसला अभी बाकी है। आप किसी नौजवान से बैठकर गुफ्तगू करें और सिर्फ आम नौजवान की बात नहीं, कभी तालिब इल्म से भी पूछें कि सूरह यूसुफ से तुमने क्या समझा, अस्हाबे कहफ की दास्तान ने तुम्हारी फिक्र में क्या बदला, मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के किस्से से क़यादत, ताकत और दावत के कौन से उसूल निकलते हैं, पुरानी कसस में तरबियत, सियासत, माशरत और इंसानी नफसियात के कौन से पहलू तुमने दरियाफ्त किए, तो अक्सर खामोशी छा जाती है। लेकिन उसी शख्स से किसी मुसन्निफ़ की किताबों के बारे में पूछिए, मुमकिन है कि वो कई जिल्दों की तफसील बयान कर दे। किसी मुफक्किर के नज़रियात पूछिए तो सफहात के सफहात खोल दे। तो सवाल यहाँ किताबें पढ़ने के खिलाफ नहीं, किताबें तो पढ़नी चाहिए, लेकिन सवाल तरजीहात की तरतीब के हवाले से है। हम दूसरों की किताबों में बरसों उतरते रहें मगर किताबुल्लाह के अंदर कितनी देर ठहरे हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। कुरान के किस्से आप सब जानते हैं कि ये सिर्फ माजी की दास्तान नहीं, इनमें तरबियत है, मुआशरत है, क़यादत है, दावत है, इंसानी नफसियात है और ज़िंदगी के नशीब व फराज को समझने की बसीरत है। मगर ख़जाना सामने हो और हाथ ही न बढ़ाया जाए तो ख़जाने की फरावानी से आदमी मालदार नहीं हो जाता। यही हमें अहले कुरान के मफहूम को भी वसी निगाह से समझने की ज़रूरत है। सही मुस्लिम की रिवायत में आता है कि क़यामत के दिन कुरान और उस पर अमल करने वाले अहले कुरान लाए जाएंगे। गौर कीजिए, असल नस्बत सिर्फ अल्फाज याद होने की नहीं, कुरान के साथ अमली वाबस्तगी की है। मुमकिन है कोई कुरान का हाफिज हो, उसकी तिलावत नहायत खूबसूरत करता हो, तजवीद में महारत रखता हो, किरात का इल्म भी रखता हो, ये सब बड़ी फजीलतें हैं और अपनी जगह पर काबिल कदर हैं। लेकिन अगर कुरान उसकी सोच, अमल और ज़िंदगी में दाखिल ही ना हो तो कुरान के साथ ताल्लुक अभी मंजिल तक नहीं पहुँचा है, इसमें कोई शक नहीं। अमल का मतलब सिर्फ ये नहीं कि नमाज पढ़ी, रोज़ा रखा, हज किया और चंद फ़िक़्ही अहकाम पर अमल कर लिया। कुरान ने हमें तदब्बुर का भी हुक्म दिया है। अल्लाह फरमाता है, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियदब्बरु आयातिही, ये एक बाबरकत किताब है जिसे हमने नाजिल किया ताकि लोग उसकी आयात में गौर व तदब्बुर करें। तो तदब्बुर ये कोई इजाफी सरगर्मी नहीं कि फुर्सत मिली तो कर ली, न मिली तो छोड़ दी। तदब्बुर नुज़ूल कुरान के मकासद में से एक अहम मकसद है। इसीलिए हमारी असल कमी, एक बड़ी कमी हम इसे कह सकते हैं कि वो शऊर कुरान की है। आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हिफ्ज के मराकज़ मौजूद हैं, बच्चे कुरान याद कर रहे हैं, नौजवान तजवीद सीख रहे हैं और ये नहायत मुबारक अहम काम है और उसे मज़ीद बढ़ना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक और सवाल भी उठना चाहिए कि تدبر کے مراکز کہاں ہیں، وہ علمی اور تربیتی ماحول کہاں ہیں جہاں نوجوان کو یہ سکھایا جائے کہ آیت کے سامنے رکے، سوال کرے، سیاق کو سمجھے، دوسری آیات سے تعلق جوڑے، معتبر علم کی مدد لے، پھر دیکھے کہ یہ ہدایت اس کے فکر اور زندگی سے کیا مطالبہ کرتی ہے۔ یعنی حروف سینے میں محفوظ ہوں اور معانی شعور میں زندہ ہو، محفوظ بھی ہو اور با شعور بھی ہو بندہ۔ اب شاید کوئی کہے کہ میں نے تدبر کی کوشش کی تھی، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا، قرآن میرے لیے مشکل ہے۔ اب آپ ہی بتائیے کتنی کوشش کی ہے اس نے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ؟ ہم دنیا کے ہر اہم عمل کو وقت دیتے ہیں نا، علم کو، اہم علم کو بھی وقت دیتے ہیں، پھر قرآن سے یہ توقع کیوں رکھتے ہیں کہ پہلی نشست ہی میں اپنے سارے خزانے ہمارے سامنے کھول دے؟ ہاں، اسے ایک مثال سے سمجھیے۔ آپ پہلی مرتبہ ایک بہت بڑی لائبریری میں داخل ہوئے، ہزاروں کتابیں، درجنوں الماریاں، مختلف شعبے۔ میں آپ سے کہوں کہ ارے فلاں کتاب مجھے ڈھونڈ کر دیجیے، آپ شاید حیران رہ جائے، ارے کس منزل پر ہے، کس الماری میں، کس حصے میں، ممکن ہے بہت تلاش کے باوجود نہ ملے۔ لیکن اب فرض کیجئے آپ اسی لائبریری میں کام شروع کر دیتے ہیں، ایک دن، دو دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، پھر دو تین مہینے۔ اب میں وہی کتاب پوچھوں تو شاید آپ فوراً کہیں جی دوسری منزل، دائیں طرف تیسری الماری، اوپر والی قطار۔ تو کیا لائبریری بدل گئی؟ نہیں، آپ کا اس کے ساتھ تعلق بدل گیا ہے، آپ نے اس کے ساتھ وقت گزارا، اس کے راستے

0: फरिश्तों से वाकिफ हुए, उसकी तरतीब आपके जहन में बस गई है। तो कुरान के साथ भी यही मामला है। आप कुरान के साथ कितना जीते हैं, ये सवाल है कि अगर कुरान को दिन के बचे हुए चंद लम्हे मिले और बाकी जहन मुसलसल किसी और दुनिया में डूबा रहे, तो फिर ये ख्वाहिश कैसे पूरी होगी कुरान हमारे शोर में हर वक्त हाजिर रहे। कुरान को सिर्फ वक्त का बचा हुआ हिस्सा देकर हम उससे जिंदगी का मरकजी शोर हासिल नहीं कर सकेंगे। तो ये एक अहम पॉइंट है। मजीद एक नहायत उम्मीद अफजा बात भी है कि जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े आलिम हों तब भी कुरान से मानी हासिल हों। मसा औकात महदूद इल्मी सलाहियत रखने वाला वो शख्स जो कुरान के साथ मुसलसल रहता है, मोतबर तफासीर और अहले इल्म की रहनुमाई के साथ तदब्बुर करता है और आयात को अपनी फिक्र का हिस्सा बनाता है, कुरान से ज्यादा और ये बंदा जो महदूद इल्मी सलाहियत वाला है, क्योंकि वो हर वक्त कुरान के साथ में ताल्लुक को कायम रखा हुआ है उसने, और मोतबर तफासीर और अहले इल्म की रहनुमाई ली है, तो इसका कुरान से इसका ताल्लुक ज्यादा जिंदा होता है बनिस्बत उस शख्स के जिसके पास मालूमात तो बहुत हो मगर कुरान के साथ सोहबत कम हो। तो इंसान की फितरती ऐसी है कि जिस चीज के साथ ज्यादा रहता है उसकी जबान समझने लगता है। तो आज यही सवाल हम खुद अपने आप से कर सकते हैं कि मैं कुरान के साथ मैं कितना टाइम देता हूँ, कितने अरसे से मैं के रह रहा हूँ कुरान के साथ, कितने साल से कुरान पढ़ रहा हूँ ये भी एक सवाल है, या फिर कितना वक्त देता हूँ ये भी है, लेकिन कितने साल से आप कुरान के साथ सोच रहे हैं ये तो बहुत ही एक अहम पॉइंट है। दोनों अहम सवालात हैं, इन दोनों सवालात पर फोकस करें और तब जाके पता चलेगा कि आपने तदब्बुर कुरान के हवाले से क्या क्या इकदाम किए हैं। हम एक नई जबान सीखने के लिए 2-3 साल दे देते हैं, किसी तखस्सुस के लिए 4 साल यूनिवर्सिटी में गुजार देते हैं, किसी पेशे में महारत के लिए बरसों मेहनत करते हैं ना, पर कुरान के मामले में ये तवक्को, क्योंकि 1-2 हफ्ते कोशिश की कोई गैर मामूली नतीजा सामने ना आया तो कह दिया कि ये मेरे लिए मुश्किल है। नहीं, ये किताब भी हमसे वक्त मांगती है, सोबत मांगती है, सब्र चाहिए होती है, बार बार लौटने का तकाजा करती है। तो इसीलिए अगर हम वाकई अक्वमियत कुरान को, इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक्वम, इस आयत पर हमारी गुफ्तगू हो रही थी पिछले हल्के से, तो वाकई अगर हम ये चाहते हैं कि कुरान हमें सीधा रास्ता दिखाए, कुरान को हम सीधा रास्ता मानते हैं, तो अक़वमियत कुरान को अपनी ज़िंदगी में कायम करना पड़ेगा, और कुरान से दूरी हो तो हम कैसे इस कुरान से वो हिदायत हासिल करेंगे। तो यही बात है कि अमली आगाज़ इसी तरह हो सकता है कि हर रोज़ कुरान के लिए तदब्बुर का एक हिस्सा मुकर्रर कीजिए। ज़रूरी नहीं कि एक पूरी सूरत एक नशिस्त में समझ लेंगे, कभी सिर्फ एक आयत के साथ 10 या 15 मिनट बैठ जाइए, उसे पढ़िए, तर्जुमा देखिए, मोतबर तफासीर और अहले इल्म से मुफस्सिरीन किराम से आप इसका मफहूम समझिए, कोई खदशा पैदा हो गया कुछ साथ साथ रुजू करें और इस तरह खुद से पूछे कि ये आयत मुझे क्या दिखा रही है, मेरी ज़िंदगी में इसका अगला कदम क्या है। मुमकिन है एक सूरत के साथ आप कई महीने गुजार दें, कोई हर्ज नहीं, मकसद ये नहीं कि आप कुरान से कितनी जल्दी गुजर गए, असल सवाल ये है कि कुरान आपके अंदर से कितना गुजरा है।
1: आइए तलहा अशरफ उज़्ज़मान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान सिर्फ FM 107 पर।
0: तो बात वही है कि इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम सूरह इसरा की आयत है कि ये कुरान उस रास्ते की रहनुमाई करता है जो सबसे ज्यादा सीधा मुतवाजन और दुरुस्त है। सामिन इकराम गुफ्तगू को मजीद एक और कदम आगे ले चलते हैं। अब सवाल यह है कि हम अपनी ज़िंदगी में कुरान की सक़ोमियत को कायम कैसे करें। पहली बात तो हमारी क्लियर हो गई कि कुरान से हजर, कुरान से दूरी, इस फासले को कम करना है, कुरान के करीब आना है। अब इस सक़ोमियत को हम कैसे कायम करें, इसको समझने के लिए एक दूसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ज़ाहिर है ज़िंदगी के तमाम शोबों पर एक ही नशिस्त में तफसीली तो समझ कर इसका आगाज़ सभी कराम, अगर हम ये कहते हैं कि कुरान हमारी फिक्र की इसलाह करता है, अगर हम इस बात का दावा करते हैं और इस बात को मानते हैं, तो पहले ये देखना होगा कि खुद कुरान को समझने का हमारा तरीका कितना दुरुस्त है। देखें, एक सवाल से हम दूसरे सवाल की तरफ जा रहे हैं। पहले तो हमने कहा था कि कुरान की इस अक़वमियत को कायम कैसे करें, अब सवाल ये है कि खुद कुरान को समझने का हमारा तरीका कितना दुरुस्त है। कुरान को समझने के लिए भी कुरान ने हमें एक मनहज दिया है, आयात को उनके सियाक व सबाक में समझना, यानी कॉन्टेक्स्ट को समझना, कुरान के अपने उसलूब और अल्फाज के इस्तेमाल को पहचानना, मसानी को मलहूज रखना।

0: चुकी है, सवाल यह है कि दिल की जमीन कितनी तैयार है। सिर्फ तिलावत कर लेने से कुरान का पूरा असर शख्सियत में नहीं खिलता, सिर्फ हफ्ज कर लेना काफ़ी नहीं, सिर्फ तजवीद के मखारिज दुरुस्त हो जाना मंजिल नहीं। ये सब अपनी अपनी जगह अजीम आमाल हैं, मगर कुरान की बहार तब मुकम्मल होती है जब तिलावत के साथ तदब्बुर, तदब्बुर के साथ फहम और फहम के साथ अमल जुड़ जाए। तब कुरान जबान से उतर कर फिक्र में आता है, फिक्र से किरदार में और किरदार से जिंदगी में। सबने कराम, यही हमारे आज की इस पूरी गुफ्तगू का हासिल है कि अक़वामियत कुरान हर मुसलमान का मंसूबा है। तो सबने कराम, आखिर एक और सवाल बाकी रह जाता है कि जो कुछ कुरान चाहता है वो हमारे अमली ज़िंदगी में कैसे उतरे, क्योंकि एक चीज़ है इम्कान किसी हुक्म का मुमकिन होना और दूसरी चीज़ है तमकीन इस इम्कान को हकीकत में कायम कर देना। मसलन अल्लाह ताला ने सूद को हराम करार दिया, हुक्म वाज़े है, लेकिन ऐसा माशी निज़ाम कायम करना जहाँ इस हुक्म को हकीकी तौर पर नाफिज किया जा सके, उसके लिए सिर्फ हराम जान लेना काफ़ी नहीं, उसके लिए इल्म, इदारे, मुतबादल रास्ते, इज्तमाई कोशिश और तमकीन दरकार है। और यही दरअसल अक़वामियत कुरान का मनसूबा है कि अल्लाह के हुक्म और इंसान की मौजूदा हकीकत के दरमियान जो फासला है उसे कम करते चले जाना। एक तरफ वही बताती है कि ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, दूसरी तरफ हमारी मौजूदा हकीकत है। दोनों के दरमियान अगर फासला मौजूद है तो मोमिन का काम ये नहीं कि हकीकत के सामने कुरान के मुतालबे को छोटा कर दे, बल्कि अपनी इस्तेदाद के मुताबिक हकीकत को कुरान के करीब लाने की कोशिश करे। तो अक़वामियत कुरान का ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। सामने कराम, वक्त की कमी की वजह से हम आज भी इस मौजू पर मुकम्मल गुफ्तगू ख़त्म नहीं कर पाए। बेतला ताला इसी गुफ्तगू को अक़वामियत कुरान और कुरान की जो ये बहुत एक अहम आयत है, नहायत कुरान यहदिल्लज़ी अक़वम, इस आयत की जो तहकीकी मुताला इंशाअल्लाह हम अगले हलके में भी जारी रखेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए तकनीकी मुआविन नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफ ज़मान को दीजिए इजाजत। मासलामा।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।
3: कहते हैं जिंदगी एक रेस है, लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं?
4: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं, आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है। तो फिर सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं?
3: नए करियर्स, फ्यूचर स्किल्स, चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं। सुनिए प्रोग्राम फ्यूचर करियर आरजे महविश खान के साथ हर मंडे शाम 7:15 से ओनली ऑन FM 107। अपने करियर का अगला कदम सोच समझ कर उठाइए।
5: वक्त रुका नहीं है, वो तो नए रास्ते बना रहा है। क्या आप तैयार हैं उस कल के लिए जो आज शुरू हो चुका है? पेश करते हैं नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ एक ऐसा सफर जो है आपकी क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का नया ब्लूप्रिंट। सिंपल स्टाइल, बिग इंपैक्ट, पर्सनल ग्रोथ हो या टेक रेवोल्यूशन, अपने आइडियाज को दीजिए एक नई पहचान। बनिए कल का चेहरा आज ही। सुनिए नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ हर संडे शाम 5 से FM 107 पर। दिल से देसी।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: FM 107 Time Check.
1: नहीं मैं कह रहा हूँ सुबह के 6:01 हो रहे हैं, मैंने क्या मांगा, मैंने कहा गाड़ी का लाइसेंस दिखाइए और व्हाट्सएप दिखाइए, तो रोने वाली क्या बात है, परेशान कर दिया पब्लिक, प्ले चेक करो उसका व्हाट्सएप डम्बल प्लीज व्हाट्सएप चेक करो इसका, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ बड़े साहब आ रहे हैं वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो चेक कर देना फिर चलान लगा देते हैं वो, नहीं नहीं माफी कैसे दे दे भाई, माफी कैसे दे दे, क्यों भाई किसको फोन मिलाना है लगा भाई, जाने नहीं दूंगा मैं आज, बड़े साहब आ रहे हैं देख लो आप, आपकी मर्जी है, बचा नहीं पाऊंगा.

0: Wake up, wake up. Assalamualaikum. ये आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड हाजिर है. साहू को क्या होता है, सबको मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सलाम. कैसे हैं आप? मैं कह रहा था जी व्हाट्सएप आ गया, मैं बता रहा हूँ, मैं बता दूँ बड़े साहब को. हाँ, वो मतलब बिल्कुल माफ़ नहीं करते, वो बिल्कुल माफ़ नहीं करते. आप व्हाट्सएप कर लो फिर, और अंडर द टेबल तो कुछ देने की कोशिश कीजिएगा कि मत भाई साहब. हाँ, 500 के नीचे बात नहीं करता मैं. व्हाट्सएप 666-2107 है, मैसेज आया मेरे पास. ये किया है मोहम्मद इकराम साहब ने. मोहम्मद इकराम भाई क्या हाल है भाई के? और सुभाष भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, गुड मॉर्निंग ब्रोज, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम यू कॉन्स्टेबल साहब. थैंक यू जी कॉन्स्टेबल साहब को इज्जत देने के लिए, बहुत प्यार किया. फरद भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, खैरियत? अब इन्होंने देखो मेरे दिमाग में गाना अटका दिया. ये करते हैं, ये फरद भाई ने पिछली मरतबा भी किया था मेरे साथ, साजन साजन तेरी दुल्हन तुझके पुकारे आज. अब ये गाना अगर मेरे दिमाग में बजा फरद भाई शो के बाद, भाई साहब मैं आपको दौड़ा दूंगा. मैं आपको बताऊं फरद भाई, दौड़ा दूं पीछे ना, धूल उड़ाई होगी और आप आग रहे होंगे. ये आदमी ने मेरे दिमाग में अटका दिया गाना. अब ये साजन साजन तेरी. अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई. वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग. रोल नंबर 2 लगा दिया है इनका. एक मैसेज रिजवान भाई का, वालेकुम अस्सलाम रिजवान भाई, क्या हाल है, लसेंस दिखाइए लसेंस. और एक मैसेज और है, ये कौन है भाई साहब? अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप खैरियत से कबीर भाई. क्लिफ यंग स्टोरी नहीं चली, प्लीज़ कैन यू क्लिफ कल वाली स्टोरी नहीं चली भाई, क्या बात करो हसन शाह साहब. नॉट टू वरी मेरे भाई, नॉट टू वरी. 666-2107 नंबर है, आप फिलहाल तो इधर आ जाइए. और मैं नू कह रहा था भाई, आज क्या कहानी थी, मैं लिख के लाया हूँ कि नहीं लाया? हाँ मेरे भाई है. आज जो मेरे पास कहानी है ना, वो ऐसी कहानी है कि इसको बताने में समझाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा. तो आपको जो इमेजिनेशन है ना, वो पूरा 10/10 होना चाहिए अच्छी कहानी सुनने के लिए. कहानी सुनने देखने के वाला समझ भाई, कहानी जज्बाती जज्बात मेरे जगा रही. तो बेसिकली 10/10 आपका इमेजिनेशन होना चाहिए पूरे स्केल पे, तब जाके जो है आप इस कहानी का सर पैर पकड़ पाएंगे. मतलब एज इन पकड़ तो लेंगे, लेकिन वो समझाना बड़ा मुश्किल है. तो मैं कोशिश पूरी करूँगा, और अगर मैं समझा पाया तो भाई अपने आप में अचीवमेंट है, बाकी तो लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं. ज़ीशान अहमद साहब वालेकुम अस्सलाम भाई, तो मिलते हैं 10 मिनट 30 सेकंड के बाद इंशाल्लाह मुलाकात होगी. सुबह खैर तला भाई के बाद में 6:05 में दुहा वाला कबीर. जाना आपने नहीं, बेस्ट जगह पर हैं आप, स्टे का ट्यून कर लो फिर. है ठीक है, स्टे ट्यून्ड.
1: एक पुरसकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है. इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है, और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं. इरशादे खुदावंदी है, वज़्कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो. और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर.

الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله.

0: صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أذكار الصبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.
1: آمین آمین یا رب العالمین. السلام علیکم, میں دوحہ والا کبیر FM 107 پہ اینڈ بیک. ابھی مجھے پتا یہ ویکینڈ مجھے زیادہ دور کیوں لگ رہا ہے. ابھی کیا ہوا ہے, کیا تاریخ ہے یار؟ تو بہت دور ہے, ابھی تک صرف ٹیوزڈے ہے اور آپ نے بتایا بھی نہیں میرے کو. میں وینسڈے سمجھ کے, پچھلے ہفتے میں وینسڈے کو ٹیوزڈے سمجھ رہا تھا اور آج مجھے لگ رہا ہے کہ وینسڈے چل رہا ہے مگر ٹیوزڈے چل رہا ہے. اب آئی ڈونٹ نو واٹ از ہیپننگ. یہ سب فرحت بھائی غلطی. فرحت بھائی السلام علیکم. تو کچھ میسیجز ہیں میرے پاس. مس سلوا میم جو ہیں ہماری بہن جو ہیں کنڈر گارڈن ٹیچر ہیں اور ان کے بچوں نے میسج کیا ہے, ہائی کبیر انکل ہاؤ آر یو. ان دونوں کا نام ہے انس اور عائزہ. صحیح پڑھا ہوں میں نام؟ ماشاء اللہ بھائی, دونوں آج اسکول کے لیے نکلے ہیں دونوں بچے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, دونوں کو بہت بہت سارا پیار. ایک میرے شاہد صاحب کو, شاہد صاحب وعلیکم السلام, کیا حال ہے بھائی کے. اور ایک میسج کیا ہے, یہ ہمارے سبھاش بھائی ہیں. سبھاش کمار صاحب کہتے ہیں السلام علیکم, سوال خیر, کیا حال ہے بھائی. میں ایک دم بڑھیا بھائی, آپ سنائیے کیا حال ہے. اور محسن بھائی کہہ رہے ہیں ہاں ٹفن میں کیا. آج ٹفن میں کچھ نہیں ہے بھائی, آج بھائی کا پلان ہے سیدھا باہر جا کے شو کے بعد کھاؤں گا دبا کے بھائی. ایسی ڈگار لوں گا آپ کے سعودی عرب تک سنائی دے گی بھائی, ٹینشن مت لو آپ. اور ایک اور میسج ہے, السلام علیکم بھائی, کیا حال ہیں آپ کے, کدھر ہیں سب کے سب؟ بس آ رہے ہیں, ساری پبلک آ رہی ہے بھائی, فکر نہ کرو آپ. بس ابھی جو ہے نا جیسے میرے دماغ میں گانا اٹکا ہے نا فرد بھائی نے, سب کے دماغ میں گانا اٹکا کے رہوں گا آج. جو جو سنے گا صبح کا شو, انہوں نے میرے ذہن میں گانا اٹکا دیا ہے. ساجن ساجن تیری ساجن تس کے بغیر آج. پورے دن میں الگ الگ سر اور تال میں گانا گاتا رہوں گا فرد بھائی, میں چھوڑوں گا نہیں آپ کو, میں اس کی سزا تو ملے گی. اور یہ سعودی عرب سے کہہ رہے ہیں مجھے انتظار رہے گا. ٹھیک ہے, کر لینا انتظار, کوئی ٹینشن نہیں ہے. اب میں ذرا سوال کی طرف بڑھ جاتا ہوں. یہ جو سوال ہے یہ بہت بہت آسان ہے, اس کے بہت سارے وچتر وچتر جواب آ سکتے ہیں. سمپل سوال ہے, غور سے سنیے گا. ایسے وہ کون سے کام ہیں, سچویشنز ہیں جہاں پر آپ کو دماغ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ مطلب یہ وہ سچویشن ہے جہاں پہ آپ کو دماغ بالکل گھر پہ چھوڑ کے آنا چاہیے, کوئی ضرورت نہیں ہے بھیجا لگانے کی. کئی مرتبہ آپ زیادہ دماغ کا استعمال کر لیتے ہیں تو دل پہ افیکٹ پڑ جاتا ہے. تو وہ کون سی سچویشنز ہیں جہاں پر آپ کو دماغ کا بالکل بھی اپیوگ استعمال نہیں کرنا ہے, یہ آپ بتائیے. کچھ لوگ مجھے پتا میسج کریں گے آپ کا شو سنتے ہوئے. بتاؤں بھی ایسی آ رہی ہے اس بات بھی. السلام علیکم کبیر بھائی. وعلیکم السلام پرویز بھائی, کیا حال ہیں بھائی پرویز. اور ایک میسج, السلام علیکم کبیر انکل, ہاؤ آر یو, پلیز کنوینس مائی موم ٹو لیٹ می گو ٹو دوہا مال آن سیٹرڈے ٹو سیلیبریٹ مائی فرینڈس برتھ ڈے. یہ علینا کا میسج ہے. علینا وائی ناٹ, بچے سترہ بہن, یہ تو اس کے لیے کیوں روک رہی ہیں آپ؟ مطلب میں علینا کی طرف ہوں. علینا آپ پلیز مما کنوینس کرنا ہے کہ میرے کنوینس کرنے سے کیا ہوگا, میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں. بہن پلیز, برتھ ڈے ہے بچوں کا, آپ جب چھوٹی تھی آپ کو اچھا لگتا کوئی روکتا تو؟ مطلب آپ کو اپنے دوست کی برتھ ڈے میں جانے سے اچھی بات تھوڑی ہے یہ؟ جانے دو, موج کرنے دو اسی طرح بہن, کیا ٹینشن ہے آپ کو؟ ٹینشن کہاں رہی, دقت کہاں, یہ کرپا کہاں رکی ہوئی ہے بہن, یہ مجھے بتائیے آپ. جانے دو بچے کو, کتنی پیاری ہے آپ کی بچی تو, ہونہار ماشاء اللہ. ویسے بچہ ہوتا تیز ترار ہوتا تھوڑا سا تو بات دوسری تھی, اتنی سویٹ بچی ہے آپ کی ماشاء اللہ. علینا ڈونٹ وری, آئی ہوپ شی از کنوینسڈ ناؤ. نہیں ہوئی علینا تو دوبارہ کنوینس کریں گے, بٹ آئی ول میک شیور دیٹ یو گو. ٹھیک ہے بچے. ایک میسج, السلام علیکم کبیر بھائی, میں بحرین سے سن رہا ہوں. وعلیکم السلام بحرین والوں. یہ انصاری ذوالفقار بھائی نے میسج کیا, بہت سارا پیار بھائی کو. ایک میسج ہے, بیوی کو چھوڑ کے آنا, کدھر چھوڑ کے آنے گا ابو احمد بھائی, کلیئرلی بولنے کا بھائی. فرد بھائی کہہ رہے ہیں کیا, بیوی جو بنایا ہے وہ کھا لو, گھر میں سکون شانتی بنی رہے گی. کہہ رہے ہیں اگر وائف کچھ بنا کے لے گیا آئے, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, बस बोलना ना ये बहुत बढ़िया और ये बहुत ही बढ़िया है, जन्नत के दस्तरखान से उतरा है ये तो। शारिक भाई वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? और तौफीक भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, मैं तौफीक अलवकरा से, आज क्या बात है तौफीक साहब ने मुझे नाजिया सरवर नहीं बोला वो मुझे कल मॉर्निंग मैसेज करते अस्सलाम वालेकुम सरवर नाजिया बहन एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अरे कौन आया ये, कौन आया समी भाई, क्या हाल है आपके? एक मैसेज है परवेज भाई का, कह रहे हैं रील्स और शॉर्ट्स देखने में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और कौन सी जगहें हैं जहां पर दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, सोच के बताओ मेरे को। ये रील्स और ये सब तो ठीक है, कई मरतबा दिमाग लगा भी लेना चाहिए, तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। एक और मैसेज है घर छोड़ के आना अबू अहमद भाई कह रहे हैं कि अगर वाइफ को घर छोड़ के आ रहे हो तो, नहीं ये अबू अहमद नहीं है ये, अच्छा वही हैं, कह रहे हैं घर छोड़ के आ रहे हो वाइफ को तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये मैं सिचुएशन समझा नहीं, इसमें आप दिमाग लगाएंगे भी तो क्या कर लेंगे आप। हसन भाई मैसेज करते हैं अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, इतनी सुबह दिमाग यूज करने वाला सवाल कर रहे हैं वो भाई हसन भाई आप बिल्कुल, ये अपने आप में जवाब है, मेरा शो सुनते हुए आपने कोई टेंशन नहीं लेनी है, दिमाग का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है हसन भाई, सिंस यू आर नॉट यूजिंग योर ब्रेन राइट नाउ, ये अपने आप में जवाब है, वेरी गुड, आप डिजर्व करते हैं हसन भाई के लिए, भाई पास हो गए आप, क्या टेंशन ले रहे हैं। आसिफ भाई क्या वंटा, आसिफ भाई ये पब्लिक बोले तो तकलीफ, आज तो भाई भाई ने रेल बना दी भाई, बिल्कुल भाई चुक। एक मैसेज अमी भाई लिखते हैं आप सुना कबीर जानी, मैं एकदम मेरी जान आप सुनाइए आप कैसे हैं, क्या इंतजार क्या इंतजाम है आज का। मैं सवाल दोहरा देता हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं सूरत हाल जहां पर आपको बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आपने लगाया तो दिक्कत है, तो कौन सी वो सिचुएशंस हैं जहां पर भेजेगा बिल्कुल भी उपयोग इस्तेमाल यूज नहीं करना है। सुभाष भाई कह रहे हैं अपने बॉस अपना बॉस कुछ कह रहा हो ना तो अपना दिमाग साइड में रखना चाहिए, बिकॉज बॉस इज ऑलवेज राइट, ये मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। बॉस अगर आपको बुलाए बोलेगी ये हो गया तो सोचने का नहीं, शट डाउन कर देने का सिस्टम एकदम, हाँ, वो तो चाबी वाला खिलौना देखा हमने, चाबी भरी तक तक तक, कर जाने का बस। एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम भाई, जब दोस्तों के साथ चिल मारने निकलो किसी भी दोस्त की बगैती पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इश्तियाक उस्मानी भाई मैं आपके साथ हूँ भाई, मैं बताऊँ क्यों जरूरत नहीं है, कुछ ऐसे भी ग्रुप होते हैं मेरे भाई, मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, मैं उन वो बैठते हैं तो बिजनेस की ऐसी बातें करते हैं जैसे रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, पैसों के उसमें समंदर में खेलेंगे डॉल्फिन बन के, तो मैं इनकी बातों पे ध्यान नहीं देता भाई, बिल्कुल मैं दिमाग को एकदम शट डाउन कर देता हूँ, मैं बिल्कुल शट डाउन कर देता हूँ। एक तो मिलते नहीं है ठीक है, और जब मिलते हैं तो क्या भाई मैं सोच रहा हूँ एक बिजनेस आइडिया आया है अगले हफ्ते ना मैं ऐसा कुछ करूँगा, अरे रहन दो यार रहम करो भाई इतने बिजनेस आइडिया सुन चुका हूँ मैं पिछले 10 सालों में, मेरा भेजा वैसे भी काम नहीं कर रहा। एक मैसेज है वाइफ के साथ बहस करते हुए भाई, ये रिजवान भाई कह रहे हैं वाइफ के साथ बहस करते हुए दिमाग का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पर रिजवान भाई आई थिंक ऑन द कॉन्ट्ररी करना चाहिए, आई टेल यू व्हाई। कल का सवाल याद है आपको वो जो निकलने का रास्ता है बहस में से, उसके लिए आपको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना रिजवान भाई कुछ ऐसी भी गलियां होती हैं जहां से निकल नहीं पाता स्कूटर, समझ रहे हो? तो रिजवान भाई ध्यान दीजिए मेरी बात पे। हफ्सा बहन ने मैसेज किया मॉर्निंग, हफ्सा बहन इतना बिल्कुल ही डेड सा मॉर्निंग, बहन एवरीथिंग ओके? वैसे तो ओके होगा, हफ्सा बहन तो हमारी दबंग है, धाकड़ है जी छोरी क्या सब बढ़िया आप सब ने? एक मैसेज कमाल भाई का, कमाल भाई वालेकुम अस्सलाम, और एक मैसेज किया है फैसल भाई ने, फैसल साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, मैं बढ़िया भाई आप सुनाइए क्या हाल है, और कह रहे हैं यार मज़ा आता है आपको शो सुनने में, आपके साथ ही हंसता रहता हूँ, आप तो डेली सुनूंगा समी भाई, अगर नहीं सुना समी भाई तो मैं बता रहा हूँ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मैं गाना चलाऊंगा, वही साजन मेरी दिल रहे, ये दिमाग में फंस जाएगा गाना आपके, पूरे दिन साजन साजन गाते फिरोगे अगर आपने शो को टीन आउट किया तो। समी भाई ऑल द बेस्ट यू भाई अब आपको देख लो क्या करना। एक मैसेज है अस्सलाम वालेकुम, ये अफसर मैंने मैसेज किया है, एहसान किया है मैसेज करके, सिग्नल नहीं मिला था अरे यार दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए, चिल करो मजे करो इतनी ब्रूटल है हमारी अफसा बहन, मैंने पूछा बहन सिर्फ मॉर्निंग क्यों लिखा, तो कह रही है एहसान किया है मैंने मैसेज करके भाई साहब और कह रही है दिमाग लगाने की तो वैसे भी कोई जरूरत नहीं है, कह रहे क्यों लगा रहा हो दिमाग, जरूरत ही नहीं है, मजे करो। आसिफ भाई कह रहे हैं भाई क्या शॉर्ट है आज, भाई यही है जो पूछ रहा हूँ मैं, यही चल रहा है, यही शॉर्ट है भाई। आज एक मैसेज आया तबसुम बहन का, लिखती है अस्सलाम वालेकुम भाई गुड मॉर्निंग। तबसुम बहन जो है वो अभी एक आंख से उठी हैं, बस एकदम आंख मलते गुड मॉर्निंग क्या चल रहा है, सुबह हो गई क्या, कितने बज रहे, 6:25 हो गए, अच्छा ठीक है तो वापिस जाऊँ फिर मैं सोने। आज तबसुम बहन भी दिमाग लगाने के मूड में नहीं है बहन, इट्स ओके, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। कुछ है आज के मौसम में, कुछ तो गड़बड़ है। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई कैसे हैं भाई, तो मैं टॉपिक एक बार फिर से बता, टॉपिक तो कह रहा हूँ, टॉपिक बोलने में ऐसा लगता है पढ़ाई करवा रहा हूँ। तो फराज भाई बात ऐसी चल रही है कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पर दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, दिस इज द क्वेश्चन। बिल्कुल दिमाग को छोड़ देना चाहिए, लगाने नहीं दिमाग, तो वो कौन सी जगहें हैं, सिचुएशंस हैं, ये आपको बताना। एक मैसेज है, मेरे दोस्तों के बिजनेस बगैती तो रातों रात इलॉन मस्क सेकंड पोजीशन पर आ जाते हैं भाई, यही परेशानी है इश्तियाक भाई, यही परेशानी है। मेरे आसपास भी ऐसे दोस्त हैं, मैं तो परेशान हूँ भाई उनसे, वो आएंगे और बिजनेस के ऐसे आइडियाज़ फेंकते हैं ना वो, और इतने गंदे बिजनेस बताते हैं, मतलब एक अच्छा बिजनेस नहीं बताया आज तक किसी ने, एक अच्छा बिजनेस कि मैं सुन के बोलूँ भाई वाह ये वाला आइडिया तुम्हारा चलेगा, इतने बुरे बुरे बिजनेस। और मैं दोस्ती के चक्कर में कुछ बोलता नहीं भाई मंद मंद मुस्कुरा लेता हूँ, हंस देता हूँ, टाल देता हूँ। एक मैसेज है उमर खान अफरीदी सबका, वालेकुम सलाम भाई, इनकी तरफ से भी सलाम कबूल करें, वालेकुम अस्सलाम मेरे जान। एक मैसेज आया है फरहत भाई कहते हैं कबीर भाई आजकल सबको चुप करने में, कबीर भाई आजकल सबको चुप करने में लगा, बाबू राव का क्या आतंक खत्म हो रहा है, नहीं नहीं भाई ये ईजीनेस है पब्लिक की, इस तरह से लीजिए ना फरहत भाई, झगड़ा करवा रहे हैं बताइए बदतमीजी। एक मैसेज है बीवी के साथ शॉपिंग पे जाना है तो दिमाग नहीं लगाना चाहिए सलमान भाई यहाँ लगाना चाहिए आपको दिमाग, नहीं लगाएंगे ना तो हार्ट फेल जो है उसका दिक्कत हो जाता है। तौफीक साहब कहते हैं आपकी कहानियों क्या, आपकी कहानियों से क्या बन जाता है, लोग मालदार बन जाएंगे, मेरी कहानी से लोग मालदार बन जाएंगे, तौफीक भाई नींद पूरी करो ये बेस्ट सोल्यूशन है तौफीक भाई आपके लिए, एक जो है बढ़िया सा नाश्ता करो, नींद खींचो भाई बहुत ज़रूरत है। एक मैसेज है तबसुम बहन का, लिखती है दिमाग लगाने के लिए बचा ही नहीं है कहाँ लगाऊँ है ही नहीं, एक बच्ची 3 बजे सोई है और अभी दूसरी को स्कूल के लिए रेडी करने के लिए उठी हूँ, सो लिटरली दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। बहन आप एक चाय लगाइए या कॉफ़ी लगाइए, वो विच एवर सूट्स यू बहन, आई टोटली अंडरस्टैंड भाई, हम सारे के सारे तबसुम बहन के लिए चेयर अप करेंगे, तबसुम शाबाश शाबाश शाबाश बहन, वेल डन उठो उठो उठो उठो, अच्छे बच्चे कैसे होते हैं, तबसुम जैसे होते हैं, बच्चों को छोड़ कर देते बहन इससे ज़्यादा मैं चेयर नहीं कर पाऊँगा, आई रियली होप दिस हेल्प्स यू टू वेक अप। एक मैसेज है मल्टीपल सिचुएशंस में दिमाग बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, सिंपली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जो भी किस्मत में लिखा हुआ है, नंबर वन कंडीशन ट्राइंग टू डिफेंड योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ योर बॉस और योर वाइफ, कह रहे हैं अगर बॉस और वाइफ के सामने आपकी बहस चल रही है बिल्कुल कोशिश मत करो, हथियार डाल दो एकदम लुल बैठ जाओ कि मुझे कुछ आता ही नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं है, बिल्कुल एकदम जैसे आपकी आत्मा उस वक्त है ही नहीं, सिर्फ शरीर खड़ा हुआ है आपका। और देख लिखते हैं दूसरी सिचुएशन है ट्राइंग टू कन्विंस अ टॉडलर टू डू समथिंग करेक्ट, कह रहे हैं अगर कोई टॉडलर बच्चा आपके घर में है उसे आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, दिमाग मत लगाओ, लालच दो, आजकल के बच्चे लालची हैं कासिम भाई इनको लालच दो। एक मैसेज है फरहत भाई कह रहे हैं, फरहत भाई क्या बात है फरहत भाई ये आप वीडियो फॉरवर्ड करके कह दूंगा फरहत भाई ने फॉरवर्ड किया, फिर देखो क्या होता है आपके साथ। एक मैसेज है अस्सलाम वालेकुम भाई क्या कह रहे हो, कह रहे हैं मैं सुबह की शिफ्ट में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाता, शाम की शिफ्ट में दिमाग लगाता हूँ, ये क्या कह गए मुंतजिर, ये आपका नाम है, आपने शेर व शायरी करने के चक्कर में एक लाइन लिख दी, बस एक वर्ड लिख दिया। हसन भाई कह रहे हैं भाई हमने जब भी लगाया दिल ही लगाया दिमाग नहीं लगाया, रे रे रे रे हसन मेरे भाई ये लो, क्या क्या बात है हसन भाई, हसन भाई व्हाट इज रॉन्ग ब्रो, did somebody break your heart yani something kya baat hai humne jab bhi lagaya hasan bhai nashta is the solution to everything sami bhai keh rahe dimag to aisa band hua hai kya hai istemal karna hi bhul gaya sami bhai jab aap chutti pe the kya hua bhai मुझे बताइए और एक मैसेज है बच्चों के साथ लगाना चाहिए टू अंडरस्टैंड देयर व्यू एंड साइकी ये आप सब कह रही दिमाग कहीं मत लगाओ सिर्फ बच्चों के साथ लगाओ टू अंडरस्टैंड देयर साइकी क्योंकि आप खुद एक टीचर वाली इसमें है ना रोल में बहन तो आपके लिए बड़ा आसान है ये कहना एक मैसेज है सुबह सुबह शायरी हाँ भाई हसन भाई शायरी कर रहे हैं एक मैसेज है शाहिद सईद का क्या कह रहे हैं शादी के बाद तो दिमाग वैसे ही फारिग हो जाता है मैं कुछ नहीं बोलूँगा इन बातों पर होता पता क्या है ये मेल वर्सेज फीमेल हो जाता है ठीक है और सैंडविच किसका बनता है मेरा लोग मुझ पे डाउट करते हैं इसी ने शुरू किया होगा इसी ने आग लगाई होगी मैंने कुछ नहीं बोला भाई ये देख लो ये लोग बोल रहे हैं ये पुलिस वाले करते हैं ना पूछताछ सर मैं तो था भी नहीं ये शाहिद भाई खड़े थे मैं तो था भी नहीं मैं तो अपने घर पे था शाहिद भाई कह रहे थे ये सारी बातें मतलब टीचर नहीं मतलब आप बच्चों के अराउंड है ना अफसर बहन कहने का मतलब ये था वो राइट वर्ड नहीं आया बहन कमाल करती है एक मैसेज है अस्सलाम वालेकुम बब्बर शेर इंशाल्लाह खैरियत से होंगे जैस भाई एकदम बढ़िया भाई बहुत सारा प्यार भाई को कहते हैं सुबह सुबह दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए ये इशारा आपका मेरी तरफ फराज भाई इज इट ये कहीं तंज वंज तो नहीं कस रहे ये पता कर गया फराज भाई को ढूंढो ये हमारे ऊपर कॉमेंट है ये एक मैसेज है दो दिन आपके सवाल थोड़े अलग लेवल के हैं आज मैं बताइए ये तला भाई कह रहे हैं शुरू किसने किया तला मैं बच्चे समझता था मेरी साइड में है ये आपने पार्टी बदल ली यार ये तो हद हो गई यार ये आदमी बात बात पे एमएलए खरीद लेता यार तला भाई आप गलत डिपार्टमेंट में हैं आपको पॉलिटिशियन होना चाहिए एक मैसेज है ओहो अच्छा पराठे खा रहे हैं एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई दिमाग लगाने के लिए भी तो दिमाग होना चाहिए इश्तियाक अंसारी भाई इनका भी पता करो ये हमारे लिए बोल रहे क्या हमारे लिए बोल रहे हो इश्तियाक भाई बताओ गुस्सा बहुत आता है बहुत बुरा है मेरा गुस्सा इश्तियाक भाई मैं सही बताऊँ आपको आपकी डीपी अच्छी इसलिए छोड़ रहा हूँ आपको माशाल्लाह अच्छी एडिट करी है क्या तुम कैसे कर रहे हो दिमाग की बात ये तला भाई को रिपोर्टर ब्लॉक करना एंड मेक श्योर दैट ही डजंट कम बैक ओके दूसरा नंबर है क्या तला भाई आपको वो भी दे दो हमें ये दूसरा नंबर आप देंगे उससे ही ब्लॉक कर देना हाँ नहीं सोशल मीडिया पर भी ब्लॉक करना लाइसेंस भी छीन लो इनका हाँ एक मैसेज है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अब्दुल करीम भाई का मैसेज है और फराज भाई कह रहे हैं सुबह सुबह सुस्ती में दिमाग नहीं चलता फराज भाई आप सुस्त लगते तो नहीं है भाई एकदम एक्टिव आदमी है एक मैसेज और है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम एक मैसेज करके कह रहे हैं कि मेरा सुबह सुबह दिमाग चलाने का बिल्कुल मन नहीं करता और जब आपसे बात कर लेता हूं तो फिर सिर्फ दिल लगाता हूं अरे हे मेरे भाई के लिए उटर बजाओ क्या क्या बात है क्या बात है एक तो हमारे शो में इतने आसिफ हैं कि मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि कौन सा आसिफ कौन है सब ने सिर्फ आसिफ लिखा ये वाले आसिफ पता नहीं कहाँ से आसिफ भाई लेकिन थैंक यू एक और मैसेज है दिमाग रहता है चुपचाप काम कर ले दिमाग कहता है चुपचाप काम कर ले मगर दिल कहता है एक एक एक और रील लिख ले इश्तियाक भाई का मैसेज है कि दिमाग तो कह रहा है कि भाई काम कर ले दिल कह रहा है और इश्तियाक एक और रील देख ले भाई मजे करेंगे भाई अरे छोड़ना काम कुम तो होता रहेगा भाई एक रील और देख ले उसका नाम भी सर्च कर ले एक बारी हो सकता है प्रोफाइल मिल जाए आज एक मैसेज है नहीं भाई आपके लिए बिल्कुल नहीं अरे मैं तो मजाक कर रहा इश्तियाक भाई सीरियस नहीं होने का इस शो में सीरियस नहीं होने का भाई जो सीरियस होते हैं वो मुझसे झगड़ के चले जाते हैं भाई मेरी तो आए दिन लड़ाई होती रहती एक मैसेज कबीर भाई ये जितने भी लोग कह रहे हैं ना कि कबीर का शो सुनने में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती ये स्टोरी सुनते ही आ जाते हैं पूरा दिमाग लगे लगाने हाँ लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि ज्ञान व्यान ना बैठे एक मैसेज है ब्लॉक करो आसिफ को तला भाई आपने कुछ कहा कि सुना नहीं दे रहा भाई आप ब्लॉक्ड है मेरे भाई बोल गए अभी पाँच मिनट पहले की बात भी नहीं है ब्लॉक कर चुका हूँ आपको तला भाई मैं आपको क्या कह रहे हैं आप नसीम साहब कह रहे हैं अच्छा है नसीम भाई दूसरी आँख में भी पानी डाल दो थोड़ा सा भाई अच्छा क्या है ये मैं समझा नहीं क्या अच्छा क्या है, खूबसूरती कहाँ दिखी है आपको जो मुझे नहीं दिख रही. ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर. व्हाट इज हैपनिंग. एक मैसेज है, आपकी बातें सुनकर सुस्ती खत्म हो जाती है. फराज भाई को बहुत सारा प्यार. फराज भाई के लिए हूटर. फराज भाई को हमने एक रियाल भी नहीं दिया है ये मोहब्बत देने के लिए, इसमें कोई रिश्वत नहीं है. एक मैसेज, डिबेट अच्छा अच्छा नसीम साहब कह, थैंक यू सो मच. और कि मैं आपका प्रोग्राम सुनने आया दिमाग लगाने नहीं. मेरा भाई इश्तियाक भाई, बहुत सारा प्यार भाई को, बहुत सारा प्यार. पर ये नेगेटिव तो कॉमेंट नहीं आपका. अगर ये है इश्तियाक भाई, अगर ये नेगेटिव कॉमेंट है, मैं सही बता रहा हूँ, बस इतने काफ़ी. यहाँ से घूर रहा हूँ मैं आपको. इश्तियाक भाई देखो मेरी आंखों में, देखो इश्तियाक. पंगे वाली बात तो नहीं करी तुमने इश्तियाक. एक मैसेज है, तब उससे महंगा लगती है, मेरे किचन में मसाले के डब्बे किसने आधे खोल के बंद नहीं किए, कि किसने ऑरेंजेस खाकर छिलके को टेबल पे छोड़ दिया, और किसने मेन डोर पर चार जोड़ी जूते निकाल कर छोड़ दिए. ये सब किसने किया, मुझे दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है. माइंड इट, ये मेरे बच्चे, ये मेरे बच्चों ने बिल्कुल नहीं किया होता. ये तबस्सुम बहन के लिए भाई, बहुत गुस्से में आज. ये तबस्सुम बहन, ये बड़े बच्चों ने, ये आपके बड़े बच्चे ने किया, ये मुझे लग रहा है घर के सबसे बड़े बच्चे ने किया ये. जिसको आप अपनी मर्जी से लेकर आई है, तो फिर मुझे लग रहा है ये छोटे बच्चों का काम नहीं है, बड़े बच्चे का काम है. उस बड़े बच्चे को मेरा सलाम कहिएगा. अगर आपके आस पास है. एक मैसेज है, कबीर भाई जब हर तरफ, एक सेकेंड, हर तरफ तेरा. अरे यार ये व्हाट्सएप मेरे साथ आज क्यों खेल रहा है, पढ़ने दे भाई मैसेज. क्या है, तबस्सुम रॉक्ड भाई, कबीर साहब शौकर एफएम सुनते सुनते जी. ये मैं देखता हूँ हमेशा, जो है ना जितनी भी बहनें हैं आपस में इनकी गुटबाजी चलती रहती है, दो मिनट में ग्रुप बना लेती हैं, एक दूसरे के लिए एकदम तैयार रहती हैं. वो सही कह रही है, सही कह रही है, मैं उसके साथ हूँ. वाह जी वाह, वाह जी वाह, ये सही है यूनिटी. एक मैसेज है, फराज भी ब्लॉक्ड. नसीम भाई इज स्टिल बफरिंग. ये चल रहा है भाई 3GB पे. और एक क्या कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, सुबह सुबह जब आपका प्रोग्राम सुनता हूँ तो दिन और मन दोनों फ्रेश हो जाता है. मेरा भाई थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. वो मिंट वाली चिंगम खाई है आपने, बस वही हूँ मैं. एक मैसेज है, महिला मंडल मज़ा आ रहा है यार आज, मैं सच्ची अच्छे मूड में हूँ. अल्लाह ताला ऐसे रखे बहन आप सबको. तला भाई कह रहे हैं टॉपिक क्या है, ये देखो आप पूछ रहे हैं टॉपिक क्या है. टॉपिक क्या था. अरे मैं ये कह रहा था तला भाई, कौन सी जगहों पे दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, ज़रूरत ही नहीं है दिमाग लगाने की, ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं. एक मैसेज है, कबीर भाई हर तरफ से आपके काम और एफर्ट्स को बिल्कुल भी अप्रिशिएट ना किया जाए और आपको लगे कि आपको क्या के शहर में अंधों के शहर में आ गए हैं, बच रहे हैं, तो फिर आप दिमाग लगाना छोड़ देते हैं. आमिर भाई इसके पीछे बहुत सैडनेस छुपी हुई है, किसी ने कुछ बोला मेरे भाई को, नाम बताइए आप. याया भाई कह रहे हैं, भाई शादी के बाद लॉट्स ऑफ इलॉजिकल लॉजिक और इमोशन ब्लैकमेल की वजह से मर्दों का दिमाग जंग खा जाता है. याया भाई मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि फिर मुझे डिफेंड करना पड़ता और मैं डिफेंड कर नहीं पाता. तो जितने भी ख्वातीन इनसे लड़ना चाहें, याया नाम है इनका, इनके नाम का आप कुछ भी मुझे भेज सकती हैं. मैंने कुछ नहीं बोला है, ये याया भाई ने बोला है. इरशादुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, हम दिल लगाने वाले लोग हैं, दिमाग लगाने वाले नहीं. अरे रे हिंदू, डायलॉग बाजी देख, ये साउथ की पिक्चर है, भी थोड़ी कम देखो इरशाद भाई. समझ आ रही है, थोड़ा कम करो ये स्वैग, ज़्यादा हो रहा अभी. एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है, क्या खबर कबीर भाई. भाई मैं तो चाहूँगा, हम तो यहाँ तक भी पहुँचे हैं कि दिल लगा के दिमाग का तो काम ही नहीं लिया, कभी दिल से ही पछता रहे हैं, कहाँ लाकर छोड़ दिया, काश कभी दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया होता. अब जो है वाली जनता जाग रही है, मुदस्सिर भाई भी हैं उसमें, जो सीरियस हो जाएंगे अभी. देखो सीरियस होने नहीं देना इस शो को, अगर हो गया मैं गाना चला के भाग जाऊंगा, बता रहा हूँ. इश्तियाक भाई कह रहे हैं, नहीं भाई मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं नाराज नहीं होता. क्या बात भाई, ये पंचलाइन है यार. इश्तियाक भाई आपको पता है ये बॉलीवुड की किसी पिक्चर में लाइन होनी चाहिए, कह रहा नहीं भाई मेरी शादी हो चुकी है अब मैं नाराज नहीं होता। भाई क्या कर रहा डायलॉग है यार, क्या कर रहा डायलॉग है ये, मैं बता रहा हूं आपने तो हल्के में कह दिया, भारी बात है ये, आपको भी नहीं पता आपने क्या कर दिया। इमेंजे कबीर भाई अस्सलाम वालेकुम, सुबह सुबह जब आपका प्रोग्राम सुनता हूं तो दिन एज अ फ्रेशर, थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भाई इश्तियाक अंसारी जो है आपके साइलेंट लिसनर है, लेकिन क्या बात कही है भाई इन्होंने, क्या बात कही है, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम कबीर भाई,
1: आपने डायलॉग सुना भाई अभी भी, कितना कर रहा है डायलॉग है,
2: बेचारे सब मारे हुए क्या करेंगे, निकल ही आता कहीं ना कहीं,
1: लेकिन कितना कर रहा डायलॉग था यार, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ, क्या मेरी शादी हो गई अब मैं नाराज नहीं होता भाई साहब। और बताइए नदीम भाई, किधर किधर दिमाग नहीं लगाने का नदीम भाई अकॉर्डिंग टू यू?
2: मैं बहुत सोच रहा था तो कोई सिचुएशन तो याद नहीं आ रही थी, एक सिचुएशन याद आ रही है कि देखो अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपके आस पास लेडी ड्राइवर गाड़ी चला रही है, तो उसमें आप ये दिमाग मत लगाओ कि ये राइट की तरफ है तो राइट जाएगी, सिग्नल ब्लिंक हो रहा है तो ये ब्रेक मार दे, क्योंकि वो कर देने वाली, वो कुछ उल्टा ही होने वाला है वहां पे, तो अपने दिमाग मत लगा।
1: ये आपने वाली बात कर दी ना, चक दे इंडिया में शाहरुख खान कर होता है, या अल्लाह ये लेफ्ट में जाएगी या खुदा ये राइट में जाएगी,
2: ये तो सीधा जाएगी।
1: भाई मैंने कुछ नहीं बोला, नदीम भाई ने बोला ये, कोई अगर मेरे पे चढ़े तो मैं आपका नाम ले दूंगा नदीम भाई।
2: भाई मैं गाड़ी चलाता रहता हूँ, बीवी बाजू में बैठी होती है, वो भी एग्री करती है, लेडी ड्राइवर होगी आगे जो ऐसे चला रही है।
1: क्या बात है नदीम भाई, आपके लिए एक वो भी आया है, GIF भेजा है हफ्सा बहन ने, उनको भी मजा आ रहा है आपकी बात पे, क्या बात है। तो ये मतलब हमारी भाभी इस बात से अग्री करती है कि जो आपने बोला
2: भी? हाँ, वो खुद भी ड्राइविंग करती है ना, वो बोलती है तुम सब लेडी को बोलते रहते हैं इधर ऐसे ड्राइविंग कर रही है वैसे ड्राइविंग कर रही है, मैं भी करती हूँ, तू भी वैसे ही करती होगी।
1: अरे भाई इतना आप सीधा बोल दे रहे, ये तो माशाल्लाह कमाल की बात है, काफी हिम्मत है।
2: का डिफरेंस खाली एक साल का ही है ना, तो हम लोग ऐसे ही एक दूसरे की खिंचाई करते
1: हैं। अच्छी बात है भाई, ये मोहब्बत की निशानी है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ये कॉमराडरी चलती रहनी चाहिए। आपकी बात से अग्री करते हुए ये इश्तियाक अंसारी साहब कहते हैं नदीम भाई की बातों से मैं 100% अग्री करता हूँ, देख रहे हैं आप?
2: वो एक जगह है जहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अक्सर उल्टा ही होता है।
1: हाँ, वहाँ पे मैथ्स नहीं लगाने का, लेफ्ट दिख रहा है तो राइट हो सकता है, राइट हो रहा है तो लेफ्ट हो सकता है, हो सकता है कि बिल्कुल कहीं ना हो, सीधी जा रही हो गाड़ी, इंडिकेटर छूट गया होगा। यार आपके चक्कर में मुझे फंसाओगे नदीम भाई, यार मुझे फंसाओगे। यही है कि ऐसे दोस्तों से बच के रहना चाहिए क्योंकि बातों बातों में फील आ जाती है। और नदीम भाई आज क्या चल रहा है भाई, नाश्ता पानी हो गया सब?
2: मैं अभी बस जा रहा हूँ घर बेटे को छोड़ के, अभी अपने घर के पास जान है उधर, मस्त अपन पूरी भाजी खाएंगे।
1: क्या बात है भाई, क्या बात है, ये आपने सीरियस एकदम मुझे एम दे दिया आज सुबह का। बट और कोई सिचुएशन भी है जहाँ पे आपको लगता है दिमाग बिल्कुल इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है?
2: और ऐसा भी इतना इमरजेंसी में तो कुछ याद नहीं आ रहा है क्योंकि ये है ना बहुत डेंजरस क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो नहीं बोली जाए।
1: नहीं मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ नदीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल समझ गया भाई, आपके दिल की बात में समझ गया भाई, यही अच्छी सच्ची दोस्ती की पहचान है। ख्याल रखिए, नाश्ता खाइए और जब तक हमें सुन सकते हैं सुनिएगा भाई। ठीक है मेरा भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इनके बाद एक मैसेज आया, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हामना अरहम एन रयान, माशाल्लाह इतने भारी भरकम वजनदार नाम है माजिद भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, एक कॉल आ रही है मेरे को। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जनाब खैरियत से हैं?
1: जैज भाई की पब्लिक बोले तो तकलीफ, एकदम बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए।
3: देखो तुम्हारा लेकर आ रहा हूँ मैं लिसनर को, इश्तियाक भाई का डायलॉग देख रहा हूँ
1: भाई, मैं फैन हो गया भाई, क्या डायलॉग मारा भाई ने यार, ये तो बुशसेट पे लिखा वाले चीज है भाई, मजे आ गए आज तो।
3: पुराने चावल
1: है,
3: टेंशन मत लो।
1: नहीं मैं एक जो है ना, मैं भाई एक बात कहना चाहूंगा, ये टॉपिक जरा एक तो मैं रिपीट कर दूं, तो टॉपिक यो था भाई कि कौन सी जगह है, कौन सी सिचुएशन है जहां पे दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अब जयस भाई बता दो कहां दिमाग ना लगाएं,
3: बता दो। हो जाएगा भाई, दे दे दो यार।
1: अरे कोई हल्का हाथ रख दो यार, जरूरी थोड़ी है भारी भारी बात कहनी है।
3: हो जाएगा
1: नहीं, मुझे आपसे डर लग रहा है। और बताओ जयस भाई, टॉपिक वॉपिक तो होता रहेगा, नाश्ता किया नहीं किया?
3: अभी
1: नाश्ते में ही बताओ
3: नदीम भाई के लिए ना, नदीम भाई के लिए ना भाई साहब कम से कम 4-5 बार जो है ना होटल बजाना चाहिए था।
1: नदीम भाई के लिए मैं होटल बजाऊंगा, नदीम भाई के चक्कर में माफी भी तो उतनी मांगनी पड़ जाएगी लोगों से। नदीम भाई तो बीच बो के चले गए,
3: संभाल लेंगे, रायता जब फैलता है तो समेट ही लेंगे, टेंशन क्यों ले रहा
1: हूँ। नहीं ये रायता भाई प्लेट से नीचे गिर रहा है, ये समेटने वाला रायता नहीं है, मुझे पता है।
3: अभी टेंशन मत लो, प्रिंस भाई आ जाएंगे ना, अभी प्रिंस भाई एसी लगा के जाग गए।
1: और अरे प्रिंस भाई तुम्हारे लठ गाड़ के चले जाते हैं भाई एकदम कदी। तो प्रिंस भाई के लिए वो मैं बता रहा हूँ, जिस दिन अभी अगर आज मेरा किसी ने बिल्कुल भेजा खराब किया ना, तो मैं गाना लगा दूंगा, साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे आ जा, दिमाग में पूरे दिन बजता रहेगा, मैं बता रहा हूँ। ये सजा है आज
3: ना, गाना लग रही हो वाला,
1: ये सजा है। देखो ये अभी ये वाला फंसेगा दिमाग में आज, साजन साजन जिसने भी आज मुझे तंग किया उसके सामने मैं 10 बार गाऊंगा ये। ये है
3: प्रिंस भाई, आ जाओ भाई, प्रिंस भाई सुन रहा हूँ तो आ जाओ जल्दी से,
1: प्रिंस भाई आ जा। ठीक है जस भाई, अपना जवाब मुझे व्हाट्सएप पे दीजिएगा, अगर बताने लायक हुआ तो मैं जरूर बोलूंगा। ठीक है भाई, बताना जरूर भाई, रियली इंटरेस्टेड। ओके भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जैस भाई की बात जो है, हमारी मोना बहन ने मैसेज किया है और कह रही है, जब मियां बीवी का आर्ग्यूमेंट हो रहा हो तो हस्बैंड को चाहिए कि वो अपना ज्यादा दिमाग ना लगाए। डू यू स्टिल वॉन्ट टू कंटिन्यू माज, माज लुक एट मी, डू यू स्टिल वॉन्ट टू कंटिन्यू। एक मैसेज है, जब ऑटो पार्ट्स चलते हैं बगैर दिमाग लगाए, हैं जॉब ऑटो पार्ट्स

0: ताहिर भाई किया है मतलब मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी वीडियो चाहिए। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, लिसनिंग टू यू आफ्टर सो लॉन्ग। ये जो भाई ड्राइविंग की बात कर रहे थे, आई हैव बीन ड्राइविंग फ्रॉम पास्ट 10 ईयर्स। मैंने तो मेल ड्राइवर्स भी ऐसे ड्राइव करते हुए देखे हैं। इट्स नॉट ओनली फीमेल ड्राइवर्स, ख्वातीन ऐसे ही बदनाम हैं आजकल। तो मर्द दरवाजे पर रुक के लंबी लंबी बातें करते हैं। टाइम इज चेंजिंग। इट्स हार्ड टू अग्री, लेकिन बात तो सही है। बात तो सही। क्या है ना, ये बहन अभी मर्द हजरात, हमें भी गॉसिप चाहिए ना, हम कहाँ से ये भूख मिटाएं, हमें भी गॉसिप चाहिए। बात तो सही कह रही है यार, मैं डिनाई नहीं कर सकता। 100% agree। क्या दरवाजे में खड़े हो गए, आजकल तो मर्द लोग भी बात कर रहे हैं। एक कॉल आ रही है भाई। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहु। भाई क्या हाल है आपके?
0: मैं तो ठीक है। इन्हें ब्लॉक नहीं किया ये तला भाई को? अरे बच गए तला भाई, क्या चल रहा?
1: तुम्हारा हालात ठीक है, लेकिन लग नहीं रहा मुझे इन फ्यूचर सही रहेंगे।
0: है ना, क्या बात है। हाँ। ये ऐसे ही ढोंगी बाबा से दूर रहता हूँ, जो आगे का बताते हैं।
1: बता रहा हूँ, कार्ड निकाल लिया तुम्हारा नाम का।
0: अच्छा,
1: और ये किसी भी दिन जो है ना कैच जाएगा, बता रहा हूँ।
0: ये पता है, अगर आप बाबू होते तो वाले बाबू होते, वो कागज पे लिख रहा है कि साथ ये हो जाए, और फिर राइटिंग इतनी गंदी कि समझ नहीं पा रहे आगे क्या होगा।
1: तो भाई कोई कहानी है ना, अगर सामने वाले समझ में आ जाए क्या लिखा हुआ, तो फिर राज नहीं खुल जाएगा।
0: यार क्या अकलमंदी की बात कर रहे हैं आप, सुबह सुबह दिमाग क्यों लगा रहे हैं आप? ये बताइए कि दिमाग कहाँ नहीं लगाना चाहिए। डॉक्टर तला बताइए।
1: घर पे भाई।
0: मैं इस पे वो डायलॉग चलाता, तेरे को डर नहीं लगता क्या?
1: बाहर।
0: अच्छा, अभी बाहर हैं तभी। हाँ, तभी तो माइक का टाइसन हो रहे हैं।
1: अभी माइकल शूमाकर हो रहा तुम्हारा भाई।
0: हाँ, मैं तभी समझ पा रहा हूँ, ज्यादा ही जुबान चल रही है। घर से 1.5 किलोमीटर दूर क्या गए तला भाई, ज्यादा ही शेर बन रहे हैं।
1: बस आ गई, मेरे मुंह से निकल गई, मैं ऐसा नहीं करूँ।
0: आवाज में कपकपाहट तो अभी भी है। लगता है ज्यादा दूर नहीं है घर से। एक तो आपने हिम्मत नहीं हारनी तला भाई। मकसद नहीं बोला,
1: घबराना नहीं है। मैंने सुना था घबराना नहीं है, लेकिन जिसने बोला था ना वो बहुत घबरा रहा आज।
0: तो एक्चुअली भाई मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ भाई। तो घर के अलावा कोई सिचुएशन आती है आपके जहन में जहाँ पर आप बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते?
1: स्पेसिफिक सिचुएशन देखो, मैं बताऊँ ना, घर में स्पेशली जब आपके घर की कोई इंटीरियर डेकोरेशन हो रही हो ना, उस टाइम तो कतई आपने दिमाग नहीं चलाना। और उसकी शॉपिंग के लिए आप जाओ तो वहाँ पे आपने दिमाग नहीं चलाना, या कोई सामान इधर से उधर करना हो तो उसके लिए आपने कोई दिमाग नहीं चलाना कि नहीं यार ये इधर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अच्छा भाई सही है। अच्छा फिर रखना भी वही है, अब सही लग रहा है ना। देखो ये थोड़ा सा डिग्री चेंज हुआ है ना इसका, अब अच्छा लग रहा है।
0: ये पता क्या होता है, ये सिर्फ पूछा जाता है कि तुम ये बताओ ये वाला कि ये वाला, मगर इसका आंसर कुछ नहीं है।
1: बस ये जो हमारी प्रजाति ना मियाऊ की, मियाऊ।
0: हाँ,
1: मियाऊ जो है ना। हाँ, ये भाव लोग काटते रहते हैं हमें मियाऊ को। तो मतलब ये बाकी एक जो बोश है ना, जो चल्लाद बैठा हुआ ऑफिस में तुम्हारे।
0: हाँ।
1: उसके सामने कभी दिमाग नहीं चलाना।
0: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं भाई, वरना उन्होंने तो मुझसे बोला है ज्यादा मत बोलना, मऊ ले जाएगी मऊ।
1: हाँ भाई, वो कह तो रहा हूँ, वो कम्बकत मारा बैठे ही इस चक्कर में कि ये चलाए अपना दिमाग। मैं देखता हूँ ये किस लेवल तक जाता है, इसको मैं उस लेवल पे लाके वापस ले आऊंगी और ले आऊंगा
0: आपके लिए। मैसेज आया बहुत खूब तला भाई, ये माजिद भाई कह रहे हैं।
1: माजिद भाई को पैसे खिलाया मैंने,
0: वो मुझे लग भी रहा है, ये हमेशा तारीफ करते हैं आपकी। तो ये आपकी तारीफ अगर कोई कर रहा है तो रिश्वत ही दी होगी, ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं। और जैस भाई कह रहे हैं तला भाई के लिए 21 तोपों की सलामी, 21 बार हूटर। जैस अपना भाई, ये लो यार तला भाई, डिजर्व इट भाई, बहुत बढ़िया, वेल डिजर्विंग हूटर।
1: बाकी जो है ना हमारी बॉस है ना, वो है परेश, पुरानी फिल्मों में वो नहीं था परेश रावल, जब विलन आता था बिल्कुल। वो वाला है भाई, वो
0: तेजा में

0: सुबह सुबह 5G आता नहीं ना नेटवर्क, कोई दिक्कत नहीं है, समझता हूँ भाई। कौन सी कहानी
1: तो बताओ तुम,
0: मैं बताऊँ अपनी,
1: अपनी तो बताओ तुम।
0: मैं ये बताने में दिमाग क्यों लगाऊ, नहीं मैं क्यों लगाऊ, गिव मी अ वेरी गुड रीजन, क्यों बताऊ मैं आपको, मैं नहीं बताऊंगा क्यों बताऊ। और क्या भाई, तो फिर भाई आपका हीरो है यार, कैसी बातें कर रहे हो। नहीं नहीं तलहा, नहीं तलहा मुझसे दूर हो जाओ, मैं फना कर दूंगा, तलहा मुझसे दूर हो जाओ, बर्बाद कर दूंगा तुम्हें। क्या हो रहा है सुबह सुबह शो पे, थैंक यू,
1: पता है
0: बात, ऑल माय प्लेजर, ऑल माय प्लेजर,
1: पता है तुम्हें
0: बात, ऑल माय प्लेजर ब्रो।
1: मर्द और औरत को लड़वाने वाली औरत सुबह सुबह लड़वाता है भाई तुम।
0: भाई मैंने तो सवाल पूछा था, ये तो लोग हैं जिनके जज्बात उमड़ उमड़ के आ रहे हैं, मैंने तो किसी का साथ भी नहीं दिया तला भाई, मैं तो था भी नहीं वहाँ पे।
1: सही कह रहे हो वैसे तुम, ना जो नदीम भाई ने बात करी है, नदीम भाई ने बहुत गलत बात करी है, मैं बहुत अगेंस्ट हूँ इस बात के, वो रोड पे चलती औरतों को आखिर देखते क्यों
0: है। हाँ बिल्कुल,
1: अभी को बिठा के।
0: हाँ और क्या, मतलब आप जो है ऑब्वियसली सड़क पे ध्यान दे, गाड़ी किस तरह ले जानी वैसे ध्यान दे, कोई किसी की ड्राइविंग पे क्यों तंज करेगा। हाँ बताइए,
1: वो भी अकेले,
0: बताइए,
1: मतलब बात है ये।
0: बिल्कुल, मैं तला भाई के और नदीम भाई के साथ, दोनों के साथ नहीं हूँ, बिल्कुल सही बात है।
1: तो क्या बोलते हैं हमारे मुल्क में इसको,
0: पता नहीं कि आपने कभी देखा नहीं देखा, जितने पाकिस्तानी सुन रहे, पता नहीं कौन सा सीरियल था पाकिस्तानी और बैकग्राउंड में चल रहा था वो, उसमें एक डायलॉग था कसमी, और वो मेरे जहन में फंस गया है, पता नहीं।
1: देखा मैंने, देखा भाई,
0: भाई
1: बहुत आला है वो, बहुत आला।
0: वो बहुत आला, एक लाइन फंस गई है कसमी। पता नहीं कौन सा सीरियल है,
1: अमेंडमेंट कर सकते हो ना, बहुत आपको ज्यादा कुछ कह रहा हो ना, चमंजन दे रहा हो तो उसको दिल में बोलो
0: मनिक। और बहुत सारे मैसेज और भी हैं, पढ़ लेते हैं, और एक नई कॉल आ रही है आपके पीछे, पता नहीं कौन कॉल कर रहा है, देखते हैं। ठीक है भाई, तला भाई, तला भाई, तला भाई, तला भाई, एक कॉल और आ रही है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, कैसे जनाब?
0: मैं एकदम बढ़िया। ये आपका नाम, आवाज जाने बजाने लग रही है।
2: अब्दुल रऊफ
0: साहब, कैसे हैं?
2: ठीक है, कुछ आजकल प्रोग्राम कुछ ज्यादा नहीं है, ये क्योंकि इंटरनेशनल प्रोग्राम है ये वाला, सारे सुनते हैं, तो मेरा ख्याल है ये जो गप्पे हैं ना, ये आपस में दोस्त किसी कॉफी शॉप में बैठे हो तो चलती है।
0: मैं वही सोचा था आज मुझसे कोई लड़ा क्यों नहीं,
2: पकड़ रही है, और कुछ ऐसे अल्फाज आ रहे हैं कॉल्स में के मेरा ख्याल है प्रॉपर नहीं है इस रेडियो पे।
0: अब्दुल रऊफ साहब, इतना सीरियस मत दीजिए, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है अभी, चिल करिए,
2: नहीं है, लेकिन वो इस तरह की लंबी कॉल और उसमें फिर ये ठीक है, आप किसी के साथ अपनी पर्सनल दोस्त के साथ बैठे हों बाहर तो ये इस तरह की गपशप होती है।
0: कोई बात नहीं, इग्नोर कर दिया करें अब्दुल रऊफ साहब, इतना क्या टेंशन ले रहे हैं आप, रिलैक्स कीजिए थोड़ा सा।
2: ठीक है, आपकी मर्जी है, प्रोग्राम के फॉर्मेट इस तरह नहीं होता।
0: नहीं, फॉर्मेट तो मुझे भी पता है, 15 साल से इसी प्रोफेशन में हूं, रिलैक्स कीजिए, थोड़ा चिल कीजिए।
2: अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप बस है कि आप मशवरा था, बाकी आपकी मर्जी, आपका प्रोग्राम है।
0: नहीं बिल्कुल,
2: देखिए क्या होता है, वेल एंड गुड,
0: क्या होता है ना, देखिए वेल एंड गुड की बात नहीं, आपको कुछ अच्छा लगे सुने, ना अच्छा लगे ना सुने, दोनों तरीके हैं, चॉइस तो आपकी है
2: कबीर, वो अच्छा लगने की बात नहीं, लेकिन इतनी लंबी जो बातें चलती है उसमें क्योंकि सारे सुन रहे हैं, पूरा कतर बल्कि बहरीन सऊदीया वाले भी सुन रहे हैं।
0: हाँ, तो क्या हो गया,
2: इससे कोई इतना तो फायदा नहीं हो रहा ना,
0: अभी तक आप लौटे आए हैं, बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं है रऊफ साहब, आप अभी एक लौटे आए।
2: हाँ तो ठीक है, सारे शायद महसूस ना कर रहे
0: हैं। हाँ, जो जब कम से कम 10 लोग

0: आएंगे तो देखेंगे ध्रुव भाई, पक्की बात।
1: चले ठीक है, नो प्रॉब्लम।
0: ठीक है,
1: थैंक यू।
0: ओके
1: ओके, अल्लाह हाफिज।
0: अल्लाह हाफिज। तो मैं वही कह रहा था, देखा मैं कहा ना तो आज जो मैं कह रहा था आपसे कि कहाँ दिमाग नहीं लगाना चाहिए, सो नाउ यू नो, नाउ यू नो कहाँ पे दिमाग नहीं लगाना चाहिए। एक कॉल आ रही है, जरा उठा लेते हैं, एक सेकंड रुको। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई,
0: भाई साहब क्या हाल है आपके?
2: अल्हम्दुलिल्लाह
0: अल्हम्दुलिल्लाह जी। प्रिंस भाई बताइए।
2: अरे हम क्या बताएं, बताने वाले बता के चले गए, ये कैसे बता के चले गए, कौन है ये?
0: अरे
2: क्यों है ये?
0: अरे भाई
2: ये?
0: मैंने वही तो बोला, मैंने कहा जहाँ दिमाग नहीं लगाना चाहिए ना वो बता के चले गए, मेरे सवाल को उन्होंने प्रूव कर दिया सुबह सुबह। प्रूव करके चले गए,
2: ये तो होना चाहिए।
0: हाँ।
2: कि भाई कोई प्रूव भी तो करे।
0: प्रूफ भी तो करे, लगना तो चाहिए, सवाल पूछा क्यों है तो भाई बता के गए कि वही पूछना चाहिए। आज आज मुझे लग रहा है सुबह सुबह झगड़ा वगड़ा गया उन्होंने, और मैं वेट कर रहा था कि कहाँ आया क्यों कोई नहीं मुझसे भिड़ने के लिए, आजकल कोई ये आ गए। और बताइए प्रिंस भाई।
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
0: जी। प्रिंस भाई आप क्या कहना चाहेंगे, आपने तो सुन लिया अभी अभी दिमाग लगा के गए वो, आप क्या कहेंगे इस पर?
2: दिमाग लगाना ही क्यों है भाई?
0: लगाना ही क्यों भाई, तो मैं कह रहा हूँ इतना सोच लिया उन्होंने, इतना सोच लिया कितने लोग सुन रहे होंगे, पता नहीं क्या बात हो गई।
2: इसलिए तो मुझे लगा।
0: हाँ।
2: यार मैं रेडियो सुन रहा हूँ।
0: हाँ।
2: या अपने दादाजी को सुन रहा हूँ,
0: दादाजी
2: या किसे सुन रहा हूँ, किसे डांट पड़ रही है? फिर बाद में मुझे समझ में आपकी बात, नहीं नहीं ये तो अपना भाई कबीर है यार।
0: हाँ भाई बिल्कुल, मतलब ऐसे थोड़ी
2: है। तो क्या क्या कहता है हमारा ड्राइवर, चबूतरा मीटिंग कुछ समथिंग।
0: अच्छा।
2: वो उसको बोलता है वो घर के बाहर में, वो जो दहलीज के पास बैठ के जो दोस्त गप लगाते है ना, बोलते हैं सर हम ऐसे ऐसे बैठते हैं,
0: चबूतरे वाली गॉसिप जो होती है
2: समथिंग मीटिंग। फिर मुझे याद, अरे भाई ये तो अपनी मीटिंग चल रही है।
0: एक्चुअली एक्चुअली में क्या होता है ना, लोग भूल जाते हैं कि जब बातें मजेदार होती है ना तो लोग सब बात कर रहे होते हैं, तो वो उसमें मजा ही कुछ और है, वो चाहे कॉल छोटी हो लंबी हो लोगों को मजा आना चाहिए, वो मजा आ रहा है तो वो समझाना बड़ा मुश्किल है। एंड आई नो कि बहुत सारे लोग ट्रिगर हो जाते हैं, वो ट्रिगर हो गए आज सुबह सुबह, पर ठीक है चलता है, इट डजंट रियली मैटर एज लॉन्ग एज पीपल आर हैप्पी, इट्स ओके।
2: आपने जेट फ्यूल दिया है तो ट्रिगर तो हो गई,
0: जहाज तोड़ेगा।
2: जेट फ्यूल है भाई।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल प्रिंस भाई, तो आप बताइए कहाँ दिमाग नहीं लगाना चाहिए प्रिंस भाई, व्हाट डू यू से?
2: पहले तो दिमाग होना चाहिए लगाने के लिए,
0: बिल्कुल,
2: अगर कुछ बचा हो तो, इन दिन भर की दौड़ धूप काम वगैरह हर चीज से, उसके बाद में भी आपके पास अगर दिमाग है, लगाना चाहते ही हो,
0: फिर भी है,
2: लगाना चाहते हो चाहे जैसे भी, तो भाई बचा के रख लो, कोई काम में आ जाएगा, क्यों लगाना चाहते हो? लगाओ ही मत।
0: नहीं ये सही है, लगाना भी नहीं चाहिए, मतलब आजकल क्या है कि चीजें बची नहीं है जहाँ पे दिमाग लगाया जाए, ज्यादा लगाएंगे तो तकलीफ हो जाएगी, तो ये बिल्कुल सही सलाह है।
2: ये काटो ना यार भाई, क्या करना है।
0: हाँ नहीं तला भाई, अभी जो बात करके गए मुझे लग रहा है अभी आप पे भी आएंगे वो, ये प्रिंस बहुत बोलता
2: है। अरे बढ़िया, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ मेरे सारे भाइयों का।
0: अरे क्या बात है प्रिंस भाई, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। और बताइए सब सेट एकदम?
2: दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ कि लोग मेरा नाम भी लेते हैं, इनसे याद भी करते हैं।
0: अरे आपको याद करते हैं बाकायदा बाकायदा, अभी सोचिए कहते हैं
2: यही तो चीज है ना, इसी को तो कहते हैं कि यहाँ दिमाग लगाना ही नहीं है, याद कर लो बंदा खुश।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया प्रिंस भाई। पर थैंक यू सो मच कि आपने कॉल करी, और आपके जवाब ऑब्वियसली कम्युनिटी हमने फॉर्म कर लिए, एंड बड़ी खुशी मिलती है ऐसे ऐसे कॉल चलते हैं, दिस रियली मैटर्स। नहीं अच्छा लगता है, इतनी अच्छी कम्युनिटी
2: वाला प्रोग्राम है ही नहीं।
0: हाँ हाँ वही तो,
2: वी आर जस्ट हियर टू एंटरटेन आवर सेल्फ।
0: एग्जैक्टली माय पॉइंट और ऐसा ही होना
2: भी चाहिए। चिढ़ने दिमाग लगाने समथिंग समथिंग समथिंग ऐसी वाली कोई बात है ही नहीं भैया।
0: हाँ एकदम सी,
2: एंजॉय योरसेल्फ।
0: बिल्कुल यही तो बताने की कोशिश करता हूँ, एंजॉय करते नहीं ना लोग, टेंशन ले लेते हैं, उन्हें अपनी टेंशन नहीं थी, दुनिया की टेंशन है।
2: अरे कुछ ले रहा है तो उसको दे दो ना भाई, मना क्यों करते हो? तू टेंशन ले, तू बीपी ले भाई, तू हाई बीपी ले ले, थोड़ी चाहे तो शुगर भी ले ले, चाय में कम पड़े तो मिला के पी लेना,
0: मुझे क्या
2: मुझे क्या
0: मुझे क्या, बात तो सही है, सही है प्रिंस भाई।
2: फिर भाई ओके भाई,
0: बहुत बहुत शुक्रिया,
2: टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड एवरीवन एवरी लिसनर।
0: यू टू भाई, बहुत बहुत प्यार आपको, बहुत बहुत प्यार, थैंक यू सो मच भाई।
2: हेटर्स टू लवर्स टू
0: मुआ। अरे क्या क्या, वालेकुम सलाम भाई, एकदम सेट करेंगे, ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। तो भाई घड़ी में हो चुके हैं 7:02 और आप भी मेरा 7:02। अब्दुल रऊफ भाई देखा आपने, खुशी लोगों की, बर्दाश्त कर लिया करो, उनको भी खुश रहने दो भाई।

0: FM 107. Time check.
1: चेक चेक चेक, 7:03 हो चुके हैं। कॉल आ रही है, इनको कॉल लेते हैं। सबसे पहले बहुत सारे मैसेज है भाई, भर गया। अस्सलाम वालेकुम
2: कबीर भाई, कबीर भाई।
1: अरे मैं अभी झगड़ के बैठा हूँ।
2: झगड़े का मूड नहीं है, मैं बोलो बोलो। छोड़ने जा रहा हूँ दुबई, झगड़े
1: किसको छोड़ने जा रहा हूँ?
2: मेरा भाभी को छोड़ने जा रहा हूँ।
1: अरे माशाल्लाह, क्या बात है, आज तो चेहरे पे रौनक हो गई कतई।
2: भाभी तुम्हारा सलाम
1: दे रहा तेरे। वालेकुम असलम, खुश रहे, खुश रहे, अल्लाह ताला खुशबाश रखे आपको। और बताइए।
2: आता हूँ 8-10 दिन के लिए, लेके आता हूँ उधर कतर में, फिर
1: बिल्कुल
2: जाके छोड़ के आता हूँ उधर दुबई में।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह, तो अब आप मिस करेंगे उनकी, उनकी याद में क्या कहना चाहेंगे आप?
2: शाम को पहुँचेगा इंशाल्लाह वहाँ पर,
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह साथ खड़े से पहुँचे। हाँ
2: वो दिमाग, दिमाग वो मेरा भाई, ये क्या बात कर, दिमाग है तो सब कुछ है।
1: अच्छा, पर किधर
2: है तो सब कुछ है, औरत है तो सब कुछ है।
1: आज बदले बदले नजर आ रहे हो, क्या बात है
2: भाई। अभी देखो रात को मैं वो दोहा में आया, 10,000 का शॉपिंग कराया, सोना खरीदा,
1: वही
2: खरीदा, जो चीज उसने खरीदा मैंने बोला ले लो।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, क्या बात है यार, आप तो शाहरुख खान निकले भाई।
2: बेटी लोग भी है, पोता भी है, दूसरे साथ वाले घर वाले थे मलबारी लोग, आंटी आ गई, उस लोग के लिए भी सामान लिया, सब कुछ ले लो। क्या किसके लिए कमाता है मेरे भाई,
1: क्या बात है, आपका तौरा है भाई, अलग लेवल है आपका, कैसी बात कर रहे हो?
2: बच्चों के लिए कमा रहे हैं, बीबी के लिए कमा रहे हैं, मेरे हाँ। हंसती है,
1: सही बात है,
2: कभी कभी हंस लेते हैं ना, और कभी मजा है,
1: है।
2: बीबी मुस्कुरा ले वो बड़ी बात है यार।
1: अरे रे रे रे रे, क्या हो गया आज भाई को?
2: 40 साल से कमा रहे हैं, कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं दी है।
1: आज बड़ी
2: 4 बच्चों को शादी की है, अभी हम मियां बीवी है, हमारा बेटा है वहाँ दुबई पे, पोता है।
1: अच्छा,
2: ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी महीना के बाद जाता हूँ, उसको लेके आता हूँ इधर ही, इधर नहीं अकेली होती ना तो मजा नहीं आता उसको, इधर मुझे वो फैमिली है नहीं
1: भाई, मुझे हजम नहीं हो रहा। आज इतनी प्यारी प्यारी बातें चल रही, इतनी प्यारी प्यारी।
2: मैं आया था, मैं बोला कभी भाई का घर मालूम होता तो मैं अपना वाइफ को लेके जाता तो बिरयानी खा लेते, लेकिन होटल पे खाना खिलाया, मैं बोला चलो तुमको होटल।
1: यार आप तो अलग, आज मुझे अलग किरदार आपको सुनाई दे रहा है, क्या बात है यार, ऐसे मैंने सोचा नहीं था आपको। यशराज की पिक्चर के हीरो लग रहे हैं भाई आज तो, बिल्कुल
2: अल्लाह ने ऐसे बनाई है। क्या चाहिए, बच्चों को संभाले, घर को संभाले।
1: चलो बढ़िया है, आप संभालो भाई, वरना भी आ जाएंगे अब्दुल रऊफ भाई, चिल्ला देंगे आप पे भी।
2: मैं सब चीज बोलता हूँ, औरत का जैसा चीज दुनिया में नहीं है।
1: अच्छा,
2: सीधी बात है, औरत है तो सब कुछ है।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह,
2: सही है ना, अल्लाह ताला उसको इज्जत दे।
1: आमीन आमीन आमीन आमीन।
2: संभाले और क्या चाहिए मेरे भाई,
1: और क्या चाहिए। चलो फिर अभी, अरे सुनो तो ये सारी बातें मैसेज में भी कर सकते, चलो चलो, खुदा हाफिज इंशाल्लाह भाई। ये आदमी, इनको सुना है आपने, इससे पहले ये सिर्फ ऊंटों की बातें करते थे मुझसे, आज पूरा का पूरा इन्होंने तस्बीह पढ़ दी मोहब्बत की भाई। ऐसे लोगों को मैंने पलटते हुए देखा भाई, ऐसे लोगों को पलटते हुए देखा, बहुत बढ़िया भाई, सही जा रहे हैं। अरे छोड़ने जा रहे ना, इसलिए मैं समझ गया इनका क्या हाल है, मैं सब समझ गया। फराज भाई ने मैसेज किया था कि मेडिक्योर पेडिक्योर के टाइम दिमाग नहीं लगाना चाहिए, तब उससे मैंने कहने रिलैक्स भाई, इग्नोर कर दें, मैंने इग्नोर कर दिया, वो मुझे पता है। कुछ लोग ना हमेशा सीरियस रहना चाहते हैं, तो अब्दुल रऊफ भी उनमें से एक है, इनको बहुत सीरियस रहना है अपनी ज़िंदगी में, तो बीपी बढ़ाएं अपना। मेरा मूड एकदम ठीक है भाई, इट डजंट रियली मैटर टू मी, सही बता रहा हूँ। एक मैसेज है वैसे कबीर भाई, ये कोई पेड एक्टर तो नहीं थे टू प्रूव योर टॉपिक, ये अच्छा था बट माज डू यू स्टिल वॉन्ट टू कंटिन्यू। ये हमारे एक और भाई ने किया, बाय द वे नाउ आई एम थिंकिंग वेयर डू आई यूज माय ब्रेन इन डेली लाइफ, कोई सिचुएशन मिल ही नहीं रही है। ताहिर भाई आप तो माशाल्लाह भी यार, इतना बढ़िया काम चल रहा है आपका। एक मैसेज, मनी सेविंग में ज्यादा दिमाग कह रहे हैं नहीं लगाना चाहिए, सेविंग होगी नहीं। यस, ये मैं ये पता, ये पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है और मैं आपके साथ हूँ इसमें। सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब एकदम सही कह रहे हैं आप। इनके बाद एक और मैसेज आया है, शादी के बाद अगर नहीं, शादी के बाद घर में हस्बैंड को दिमाग नहीं लगाना चाहिए। ये एक हस्बैंड की तरफ से ही मैसेज है, शेख भाई ने मैसेज किया है। और एक मैसेज है, लेडीज जब गाड़ी चलाती हैं तो हमेशा हैंड ब्रेक लगाना हुआ रहता है, ये मैं बिल्कुल नहीं समझा आपका इसका इससे क्या मतलब है कबीर भाई, ये तला भाई फ्रॉम अलखोर भाई, दोस्तों की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसी ऐसी दरियाफ्त करते हैं बातें कि पॉसिबल नहीं होती, बिल्कुल सही है। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं, कोई भी डिस्कशन में अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए बेवजह, क्यों ही कोई अपना रिस्पॉन्स गलत होता है। ओके माजिद भाई क्या कह रहे हैं, इन्होंने गलत दिमाग लगाया ना, वो गलत दिमाग लगे गए वो उन्हें लगा बोलूंगा अरे सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी। इवन से आजकल दिमाग लगता ही कहाँ है, एआई जो आ गया है। मुजाहिद भाई अलग ही खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, क्या कह रहे हैं, दिमाग को रेस्ट चाहिए, छुट्टी के दिन दिमाग नहीं लगाना चाहिए, बस रेस्ट करो। एक भाई मुझे लगातार कॉल कर रहे हैं, अरे रुक जाओ थम जाओ। एक मैसेज है, बड़ी क्या भाई, कड़वा बादाम बिटर आमंड्स कम्स इन माउथ फ्लार फ्लेवर टेस्ट स्टे लॉन्गर, क्या बात हो गई। इरफान भाई मैसेज करते हैं, भाई सबसे पहले क्या बात है, कह रहे हैं अब्दुल रूफ नहीं है, ही वाज जीटी, डीडी मींस डबल डायर हो, डबल डेढ़ होशियार। अच्छा ये वाइफ को छोड़ने जा रहे हैं, इस खुशी में खूब तारीफ कर रहे हैं। हाँ भाई वो जो तारीफ करे गए वही रीज़न है, तो हस्बैंड बाहर जा रहा हो तो वाइफ को खबरदार दिमाग नहीं लगाना चाहिए, सब बातें ठीक है इरफान भाई, लेकिन भाई गाड़ी का नंबर यार बहुत बुरा है ये तो अरे बाप रे। अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, कैमल वाले भाई का आज उनका दिमाग फुल लगा हुआ था। हाँ आज ये कैमल वाले जो हमारे अंकल गए हैं अभी, ये माशाल्लाह राणा साहब आज मूड में थे, वो वाइफ को ड्रॉप करने जा रहे थे ना। एक वैसे वैसे ही जब आर्ग्यूमेंट हो तो एग्जिट स्ट्रेटेजी में लग जाना चाहिए, स्पेसिफिकली व्हेन इन आर्ग्यूमेंट विद वाइफ एंड डेढ़ होशियार पर्सन। या भाई यही आज मैंने किया है। कबीर भाई द ग्रेट, आपका नाम मैंने सेरोटोनिन रख दिया है, मूड हैप्पी कर देते हैं, माशाल्लाह खुश रहें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया सादिया बहन, जजाकल्ला, बहुत बहुत प्यार। एक मैसेज है, भाई मेरा दोस्त सबका दोस्त अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें, आ जाएंगे अभी वरना। एक मैसेज है, शुक्र है बॉर्डर आ गई। तला भाई कह रहे हैं हमें तो बॉर्डर पे ले आइए, हम भी बॉर्डर पे आ गए। एक मैसेज है, कबीर भाई आपको भी परसों शाम को एफएम पर शायरी करते हुए सुना। मैं शायरी करते हुए? बस खुद पे शायरी, अपने लिसनर्स पर रहम करें, कसम से आपको शेर पढ़ते सुनकर, कब मैंने शेर पढ़ा भाई, कौन सा शेर, किधर वाला? अरे वो शो है, करना पड़ता है बेटे, कभी कभार चीज़ें करनी पड़ती हैं। एक मैसेज है, आज दुबई जाने से पहले इन्होंने सोचा कि आज दिमाग यूज़ करूँगा, सब लगा दो कि बीवी राज़ी हो जाए। शोहर को सीखना चाहिए बीवियों पर खर्च करने से पहले ज़्यादा दिमाग ना चलाया जाए। नदीम भाई कह रहे हैं, बीवी के सामने डायरेक्ट नहीं बोल सकते, चाचा ने दिमाग लगाया कबीर भाई। हाँ ये रेडियो के माध्यम से जिन्होंने बोला है ना, अपना सब कुछ ठीक किया है। समीरा बहन मैसेज करती हैं, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, ये शो में दिमाग ना लगाओ, दिल से सुनो, दिल से सुनने वाला शो है, दिल से सुनो। समीरा बहन थैंक यू सो मच। एंड अभी एक गाने के बाद मिलते हैं क्योंकि बहुत मैसेज आ चुके हैं, टू टाइम्स इस गाने के बाद मिलते हैं। अब्दुल रऊफ भाई गाना बहुत लंबा है, इस पे तो नहीं चिल्लाओगे?

0: हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम, 7:14 में दुहा वाला कबीर एफएम 107 पे एंड एक मैसेज आज हॉर्न काम नहीं, यार हॉर्न काम कर रहा है भाई, बहुत सारे मैसेजेस है, बाप रे बाप। एक मैसेज और आया है, मैं कह रहा था कि कहाँ दिमाग नहीं लगाना चाहिए, एक भाई दिमाग लगा के चले गए। अच्छा उनके लिए मैं एक सेकंड मैसेज रोक के मैं जरा बताता हूँ। अब्दुल रऊफ भाई सुनो मेरी बात, अगर आप अभी अभी यार आप सुन रहे हैं, सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू कन्वे दिस टू यू। इसके बाद क्योंकि मैं आपको कन्वे भी नहीं करूँगा, आपका नाम मिलने वाला, तो ये बता दूं कि अभी क्या अपना जो शो है, इट इज़ अ कम्युनिटी बेस्ड शो एंड एवरीबॉडी एंजॉयज बीइंग टुगेदर, इट्स लाइक बीइंग टुगेदर, एक एक जगह पे बैठे हुए बात करना। तो ये जो फॉर्मेशन है ना, इसको ख़राब नहीं करने का, ये कोई वो नहीं है कि यहाँ पे हम टाई और सूट पहन के एक दूसरे से बात करें और एक दूसरे से ईमेल वाली लैंग्वेज में बात करें। सो इट्स इट शुड बी ऑल लव एंड नथिंग एल्स। So this is what I wanted to convey. This is the last message to you in case आप ट्यून है। इरफान भाई ने बोला भी, बोला यार वैसा होता तो मन खट्टा हो जाता है, बट आई टोटली गेट इट। मतलब मैं अगर कॉल काट देता तो वो भी मेरे पास ऑप्शन था, बटन तो मेरे पास ही है मैं दबा देता, कहता ओ ओ सॉरी कॉल कट गई, बट इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कन्वे दिस टू यू एंड आई होप। वैसे तो मुझे होप नहीं है, पर फिर भी पहुँच गया तो जी ठीक है, नहीं पहुँचा तो ठीक है, एक कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम।
1: सलाम जी,
0: कबीर साहब माजिद
1: बात कर रहा हूँ।
0: अरे माजिद भाई, क्या हाल है भाई के?
1: अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। यार आपको आज का थोड़ा लेट सुनना शुरू करता हूँ मैं, आज जल्दी शुरू कर लिया तो मुझे फिर वो पता चल गया कि कहाँ पे दिमाग नहीं लगाना
0: कहाँ पे नहीं लगाना भाई।
1: आइडिया हो गया मुझे,
0: आइडिया हो गया ना,
1: आइडिया हो गया। बाकी तलब भाई को तो मैसेज किया था उस वक्त मैंने, स्टार्ट किया था सुनना। तो इस तरह है कि एक तो भाई वो सीरियस बात है और एक फनी वाली बात है,
0: दोनों कर
1: ये कि जो दोनों कर देता हूँ। जो आगे वाला बंदा, लेट से आपने किसी से बात की है और वो आगे से आपको एक आंसर दे रहा है, ठीक है, ये एक नॉर्मल कन्वर्सेशन की बात कर रहा हूँ, भले वो ऑफिशियल हो, घर पे हो, कहीं पे भी हो, दोस्तों के साथ हो, अब उसने जो बात की आप उसको उसकी फेस वैल्यू पे लेके समझ लो और उसको बोलो हाँ भाई ठीक है आप सही कह रहे होगे। मतलब उसके पीछे जाके जो सोचने वाली कहानी होती है ना यार, इसलिए
0: ये नहीं करने का, रीजनिंग नहीं करने का,
1: दिमाग नहीं लगाना,
0: करेक्ट,
1: यहाँ दिमाग नहीं लगाना,
0: करेक्ट।
1: तो काफी चीजें जिंदगी में आसान हो जाएंगी, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आपके दोस्तों की भी आदत हो जाएगी, यार ये तो बंदा सीधा है, यार ये तो मतलब वो चीजें सोच ही नहीं रहा जो मैंने इसके बारे में सोची थी, तो आप खुद ही ठीक हो जाओगे। तो ये मैंने एक रूल बनाया हुआ कि टेक द थिंग्स ऑन फेस वैल्यू। अच्छा दूसरी बात ये है कि एक और जगह होती है जहाँ पे मैं तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाता, वो फनी वाली ये है कि भाई अलमारी में से चीजें अपने कपड़े निकाले बाकी फेंके अंदर, ठीक है, कुछ उसके बाद क्या नाम है, चीजें घर पे पड़ी हुई है, कुछ इधर उधर पड़ी हुई है, वो हो जाएंगी सही, वो है घर पे कोई उसको सेट करने वाला और वो इस पे दिमाग
0: माजी सुधर जाओ बच्चे, सुधर जाओ माजी।
1: तो ये तलाभाई वाली बात है कि नहीं, अगेन इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है, बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि इस तरह की छोटी चीजों पर सोच समझ के खलीका मंदी वाला काम है ना, वो अगेन जो है ना, वो आपके पास सेकेंड हाफ आपका जो है वो इसीलिए होता है और बेटर हाफ होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे केस में ये कि अलमारी मैं खराब करता हूँ हफ्ते डेढ़ हफ्ते में, फिर एक दिन मिलता है, एक दिन बिल्कुल सब कुछ सही पड़ा होता है, मैंने कहा यार माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है।
0: तो रिसेंटली डांट वांट नहीं पड़ी है आपको? मुझे लग रहा है आपको आपको ठीक करने की जरूरत है, कुछ हुआ आपके साथ?
1: इस पर डांट मुझे पड़ना बंद हो गई, बहुत शुरू में शायद पड़ती थी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी साल हो गए ना, तो अब डांट तो नहीं पड़ती, अब शायद कुछ खुद बोल देती होंगी अकेले में, लेकिन मुझे तो कभी डांट नहीं पड़ी इस बात पे कि यार अलमारी खराब की हुई है या कपड़े इधर फेंके या टॉवल या रखा, ये पहले होता था। तो वो चीजों में मैं दिमाग कम लगाता हूँ कि यार अच्छा अब एक शर्ट में ढूंढ रहा हूँ ना, अब उससे 10 शर्टें खराब हो रही है, मुझे तो वो ढूंढनी है, मुझे आज पहननी है, वो निकाल लिया पहन लिया, अगर इस्त्री नहीं पड़ी हुई चलो इस्त्री खुद कर ली, लेकिन समटाइम्स जो है ना उसको मैं चीजों में कम सोचता हूँ क्योंकि और चीजें बहुत है ना यार उस पे सोचने वाली।
0: भाई मुझे लग रहा है एक तो आपके लिए जैसे मैसेज आया है हफ्सा बहन का, वो भी कह रही लगता है एक तो भाभी ने हार मान ली है दूसरी बात आपने भाई सुधर जाना है मैं बताऊँ आपको।
1: इस वाले ना सोचने में प्रॉब्लम तब आती है जब आप अकेले रह रहे होते हैं, जब कभी आपको 10-15 दिन महीना अकेले रहना पड़ जाए तब वाकई आप कहते हैं यार ये तो बड़ा मसला बना हुआ है, कैसे चीजों को सही करूं, तो फिर आपका उस टाइम पर ना आप एक दिन लगा के चीजों को सेट कर लेते हैं, फिर जाहिर सी बात है करना पड़ता है, मैं इतना खराब बंदा नहीं हूँ, लेकिन शायद आदत थोड़ी खराब।
0: मुझे पता कैसा लग रहा है कि मेरे से इंटरोगेशन सीन होते हैं ना पिक्चरों में, सामने जो है वो मुलजिम बैठा हुआ है और वो मुझे टोपी बनाने की कोशिश कर रहा है।
1: मिले नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल में मुझे सही, आप ऐसा नहीं समझेंगे कि यार मैं ऐसा हूँ, मतलब ऐसा लगेगा नहीं आपको कि यार मैं ऐसा था, ये ऐसा हूँ, बहुत खराब आदमी तरह का, मतलब चीजें फेंकने वाला या खराब करने वाला। लेकिन कभी कभार होता है, नहीं लगाना चाहिए यार, मतलब और चीजें सोचने को बहुत है ना, हर चीज में इतनी छोटी चीजों में क्यों बंदा ध्यान लगाए।
0: लॉकअप में रखना पड़ेगा आपको, अभी नहीं छोड़ सकते आपको भाई, गड़बड़ तो है।
1: दूसरा मैंने जो मैसेज किया वो आपने मेरे ख्याल देखा नहीं।
0: अच्छा बताइए,
1: नंबर मेरे ख्याल में वो इरफान भाई की गाड़ी के नंबर से ऊपर चली गई है बात आज।
0: अच्छा हाँ, अभी हाँ नहीं, वो वहाँ चली गई, बहुत सारी बातें हुई भाई बीच में। हाँ बताइए क्या कहेंगे इरफान भाई, नंबर कैसा लगा, नंबर कैसा लगा बता के जाइए, नंबर कैसा लगा इरफान भाई?
1: नंबर तो मुझे बहुत ही बुरा लगा, और दूसरी बात ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एक होते ना थोड़ा बहुत अच्छा लगे, बिल्कुल भी नहीं लगा।
0: ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू सो मच, ओके भाई, अल्लाह हाफिज। और बहुत देर से कॉल आ रही भाई, भर के मैसेज, आज तो कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ। एक मैसेज पढ़ता हूँ, भाई ने बहुत दिल से मैसेज किया, कबीर भाई किसी से मोहब्बत का इजहार करना हो तो दिमाग नहीं लगाना चाहिए, उसको बोल देना चाहिए। उमर शहजाद साहब सब ठीक हो जाएगा, एक दिन आएगा तो यूँ गाएगा। एक कॉल और आ रही, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बताइए भाई।
2: भाई आपका जो टॉपिक है कि कहाँ दिल नहीं लगाना चाहिए।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, लड़ाई झगड़े में टॉपिक चेंज हो गया, मैं कह रहा हूँ कि कहाँ दिमाग नहीं लगाना चाहिए।
2: अच्छा दिमाग,
0: जी
2: ठीक है, तो कहाँ दिमाग नहीं लगाना चाहिए। देखिए जहाँ भी आप आर्ग्यूमेंटरी सिचुएशन में आ रहे हो, ठीक है, कहीं भी कि आपकी किसी बंदे से आपकी आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन बन रही हो, ठीक है ना, तो वहाँ दिमाग नहीं लगाए, आप बोले हाँ हाँ सॉरी और निकल ले वहाँ। अपना दिमाग नहीं खर्च करें वहाँ पे, बोले भाई सॉरी और वहाँ से निकल ले।
0: काश आपने मुझे 24 मिनट पहले ये बात कही होती तो एक कॉल से मैं बच जाता। अरे रे रे रे, बहुत लेट आया।
2: क्योंकि देखिए आर्ग्यूमेंटेटिव सिचुएशन में क्या होगा, वो आप सामने वाले बंदे का भी दिमाग खराब करेंगे, अपना भी दिमाग खराब करेंगे, और बात जो है ना वो आगे बढ़ सकती है।
0: यार ये मैं आपके लिए बताना चाहूंगा, काश आप 24 मिनट पहले आते, मैं दो हूटर और बजाता आपके लिए, पर बात में दम तो है। अग्री। और बताइए कैसा चल रहा है, सब सेट है मामला?
2: और दिमाग कहाँ लगाना चाहिए मैं बताऊँ?
0: इंडिविजुअल
2: जब आप हैं किसी चीज पे आप सोचे तो वहाँ आप सोचे, उस पर दिमाग लगाए इंडिविजुअल, लेकिन आर्ग्यूमेंटेटिव सिचुएशन में फौरन सटक ले वहाँ से।
0: पॉइंट टू बी टेकन। नहीं मैं अग्री करता हूँ आपसे, मैंने नोट कर लिया है, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा भाई। 24 मिनट पहले अगर आप मेरी जिंदगी में आ गए होते तो कुछ और ही रंग देखने को मिलते, बट ठीक है, थैंक यू सो मच।
2: फोन नहीं उठाना सर, मैं 24 मिनट पहले कॉल कर रहा हूं।
0: रे रे रे, ये तो मेरी गलती है, फिर मैं अपने लिए हूटर बजा देता हूँ ये लोग। थैंक यू सो मच भाई, लेकिन बहुत प्यार आपको, सच बात कही आपने,
2: थैंक यू
0: सो मच, जज़ाकअल्लाह, ओके भाई, अल्लाह हाफिज। और मैं एक्चुअली मैं इरफान भाई आपको भी कॉल करता, लेकिन मुझे एक और कॉल करनी, क्योंकि वो बेचारे मुझसे खफा हो गए और लड़ाइयाँ मैं झेल नहीं सकता। एक सेकेंड रुको, किधर है भाई, एक सेकेंड, मैं सही नंबर मिला रहा हूँ नहीं मिला रहा, मुझे अपने आप पे ही क्यों डाउट होने लगता है यार, ये सही नंबर है कि नहीं है। आई होप सो, आई रियली रियली होप सो, एक सेकेंड, तो अगर ये नंबर मिल जाए तो बैच बन जाए। और क्या क्या मैसेजेस हैं, मैनेजर के सामने दिमाग नहीं लगाना चाहिए, सीधे यस सर बोल के निकल जाओ। यस सर, क्या तुम बीमार हो? यस सर मैं तो रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम।
0: मैंने सुना कि आप कॉल कर रहे थे और आपकी कॉल नहीं उठा रहा था मैं, ये कैसे कैसे आप?
3: अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, हाँ बेसिकली मेरी बेगम ने ही कॉल की थी, और काफी देर से आपको मैसेज कर रही थी।
0: हाँ, मैसेज तो मैंने पढ़े थे बहन के, मैं अभी
3: भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टॉपिक सुन के मैं आपको सिंपल सी एक चीज बहुत बात बोलूंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। शादी हो गई ना आपकी?
0: जी भाई।
3: तो भैया दिमाग की चीज का दिमाग का है, शादी हो गई गेम ओवर। किसने बोला दिमाग बचाए
0: भाई, मोटिवेशन देने के लिए था आप, मतलब आपने बिल्कुल खत्म ही कर दिया, दफना दिया।
3: सर, जो चीज होती है उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वंस यू गेट मैरिड, वो कहते ना हसबंद मतलब हसी बंद, तो बंद हो गई भाई, उसी वक्त बंद हो गई थी। आखिरी मरतबा आपकी शादी की तो फोटो में मुस्कुराए थे, उसके बाद कभी खुल के मुस्कुराए हो?
0: यार ये तो झगड़ा करने का अलग तरीका दे दिया क्या बात है, थैंक यू सो मच, क्या मेरी जिंदगी में आए।
3: बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी साइड में बेगम बैठ के मेरी शक्ल देख रही है, घूरी मार रही है मुझे कि ये क्या कह रहे हैं
0: आप उनके साइड में बैठ के मुझसे बात कर रहे हैं, ये वाली बात?
3: जी सर, बात करवाओ आपकी, वही आपको मैसेज कर रही है।
0: प्लीज एक बार बात कराइए, ये तो बड़ा मैटर हो गया।
3: एक मिनट मैं आपको स्पीकर के ऊपर लेता हूँ।
0: जी जी जी, वालेकुम अस्सलाम बहन। तो ये कितने कोड़ों की सजा है इसके बाद जो उन्होंने बोला
4: भाई मेरे ख्याल से तो 100 भी कम है।
0: 100 भी कम है ना, तो मुझे एक हिसाब करने के बाद 100, 102 मारने का फिर बताइएगा मुझे, फिर मैं इनको कॉल
4: बिल्कुल बस गलती हो गई, कॉल लगवा दी मैंने
0: ये कितनी
4: अपनी गलती का एहसास हो रहा है
0: नहीं, पर आप ये देखिए इस आदमी में हिम्मत देखिए कितनी है, हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी आपको।
4: बस यही है हिम्मत, बस बर्दाश्त कर करके हिम्मत बढ़ा दी ना।
0: हाँ
3: भाई हिम्मत ही रहेगी, क्योंकि कभी कभार जब घर आओ तो ये सुनने को मिलता है दिमाग कहाँ छोड़ के आते हो, यहाँ पे जरूरी इस्तेमाल होता है, तब भाई ऑफिस में इस्तेमाल करके आते हो।
0: तो भाई ये तो एक तो आपकी हिम्मत कर देता हूँ, और अल्लाह ताला दोनों की जोड़ी सलामत रखे, बहुत प्यारी जोड़ी है, ये सेंस हो रहा है मेरे को। और आपका नाम क्या, नाम नहीं बताया अपना?
3: अमीन नाम है मेरा।
0: अमीन नाम है, अमीन भाई आप पहली मरतबा बात हो रही है हमारी, ऐसा है क्या?
3: सर मैंने बड़ी कोशिश की आपसे बात करने की, बट बार बार ना मेरा नंबर नजर हो जाता था लोगों के रस्ते।
0: अरे भाई एक मर्तबा आप मुझे हुकुम कर दिया करें कि भाई कॉल करनी है, मैं कॉल लगा लूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है अमीन भाई, कैसी बात है।
3: चले सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और उन साहब की खुशी का मवाजना मुझे भी हो सकता है जो अपनी बेगम को वहाँ दुबई छोड़ने जा रहे थे, जितने वो खुश थे उसकी मतलब खुशी का पैमाना लबरेज हो चुका था मेरे भाई।
0: वो बॉर्डर क्रॉस करने तक तारीफ करते हुए जाएंगे, बॉर्डर क्रॉस करने तक वो नहीं छोड़ेंगे।
3: इसको कहते हैं गुड स्ट्रेटजी,
0: गुड। पर भाई ज्यादा मीठा से डायबिटीज भी हो जाया करे भाई वो भी है।
3: अल्लाह रहम करे सर, अल्लाह रहम करे। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर कॉल करने का, थैंक यू,
0: ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और मैं जो हूँ अब, बाप रे आज तो मतलब बहुत बहुत इकट्ठे हो गए मैसेजेस। मैं एक जल्दी से इरफान भाई कॉल लगा लेता हूँ एंड उसके बाद सारे मैसेजेस पढ़ लेंगे। कह रहे आइंदा इस नंबर से कॉल अटेंड ना करें। अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई, क्या हाल है?
0: बढ़िया इरफान भाई, आप सुनाइए भाई।
5: शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह।
0: जी भाई,
5: ये अमीन भाई ने इतना जिगरा कैसे आ गया कि बराबर में उनकी वाइफ बैठी है और वो ऐसी खतरनाक बातें कर रहे थे, घर जाके इनका क्या होगा, अल्लाह बेहतर जाने।
0: सिंघम भाई, मैंने आज सिंघम से बात करी है।
5: अभी तो उन्होंने वाइफ ने इनकी कोनी मारी है बहन ने, आगे जाके पता नहीं क्या, कोई डंडा बेलन कुछ ना कुछ तो होगा घर जाके।
0: वो तो मैं कल रिपोर्ट लूंगा, हमारी बहन से पूछेंगे कि क्या हुआ आगे का, वो कल रिपोर्ट में आ जाएगा। आप बताइए इरफान भाई कैसे हैं, सब शानदार चल रहा है, क्या सीन है?
5: शुक्र है अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। रिगार्डिंग द टॉपिक जो आपका जवाब है
0: जी,
5: मैं अब मैनेजर की बात नहीं करूंगा, जो असिस्टेंट मैनेजर होते हैं ना, अगर वो बोंगी बातें कर रहे हो ना तो वहाँ पे दिमाग लगाना चाहिए।
0: अच्छा, तो मुझे लग रहा है कि आप काफी सरकास्टिक रिप्लाई देते होंगे, आई एम प्रीटी श्योर, लोगों को।
5: ऑफ कोर्स, मैंने आपको कल बताया था ना कि एक तो मैं बहस कभी हारता नहीं, और अगर कभी ऐसा मिले तो फिर मैं इसको कहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे काम है, आई हैव गॉट थिंग्स टू डू।
0: ओह माय गॉड,
5: वो वही वाला सीन है। मुझे ये जितने लिसनर सभी कह के गए हैं कि आपको यानी दिमाग वहाँ नहीं लगाना चाहिए जहाँ पे आपको पता है कि यार कोई फायदा है नहीं, सो बेटर यू मूव ऑन, यू जस्ट आप वहाँ से चले जाएं, क्योंकि फालतू में इतना दिमाग, वैसे ही हमारे पास मर्दों के पास दिमाग थोड़ा कम ही होता है मेरे हिसाब से। जैसे अभी अमीन भाई ने कहा ना, अमीन मैंने कहा ना दिमाग खत्म हो जाता है, तो वाकई में दिमाग की तो ऑफिस में ही थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है, घर आके फिर थोड़ा सा और दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग बचता ही नहीं है।
0: ये इश्तियाक उस्मानी भाई कह रहे हैं कल एक्सरे रिपोर्ट में पता लगे।
5: वैसे बहुत सारा प्यार हमारे तलहा भाई के लिए, प्रिंस के लिए, और माजिद भाई भी बड़ी जबरदस्त बातें करके गए, और आप ये जो सुबह सुबह ये जो ना वो खाला कुलफूम बन जाते हैं ना,
0: बेबी खाला है भाई, बेबी खाला हूँ।
5: नहीं आपकी बेबी खाला, हमारी कुलफूम खाला हो गई ना इस तरीके से।
0: अरे यार देखो ये बात है, इतनी प्यारी प्यारी बात चल रही है उसमें लोगों को पता नहीं कैसे हो जाता है इरफान भाई, इतनी प्यारी बात
5: है। नहीं ये बात तो है, सुबह सुबह पूरा हंसने का मूड रहता है, सीरियस कर दिया, मैं तो बड़ा गुस्सा आ रहा था मुझे, लेकिन खैर बहरहाल आपने अच्छे से हैंडल कर दिया। अच्छा जाते जाते बेटी खाला की एक्टिंग कर दीजिएगा और बहुत प्यार आपके लिए।
0: अरे इरफान मैं तो ये कह रही थी तुम्हारा गाड़ी का नंबर बदल लो, इतना गंदा अल्लाह।
5: अच्छा आप ना एआर को है ना, आप मेरे एआर को बीबी खाला की एक्टिंग कर देते ना, ये भी आप भूल गए।
0: भाई ये उनकी ना बोलने की रिदम है, हालांकि ये रिदम बड़ी कमाल की लगती है मुझे, मुझे लगता है ये रिदम अगर वो कोई यूज करे तो चिढ़ा दे आदमी को सामने वाले।
5: अच्छा अगर मिसाल के तौर आप एक सिनेरियो दे रहा हूँ आपको कि अगर बेबी खाला आपकी कंप्लेन कर रही है आपकी अम्मी से कि यार ये तुम्हारा बेटा मेरी एक्टिंग कर रहा है, तो वो क्या अंदाज होता
0: उनका अंदाजा? वो पता है वो ये तो शुरू करेंगे उनका जो प्रीफिक्स है स्टार्टिंग का, या ना ऐसे खींचेंगे लंबा एक तो बात को, उसके बाद फिर मैं ना कह रही थी हाथ से निकल गया भैया। उनका भैया बड़ा एक वो लहर है उसमें। तो ये है भाई उनका सीन, और वो बहुत शिकायतें करती हैं भाई। ये जो है इतने सारे मैसेज जो इकट्ठे हुए हैं इनको मैं क्या करूं, बहुत सारे, मैं जल्दी पढ़ देता हूँ बिकॉज आई हैव टू क्विकली मूव स्टोरी की तरफ। मैं या तो नाम पढ़ देता हूँ बिकॉज बहुत सारे मैसेजेस हैं एंड आई डोंट वांट टू मिस एनी ऑफ देम। कबीर भाई मैं कल से औरत की रूह आई हुई, ये हमारी बेबी खाला है उसमें भाई, शानदार है। अब्दुल रऊफ भाई को सर्वर भाई ने पैसे देकर कॉल करवाई है। ये मुझे मैसेज किया है रियाज अहमद साहब ने। हिशाम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कबीर सर, शवाना आंटी अरबाज भाई वालेकुम अस्सलाम कह रहे हैं, मुझे जलन हो रही है अमीन भाई से। और एक मैसेज है आमिर जफर साहब का, आई ऑर्डर टू देगा।

0: इतनी अबंडेंस में प्यार की वजह से एक भाई मुझसे लगातार कह रहे हैं उनका मैसेज नहीं पढ़ा, तो मैं पढ़ देता हूँ बिकॉज मैंने पढ़ा है आपका मैसेज. आई डोंट नो ये कैसे मिस हो गया, किधर गया इनका मैसेज यार. हाँ ये रहा, कह रहे हैं भाई मेरा भी मानना है कि 107 का सब कुछ बंद करके ऑल टाइम कबीर भाई को खाला को दे दिया जाए. मेरा वाला तो पढ़ा नहीं, मैंने पढ़ा भाई आपका मैसेज. एक मैसेज क्या मूड तो नाराज मजनू ने बनाया है आज, हैं की बात हुई. और शेख इरफान कासमी साहब अस्सलाम वालेकुम, इतना ट्राई करता हूँ जल्दी जगने का बट होता नहीं, क्या शो 7 बजे से स्टार्ट नहीं हो सकता? कोई एविएशन स्टोरी तो ज़रूर सुनाएगा. एविएशन स्टोरी इरफान भाई कल आएगी, एविएशन स्टोरी कल, एविएशन की कहानी है कल इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी. इरफान भाई कहते हैं लॉट्स ऑफ लव कबीर भाई, गॉड ब्लेस यू, ऑफिस टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव मेरे भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार. ओके सो एक गाना एंड देन द स्टोरी. स्टोरी के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊँगा. इट इज़ ये इट्स अ फेमस स्टोरी, मगर हो सकता है कि आपने शायद ना सुनी हो. मैं अज्यूम कर रहा हूँ और बहुत सारे लोगों तक ये कहानी नहीं पहुँची होगी. फेमस है लेकिन फिर भी इनकेस नहीं पहुँची तो आप तक आज हम पहुँचा देंगे. 2:44 के बाद मिलिए और फिर आपको मजा आएगा, ठीक है? सिर्फ 2:44. 666-22-107 नंबर है. मीट यू ऑन दी अदर साइड. लाइव सुने तो बताइएगा जनता में कौन कौन है, पता रहता है तो अच्छा लगता है. हाड़ी संदू
1: ओ चन्नती कुड़ी, ओ चन्नती कुड़ी.

0: Don't worry, I am on time today. Yesterday you said that I come late like police, but that's why.
1: हाँ तो मैं कह रहा कल आपने बोला था मुझे लेट आया हूँ मैं बिल्कुल बॉलीवुड फिल्म पिक्चरों की तरह तो आज मैं टाइम पर हूँ भाई. वेल डन भाई, गुड जॉब गुड जॉब. ओके तो आज का किस्सा मैं शुरू कर रहा हूँ एंड आई होप के आपको बहुत मजा आए बिकॉज ये स्टोरी बहुत फेमस है एंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप कहाँ देख सकते हैं बिकॉज इस पर मूवी भी बनी है अपेरेंटली तो मजा आएगा आपको. ठीक है तो सबसे पहले डिस्क्लेमर, इस कहानी का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं है. कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडा को प्रमोट नहीं करती है. FM 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता हो ना ही कभी देगा. लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है एंड इट इज वन ऑफ अ काइंड. ओके तो वॉल्यूम बढ़ा ली जाए, लेट्स गो. तो जी देखिए आज का जो किस्सा है ना जो मैं आपको सुनाना शुरू करूंगा इसमें कई सारी चीजें थोड़ी मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी तो आपके इमेजिनेशन को ऑन रखिएगा लगातार स्टोरी में बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है. आई होप कि मैं बोलकर वो चीज़ आपके सामने पेंट कर पाऊँ जो मैं कहना चाहता हूँ. ओके सो लेट्स बिगिन. तो आज का किस्सा सुनाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ 1997 में, ईयर 1997. इस साल के अगस्त के महीने में एक लड़की ने डिग्री हासिल करी, ग्रेजुएशन पूरा किया. नाम था इसका एरॉन और एरॉन जो था वो मेलन यूनिवर्सिटी से डबल मेजर डिग्री लेके निकला था इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फ्रेंच लैंग्वेज. और जाहिर सी बात है काफी काफी पढ़ा लिखा और कॉलेज के बाद सीधा नौकरी की तरफ लग गया. उस नौकरी भी बहुत बढ़िया कंपनी में लगी, बहुत ऊंची कंपनी में, नाम नहीं ले सकता बट समझ जाइए काफी बढ़िया सैलरी पे, बढ़िया पैकेज में. तो करियर उसका ऐसा था कि डिमांड थी उसके जॉब की कि वो ट्रैवल करे, मूवमेंट होती रहती थी. तो कभी यूएस के फीनिक्स एरिजोना में, कभी टकोमा में, तो कभी एल्बरकर्की में, इन जगहों पे उसका जाना रहता था कि कभी उधर भेज दिया, चार महीने वहाँ दे दिया, तीन महीने वहाँ ड्यूटी दे दी. हालांकि लग्जरियस लाइफ थी, ऐसा नहीं कि वो खुद ट्रैवल कर रहा है, कंपनी ट्रैवल करा रही है, सब कुछ दे रही है, मगर कहीं ना कहीं उसको लग रहा था कि उसका जो मेन पैशन है वो जी नहीं पा रहा. तो उसका पैशन कोई पढ़ाई नहीं थी कि डबल मेजर करूंगा, उसका पैशन था रॉक क्लाइंबिंग का. ही लव्ड इट, मतलब बचपन से उसको शौक था और वो इसके लिए वॉलंटियरिंग भी करता था, लोकल सर्च और रेस्क्यू टीम के साथ मदद भी करता था लोगों को बचाने में. ही वॉज ऑलवेज देयर ऑन टाइम. और चढ़ाई करनी है, माउंटेन्स चढ़ने हमेशा से सपना था. मगर ऐसा होता नहीं है ना कि अगर कोई ऐसा सोचे और कर ले तो पहले माँ बाप जिसे कहते हैं कि बेटा पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, ये तो बाद में होता रहेगा. वही केस सिनारियो था और सब कुछ कर चुका था और अब नौकरी करना था. और हुआ ये कि नौकरी करते करते जब इसे लगा कि मैंने ठीक ठाक कमा लिया है, बना लिया है, तो ये जॉब से बोर होने लगा कि यार अभी मजा नहीं आ रहा है, मुझे अपना पैशन जो है फुल टाइम परसू करना चाहिए. और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, 10 में से शायद एक, 100 में से शायद एक, जो ऐसा सोचने के बाद इंप्लीमेंट कर लेते हैं. तो एरॉन उनमें से एक था. एरॉन ने डिसाइड किया भाई मेरा हो गया, बोर हो रहा हूं मैं, अभी मेरे सर पे जिम्मेदारियां भी नहीं है, लेट मी गो अहेड. और उसने नौकरी छोड़ दी. 2002 में ये फाइनल डिसीजन उसने लिया कि अब हो गया बहुत, अब नहीं हो पाएगा. तो अपने सपने को, अपने पैशन को परसू करने के लिए वो पहुंच गया एस्पिन कोलोराडो में. और वहां पर एक रिटेल स्टोर में उसने काम करना शुरू किया. ऊट माउंटेनियरिंग ये जगह थी, वहां पे रिटेल स्टोर था. तो उसने कहा मैं माउंटेनियरिंग के गैजेट्स के करीब रहूंगा और नौकरी वोकरी हल्की सी ये करके फिर मैं अपना गोल पूरा करूंगा. और गोल कोई ऐसा छोटा मोटा गोल नहीं था, उसका सपना बहुत बड़ा था. वो चढ़ना चाहता था सारे के सारे कोलोराडो के माउंटेन्स, फोर्टेनियर्स कहते हैं इन्हें. और कितने माउंटेन्स हैं, 59 माउंटेन्स ऑन एन एवरेज, 14,000 फीट के माउंटेन्स. 14,000 फीट अगर आप देखें तो बहुत होता है. तो सारे माउंटेन्स चढ़ने का उसका सपना. और स्पेसिफिकली एरॉन का एक एम था, वो चाहता था कि सारे माउंटेन्स तो क्लाइम करे ही लेकिन हार्श वेदर कंडीशन में. वो अपने आप को कुछ प्रूव करना चाहता था. और ऐसा प्रूव करने के चक्कर में उसने एक समिट पर चढ़ाई करी थी जून के महीने में, जहां पे 20,320 फीट का ऊंचाई पर फुट ऑफ द माउंटेन पहुंच गया था वो. और मैकिनली नाम के ये जगह थी एंड वहां पे उसने ये पूरा किया था। तो वो अपने सपने को ऐसा नहीं कि सिर्फ सोच रहा था, वो कहीं ना कहीं कोशिश भी कर रहा था, पूरा भी कर रहा था, स्लोली एंड ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स इट। उसके बाद उसने डिसाइड किया कि यार अभी कुछ बड़ा करना पड़ेगा, तो एक ट्रिप करने के लिए वो चला गया सेंट्रल कोलोराडो। वहां पे फरवरी 2003 में भी वो चढ़ गया, फिर एक बर्फीली जगह पे स्कीइंग करने गया अपने दोस्तों को सिखाने के लिए कि भाई आओ मैं तुमको सिखाता हूं, स्कीइंग करना सिखाता हूं, मजे करेंगे, पहाड़ चढ़ेंगे। दोस्त भी आ गए। अब हुआ क्या कि जब ये स्कीइंग कर रहे थे, जिस जगह पे स्कीइंग कर रहे थे, नीचे मतलब आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ढलान है, स्कीइंग करते हुए नीचे जाएंगे तो नीचे पूरा बेसिन टाइप का बना हुआ है, तो गड्ढा समझ लीजिए, उसमें

तक ये बर्फ है और इनको अंदाजा भी नहीं है। तो ये तीनों के तीनों एरन और उसके दो दोस्त नीचे आए स्कीइंग करते हुए और फिर वो आवाज आई टकराने की, तो एक दोस्त तो पूरी तरह से बर्फ के अंदर, एरन गर्दन तक बर्फ में, और एक दोस्त पेड़ से जाके टकराया। जो टकरा गया था वो बच गया, वो वापस आया, उसने दोनों दोस्तों निकाला, दोस्ती टूट गई। सब दोनों के दोनों दोस्तों ने कहा एरन भाई आगे से मिलना नहीं मुझसे, जैसे होता नहीं यार ये भाई इसके साथ नहीं जाऊंगा मैं, ये तो भाई सब मरवा देगा। मगर इस नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद एरन को डर नहीं लगा, एरन का कॉन्फिडेंस और ऊपर हो चुका था, उसे फर्क नहीं पड़ता दोस्त है नहीं है कुछ तो करना है। और उसके दिल में ना ऐसी बेचैनी हो रही थी कि मैं कुछ कर दूं, अभी चढ़ जाऊं कहीं पे बस। 3 हफ्ते उसने प्लानिंग करी और डिसाइड किया 3 हफ्ते के बाद वो क्या करना चाहता है। फिर से कुछ दोस्तों के साथ माउंटेनियरिंग का प्लान किया था लेकिन दोस्त पीछे हट गए क्योंकि वेदर कंडीशन सच में बहुत बुरी थी। लिटरली ऐसी गर्मी कि आपकी खाल एकदम लाल पड़ जाए, वैसी वाली गर्मी। तो दोस्तों ने मना कर दिया, इसने कहा मैं तो अकेले जाऊंगा और चला गया। तो पहले एरन जब जाता था कहीं पर भी माउंटेनियरिंग करने के लिए तो अपने रूममेट्स को दोस्तों को बता के जाता था कि भाई मैं यहां यहां जा रहा हूं, ध्यान रखना, बता देना अगर कोई पूछे तो। बिल्कुल डिटेल्ड ट्रिप बता के जाता था। मगर ये जो ट्रिप थी जहां ये अकेले जा रहा था कुछ नहीं बताया इसने, बस एक कागज पर यूटा लिखकर वो चला गया। और जहां वो जा रहा था ये 5 दिन का सफर था। ही वॉन्टेड टू ट्रेवल टू ब्लू जॉन और हॉर्सशू कैनियन। ये आप कहानी के बाद ये दोनों नाम टाइप करके देखिएगा और आप समझ पाएंगे कि ये कैसी जगह है। ब्लू जॉन और हॉर्सशू कैनियन बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, एंड पीपल जस्ट लव टू गो देयर। वहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग भर भर के लोग करने के लिए जाते हैं, चाहे गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, पीपल डोंट केयर। इट इज डेंजरस, लेकिन जो एडवेंचर करने वाले लोग हैं वो दीवाने हैं उस जगह के। बहरहाल बैक टू द स्टोरी, वहां पहुंचकर ब्लू जॉन उसने डिसाइड किया कि अब जो है बाइक पार्क करके मुझे अब फैसला लेना है कि कहां से किधर जाना है। तो जब वो जा रहा था एरन, उसे 2 लड़कियां वहां पर मिली और दोस्ती हो गई इंस्टेंट, क्योंकि होता ना सेम एडवेंचर कर रहे हैं तो दोस्ती हो जाती है। उन दोनों लड़कियों ने कहा व्हाई डोंट यू शेयर लंच विद अस। ये भाई साहब नहीं रुके, नहीं मुझे नहीं करना लंच, मैं तो जा रहा हूं। और ये बड़ा कहानी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बाद में बताऊंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। अब वो कैनियन के अंदर उतरने लगा। यहां से आपको इमेजिनेशन अपना ऑन रखना है। अब कैसे उतर रहा है वो कैनियन में, जहां वो नीचे जा रहा है बहुत पतली जगह है, बहुत पतली जगह है, 2 दीवारों के बीच में यूं समझ लीजिए सैंडविच हो रहा है वो, और धीरे धीरे धीरे धीरे नीचे आ रहा था। अब उसे एक जगह रुकना पड़ा, और रुकना इसलिए पड़ा क्योंकि यहां पर एक चौक स्टोन था। चौक स्टोन को देसी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, एक ये फैंसी वर्ड है बड़े से पत्थर का, ये समझ लीजिए बड़ा सा पत्थर है ये। अब उसने कहा यार ये मेरे रास्ते में कहां से आ गया, क्या करूं मैं क्या ना करूं। तो ये वर्टिकल पत्थर बिल्कुल दोनों दीवार समझ लीजिए दोनों के बीच में फंसा हुआ था। अब ये रुका थोड़ा, सोचा मैं इस पे पैर रख के देखूं क्या करूं, ये गिर तो नहीं जाएगा, मेरा वजन संभाल पाएगा। तो उसने पहले तो लात मार के देखा, पैर मार के देखा, तो हिला नहीं। इसने समझ गया कि मेरा वजन ही संभाल लेगा, चलो ठीक है। जब वो सेटिस्फाई हुआ तो वो आगे बढ़ा, कदम बढ़ाए, और जैसे ही कदम बढ़ाए उसने और सामने वाले लेज पे रखे और नीचे की तरफ आया तो विद इन माइक्रो सेकेंड्स इस पत्थर को क्रॉस करके नीचे आने के बाद ये पत्थर ऊपर से हिला और फिर नीचे आने लगा, और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा स्पीड थी। रिएक्शन टाइम मिला ही नहीं उसको। अब आप समझ रहे हैं, आप 2 बिल्कुल पतली सी जगह पे फंसे हुए हैं और ऊपर से पत्थर बड़ा सा नीचे आ रहा है, रिएक्शन टाइम ही नहीं मिला। अब बचाने के लिए कहां जाए किधर जाए, खुद एक पतली सी जगह पे खड़ा हुआ है, कहीं जाने की जगह नहीं है। तो उसने क्या किया, अपना जो राइट हैंड था वो आगे किया कि किस तरीके से बच जाए, मगर पत्थर था उस पर लगा, इसने हाथ फौरन अपना पीछे खींच लिया, समझ नहीं आया क्या करे। अब

हमारा पत्थर के नीचे से। और उसे यह एहसास होने लगा कि वो कहीं नहीं जा सकता, कोई उसे देख नहीं सकता, कोई है ही नहीं तो कहां से देखेगा। वो बहुत चिल्लाया, और ये बहुत ही पतली जगह है जहां वो खड़ा भी है ना, एक लेज है, बस जरा सी जगह है कि उसके पैर बस वहां पे आ सकते हैं, दैट्स इट। एरन ने ना बचपन में बहुत किताबें पढ़ी थी एक जॉन नाम के बंदे की, वो कहानियां लिखता था एक बंदों के बारे में जिन्होंने एडवेंचर किया अपनी जिंदगी में, जो बिना किसी कनेक्शन के रहे हों, तड़पे हों जगहों पे, बच के निकल गए, इन सब की कहानियों को पढ़ता था वो। और कहीं ना कहीं इन कहानियों से ना फैसिनेशन होता था उसको कि यार मुझे भी कुछ ऐसा जो है करना है, मैं जानना चाहता हूं इंसान अटक जाएगा इंस्टीट्यूशन में तो क्या करेगा। तो यूं समझ लीजिए कि उसकी दुआओं की कबूलियत का वक्त था, और वो अभी उसी सिचुएशन में था जिनके बारे में वो किताबों में पढ़ रहा था। He was stuck in the same situation. क्या करे, उसे कोई नहीं जानता वो किधर है, उसने बताया नहीं किसी को, ना उसे कोई ढूंढने निकलेगा अभी। अब वो हाथ, उसे अंदाजा हुआ कि क्योंकि पत्थर अभी हटा नहीं सकता, तो उल्टे हाथ से उसने पत्थर को धकेलने की कोशिश करी, लेकिन पत्थर नहीं हट ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं हट रहा। और उसका बैकपैक भी उसने पीछे टांग रखा है, उसे बीच में प्यास लगी, उसने कहा मैं क्या करूं, टेंशन के मारे समझ में नहीं आ रहा। तो उसने जो है पानी की बोतल एक तो साइड में लगी थी वो उठा के उसने उल्टे हाथ से पानी पिया, और उसके बाद फिर समझ नहीं आया कि अब क्या करेगा। दूसरी बोतल जो है बैकपैक में पीछे पड़ी हुई थी, और वो बैकपैक में से निकालना बड़ा मुश्किल है क्योंकि बैग दोनों कंधों पर लटका हुआ है और सिर्फ लेफ्ट हैंड ही बचा है, राइट हैंड में तो पत्थर गिरा हुआ है, तो कैसे निकाले वो। तो उसने जैसे तैसे अपने आप को साइड में करके थोड़ा सा इधर उधर अपने हाथों को हिलाने की कोशिश करके बैग के स्ट्रैप को ढीला किया, घुमाया, और फिर उसके अंदर से उल्टे हाथ से बड़ी मुश्किल से बॉटल निकाली और पानी पिया, बचा के रखा क्योंकि उसे नहीं पता कि कितना टाइम यहाँ लगने वाला है। कुछ देर वो कोशिश करता रहा अपने आप को काम डाउन करने की कि नहीं कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, पत्थर ही तो है, हाथ पे चला जाएगा, हटा दूंगा मैं इसे, कामयाबी मिलेगी, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। मगर कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि उसे अपना हाथ महसूस होना बंद हो रहा है, दिख रहा था कि उसका जो सीधा हाथ है वो धीरे धीरे हल्का ग्रेश पड़ रहा है। पानी की बोतल के अलावा उसके बैकपैक में उसने देखा क्या क्या है, तो कुछ स्नैक बार्स थे, सीडी प्लेयर था, सीडीज थी, डबल ए बैटरी थी, कैमकॉर्डर लेके आया था, डिजिटल कैमरा लेके आया था, एक हेडलैम्प था, एक मल्टी टूल था, क्लाइंबिंग रोप थी, एक हार्नेस था, और कुछ चढ़ने के इक्विपमेंट वो साथ में लेके आया था, और थोड़ा सा पानी उसके पास बचा था। अब दिमाग को तेज दौड़ाना पड़ रहा था कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, हजारों ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे। उसने मल्टी टूल निकाला, मल्टी टूल बेसिकली एक टूल होता है, इसमें चाकू, बड़ा चाकू, ब्लेड, छोटा है, सब कुछ एक साथ होता है, तो उसने वो निकाला और फिर सोचने का इसके इससे पत्थर को काटने की कोशिश करूं क्या। अब दिमाग ना आपका काम नहीं करता ऐसे सिचुएशन में, अभी आप और मैं कह रहे होंगे अरे यार पत्थर से थोड़ी मतलब, पत्थर कैसे कटेगा छोटे से टूल से, मगर काम नहीं कर रहा ना दिमाग, कुछ भी करने को तैयार है अभी। फिर उसके दिमाग में आया है दूसरा ऑप्शन ये कि मैं छोटी सी रिग बनाता हूँ ऊपर और पत्थर को ना उठाने की कोशिश करता हूँ, पर ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर तीसरा ऑप्शन डेंजर था। तीसरा ऑप्शन ये था कि अपना ही हाथ जो है अपने जिस्म से अलग कर दूं। इस ख्याल ने उसे डरा दिया, फिर वो ऑप्शन नंबर वन की तरफ किया। 5 घंटे वो एक चाकू से पत्थर को काटने की कोशिश कर रहा है जो लिटरली बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि वो हटा भी नहीं पा रहा है, उसका हाथ नीचे दबा हुआ है। अब उसके पास पूरा का पूरा रिगिंग सिस्टम तो नहीं था, और से अंदाजा हो रहा था कि ये सिचुएशन इतनी आसान भी नहीं है, और एरन के मन में बार बार आ रहा था हाथ काटने के अलावा कुछ और रास्ता तो होगा। घंटों तक वो घिसे जा रहा था चाकू पत्थर को काटने अपने उल्टे हाथ से। रात हो गई और अराउंड मिडनाइट एरन ने सोने की कोशिश करी, बस सोए कैसे, कहीं कुछ हो ना जाए। तो उसने
जो हार्नेस जैसा होता है वो बांधा और पत्थर के ऊपर से रोप निकाली जैसे तैसे, जो बड़ी मुश्किल से लगी, और फिर सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे खड़े खड़े सोना था, तो उसने कहा कि मैं कैसे करूँ, थोड़ा बैठने की

कोशिश करी, बैठ भी नहीं पा रहा क्योंकि हाथ तो फंसा हुआ है पत्थर के नीचे और कमर एकदम कस के हो रही थी हार्डनेस की वजह से, तो दर्द बहुत बढ़ रहा था, खून का दौरान एकदम रुक जाता ना, ज्यादा टाइट हो जाए मामला, तो बेचारा सो भी नहीं पा रहा, कभी बैठे कभी उठे, हर 20 मिनट में यही चल रहा है, पूरी रात इसी में निकल गई। दूसरा दिन आ गया, एरन ने सोचा भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा, मैं इस पत्थर को उठाने की कोशिश करता हूँ। उसने अपने उल्टे हाथ से पूरा एक छोटा मोटा प्रोसेस करके रस्सी को पत्थर के दूसरी तरफ डालने की कोशिश करी, घुमा के उसे उठाने की कोशिश करी, 30 फुट की उसके पास रोप थी, उसे पूरा खोल के सब कर लिया लिफ्ट करने की, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं हुआ। फिर एकदम से हेरोन को आवाजें सुनाई थी, उसे लगा कोई है, वो चिल्लाने लगा हेल्प हेल्प हेल्प हेल्प, लेकिन फिर ध्यान से सुना तो वो चूहों की आवाजें थी, कैंगरू रैट्स की, जो अपने बिल में है और आवाजें कर रहे हैं। तो उसका दिल टूट गया, माइंड वापस, उसका दिमाग वापस कोशिश करने को उससे कह रहा था, उसने वापस वो टूल निकाला, वापस पत्थर को उसी चाकू से घिसने लगा। फिर उसने अपने मल्टी टूल का जो ये चाकू था अपने हाथ पे लगाना शुरू किया, चेक कर रहा था कि दर्द होता है कि नहीं होता, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं था और ब्लेड जो थी वो कमजोर हो चुकी थी पत्थर पे घिस घिस के। फिर उसने देखा टूल में एक छोटी ब्लेड भी है जो थोड़ी शार्प भी है, तो चाहे इससे इस हाथ को अपने अलग कर लूं क्या अपने आप से। पर कैसे, क्योंकि खून बहेगा, जब खून बहता है तो उसमें कहते ना टाइट कुछ बांध लो, टर्निकेट कहते हैं उसको अंग्रेजी में, तो वो टाइट बांधने के लिए कुछ चाहिए उसको, कहां से लेके आए, तो एक प्लास्टिक होस था, उसने वो बांधने की कोशिश करी, मगर वो इतना स्टिफ नहीं था, मजबूत नहीं था। फिर उसने कुछ सामान निकाला, वेबिंग का सामान था, उसमें डोरी वोरी सब थी, उसने जैसे तैसे एक टर्निकेट, मतलब समझ लीजिए अपने हाथ को जहां से अलग करना है वहां पे बहुत टाइटली बांध लिया, सोचा कि ये शायद काम आ जाएगा, फिर तैयार हो गया। मगर जैसे ही उसने वो ब्लेड को ओपन किया तो उसका मेंटल ब्लॉक आ गया, दिमाग कह रहा है नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कर सकता, दिस इज टू मच। और इन्हीं बातों में, इसी बेचैनी में, बुरी हालत में तीसरा दिन आ गया, एरन के सारे आइडियाज फेल हो चुके थे। उसने वापस सोचा अब हाथ अलग ही कर लेता हूं। उसे अंदाजा ये हुआ कि जो उसने टर्निकेट बांधा है अपने हाथ में इतना सही से नहीं बांधा है, शायद इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। तो उसने क्या किया, वो जो आपने देखिए बॉटल्स के अराउंड कई मर्तबा कैप के पास ना एक रबर की पूरे एक रैप्ड एक चीज होती है, कैमल बैक बॉटल्स होती है, उनके ऊपर पूरा एक सिस्टम होता है रबर का, तो उसे निकाल के उसने टाइटली बांधा अपने हाथ पर, लगा हाँ ये अब परफेक्ट है। फिर उसने सबसे पहले लॉन्ग नाइफ निकाल के पत्थर को फिर से कोशिश करी काटने की, कुतरने की, लेकिन नहीं हो रहा है। ही ट्राइड एंड ट्राइड, फिर उसने अपने हाथ पे भी वो चला के देखा, लेकिन खून का एक कतरा भी नहीं निकला। फ्रस्ट्रेशन की, ये भी नहीं कर पा रहा हूं, ये भी नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं करूं क्या। उसने पानी की बोतल की तरफ देखा, लास्ट सप्लाई, और यहां पर भी उसके साथ किस्मत ने खेल कर दिया। उसने बोतल उठाई पानी पीने के लिए, क्योंकि सिर्फ उल्टा हाथ ही काम कर रहा था, थका हुआ था, तो बोतल गिरी, बचा ली, लेकिन उसमें से पानी गिर गया, आखिरी की कुछ बूंदे बची थी बस, और वो आखिरी की बूंद पीते हुए वो सोच रहा था कि क्या पुलिस मुझे ढूंढ रही होगी, क्योंकि मैंने क्रेडिट कार्ड से चीज़ें खरीदी हैं, क्या हो सकता है वो ढूंढते मेरी तरफ आ जाए। मगर फिर याद आया कि नहीं नहीं नहीं, मैंने तो कैश दिया था, तो वहाँ पर भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। अच्छे अच्छे टाइम के बारे में सोच रहा था कि कुछ बदलेगा मेरी ज़िंदगी में। उसने फिर एक कैम कॉर्डर निकाला, जिसकी वजह से मैं आपको कहानी सुना पा रहा हूँ, कैम कॉर्डर निकाला और रिकॉर्ड करने लगा एक फेयरवेल मैसेज। उसने बोला कि मैं अपने माँ बाप डोना और लैरी रॉल्स्टन से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और जिसको भी मेरा ये वीडियो मिले ये मेरे घर पर दे देना। और एक एक डिटेल उसने उस कैम कॉर्डर में रिकॉर्ड करी, उसने क्या क्या किया, क्या क्या करने की सोच रहा है, वो कैसे फंस गया, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड एविडेंस। पूरे दिन वो बस चाकू को देखता रहा कि क्या करूं, मैं शार्प वाला हिस्सा निकालूं क्या, मैं क्या करूं, मेरा हाथ तो फील हो नहीं रहा है, मैं इसे अलग कर लूं क्या। और फिर अपने आप से बातें कर रहा था, अलग कर लूं क्या, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, नहीं नहीं सुन, ऐसा नहीं करना, ऐसा हो सकता है। और वो बीच बीच में जो अपने आप से बातें कर रहा था, उसका माइंड उससे करवा रहा था, यानी रियलाइज कि मैं अपने आप से चिल्ला चिल्ला के बातें क्यों कर रहा हूं।
मगर ऐसे ही उसका हाल हो चुका था। पांचवें दिन तक वो वहीं फंसा रहा, वहीं क्या वहीं, 96 आवर्स एक ही जगह पे। उसके पास एक आइडिया आया, हो सकता है कि पत्थर से, अगर मैं पत्थर घिसूं तो शायद ये बड़ा सा पत्थर घिस जाए, हट जाए, टूट जाए। तो वो भी कोशिश करी बेचारे ने, अभी जान भी नहीं है। उसने उल्टा से पत्थर उठाया और मार जा रहा है उस पत्थर पे, फोर्स नहीं लगा पा रहा, पावर भी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ा। और टाइम निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। उसने सोचा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। और छठा दिन जब शुरू हुआ तो एनर्जी उसकी ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी थी। वो एक जॉम्बी जैसी सिचुएशन में था इस वक्त, बिल्कुल जॉम्बी जैसी सिचुएशन में, ऑलरेडी गॉन। उसने पत्थर उठाया बेजान हालत में और पत्थर से पत्थर टकराने की कोशिश करी, उसने कुछ नहीं हुआ। और फिर उसने देखा कि उसका हाथ, जो सीधा हाथ पत्थर के नीचे दबा हुआ है, वो बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है। और उस पर उसने कट लगाया, कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, मगर उसे ये महसूस हुआ कि उसका हाथ लिटरली सड़ने लगा है। जो पत्थर के नीचे का हिस्सा है, जहाँ जिस पे पत्थर आ चुका है, वहाँ तक खून का दौरान नहीं पहुँच रहा है, खून का सप्लाई, खून की सप्लाई एकदम बंद हो चुकी है। तो उस हाथ में अब जान भी नहीं है। और एरोन ने कट लगाया ना जब, तो उससे गैस निकली, क्योंकि जब अंदर सड़ने लगता है कुछ तो फिर उसमें से गैस निकलती है, ब्लड नहीं निकलता। वो समझ गया अब क्या करना है। उसने सोचा कि मैं अपना हाथ अलग तो कर लूँगा, जोर जोर से चिल्लाने भी लगा, मगर फिर याद आया कि हड्डी नहीं तोड़ पाऊँगा, ब्लेड ही तो, हड्डी कैसे तोड़ूंगा मैं। मगर फिर इतना वो परेशान हो चुका था, उसने अपने हाथ को, जो फंसा हुआ हाथ है पत्थर के नीचे, उसी में ट्विस्ट करने लगा, टर्न करने लगा, इधर उधर खींचने लगा। और फिर वो आवाज आई जिसका उसे इंतजार था, वो कड़क आवाज, ये हड्डी टूटने की आवाज थी। अब वो समझ गया था क्या करना, उसने अपनी ही हड्डी तोड़ी थी और बस हाथ अलग करना था। उसने टर्निकेट बांधा ताकि ब्लड लॉस ज्यादा ना हो, और वही किया जो करना उसे उस टाइम सही लग रहा था। बहुत खून बह रहा था, लेकिन उसने रोका, उसके हाथ का दूसरा हिस्सा लिटरली कलाई से थोड़ा सा आगे से वो पत्थर के नीचे ही रह गया। उसने अपने आप को छुड़ाया, जिसम से अलग किया हाथ को, और फिर उल्टे हाथ से अपने दर्द को कंट्रोल करते हुए रोप निकाली और पत्थर की दूसरी तरफ डाली, एक जगह पे बड़ी मुश्किल से बांधी। और अब बस नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे ना कैसे इस पूरे कैनियन के नीचे तक पहुंच जाऊं, फिर दूसरे साइड से ऊपर चढ़ने की बाद में सोचूंगा, क्योंकि अभी क्लॉक इज टिकिंग। और जब उसने रोप डाली तो यहां पर भी एक बहुत बड़ी चूक होते होते बची, वो रस्सी पूरी तरह से सरक के नीचे जा रही थी, वो जो आवाज आती है ना एकदम सरकने की सीढ़ी रस्सी की, तो वो आवाज आ रही थी, लेकिन उसने अपने पैर से रोक लिया, उस रस्सी को उठाया और अपने आप से ही बोला कि आप और कोई गलती नहीं, ये छोटी छोटी गलती नहीं कर सकता मैं। उसने टाइटली अपनी कमर से बांधी, बकल अप किया, हार्नेस बांधा, और फिर सिक्योरली जब टाइट हो गई रस्सी तो नीचे की तरफ गया। पूरे 5 दिन के बाद, 5.5 दिन के बाद वो कैनियन के फ्लोर पे था। मगर अभी मुसीबत खत्म नहीं हुई है, बाहर भी तो निकलना है। उसे सही डायरेक्शन जानना जरूरी थी, जो सही मिल चुकी थी, मगर हाथ से खून निकल रहा था लगातार, जिसे वो रोक नहीं पा रहा था। डेंजर था, मेडिकल सपोर्ट के आने तक जिंदा रहना जरूरी है। और एरोन अपने आप को पुश करने लगा, 65 फीट की दीवार कैनियन की ये चढ़ गया उल्टे हाथ से, बिकॉज इतना डेस्पिरेशन आ चुका था अंदर कि कुछ भी हो जाए। और जब ये ऊपर आया, मेन लैंड पे जब ये गिरा, तो उसकी हालत खराब थी, तो तड़प रहा था, प्यासा था, ऊपर से सूरज की रोशनी, ब्राइट लाइट और बॉइलिंग वेदर। और आगे जब गिरते पड़ते जा रहा था और धुंधला नजर आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। ये गिरा भी तो ऐसी जगह पर गिरा जहां पर इसके सामने 3 लोग थे, एक फैमिली थी ऑफ 3 डच टूरिस्ट, माँ बेटा और बाप। उन्होंने फौरन इसको देखा और आउट ऑफ द ब्लू तीनों डर गए कि ये क्या है। उन्होंने इसे पानी दिया, सैंडविच दिया,
और फिर जो इस फैमिली के जो हेड थे, जो फादर थे, उन्होंने अपने बेटे को और अपनी अपनी बीवी को भेजा कि तुम जाओ जल्दी से रेस्क्यू वालों को बचाओ, बताओ जाके, कॉल करो पुलिस वालों को। और फिर हेलीकॉप्टर के वेट तक ये आदमी यहीं इसके साथ रुका। मेडिकल रिपोर्ट्स में जानते क्या आया, हैरतअंगेज बात जो सामने आई है वो ये आई है कि उसने अपने हाथ को अपने जिस्म से अलग एकदम सही टाइम पे किया। अगर वो बहुत पहले अपने हाथ को अलग कर लेता तो खून बहुत ज़रूरत से ज़्यादा निकलता और उसकी जान चली जाती। और अगर वो और सोचता और डर के मारे अपने हाथ को जिस्म से अलग ना करता तो उसमें ताकत ही नहीं बचती ये काम बाद में करने की। एरन को बचाने के बाद 3 दिन बाद ये लोग साइट पर पहुंचे और उस बड़े से पत्थर को उस जगह से निकाला गया लिटरली हाइड्रोलिक जैक से। इस पत्थर का वजन जो उसके हाथ पे गिरा हुआ था 362 किलोग्राम का था, 362 kgs, बड़ा सा बोल्डर था। और उसके नीचे उसका हाथ था और उस हाथ को एरन को वापस दिया गया। एरन ने उसे जला के वहीं जाके उसके एशेस को गिरा दिया। एरन आज की तारीख में एक फादर है, जिन किताबों को पढ़ के वो बड़े हुए, जिन किताबों को सोच के वो पढ़ के फैसिनेट होते थे, वैसी ही किताब उन्होंने अपने बारे में भी लिखी। क्योंकि वो एकदम सच्ची बात, 2004 में उन्होंने किताब अपने आप पूरी करी और 2005 में उन्होंने अपना पूरा सपना पूरा किया। पूरा सपना पूरा करने का मतलब है, याद है आपको शुरुआत में बताया था कोलोराडो के सारे माउंटेन्स चढ़ना, हाँ तो हाथ नहीं तो क्या हो गया, प्रोस्थेटिक आर्म उन्होंने जुड़वाया और एरन ने सारे के सारे 59 माउंटेन्स एक प्रोस्थेटिक हाथ से पूरे किए। एरन की कहानी पर मूवी बनी है, 2010 में रिलीज हुई थी। मूवी का नाम है 127 आवर्स। 127 आवर्स ये जरूर जरूर देखिएगा, इट्स वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग मूवीज एवर। और इसे डायरेक्ट करने वाले भी कोई हल्के फुल्के डायरेक्टर नहीं है, स्लम डॉग मिलियनेयर के डायरेक्टर डैनी बॉयल ने ये मूवी बनाई है। और एरन खुद एक शानदार बेमिसाल किस्सा बन गए, वैसा ही किस्सा जिनको पढ़ते हुए वो बड़े हुए। और एरन ने एक बात शानदार कही अपने इंटरव्यू में कि इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस, आप किस सिचुएशन में क्या कदम उठाते हैं, इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस। यू कैन बी लेट, यू कैन बी अर्ली, और यू कैन बी ऑन टाइम, लेकिन आप डिसीजन लेते हैं कि नहीं लेते, दैट्स द थिंग। ये कहानी अब आपके हवाले। 666-22-107 666-22-107 पे जरूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड।

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं, पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है, मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी। यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: 8:12 अस्सलाम वालेकुम, मैं दुहा वाला कबीर एंड जो मैंने आज आपको कहानी सुना दी, बताइएगा कैसे लगी, प्लीज प्लीज बताइएगा। आई नो इट्स अ वेरी फेमस स्टोरी और किसी किसी ने देखी हुई ये मूवी, पर जिन्होंने नहीं देखी है अब आपको ज़्यादा मजा आएगा ये किस्सा देखने के बाद, मतलब सुनने के बाद, यू विल इन्जॉय इट मोर। सो प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू हैव सीन द मूवी या आपने कहानी अभी सुनी है तो कैसी लगी। 666-22-107 पर बागी इस गाने के उस पर।

और बड़ा ही जज्बा आपका मैसेज हमारे व्हाट्सएप पे कर दिया करें 666-22107 पर। जिशान भाई लिखते हैं, भाई आपने बहुत कंट्रोल सेंसर करके सुनाया, उन्होंने एक्सट्रीम ग्रूसम सीन है, जब ही तो भाई काबू करके बताया मैंने। एंड यू नो इट ब्रो। आगे लिखते हैं, बाय द वे टॉपिक सुन के अपनी हालत सिंगिस किंग के पंगत उदास जैसी हो गई थी। अरे जान भाई क्या बात है। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इफ यू हैवंट मेट मी, दिस इज मी, दिस इज मी।

0: फायर लेवल मेकअप कल जो ख्वाब थे आज चेज अब दुनिया जो बोले साइड मकर के आंखों को खोलो वेक अप.
1: हाँ जी
0: hey. दो हवाला में कबीर
2: यही कहूंगा सुबह सुबह
0: वेक अप.
1: 8:16 मदर क्लॉक में दुहा वाला कबीर एंड काफी सारे मैसेजेस हैं स्टोरी पर. थैंक यू सो मच आप सबका इतनी मोहब्बत देने के लिए. आज मैसेज बहुत सारे पढ़ भी नहीं पाया तो उसके लिए मैं पहले ही माजरत चाहता हूँ. मैंने मांग ली है माफी पहले ही. एक मैसेज है आज की स्टोरी से एक सबक मिलता है कि कभी भी कोई ऐसी हालत हो जाए अपने पे यकीन रखना है कि मैं ये कर लूंगा. ट्रू लाइफ स्टोरी कबीर भाई अच्छा अच्छी सुनाई. थैंक यू सो मच भाई बहुत बहुत सारा प्यार. मोहम्मद आलम सिद्दीकी साहब को एक मैसेज है ब्रो आपके लिए एक टास्क है ये है क्या बहुत दिन से कोशिश की एक दिन पूरा स्टोरी आप बेबी खाला की आवाज में सुनाओ. भाई 3 घंटे फिर कहानी चलेगी है. आसिफ भाई पूरे 3 घंटे एक ही कहानी सुना पाऊंगा मैं और कुछ बात नहीं हो भाई. उसमें अदायगी चाहिए अदायगी और मौसीकी दोनों ही उनके तरीके में. मैं आसिफ भाई लिखते हैं कैसी इजली बोल रहे थे आपकी हड्डी टूट गई भाई डिस्क्लेमर दे.

0: नाजुक दिल वाले ना सुने। अरे हाँ ये तो है, पर मैंने बहुत कोशिश करी कि भाई मैं लिटरली इसका एक ऐसा वर्जन आपको सुना सकूं जो इजी लगे, वरना मूवी आप देखेंगे ना तो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। प्रिंस भाई लिखते हैं, भाई अर्ली मॉर्निंग थ्रिलर मूवी जैसा विजुलाइज करवा दिया आपने, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और डिटेल में आप जाएंगे तो प्रिंस भाई बहुत मजा आएगा आपको। एक मैसेज है, मैं सब कर लूँगा लेकिन जानबूझ के हाथ अलग करने वाला पंगा नहीं लेना, वो भी अपने हाथों से अपना हाथ। भाई देखिए क्या है अमन भाई, ज़रूरत जो है ना और भूख जो है आदमी से बहुत कुछ करा लेती है जो उसने कभी सोचा भी ना हो, समझ रहे हैं आप। खादर दुराती भाई कहते हैं क्लिफ हैंगर नहीं भाई, 127 आवर्स, 127 आवर्स मूवी का नाम है। मैं ये हमारे भाई को भी लिख के दे दूँ, ये हमारे अरबाज भाई कह रहे हैं 127 आवर्स, कह रहे हैं मैं सर वहाँ मर जाता लेकिन हाथ अलग नहीं करवाता, खूबसूरत हाथ। अरे भैया सिचुएशन में ना भसो बस अल्लाह ना करे, ये वो हालात है ना जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन। मेरे भाई बहुत खतरनाक थी, काइंडली मुझे मूवी सेंड कर दे, मूवी का नाम है भाई 127 आवर्स, ये है भाई जाना। थैंक यू सो मच रिजवान भाई, बहुत सारा प्यार आपको, आई हैव रिटन द नेम ऑफ द स्टोरी, आप देख लीजिएगा। जी मैं समझ गया, कभी नहीं जाऊँगा पहाड़ी पे। अमन भाई कह रहा है भाई मैं ना जाऊं किसी पहाड़ी पे। मैं पता ये कहानी सुनने के बाद मुझे भी लगा कि नहीं लेट्स कैंसिल द माउंटेन ट्रिप, मैं अपने घर में ही ठीक हूँ, पंखा चला के सो जाऊंगा, वो ज़्यादा सेफ लग रहा है। तो एक कॉल भी आ रही है, उठा ली जाए। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, मैं पहाड़ी पे फंसा हूँ भाई, बचा लो।
0: भाई साहब आपको तो पता ही कैसे बचना है, पूरी कहानी सुना के मैंने आपको ट्यूटोरियल तो दे ही दिया है। तो देख लो
1: मूवी
0: है,
1: कमाल मूवी है ये, बाकी कमजोर दिलों के लिए नहीं है।
0: हाँ नहीं है बिल्कुल नहीं है, कमजोर दिलों के नहीं है। वो क्या है ना, मुझे बहुत ही इसको क्या कहते हैं शराफत की पुड़िया खिला के बताना पड़ा है। समझ रहे आप,
1: तो बहुत कुछ था अभी तो आपने काट दिया।
0: हाँ वो क्या है ना, इतना डिटेल में जा नहीं सकता हूँ मैं, तो समझिए थोड़ा सा हल्का हाथ रखना पड़ता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप
1: जी फादर। कई लोग कह रहे हैं ना कि ये नहीं होता, कोई जरूरत इजाद की माँ है और आपको उस वक्त हाथ काटना पड़े, पाँव काटना पड़े, सांप को मुर्गे खाना पड़े, क्या करना पड़े, ये थोड़ी बताओ।
0: वही मैंने कहा ना, ये जो भूख है ना वो बहुत कुछ करा लेती है इंसान से, बस वो इमेजिन करना मुश्किल है उस सिचुएशन में क्या करेंगे, ये अभी आप बोल भी नहीं सकते, नहीं बता सकते। क्या बात है फाद भाई, आज सुबह सुबह इतनी फिलोसफी, क्या सोच के निकले हैं आज आप सुबह सुबह?
1: अभी तो खून दे के निकले हॉस्पिटल से।
0: अच्छा आपका खून भी दिया आपने?
1: बस दे दिया।
0: या अल्लाह, बता दीजिएगा कि बस वो नहीं लेना है। कितनी पुड़िया निकाली आज आपने खून?
1: 3 पुड़िया निकाली उन्होंने, और आपकी वीडियो के साथ मैच है, देखिए 3 पुड़िया निकाले वहां से, हाथ काटे भी हाथ से खाला।
0: तो आज बेसिकली ये दिन जो है बहुत ही ब्लड शेड वाला दिन लग रहा है, बहुत बढ़िया है
1: खून रेजी वाला।
0: तो नहीं सही है, वेरी गुड। आप क्या, वैसे क्या ब्लड ग्रुप है आपका? आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। आयरनी फवाद भाई, आयरनी।
1: सारी फैमिली का बी पॉजिटिव, सिर्फ एक बेटे का है वो पॉजिटिव।
0: अच्छा ओके, हाँ नाइस ओके, ऑड वन आउट यार, अच्छी बात है। तो थोड़ा अलग मामला है। नहीं ठीक,
1: अलग मामला है,
0: वेरी गुड।
1: ये कि इस तरह की स्टोरी सुन के लोगों में हिम्मत आई थी कि हमें एडवेंचर पे जाना चाहिए।
0: उल्टा हुआ है भाई, लोग कह रहे हैं भाई मैं पहाड़ों पे नहीं जाऊंगा, कहीं भी चला जाऊंगा मैं किसी झोपड़ी में जाके रह लूंगा लेकिन पहाड़ी पे तो नहीं जाऊंगा। तो आपके अंदर हिम्मत आई क्या पहाड़ पे जाने की सुनने के बाद?
1: तो अब तो उम्र का तकाजा है कि अकेले नहीं जाना चाहिए, लेकिन वैसे जो है हमने हाइकिंग चेकिंग बहुत की कैंप।
0: हाइकिंग चेकिंग तो ठीक है, ये रॉक क्लाइंबिंग करी क्या
1: आपने? चाइना बॉर्डर तक गए हैं, उसके
0: माउंटेनियरिंग से बहुत अलग चीज है। मैं तो वीडियो देख के हालत खराब हो गई थी, मगर ना भाई ना इसको रहने देते।
1: माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए वाकई आपको रेगुलर प्रैक्टिस, स्ट्रेंथ, बॉडी वेट हर चीज है उसके अंदर, ये नॉर्मल स्पोर्ट से बहुत अलग है।
0: हाँ ओके, पर रॉक क्लाइंबिंग हर जगह होती भी तो नहीं है ना, मतलब वो बहुत ही स्पेसिफिक जगहें हैं जहाँ पर आपको रॉक क्लाइंबिंग जाए करने को मिलेगी, इट्स नॉट एवरीवेयर। वो आर्टिफिशियल,
1: लोग जो बिल्डिंग पे चढ़ जाते हैं।
0: अरे वो तो

0: आर्टिफिशियल गाड़ी थी बिल्डिंग में चढ़ जाते क्या यार बात भाई, लगता है अभी तक खून बना नहीं है पूरा हाँ मुझे लग रहा है भाई एक कॉफी के बाद ये मामला ठीक होगा भाई, अभी हुआ नहीं है ठीक ज्यादा दे दिया आपने खून भाई। और बहुत भाई आज आप इतने लेट आए भाई है?
1: सर नहीं सर, पूरे 7:45 पे आया था, तो अभी रास्ते में आहिस्ता जा रहे हैं क्योंकि लोग अजीब तरीके से गाड़ी चला रहे हैं।
0: नहीं नहीं आप ख्याल रखिए फहद भाई, इट्स ऑलवेज नाइस टू हैव यू, क्योंकि आप चेयर अप करके जाते हैं यार, आपकी हंसी भी कंटेजियस है। वेरी गुड फहद भाई, गुड दैट यू डोनेटेड
1: ब्लड। तेरी बेगम के सामने ना कैसे देगा,
0: क्यों
1: तेरी बेगम ने सुन लिया तो कहेंगे हंसना बंद करो
0: ये तो
1: आपको मुझे देखना रहता है, जब आप मुझे देखेंगे तो आप कहेंगे ये क्या हुआ है।
0: अच्छा ऐसा क्या,
1: जब बंदा 30 kg कम कर ले तो कैसा लगता है
0: यार। आपने 30 kg कम कर लिया कितने वक्त में,
1: 6 months
0: में आपने 30 kg भाई ये राज आप सबको बताना चाहेंगे कैसे किया, या आप मैसेज में डिटेल में बताना चाहेंगे, प्लीज लेट एवरीबॉडी नो। तो काम
1: की डिटेल है इसकी, हाँ बहुत डिटेल है,
0: बहुत डिटेल है। तो
1: डिटेल इस तरह है, शॉर्ट कट में ये है कि पोर्शन जो कट है ना वो 1/4 है,
0: 1/4 है। तो आप पूरे दिन बेसिकली खाना खा ही नहीं रहे हैं, वैसा मामला चल रहा है आपका।
1: यानी खाता जब हूँ तो ये सिलेक्शन नहीं है कि सैलरी खाऊंगा या कुछ खाऊंगा, जो मर्जी मिले लेकिन वो खाना 1/4
0: है। ओके, और शुगर ऑब्वियसली कट कर ली होगी आपने।
1: शुगर तो 90% कट है, यानी कॉफी नहीं पीता, कॉफी सिर्फ विदाउट ब्लैक कॉफी सिर्फ, या ग्रीन टी है।
0: क्या बात है यार,
1: लेमन जिंजर एंड एप्पल साइडर विनेगर रोज गर्म पानी के साथ ऑफिस से।
0: 30 kg यार, ये आपके लिए बनता है फहद भाई। फहद भाई गुड जॉब यार, गुड जॉब, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, बहुत बढ़िया भाई।
1: अब बिल आपको पता है 2XL 3XL में जाने लगा था
0: अब, ये तो यार
1: अभी एल की शर्ट या मीडियम की शर्ट या एल की पैंट पहन रहा हूं।
0: अरे मेरा भाई अब तो बालक हो गए बालक क्या बात है यार फहद भाई, बट आई एम ऑनेस्टली प्राउड ऑफ यू भाई, जोक्स अबाउट ये इनक्रेडिबल है भाई, आपकी जर्नी बहुत कमाल की है। और ये किसी के दिमाग में तो आएगा ही सुनने का, मेरे दिमाग में तो आएगा यार कैसे कर लिया यार, कोई हो सकता
1: है। मुश्किल काम है।
0: हाँ क्या मुश्किल काम है,
1: पहले 2 महीने बहुत मुश्किल है।
0: अच्छा ना नहीं होगा, ऑब्वियसली
1: 3 हफ्ते ही बहुत मुश्किल है, लेकिन वो जो 3 हफ्ते अगर आप काट लेंगे 1 महीना बस, उसके बाद आपको खुद ही बॉडी को आदत पड़नी शुरू हो जाएगी।
0: हो सकता कोई आपसे जलन के मारे ही अपना वजन कम कर ले, यू नेवर नो। वेरी गुड है फहद भाई, सो प्राउड ऑफ यू भाई, ख्याल रखिए अपना और ऐसे आया करें। अब तो बनता है आपका यूरोप ट्रिप बनना भाई। ये फहद भाई करना बड़ा मुश्किल है जो आपने किया ना, इट इज इम्पेकेबल भाई। तो ऑल आई कैन से इज मुश्किल तो है,
1: बेगम ने भी कर लिया ना, बेगम ने भी 20 kg कर लिया है।
0: हाँ तो यहाँ पे जलन के मारे किया है आपने, अब मैं समझा जो मैं कह रहा था।
1: बेगम को मैंने कहा तुम करोगी नहीं तो तुम खाओगी तो मैं कैसे।
0: ये भी सही तरीका है, आई थिंक पार्टनर्स को ये करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड भाई, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ
1: यू। तो नहीं हो सकता ना, तभी तो एक गाड़ी के 2 पहिये, एक पहिया अगर पतला हो जाएगा दूसरा पहिया मोटा रहेगा तो गाड़ी पे बैलेंस चलेगी।
0: वो क्या है ना, आपने 30 kg गिरा लिया तो अभी आपको ज्ञान भी सुनना ही पड़ेगा, अभी क्या कर सकते हैं। अभी तो आपकी चलेगी भाई, आपकी सरकार है, क्या बोल सकते हैं। सही है सही है सही है, सही जा रहे हैं मेरा भाई। थैंक यू मेरा भाई, थैंक यू सो मच, बहुत सारा भाई, बहुत प्यारा भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो देख ही लिया आपने, बहुत तेज हो रहे हैं वो। एंड एक मैसेज है आरिफ अंसारी भाई का, अस्सलाम वालेकुम भाई, इतने प्यारे हाथ है मेरे, क्यों काटूं मैं इन्हें। भाई आपको प्यार नहीं आ रहा मेरे हाथ देख के। अरे भाई यार, अरे भाई कितने प्यारे लोग। अच्छा मैं लोगों को एक अपडेट दे दूं, बाय द वे जो अब्दुल रऊ सबसे बात हुई थी, उन्होंने कहा मैं तुम्हें नहीं बोल रहा था, मैं तला भाई को बोल रहा था। मैंने कहा उन्हें भी क्यों बोल रहे थे, तो उन्होंने मैसेज कर दिया लास्ट अभी मुझे मैसेज आया, आपको याद होगा जो लोग उस दिन मुझे आए थे, नोटेड, नो मोर डिस्कशन, उन्होंने खुद बोल दिया, तो नो मोर डिस्कशन। ख्याल रखिएगा आप। और एक मैसेज है आपका भाई, क्या भाई सलामत सलाम भाई, वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल हैं आपके, क्या हाल हैं, सुन के दिल खुश होता है भाई, थैंक यू सो मच, आपका बहुत सारा प्यार और आपके हंसना कमाल भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई, बहुत बहुत सारा प्यार आपको इतनी तारीफ़ करने के लिए सवेरे सवेरे। आरिफ भाई आपको बहुत सारा लव यू भाई। तबस्सुम बहन लिखती हैं वी नीड टिप फॉर 30 kg। बहन आपने सुना 30 kg कैसे इन्होंने कम किया, इट्स नॉट ईजी। और इनमें से मुझे बहुत शौक था पहाड़ों पर, अब क्या दिमाग में आ गया भाई, नहीं जाऊंगा, अगर वाइफ को लेकर जाना है तो उससे ट्राई करवाऊंगा। रिजवान भाई का मैसेज है, अरे रिजवान भाई एक मैसेज है हमारे, सर हमारा गांव जो है पहाड़ों में है, पहाड़ों के बीच में, हम तो सर शाम को पहाड़ों पे चढ़ते थे। अरबाज भाई आप धुरंधर हैं भाई, आपकी बात ही दूसरी है। एक मैसेज है क्या है अमन भाई, आपको पढ़ भी नहीं सकता मैसेज, अभी समझ में आया, क्या समझ में आया, पहाड़ों में दिमाग नहीं लगाना है वरना हाथ से हाथ धोना पड़ेगा। क्या रिप्लाई है, क्या रिप्लाई है, बहुत बढ़िया। क्या यू आर नॉट सेंडिंग, या व्हाट नॉट सेंडिंग, सलाम ब्रो। अच्छा मैंने ये बताया ना इस पे, अभी तो इस पे आई, इस पे रुको मैं, आई विल एक्सप्लेन, लेट मी कम टू यू एंड एक्सप्लेन। एक मैसेज है प्रिंस भाई का, प्रिंस भाई थैंक यू सो मच, इनका रिप्लाई कर दिया मैंने वैसे, ओके। एक मैसेज है सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम कबीर भाई, हमारा एरिया में एक ऐसा हुआ था स्टोरी आज से कई साल पहले, वो नदी में था, उसके गाँव में एक चीज़ फंस गई, वो काटने के चक्कर में पाँव ही काट लिया, बहुत ज़्यादा उसका शरीर नदी में, ये रेन साहब कैसे हुआ ये समझा नहीं मैं, और तला भाई संभाल लिया, हैंडल कर लिया भाई, टेंशन नहीं। एक और मैसेज अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बताता हूँ आपको कहानी कैसे मिलेगी आपको। 8:29 बाय द क्लॉक, फिलहाल चलेगा जी गाना, सोनी लगदी दलजीत पाजी की आवाज़ में, 8:30 दिल से।

0: wake up. Hey, do hawala mein kabir.
1: Haan ji.
0: Yehi kahunga. Subah subah. Wake up.
1: थोड़ी सी बात अगला कुछ खबरें हैं जिनकी तरफ हम बढ़ेंगे, बहुत बहुत जरूरी हैं, काम की हैं, तो आप भी इसे बड़ा ध्यान से सुना करें। बाकी आप कुछ कहना चाहते हैं तो 666-22107 नंबर। सबसे पहले तो मैं आसिफ भाई, बस मैं कहानी सॉरी न्यूज पढ़ के और कॉल करता हूँ। तो सबसे पहली जो खबर है और बड़ी कमाल की है वो है कतर नेशनल चेस टीम की तरफ से, बिकॉज दे हैव क्लेम्ड द गोल्ड मेडल। भाई साहब पूरी टीम के लिए बजेगा जी हुटर, क्या बात है। कैटेगरी ई में और 46 वर्ल्ड चेस ओलंपियाड था जो समरकंद में हुआ उज़्बेकिस्तान में 15 से 28 सितंबर में, और पार्टिसिपेशन में उतरी 206 कंट्रीज और द नेशनल टीम जो हमारी टीम थी उसमें 5 प्लेयर्स थे, अहमद अलखवारी, इरफान मोहम्मद, तुर्की अलखवारी, खालिद अलजुमाद और मोहम्मद जरबी। और कतरी प्लेयर्स ने क्या परफॉर्मेंस दी है, हिला डाला पब्लिक को थ्रू आउट द ओलंपियाड, कंसिस्टेंट रहे और जो उनका कैंपेन भी रहा वो कंप्लीट हुआ सिक्योरिंग द फर्स्ट प्लेस इन द कैटेगरी। कॉन्ग्रेचुलेशन टू टीम कतर, क्या खेले भाई क्या खेले। इसके अलावा अगली खबर है द सिक्स एडिशन, एनी सिक्स एडिशन थी कतर नेशनल डायलॉग की ऑन क्लाइमेट चेंज 2026, ये दोहा में शुरू हो चुका है मंडे से, और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज ने। दिस इज इन कोलैबोरेशन विद अर्थना सेंटर फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर जो कि एक मेंबर है कतर फाउंडेशन के, और इस बार की जो थीम है वो रखी गई है इनहांसिंग क्लाइमेट अडेप्शन इन कतर प्लानिंग टू इम्प्लीमेंटेशन। मकसद ये है कि जितने भी लोग क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट्स हैं दुनिया जहाँ में कहीं, ज़रूरी नहीं है कतर के हों, वो पार्टिसिपेट करें और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों से लोग आए डिसीजन मेकिंग में कि किस तरीके से डील किया जाए इस क्लाइमेट चेंज से। इस बार भी लोग आके बोलेंगे सबसे ज़्यादा सर्दी इसी साल पड़ी है, तो वो आता रहेगा दिस इज़ क्लाइमेट चेंज हो रही, हमारे साल ये कहने पर मजबूर हो जाते ना इस साल जो ठंड पड़ी अभी तक नहीं पड़ी वही हो रहा है। तो टू डील विद दिस सिचुएशन एंड टू अंडरस्टैंड इट बेटर is the way out. So kudos to Qatar for thinking about it. इसके अलावा Qatar Museum और उनका जो Air of Culture Initiative है वो announce हो चुका है, और इस बार का theme है Your Ghosts Are Mine. Expanded Cinema Amplified Voice Exhibition ये Centro Culture La Moneda Santiago में हो रही है। मैं इसकी pronunciation में अगर इधर उधर हो जाऊँ तो don't judge me, I do not know the language to be honest, पर ये चिले में हो रहा है एंड इसे extend कर दिया गया है नवंबर की 1 तारीख तक, और ये अभी तक 15,000 visitors पहुँच चुके हैं, so it's going to increase and increase and increase, और नवंबर तक तो कोई वजह ही होती है ना किसी चीज़ को extend करने की, so all the best to them. और एक message है, क्या मैसेज है मेरे पास, कबीर भाई के हाथ कबीर भाई कतर की नेशनल टीम के लिए ढोल तो बनता है भाई, जब मैंने हूटर बजाया ढोल बजाता लेकिन और भी मुझे खबरें पढ़नी थी, कतर की टीम के लिए बनता है यार, क्या परफॉर्मेंस है यार, आई एम रियली रियली हैप्पी दिस हैपेंड। अच्छा एक और जो खबर है मुशायरे म्यूजियम से है, द फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ कतर एंड फ्रेंच एम्बेसी इन कतर, इन्होंने जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया पोएट्री डे, और बड़ी शानदार शाम रही जिसमें लिटरेचर सिनेमा कल्चर डायलॉग इन सबको डिस्कस किया गया एंड उन उन अहम कामों को सेलिब्रेट किया गया जो कि एक लेगेसी बनाते हैं, एंड डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू टेक इन फॉरवर्ड, और आगे ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते रहेंगे। ये इवेंट हुआ बिन जलमूद हाउस में, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ इंस्टीट्यूट जिमोन दे अरेब, यानी कि अरब वर्ल्ड इंस्टीट्यूट। मैं फ्रेंच में क्यों पढ़ रहा था जब इंग्लिश में लिखा हुआ, तो ये आप समझ गए ना, बस डोंट जज माई फ्रेंच ओके, मैं इधर उधर निकल जाता हूँ, एक तो मुझे फ्रेंच वर्ड में वो नहीं निकलता, वो जो उनका वो होता ना खा, आई थिंक लोग क्या बोलते हैं पियर, वो इनका गा और हमारे हमारा जो गैन है ना उर्दू का और इनका जो गा है उसमें फ़र्क है, पर वो कैसे निकलता है मैं कर नहीं पाता हूँ। तो अगर कोई फ्रेंच बोलने वाला मुझे सुन रहा है प्लीज़ हेल्प। एक मैसेज है क्या कबीर भाई सही कहते हो, आपके शो सुनते टाइम दिमाग लगाना होता, भाई दिमाग लगाने से खुद कभी विजुअलाइजेशन होने लगा और डर के चक्कर होने लगे, क्या बात है क्या भाई, आपके लिए उठ रहा भाई, क्या बात कही अली मकसूद भाई, जमाल भाई कॉल करें जमाल भाई, लेकिन क्या है अभी मैं एक कॉल करूंगा भाई क्योंकि आपसे पहले ही कॉल कर रहे थे भाई, इसको कॉल करनी पड़ेगी, हमारे आसिफ भाई को कॉल लगा रहे, आसिफ भाई ए मेरे आसिफ भाई क्या कह रहे हैं, तला भाई क्या कह रहे हैं, गरारे करके आओ फोर, हाँ गरारे करके फ्रेंच निकलेगी वो, आखिफ आखिफ कैसे वाकिफ कैसे भाई, अस्सलाम वालेकुम, जी भाई फ्रेंच टेस्ट कर रहा था मैं आप पे, लेकिन बताइए भाई क्या कहना चाहेंगे?
2: एसएमके देवता क्या हाल चाल है भाई?
1: अरे वाह भाई सब बढ़िया भाई, आप कैसे मेरा भाई? अरे आसिफ क्या कर रहे भाई? कहाँ थे आसिफ भाई? हम सुबह से हम यहीं पे बैठे हैं आपके इंतजार में, आप आते ही नहीं है, कैसे? साउथ बताइए भाई कैसे हैं आप?
2: बस भाई एक नंबर, क्या सीन है भाई? दो दिन से भाई ऐसे सवाल उठा के लेकर, हम गरीबों के लिए कुछ लेके आओ ना भाई, अच्छा हल्का हाथ रखो ना जरा।
1: आज का तो गरीब अमीर की कोई बात ही नहीं थी भाई आसिफ भाई, ऐसी कैसी बात?
2: क्यों नहीं थे भाई, क्यों नहीं थे भाई? दिमाग लगाओ, इतना दिमाग लगाते तो फिर आज इंजीनियर।
1: दिमाग नहीं लगाना था? अरे मेरे सवाल को समझे नहीं आसिफ भाई, मैंने कहा दिमाग नहीं लगाना है, ये कहा
2: पढ़ाई में,
1: पढ़ाई में। वेरी गुड, शाबाश शाबाश।
2: तो इनाम दिया जाए भाई, इनाम दिया जाए, क्या
1: 7 करोड़ भाई इनाम बनता है, बनता है, बनता है, बनता है, बनता है। और बता मेरे भाई,
2: क्या कहानी नहीं सुन पाया बाकी भाई, तुम्हारी कहानी व्हाट्सएप पे सुनना पड़ेगा।
1: अफसोस अफसोस, कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगा भाई, भेज दूंगा।
2: और भाई कबीर भाई क्या हाल चाल है? सब ठीक है भाई? अपना हाल चाल
1: बढ़िया भाई, एकदम शानदार, एकदम शानदार।
2: मीटअप कराओ भाई, फिर क्या है?
1: मीटअप कराओ, क्यों मीटअप करना है?
2: मिलेगा यार भाई सबसे यार, लिस्नर ऐसे ऐसे लिस्नर आते हैं हमारे शो पे, मैं तो खुश रहता हूँ उन लोगों सुन सुन के।
1: अरे कमाल की पब्लिक है भाई,
2: मिलूं एक बार, मिलने के बाद उन लोग से दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगा मैं।
1: अरे कमाल की पब्लिक है भाई, अपनी क्या बात कर रहे हैं आप भाई, ऐसे वैसे
2: भाई, बहुत प्यारी पब्लिक है भाई,
1: माशाल्लाह माशाल्लाह, सबको बहुत सारा प्यार। एंड द पार्टी इज, पता है इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि मैं देखता हूँ ना, जब एकदम से सपोर्ट आता है ना पब्लिक का, भाई साथ खड़े हैं हम, साथ खड़े लगता है भाई, कुछ तो कमाया है डेफिनेटली। आई एम रियली रियली हैप्पी भाई, तो मजा आ गया। हाँ जी,
2: और कुछ ताजा आज के लिए भाई?
1: कुछ ताजा नहीं भाई, सब एकदम बढ़िया शानदार अल्हम्दुलिल्लाह। आसिफ भाई आप सुनाइए, सब बढ़िया चल रहा है?
2: बढ़िया बढ़िया भाई, एक नंबर, आपकी दुआ है भाई बस।
1: बस भाई आप भी हमारे लिए दुआ करते रहे मेरा भाई, दुआओं की जरूरत है भाई, दरख्वास्त दरख्वास्त
2: दरख्वास्त।
1: हाँ तो दरख्वास्त आप भी,
2: ओके मेरा भाई,
1: ठीक है भाई, ख्याल रखिए अपना, ख्याल रखिए, ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज आसिफ भाई। आसिफ भाई के बाद एक भाई ने मुझे फ्रेंच में कुछ भेजा है, क्या हो रहा है ये? फेख भाई ये कैसे पढ़ते हैं? लेट मी ट्राई अदर भाई। फेख खबीर कमेंट वस वक्त वक्त भाई नहीं हो रहा मुझे, तेरा पता है कि आर जब आता है तो वो खा की गा की आवाज निकलती है, दैट्स ऑल आई नो भाई, इससे ज्यादा मेरे को नहीं आता है, मैं इतना भी नहीं जानता है। एक मैसेज है, इस बाइक का पिक्चर आपके पास है, इस बाइक की बात बहुत अच्छी है सर। इस भाई का पिक्चर आपके पास है? किस भाई का पिक्चर मेरे पास है? एक मैसेज, क्या हाल है कबीर, हम बहुत प्यार करते हैं आपसे। हैदर भाई ने ये भेजा, पर हैदर भाई इसे पढ़ेंगे कैसे? मुझे लग रहा है आपने मुझे भेज तो दिया पर आपको भी नहीं पता है ना, तो बता दीजिए ये कैसे बोलते हैं। और एक कॉल आ रही, उठा लेते हैं, अरे कट गई कॉल। एक मैसेज, आसिफ भाई का नंबर प्लीज। ये तौफिक भाई क्या नंबर कलेक्ट करके येलो येलो पेजेस खोलने वाले हैं? अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम,
1: क्या हाल है कमाल भाई?
3: भाई क्या हाल है?
1: बढ़िया भाई,
3: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है
1: जी भाई, क्या कहेंगे आप?
3: बस कहना क्या है भाई, ऐसी खतरनाक स्टोरी का अपना ही हाथ अपने ऐसे काटना पड़े, इसको थोड़ा अगर घुमाए होते तो और अच्छी कहानी बनती थी। बायां हाथ बढ़ के दाएं हाथ की तरफ बढ़ा और उसने उसको काट दिया, वहां दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी।
1: ये आप जो है ना मसाला में ढूंढी किसी की बेचारे की जान जाते जाते रह गई, कमल में कह रहे नहीं थोड़ा और मजा आता अगर ये ऐसा करता तो।
3: हाँ भाई, जब जब डॉक्टर जो है अपना ऑपरेशन करके बेहोश हो जाए,
1: वो तो सबसे बढ़िया कहानी थी।
3: गोरिल्ला को आप दोस्त बना सकते हैं, बंदर को इंसान बना सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है भाई।
1: हाँ ये बात तो है, अब आपने ना कहानी सुन के हैरान होना छोड़ दिया है कि इतना तो चलता ही रहता है, ये तो बहुत नॉर्मल है। समझ पा रहा हूँ भाई मैं, पर पता है मेरे पास ना एक ऐसी कहानी है, इतनी कॉम्प्लेक्स कहानी है कमाल भाई, इतनी कॉम्प्लेक्स कहानी है, मैं खुद उसे खुद तैयार करने के बाद भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, ऐसी कहानी है वो। समझ
3: रहे सुना दीजिए भाई,
1: मैं कोशिश कर रहा
3: हूँ। दिमाग की जरूरत कहाँ है?
1: चलो कल मैं ये रिस्क ले लेता हूँ, मेरे पास एक एविएशन स्टोरी है वीकेंड के लिए और कल वाली थोड़ी मैं कॉम्प्लेक्स लेके आता हूँ। डन हो गया भाई, डन हो गया, डन डन डन डन डन डन। कमाल भाई बहुत प्यार, बहुत प्यार, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। और मेरे फ्रेंच लैंग्वेज का मजाक उड़ाया इन्होंने, कह रहे हैं मलयाली में फ्रेंच सुनने को मिल रही है, बस इसलिए तो आगे नहीं बढ़ पा रहा मैं, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा बस, मैं ये दिक्कत है। जयस भाई अस्सलाम वालेकुम।
4: जी वालेकुम सलाम भाई साहब, क्या हाल चाल है, खैरियत से?
1: बस भाई अभी वो फ्रेंच बोलने की प्रैक्टिस चल रही है भाई। आप बताइए कैसे भाई?
4: बहुत बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब, मैं तो कह रहा हूँ दिमाग को बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करो, निकाल के जो है ना फ्रिज व्रिज में रख दो।
1: मैं तो सुबह लाता भी नहीं भाई, ये सब दिल से बातें हैं, दिमाग का यूज बिल्कुल भी नहीं है, वो शो के बाद करना पड़ता है मुझे दिमाग का इस्तेमाल। अभी इज जस्ट माई हार्ट है,
4: ये हार्ट वाली जो है ना वो मुझे पता कहाँ है भाई साहब।
1: क्या बात करी आपने, वाह वाह वाह वाह वाह वाह जैस भाई, वाह वाह वाह वाह वाह वाह, मैं कह जी क्या हाल है, है?
4: सीरियसली ना भाई, इतना आपको नहीं आ रहा होगा जितना मुझे आ रहा है।
1: अच्छा पूछा रहा
4: भाई, कसम से।
1: अच्छा तो वो जो, अच्छा वो कॉल जो आई थी।
4: हाँ भाई, अरे यार कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, कहाँ लाके उसने अपना मत्था फोड़ा।
1: ये अच्छा था भाई, एक बार और भाई, क्या बोला क्या बोला?
4: यार कहाँ की ईट कहाँ का पत्थर, ना यार मैं भी भूल गया।
1: अरे यार जयस भाई इतना बड़े डरोगे, दोबारा टेक टू एक्शन। ओके कहाँ की ईट,
4: कहाँ की ईट कहाँ का पत्थर,
1: अरे यार खुद ही बोल के भूल गए यार। ये क्या बात हुई
4: यार।
1: ओके ओके वंस मोर टेक थ्री।
4: कहाँ का रोड़ा कहाँ उसने अपना मत्था आके फोड़ा।
1: क्या बात है, क्या बात है जयस भाई यार, क्या बात है। बहुत बड़े डायलॉग तो भाई। हाँ
4: भाई सीरियसली यार, जब से ना एकदम शैतान हावी है ना, कि यार यहाँ पे जो है ना पब्लिक जो है ना अपना एंटरटेनमेंट देख रही है, अपना एंटरटेनमेंट कर रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई।
1: नहीं एग्जैक्टली मैंने
4: बोला, भाई साहब को अलग ही कश्मीरी मुझे लगी हुई है।
1: नहीं मैं जब भी मैंने बोला भी कि उनसे भी मैंने बाद में बात करी, उनको बोला देखिए समझने की कोशिश कीजिए, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है
4: यार, वो समझने को राजी नहीं है, तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है भाई, क्योंकि तुम अपनी जगह ठीक हो, ठीक है।
1: हाँ, नहीं आपका
4: तुम अपनी जगह ठीक हो, बिल्कुल करेक्ट हो,
1: बहुत प्यार भाई,
4: तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल।
1: नहीं मैंने एक्सप्लेन तो वैसे भी करता को नहीं भाई मैं, पर आपका ये डायलॉग फेमस हो गया है, कहाँ की ईट कहाँ का रोड़ा कहाँ उसने अपना माथा फोड़ा, वेरी गुड, ये दिस विल बी वन ऑफ द फेमस डायलॉग्स फॉर द डे, वेरी गुड शानदार, सही जा रही है पब्लिक। और बताइए
4: आसिफ भाई को बुला लिए होते पहले यार।
1: किनको?
4: आसिफ भाई को बुला लिए होते।
1: कहाँ बुला लिए होते,
4: जब ये ले लेने तो चाहिए था लाइन पे यार आसिफ भाई को।
1: हाँ गलती हो गई आसिफ भाई को लेने से, बिल्कुल सेम है आपके साथ हूँ इस बात पे, तो नहीं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम
4: भाई, नहीं नेक्स्ट टाइम को छोड़ो, मुझे लग रहा है ना एक ग्रुप बनाना पड़ेगा,
1: आप बनाना पड़ेगा, जरूरत आन पड़ी है।
4: हाँ भाई अब ग्रुप बना के तैयार रखना पड़ेगा, अब नदीम भाई हो गए, तला भाई हो गए,
1: माज भाई हो गए,
4: प्रिंस भाई हो गए, आसिफ भाई हो गए,
1: तो ये सब ग्रुप बना लो, और तो क्या है, ये तो बनना भी चाहिए।
4: और ये कमाल भाई, एक कमाल भाई को ले लो भाई साहब, ग्रुप बना लो, कोई हाँ। भी कुछ भी होता लाके इधर छोड़ दो बस।
1: आपके पास तौफीक भाई ने नंबर लिया है आपका, तौफीक भाई आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, और जयस भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जुड़े इतने
4: मोहब्बत के लिए। तौफीक भाई ने तो बहुत पहले भी नंबर लिया था, अभी तक कोई मैसेज कॉल नहीं आया,
1: बस वही बात है कहाँ की हीट और कहाँ का। अरे यार थैंक यू सो मच जयस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, ख्याल रखो भाई, अल्लाह हाफिज। और बात सारी ऐसी है कि बात सारी कैसी है 8:40 तो हो लिए। जमाल भाई वालेकुम सलाम कहते हैं, कमाल भाई क्या कौन से अंदाज में, गुड मॉर्निंग प्रोफेसी, इफ आई वांट टू गाने दा ना, ये भाई

0: हाँ जी, तो मैं कह रहा था अस्सलाम वालेकुम 8:48 by the clock. अचानक से एंड में जो फोनिक्स से वो जुड़ गया यार, क्या बात है, तो साउंड ड्राइम हो गई आज तो. बाकी 666-2107 नंबर है एंड मैं दो हवाला कबीर आपको इनवाइट करता हूँ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जरूर जरूर आइए. FM 107 कदर, FM 107 कदर इस नाम से हर जगह मौजूद है. ऑल्सो हमारी वेबसाइट, इफ यू हैवंट चेक्ड इट, वहां से आप लाइव व्यू में सुन सकते हैं, urdu radio.qa इस नाम से हमारी वेबसाइट है. ऑन द राइट हैंड कॉर्नर, अप कॉर्नर, आपको वहां पे लाइव का बटन दिखेगा, तो वहां से आप आराम से लाइव सुन सकते हैं. जो बाकी रिकॉर्डेड शोज हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको हमारे वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी, हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है. आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और आपको हर चीज वहां मिल जाएगी. सो दैट इज ऑल्सो देयर. बाकी लास्ट कॉल ले लेते हैं फटाफट से. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई.
0: जी प्रिंस भाई, बताइए.
1: भाई क्या बताएं, अगर बताऊंगा तो आप देख नहीं पाओगे.
0: क्या नहीं देख पाएंगे? आखिर में जाते जाते भी जो. जी बताइए.
1: फिर बताइए. वाह मेरे भाई वाह.
0: कह दीजिए जो कहना चाहते हैं कह दीजिए. बिल्कुल क्लाइमेक्स पे आ गए हैं हम. बताइए. सॉरी
1: हमारे प्यारे प्यारे लिसनर थे, गुस्से वाले और पता नहीं कौन से अजीब अजीब से, अच्छे अच्छे से, बुरे बुरे से, सारे लिसनर से रिक्वेस्ट है कि अपने बॉस से, बीवी से, गर्लफ्रेंड से, बच्चों से, इन सबसे बेजार होके यहाँ ना आए. यहाँ हम एंजॉयमेंट के प्लेटफॉर्म पे हैं.
0: वही वो हमारा पैगाम यही है
1: भाई. लोगों का दिन बन रहा है सुबह सुबह और आप उसको बिगाड़ रहे हो. नॉट फेयर.
0: अरे भाई
1: वो मैं ग्रुप बना देता
0: वो कोई दिक्कत नहीं है और सबका प्यार है आपके साथ भी, अपने साथ भी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ये मैटर करता है.
1: अरे बेशक भाई, सब मेरे भाइयों की तरह ही है, चाहे वो कहीं से भी हो. एवरीवन वेलकम सबका सर.
0: बेशक बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस भाई इतनी मोहब्बत के लिए एंड बीइंग सो स्पोर्टी अबाउट इट, हर बात को लेके. बहुत अच्छी बात है ये, बड़ी अच्छी.
1: लेकिन भाई जी, ये भाई ने जो बोला ना कश्मीरी में, क्या बात कही है
0: ना, क्या बात कही.
1: क्या ही कह दिया है भाई ने.
0: नागा चीली. अरे मजा आ गया सच में, मजा आ गया. हर चीज जरूरी
1: है. फ्रेंच का सवाल है भाई, वो अगर मुझे आती तो मैं जरूर कुछ ना कुछ बोल ही देता आज उस बारे में भी.
0: नहीं आई अंडरस्टैंड भाई. कोई दिक्कत नहीं है प्रिंस भाई, कोई चक्कर ही नहीं है भाई. बस आपने कॉल कर दी एंड इतनी मोहब्बत आपस में दिख रही है यहाँ पे लोगों के बीच में, ये इम्पोर्टेंट है. दैट्स ऑल दैट मैटर्स भाई. आई एम रियली हैप्पी.
1: सुनने वाले ये भी समझ लें इस बात को भी कि ये मोहब्बत सिर्फ इस तरह से नहीं दिखाई जा सकती, कई सारे तरीके हैं
0: तो
1: इस्तेमाल करने पे मजबूर ना किया जाए.
0: बहुत प्यार प्रिंस भाई को. ये एंड का जो पिक्चर का डायलॉग आता है ना, वो बात है. सीक्वल के लिए वेट कीजिए.
1: लेकिन भैया वो बहुत ही बढ़िया था, बड़ा वाला पत्थर
0: है ना. आप मूवी देखिएगा, अच्छी लगेगी आपको ये 127 hours. बहुत ज्यादा अलग, किस कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं है. आप देख लेंगे आप, अच्छी मूवी है.
1: नहीं जरूर देखूंगा मैं ये मूवी, क्योंकि आप जो रेकमेंड करते हैं मैं वो अक्सर देखने की कोशिश करता हूँ, देखता भी हूँ.
0: ऑलमोस्ट
1: पहले अपनी वाइफ को एक्सप्लेन करता हूँ कि हम लोग ये वाली स्टोरी देखने बैठ रहे हैं और ऑब्वियसली नो वन डिस्टर्ब्स अस, सो देन वी
0: नहीं आप देखें भाई.
1: नॉट एक्चुअल एंजॉय.

0: Conza.
1: हॉलीवुड कैरेक्टर है जो लास्ट टाइम आए थे अर्ली जनवरी में.
0: मुझे याद नहीं है, तो इतने तो सारे आगे जा चुके हैं, मुझे किसी एक का नाम नहीं याद आ रहा. बट
1: नहीं, जिसमें कार एग्जीबिशन की गई थी.
0: अच्छा. हाँ ओके यस. हाँ,
1: उस दिन बड़ा मजा आया था भाई, मजा ही आ गया था.
0: अभी तो अभी तो
1: अभी सुना है कि कुछ और भी बहुत सारी चीजें होने
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह. बाय द एंड ऑफ दिस ईयर F1 के लिए भी बहुत सारे लोग आने वाले हैं, डेफिनेटली कुछ बड़ा होगा. मगर थैंक यू सो मच प्रिंस भाई, अभी मेरे भी इजाजत लेने का वक्त आ गया है. थैंक यू सो मच
1: फॉर द लव भाई. कि मेरा ग्रुप यही
0: ग्रुप है
1: और बंदा है जिसके पास मेरा ग्रुप है. और अगर ये बंदा सुबह की बजे शाम में आएगा तो थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो जाता है, लेकिन आपके बारे में भी सोचना पड़ता है.
0: अरे भाई थैंक यू भाई, थैंक यू.
1: आप कभी भी आए, आप रहेंगे तो हम सबके दिल में ही.
0: क्या बात है, ऑन दैट नोट भाई.
1: और जहाँ तक दिल का सवाल है, आपने दिमाग दिल पता नहीं क्या क्या लेकर आए थे, बढ़िया वाला.
0: जी
1: तो अच्छा, आप दिल से क्या सोचते हैं, दिल क्या कहता है आपका?
0: दिल मेरा भाई, मैं सुबह दिल से ही काम करता हूँ, दिल कुछ नहीं करता, वो बस फ्लो के साथ जाता है, गो विद द फ्लो वाला सीन है मेरे साथ.
1: अरे वाह भाई, आपका दिल बढ़िया है.
0: बढ़िया है.
1: सब लोग बोलते हैं भाई अपने दिल से पूछो. मैं सबको बोलता हूँ भाई मेरा दिल से धक धक करता है, उसके अलावा कुछ बोलता
0: कुछ
1: ही
0: नहीं करता भाई. वो जो उसका काम है अपना काम बढ़िया तरीके से करता है बस. ये है,
1: बढ़िया ही बढ़िया है. आप सुबह बना देते हैं भाई सबकी,
0: जजाकल्ला भाई जजाकल्ला.
1: मजे ही आ जाते हैं बस.
0: बहुत प्यार, बहुत
1: ऐसे लगता है कि मतलब पता नहीं क्या ही मॉर्निंग है आज की.
0: Thank you so much, bhai.
1: Thank you so much.
0: इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं. मा सलामा.

0: श्रीलंका के साथ तिजारती और सरमायकारी के तआवुन के इम्कानात का जायजा लिया है। दोनों तरफ ने कारोबारी ताल्लुकात को मजबूत बनाने और नए सरमायकारी के मौके तलाश करने पर इत्तेफाक किया है। कतर एविएशन और मैरीटाइम ड्यूअल टाइम्स के हवाले से खत्ते में पहले नंबर पर रहा। यह कामयाबी मुल्क के जदीद लॉजिस्टिक्स निज़ाम, मौसर बंदरगाही खदमात और तेज तिजारती अमलियत की अक्कासी करती है। और कतर स्टॉक एक्सचेंज का जनरल इंडेक्स ट्रेडिंग सेशन के अख्तिताम पर 43.85 पॉइंट्स या 0.46% के साथ 9410.19 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सेशन के दौरान तमाम शोबों में 20,152 ट्रांजेक्शन के नतीजों में 12 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ और 35 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी आई, जबकि 6 कंपनियों ने अपनी साबिका क्लोजिंग प्राइजेस को बरकरार रखा। ये थी अभी तक की बिजनेस न्यूज अपडेट्स। आइए अब रुख करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज का।
1: स्पोर्ट्स हेडलाइंस, स्पोर्ट्स हेडलाइंस विद मोहम्मद अमीन।
2: अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के प्रेसिडेंट शेख जोहान बिन हमद अल थानी ने मंगोलिया के वजीर आजम से मुलाकात की। जापान में जारी एशियन गेम्स में कतर ने साउथ कोरिया को 30 के मुकाबले में 32 पॉइंट से शिकस्त देकर हैंडबॉल कंपटीशन के फाइनल में जगह बना ली। एशियन गेम्स में कतर के जकरिया अल आलमी ने 3000 मीटर स्टीपल चेस इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। कतर के बासम हमीदा ने मेंस 400 मीटर हर्डल्स में गोल्ड मेडल जीता। एशियन गेम्स में कतर को अब 7 मेडल्स मिल चुके हैं, जिसमें 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। 2027 अफ्रीका कप ऑफ नेशंस क्वालिफायर्स में ट्यूनिशिया की कौमी फुटबॉल टीम और बोट्सवाना के मुकाबला के दरमियान मुकाबला 2-2 गोल्स पर ड्रॉ रहा। और यूएफा नेशंस लीग में फ्रांस ने बेल्जियम को 1-0 और इटली ने तुर्की को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में आज इतना ही। आप सुन रहे एफएम 107। अब आप न्यूज हेडलाइंस समाप्त होवाइए।
1: एफएम 107 पर न्यूज हेडलाइंस विद फुरकान शाहिद।
3: साहिब सुमो अमीर शेख नमीम बिन हमद अल थानी ने मलेशिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर अनवर इब्राहिम के नाम उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत नामा इरसाल किया है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की सरपरस्ती में एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के 11वें सालाना इजलास में पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर के फ़रोग़, निजी सरमायाकारी के हुसूल और बैनुल अक़वामी तआवुन को मजबूत बनाने के तरीक़ों पर गौर किया गया। कतर और तंजानिया के दरमियान सियासी मुशावरत के पहले दौर में दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग, तआवुन को मजबूत बनाने और इलाकाई और बैन अल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। और कतर ने पाकिस्तान के शहर डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर होने वाले धमाके की मजम्मत करते हुए दहशतगर्दी और तशद्दुद के खिलाफ अपने मुस्तकिल मौक़िफ़ का अदा किया और मुतासरीन के अहल खाना व हुकूमत पाकिस्तान से ताज़ियत का इजहार किया है। इसी के साथ साथ उर्दू रेडियो कतर एफ एम 107 से आज का पहला नशरिया अपने इख्तिताम को पहुँचता है। स्टूडियो से तकनीकी मामिन सारा, सोशल मीडिया से यूसरा, न्यूज़ रूम से मोहम्मद अमीन, सरवर मिर्ज़ा और मुझे फरकान शाहिद को दीजिए इजाज़त। फी अमानिल्लाह।
1: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए एफएम 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। सामने के प्रोग्राम आज की दुआ में हम कुरान और सुन्नत की मुंतखब दुआओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उनके अंदर छुपे सबक आमोज पैगाम पर गौर करते हैं। आज की दुआ है कुरान करीम की सूरत आले इमरान की वो दुआ जो अहले ईमान ने अल्लाह की बारगाह में मांगी थी। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, वकफ़िर अन्ना सय्यातिना, और हमारी खताओं और लग्जिशों को महू कर दे, वतवफ़ना मअल अबरार, और हमें नेक लोगों में शामिल करके अपने पास बुलाइए। सामने कराम, यहाँ पर लफ्ज अल अबरार बड़ा जामे है। अल अबरार वो हैं जिन्होंने अल्लाह की इताअत और दीन की खिदमत में अपनी जिंदगियां लगा दी। बाज़ ने कहा ये अंबिया और सिद्दीकीन हैं, बाज़ ने कहा ये वो मोमिनीन हैं जो अपने ईमान में सच्चे और अमल में फरमाबरदार हैं। मुफस्सिर कुरान अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इस दुआ में तवफ्फना अबरारिन के बजाय तवफ्फना माल अबरार कहा गया है, यानी हमें नेककार बनाकर अपने पास बुलाइए के बजाय हमें नेककार के साथ शामिल करके अपने पास बुलाइए, इस तरह कहा गया है ताकि दुआ में आजिजी और इनके सारी जाहिर हो। वह बंदे ये अर्ज करते हैं, ए अल्लाह, अगर हम खुद इस मकाम के अहल नहीं तो हमें तेरे बुरगजीदा बंदों के साथ ही शामिल फरमा दे। तो सामीन, हमें अपनी मगफिरत और बुराइयों के मिटने की दुआ भी करनी है, साथ साथ ये भी मांगिए कि हमारा खात्मा नेकों की मायत में हो,

0: Wake up! हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

दोस्तों आज हम बात करेंगे अमेरिकन टेनिस के एक ऐसे लेजेंड की जो अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल्स लेफ्ट हैंडेड सर्व ब्रिलियंट वॉलीज और कोर्ट पर जज्बाती अंदाज की वजह से दुनिया भर में मशहूर हुआ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। अंदाजा लगा लिया होगा आपने जहां मैं बात कर रहा हूं जॉन मैकेनरो। मॉडर्न जनरेशन के स्पोर्ट्स लवर्स शायद जॉन मैकेनरो को याद ना कर पाए, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं सोशल मीडिया पे जाइए।

हम सुनिए और थोड़ा सर्च करिए। जॉन मैकेनरो 16 फरवरी 1959 को बस जर्मनी में पैदा हुए, लेकिन वो अमेरिका के लिए टेनिस खेलते रहे। उन्होंने बहुत कम उम्र में टेनिस दुनिया में अपनी पहचान बना ली। 1977 में सिर्फ 18 साल की उम्र में विंबलडन के सेमीफाइनल तक पहुंचा और ये उनके करियर का एक अर्ली ब्रेक थ्रू माना जाता है। मैकेनरो का गेम ट्रेडिशनल पावर टेनिस से काफी मुख्तलिफ था। उनका सबसे बड़ा जो वेपन रहा है उनका लेफ्ट हैंडेड सर्व था, जबकि नेट पर उनकी टच और वॉलिंग एबिलिटी लाजवाब थी। कोर्ट पर वो बहुत तेजी से मूव करते और एंगल्स क्रिएट करने में माहिर थे। उनका स्टाइल देखने में सिंपल लगता था दोस्तों, लेकिन ओपोनेंट के लिए उनके शॉट्स को रीड करना बहुत मुश्किल होता था। दैट वाज जॉन मैकेनरो। बंडाना लगा के मैदान पे यानी टेनिस कोर्ट पर उतरना एक अजीब एक वो जो कैरेक्टर जो हमें टेनिस कोर्ट में हमें बहुत नजर नहीं आती इस तरह के कैरेक्टर्स, लेकिन जॉन मैकेनरो वो सच अ कैरेक्टर। 1978 में प्रोफेशनल बनने के बाद मैकेनरो ने बहुत तेजी से सक्सेस हासिल की। 3 मार्च 1980 को वो पहली बार वर्ल्ड नंबर 1 बने। ATP यानी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स के मुताबिक जॉन मैकेनरो ने अपने करियर में टोटल 170 हफ्ते वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन पर रहे। वो 1981 से 1984 तक लगातार 4 सीजन्स के ईयर एंड वर्ल्ड नंबर 1 भी रहे। ग्रैंड स्लैम लेवल पर भी जॉन मैकेनरो का रिकॉर्ड शानदार रहा। उन्होंने अपने करियर में 7 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल जीते। विंबलडन में उन्होंने 3 मरतबा 1981, 1983 और 1984 ट्रॉफी हासिल की। US ओपन में उनका रिकॉर्ड और भी इम्प्रेसिव था, जहां वो 1979, 1980, 1981 और 1984 में चैंपियन बने। दोस्तों मैकेनरो का 1984 सीजन टेनिस हिस्ट्री के सबसे रिमार्केबल सीजन में से एक है। उस साल उन्होंने 82 मैचेस जीते और सिर्फ 3 मैचेस हारे। एंड मैकेनरो को हराना बड़ा मुश्किल था। एंड ऑन द डे व्हेन ही वाज इन द टॉप फॉर्म उनका विनिंग परसेंटेज 96.5 था, और जो कि ATP टूर के ओपन एरा में एक सिंगल सीजन सिंगल्स रिकॉर्ड है। इसी सीजन में मैकेनरो ने 13 सिंगल्स टाइटल्स भी जीते। उनके ओवरऑल सिंगल्स स्टैटिस्टिक्स भी इंप्रेसिव हैं। मैकेनरो ने करियर में 77 टूर लेवल सिंगल्स टाइटल्स जीते और उनका ATP सिंगल्स रिकॉर्ड 883 जीत और 198 हार के करीब रहा। लेकिन मैकेनरो सिर्फ सिंगल्स के चैंपियन नहीं थे, डबल्स में भी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी खिलाड़ी थे। उन्होंने 78 डबल्स टाइटल्स जीते, जिसके साथ उनके कंबाइंड सिंगल्स और डबल टूर लेवल टाइटल्स की तादाद 155 बनती है। दोस्तों ATP के मुताबिक ये ओपन एरा का एक रिकॉर्ड है। अच्छा, मैकेनरो की पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा बता। उनकी पर्सनैलिटी भी उनके टेनिस करियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अंपायर्स के फैसलों पर उनका गुस्सा और कोर्ट पर उनकी फेमस आर्ग्यूमेंट्स ने उन्हें टेनिस के सबसे रिकॉग्निजेबल कैरेक्टर्स में शामिल कर दिया, बागी जिसको हम कहते हैं। तो ये थे जॉन मैकेनरो। लेकिन इन कॉन्ट्रोवर्सीज के बावजूद उनकी टेक्निकल एबिलिटी और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट पर कोई सवाल नहीं था। नोबडी कुड क्वेश्चन हिज टैलेंट, हिज एबिलिटी, हिज टेनिस एक्यूमेन, हिज ब्रिलियंस ऑन द टेनिस कोर्ट। उनकी राइवलरीज भी टेनिस हिस्ट्री का हिस्सा बन गई। जिमी कॉनर्स के खिलाफ मैकेनरो ने 20 ऑफ 34 मीटिंग्स जीती, जबकि बियॉन बॉक के खिलाफ दोनों खिलाड़ियों ने 14 मैचेस में 7-7 विक्ट्रीज हासिल की। इवान लेंडल के साथ भी उनकी राइवलरी टेनिस के गोल्डन एरा की सबसे इंपॉर्टेंट राइवलरीज में शुमार होती है। जॉन मैकेनरो का करियर हमें एक ऐसे टेनिस प्लेयर की कहानी सुनाता है जो सिर्फ ट्रॉफीज की वजह से नहीं, बल्कि अपनी यूनिक स्टाइल, क्रिएटिविटी, टेम्परमेंट और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट की वजह से भी याद रखा जाता है। 7 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल, 77 सिंगल्स टाइटल्स, 78 डबल्स टाइटल, 170 हफ्ते वर्ल्ड नंबर 1 और 1984 का हिस्टोरिक 82 विन एंड 3 लॉसेस। ये नंबर्स जॉन मैकेनरो के एक्स्ट्राऑर्डिनरी करियर की कहानी खुद बयां करते हैं। जॉन मैकेनरो एक चैंपियन, एक आर्टिस्ट और टेनिस कोर्ट पर एक ऐसा कैरेक्टर जिसे फैंस आज भी नहीं भूले। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये सेगमेंट पसंद आया हो। अगली बार एक और इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स कैरेक्टर के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे अनिमा मदमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत।

0: हमारे नए स्पोर्ट्स प्रोग्राम गेम चेंजर में हम उन मारूफ स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनकी तकनीक और अंदाज ने उनके खेलों के रुख को बदल दिया। सुनिए गेम चेंजर हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट मोहम्मद अमीन के साथ एवरी थर्सडे फ्रॉम 7:15 PM ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी
1: Game Changer Season 2 Qatar's most heard radio station FM 107 Dil Se Desi।

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main hoon Doha wala Kabir FM 107 pe and welcome to another tech update. Aaj mere paas bahut kamaal ki websites hain, bahut aisi bhi hain jo boredom ko kill karengi. Majorly aaj mera focus raha hai ki kuch aisi website ho jo time pass ke liye ho na, baithe baithe kuch aisi khamokha, kyunki meri aadat hai ki kuch cheeze aisi explore karni chahiye. जो चीजें खामखा होती है ना, वो बैक ऑफ द माइंड को थोड़ा रिलैक्स देती है. हर चीज काम की नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है? तो आज वेबसाइट जो है ऐसी है जो आपके बोर्डम को किल भी करेंगे और आपको मजा भी आएगा. तो शुरुआत करते हैं पहली वेबसाइट से. इस वेबसाइट का नाम है moviescenemap.com. moviescenemap.com. सीन वाला जो नजारे वाला सीन होता है, तो वो वाला डालने का है. moviescenemap.com. इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपके पास एक पूरा मैप आएगा, डिजिटलाइज्ड वर्जन उसका सामने आएगा और उसमें बहुत सारे डॉट्स लगे होंगे जगह जगह, तो आपको पता लगेगा कौन सी मूवी कहाँ शूट हुई थी. यू नो, खाम खाम चेक करने के लिए मजा आता है मुझे. इनफैक्ट आप कोई भी गेम जो खेलते हैं उस गेम की शूटिंग कहाँ हुई है, वो कहाँ पे लोकेशन एक्चुअल में प्रेजेंट है, वो आप चेक कर सकते हैं. डिफरेंट फिल्टर्स लगा सकते हैं, डिफरेंट मूवीज सर्च कर सकते हैं. यू विल गेट टू नो कौन सा घर यूज किया गया है, कौन सी सड़क यूज की है, कहाँ पे शूटिंग हुई है. एंड बहुत बढ़िया टाइम पास है. एक बार आप जाएंगे इस रैबिट होल में ना, तो आप चलते चले जाएंगे. बोलेंगे यार ये मुझे अच्छा क्यों लग रहा है, ये ढूंढते हुए मुझे मजा क्यों आ रहा है. इज दैट काइंड ऑफ थिंग. तो ये आपकी सिर्फ बोर्डम को खत्म करने के लिए मैंने फोन पे भी चला के देखा, मस्त चलती है, कमाल की चीज है. तो ट्राई दिस वन आउट जस्ट टू किल योर बोर्डम. कितना सोचता हूँ मैं आपके बारे में, समझ रहे हैं आप. आगे वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं. अगली वेबसाइट है hooktheory.com. HOOK hook theory theory.com. hooktheory.com. जब आप इस पे जाएंगे तो भाई साहब आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. एक चीज हो तो बताऊं, इस पे जो गाने हैं उनके कॉर्ड्स क्या क्या हैं गिटार पे बजाने के लिए, आप जो है इसके साथ साथ ये भी देख सकते हैं कि उनको जो है पियानो पे की कौन सी कीज यूज की जा सकती हैं, अपना खुद का आप म्यूजिक प्रोड्यूस कर सकते हैं. आप देख सकते हैं कौन सी की जो की है वो पियानो पे बजी है, कैसे इसको दूसरे इंस्ट्रूमेंट से बजाया जा सकता है, सब कुछ जो है आप चेक कर सकते हैं. एंड इट इज सो इजी टू यूज, ऊपर से फ्री, कोई साइन अप वाइनअप कुछ नहीं चाहिए भाई, ऐसे यूज हो जाएगा. मैं सच्ची बताऊं मुझे बहुत काम की चीज लगी, क्योंकि कलर ग्रेडिंग के हिसाब से, ग्रेडिंग कह रहा हूँ कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको की समझाता है, बहुत इजीली समझाता है. तो इफ यू आर इनटू म्यूजिक, यू वांट टू क्रिएट समथिंग, तो ये आपके काम आएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगली वेबसाइट के लिए आपको गूगल पे जाके टाइप करना है ह्यूमन एटलस वर्सल. वर्सल ही बोलेंगे इसको. ह्यूमन HUMAN एटलस ATLAS फिर स्पेस देके VERCEL. इसके बाद एक वेबसाइट खुलेगी, मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी. सबसे पहली वेबसाइट पे को क्लिक करना है, ह्यूमन एटलस बड़ा बड़ा लिखा आएगा और उसके बाद हमारी जो पूरी बॉडी की एनाटॉमी है वो आपके सामने आ जाएगी, कौन सा मसल क्या है, क्या काम आता है उसका, और बॉडी का एक एक हिस्से के बारे में जो जानकारी है बहुत कमाल की. आप मेडिकल स्टूडेंट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, आप हैं तो बहुत ही बढ़िया, नहीं है कोई टेंशन नहीं है, ये फिर भी आपके काम आएंगी. मैं सही बता रहा हूँ, टू अंडरस्टैंड योर ओन बॉडी इज सुभान अल्लाह, इट एक्चुअली मेक्स यू मोर थैंकफुल के अल्हम्दुलिल्लाह लमिया. ये सब कॉम्प्लेक्सिटी में हम कैसे इसको शुक्र अदा नहीं करते इस चीज का, और ऊपर से आपको चीजें पता लगेंगी कि मुझे क्या क्या खाना चाहिए, कौन सी चीज पे क्या असर करता है. एंड इट इज अमेजिंग. तो ये काम की आप देखिएगा जरूर, काम आने

0: सारी चीजें बताता हूँ मैं, बाकी तो मैंने बोर्डम को मिटाने के लिए आपको वेबसाइट्स बताई हैं। अब जरा बढ़ते खबर की तरफ। तो खबर बहुत बड़ी ये आई है कि OnePlus 16 ऑफिशियली रिवील हो चुका है। आई होप आपने देख लिया होगा, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तब ये रिवील हुआ ही था। तो OnePlus 16 आ चुका है और 1 TB स्टोरेज के साथ आया भाई, तीन तीन रंगों के साथ लॉन्च कर दिया है, क्या बात है। देखो डिजाइन में ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क को लेके आए हैं कैमरा मॉड्यूल में। मैंने अभी बाकी स्पेसिफिक्स पर काम नहीं किया, लेकिन ओवरऑल लुक जो है वो ठीक लग रहा है। वन प्लस थोड़ा सा बीच में चला गया था बेचारा, पता नहीं वो दूर का कजन होता ना, जब तक नानी के घर जाओगे नहीं जब तक मिलेगा नहीं, वैसा वाला सीन था इसके साथ। बट नाउ दैट वन प्लस इज टेकिंग ड्रास्टिक मेजर्स, तो हो सकता है कि इट माइट जस्ट डू वंडर्स इन और कम्पीट विद द बिग जायंट्स। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इसी टेक अपडेट जाना नहीं आपने, मैं हूं दोहरा कबीर, स्टे ट्यून्ड for more updates.
1: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
2: स्कैम अलर्ट।
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। ये शो सुन रहे हैं आप फ्रॉड अवेयरनेस, और अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि जब भी इस टाइम पे मैं आता हूँ इसका मतलब ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस का, जहाँ पर आपको जल्दी से एक नए जमाने के नए फ्रॉड या स्कैम के बारे में पता चलता है। और इस हफ्ते हम जिन स्कैम्स के बारे में पता करेंगे या बात करेंगे वो एक्चुअली हर हाल में आपसे रिलेटेड होने वाला है, क्योंकि अभी तक जब हम स्कैम के बारे में या फ्रॉड के बारे में बात करते थे तो होता ये था कि कई बार वो एम्प्लॉयज़ के लिए होता था, कई बार वो बच्चों के लिए होता था, कई बार वो बिजनेसमैन लोगों के लिए होता था। लेकिन अब जिस इस हफ्ते जिस हम बात करेंगे स्कैम के लिए, उसमें कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट या आपसे रिलेटेड वो चीज़ ज़रूर होगी। तो शुरू करते हैं आज जिस हम स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं। ये स्कैम है सप्लायर स्कैम। ये एक बहुत ही चालाकी से भरा और डेंजरस फ्रॉड है, और आजकल आमतौर पर रिटेल बिजनेसेस या फिर हो सकता है कि आप अपने घर में या फिर आप अपने लोगों के लिए सामान मंगवा रहे हो और ये स्कैम आपके साथ हो जाए। ये स्कैम कैसे काम करता है जरा इस पर नजर डालते हैं। इसमें आमतौर पर फेक वेबसाइट आपको देखने को मिलती है, स्कैमर मशहूर ट्रस्टेड होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स की बिल्कुल मिलती जुलती फेक वेबसाइट्स बना लेते हैं। ये देखने में इतनी असली लगती है कि एक आम इंसान फर्क नहीं समझ सकता। उसके अलावा ईमेल हाईजैकिंग भी होती है, वो किसी पुराने और ट्रस्टेड वेंडर का ईमेल अकाउंट हैक कर लेते हैं, फिर उन्हीं के ऑफिशियल ईमेल से आपको मैसेज भेजते हैं, जिस वजह से आपको कोई शक नहीं होता। वेल, अगर तरीके की बात करें तो इसमें होता है ये कि अर्जेंट इन्वेंट्री शॉर्टेज का बहाना बनाया जाता है आपके साथ। स्कैमर्स रिटेल ओनर्स को कॉन्टैक्ट करते हैं और कहते हैं कि मार्केट में माल की बहुत कमी चल रही है, इसलिए जल्दी से जल्दी ऑर्डर करें। सस्ती डील का लालच दिया जाता है, वो आपको बहुत ही कम कीमत पर एक्सक्लूसिव बल्क डील्स ऑफर करते हैं, जो देखकर कोई भी रिटेल ओनर लालच में आ जाता है। या फिर अगर आप आमतौर पे होलसेल में कोई सामान मंगवाना चाहते हैं या कोई भी चीज़ आप मंगवाना चाहते हैं तो आपके साथ ये चीज़ हो सकती है। एडवांस पेमेंट का प्रेशर बनाते हैं, फिर वो कहते हैं कि अगर आपने अभी के अभी पैसे नहीं दिए तो माल किसी और को भेज दिया जाएगा, वो आपसे वायर ट्रांसफ़र, कॉरपोरेट डिजिटल वॉलेट या क्रिप्टो करेंसी के जरिए फ़ौरन अपफ्रंट पेमेंट मांगते हैं और गायब हो जाना। जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं वो फ्रॉडलेंट सप्लायर्स अपने फोन और ईमेल बंद कर देते हैं, ना आपको माल मिलता है और ना ही आपके पैसे वापस आते हैं, इससे रिटेल बिजनेस पूरी तरह तबाह हो जाते हैं। कई बार आप अपने घर में कोई सामान फर्नीचर का कोई काम है ना, आपको बेड बनवाना है, आपको टीवी के लिए एक फर्नीचर बनवाना है, आपको कुर्सी बनवाना है, आपको डाइनिंग टेबल बनवाना है, तो आप सामान यानी कि लकड़ी जो है वो बल्क में खरीदना चाहते हैं, भले आपका बिजनेस नहीं है। तो जब आप बल्क में खरीदने की कोशिश करते हैं और आप देखते हैं कि मार्केट में जो है 1 किलो की लकड़ी, फलाने की लकड़ी जो है वो 10 रियाल पर केजी में मिल रही है, लेकिन आप उस सप्लायर से किसी तरह से कॉन्टैक्ट में आते हैं जो आपको 5 कतरी रियाल, 4 या 3 या 6 कतरी रियाल में पर केजी में आपको दे रहा है, तो आपको लगता है जल्दी से जल्दी इनसे मंगवा लें और फिर मैं अपने मर्जी का कस्टमाइज फर्नीचर बनवाऊंगा घर पे। लेकिन यहां पर होता है सबसे बड़ा स्कैम, क्योंकि इस तरह का स्कैम बहुत ही आसानी से लोगों के साथ किया जा सकता है, लेकिन इससे बचने के कुछ सॉल्यूशंस भी हैं। वेंडर को डबल चेक करना, अगर आपको कोई ट्रस्टेड वेंडर की तरफ से अचानक बैंक डिटेल्स बदलने या पेमेंट का नया तरीका मिले तो फौरन ईमेल पर रिप्लाई ना करें, उनके पुराने और वेरीफाइड फोन नंबर पर कॉल करके कंफर्म कर लें क्या ये ईमेल उन्हीं पे है, उन्हीं के पास है। उसके अलावा अर्जेंसी और लालच से बचें, जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर आप पर फौरन पेमेंट करने का दबाव डाले या मार्केट प्राइस से बहुत ही सस्ता माल ऑफर करे

0: ट्रेनिंग दें अपने प्रोक्योरमेंट और अकाउंट्स टीम को इस तरह के स्कैम्स के बारे में सिखाएं, ताकि वो कोई भी बड़ी पेमेंट करने से पहले हर चीज पर अच्छी तरह नजर रखें और वेरीफाई करें। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए और आपको आगाह करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट।
2: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है, तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
3: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
2: हेलो एंड वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया। दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं मनी एंड रिलेशनशिप्स की। Should couples have joint or separate finances? हाँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, शादी जब होती है या शादी हो जाती है, तो ये सिर्फ दो लोगों का एक इमोशनल रिश्ता नहीं होता, बल्कि ये एक फाइनेंशियल पार्टनरशिप भी है। इसीलिए अक्सर इसे समझना और इस पर गौर करना बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए अक्सर कपल्स के दरमियान एक इम्पॉर्टेंट सवाल भी पैदा होता है, क्या हस्बैंड और वाइफ को अपने फाइनेंसेस जॉइंटली मैनेज करने चाहिए या फिर सेपरेट अकाउंट्स होने चाहिए। देखिए, इस टॉपिक का अगर मैं कोई परफेक्ट आंसर देना चाहूँ तो शायद मैं कोलैप्स करूँ, क्योंकि हर कपल की जो सिचुएशन है, उनकी इनकम, उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से, और ये शायद डिफरेंट है। जो सिस्टम एक कपल के लिए काम करेगा, जरूरी नहीं कि वो दूसरों के लिए भी इफेक्टिव हो। लेकिन हाँ, जॉइंट फाइनेंसेस ये क्या है, ये पहले समझते हैं। देखिए, जॉइंट फाइनेंसेस का मतलब है कि हस्बैंड और वाइफ अपने इनकम को एक कॉमन अकाउंट में रखें और घर के तमाम एक्सपेंसेस उसी अकाउंट से मैनेज करें। और इस सिस्टम का बड़ा फायदा है ट्रांसपेरेंसी। दोनों पार्टनर्स को पता होता है कि कितनी इनकम आ रही है और कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं। इससे होता ये है कि दोनों में ट्रस्ट बिल्ट होता है और शायद फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पे, अगर कपल घर खरीदना चाहते हैं या फिर बच्चों की एजुकेशन के लिए सेविंग कर रहे हैं, तो जॉइंट फाइनेंसेस प्लानिंग को सिंपल बना देते हैं। लेकिन हाँ, कुछ चैलेंजेस भी हैं। अगर एक पार्टनर स्पेंडर हो और दूसरा सेवर, तो कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होते हैं। एक को लग सकता है कि दूसरा अननेसेसरी शॉपिंग कर रहा है और दूसरा समझता है कि ये जिंदगी को मुझे एंजॉय नहीं करने देता। वहीं पर सेपरेट फाइनेंसेस का भी इसके बारे में भी समझते हैं। देखिए, सेपरेट फाइनेंसेस में हस्बैंड्स और वाइफ अपने अकाउंट्स अलग रखते हैं और अपने पैसे खुद मैनेज करते हैं, जैसे घर के एक्सपेंस एक अग्रीड फॉर्मूला के मुताबिक शेयर किए जाते हैं। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। हर पार्टनर को अपनी इनकम और स्पेंडिंग पर कंट्रोल होता है। मिसाल के तौर पे, अगर वाइफ अपने लिए कोई कोर्स करना चाहती है, खरीदना चाहती है, या फिर हस्बैंड किसी हॉबी पर पैसे स्पेंड कर रहा है, तो उन्हें हर छोटी चीज के लिए एक दूसरे से अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। अब एक और सवाल है कि मनी से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। देखिए, असल में जॉइंट अकाउंट या फिर सेपरेट अकाउंट, ये दोनों चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है। असल मसला कम्युनिकेशन है। कई मैरिजेस पैसे की कमी की वजह से नहीं, बल्कि पैसे के बारे में कम्युनिकेशन की कमी की वजह से प्रेशर में आ जाती है। कपल्स को ओपनली डिस्कस करना चाहिए मंथली बजट, सेविंग गोल्स, डेट्स हैं, लोन्स हैं, फ्यूचर प्लान्स हैं, इमरजेंसी फंड्स हैं। जब पार्टनर्स फाइनेंशियल मैटर्स पर ऑनेस्टली बात करते हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम हो जाती हैं, और ये होनी चाहिए। आखिर में बस यही कहूंगी

फाइनेंसेस सबसे जरूरी चीज है ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन। कोई भी फाइनेंशियल सिस्टम तभी सक्सेसफुल होता है जब दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें और कॉमन गोल्स के लिए मिलकर काम करें। बस जाते जाते एक चीज याद रखिए, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप सिर्फ मोहब्बत से नहीं बल्कि स्मार्ट फाइनेंशियल टीम वर्क से भी बनती है, और शायद ये ट्रांसपेरेंसी से भी बनती है। तो बस अपनी फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को कायम रखें, अपने गोल्स को मिलकर डिसाइड करें और कॉमन गोल्स के लिए मिलकर काम करें। वेल, वैसे कहने को और भी बहुत कुछ था, लेकिन आज नहीं कल। फिलहाल मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: FM 107 टाइम चेक

0: अगर देखा जाए ना तो मुझे मेरे पास डबल डिग्रियां होनी चाहिए, डबल भी नहीं ट्रिपल डिग्रियां होनी चाहिए।
1: तुमने कौन से नॉवल पढ़े?
0: नॉवल नहीं।
1: अच्छा फिर?
0: वैसे ही किताबें पढ़ रहे हैं हम, कोरस की।
1: अच्छा बच्चों की।
0: वही तो ऐसा लगता है एक दफा दो दफा मतलब ये तो ट्रिपल पीएचडी होनी चाहिए मेरे पास तो।
1: अच्छा मजे की बात पता क्या, कि मैं नॉवल पढ़ती थी और मैं खुद पढ़ती थी ना, मतलब खुद से मुराद ये कि वो मैं सुनती कम थी पढ़ती खुद थी।
0: सही।
1: और मैंने बहुत सारे लफ्ज तो गलत अपनी दुनिया में बनाए हुए।
0: ये मेरे साथ भी होता है।
1: जैसे एक वो है हो, अभी भी मुझे सही नहीं पता, हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ, तो ये मैं कुछ और बोलती थी पहले। मैं इसको कव्वा ही बोलती थी। कव्वा कव्वा कब इस तरह से करके बोलती थी। और भी ऐसे मतलब बड़े लफ्ज थे, अचक जही नहीं पता था मुझे, वो पता नहीं मैं क्या बोल रही होती थी। खैर मतलब जो भी है, उर्दू तो आती है ना, अच्छी बात है।
0: चलें भाई,
1: फिर जी आ जाते हैं कहाँ पर आज का टॉपिक।
0: अरे आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सवाल ये नहीं, आज टॉपिक नहीं बताएंगे, आज टॉपिक नहीं पहले बताएंगे माविश, कुछ कुछ अलग। देखो आपने मुझे बताना है कि हमारे जो लिसनर्स है ना, उन्होंने आज हमें एक सवाल का जवाब देना है।
1: अच्छा।
0: और वो सवाल का जवाब, कुछ सवाल मैं आपको बता देती हूँ कि सेल्फ केयर कब खुदगर्जी बन जाती है आपके ख्याल से, जो हम सेल्फ केयर कर रहे होते हैं, जो हम लोग कहते हैं ना, हमेशा कहते हैं भाई अपने आप को पहले रखो फिर बाकियों को देखो। जारी बात है, जहाज में पहले ऑक्सीजन मास्क खुद पहनोगे फिर दूसरों को पहनाओगे, लेकिन ये सेल्फ केयर जो है वो कब आपको लगता है वो खुदगर्जी बन जाती है?
1: सेल्फिशनेस।
0: यस। आपने ये बताना है व्हेन डज सेल्फ केयर बिकम सेल्फिशनेस। आपने करना ये कि हमें आप मैसेज कर सकते हैं 666-22-107 पर, 666-22-107 पर मैसेज कर सकते हैं, और चाहें तो हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए माविश क्या नंबर है हमारा?
1: 443-443-77 पे आप हमें करेंगे कॉल और फिर बताएंगे इस सवाल का जवाब।
0: चलिए के बताएं व्हेन डज सेल्फ केयर बिकम सेल्फिशनेस। माविश आप क्या कहती हैं, कब ऐसा कब होता है?
1: अभी तुम कह रही हो कि हम टॉपिक पे बात नहीं करना शुरू करेंगे, पहले लोगों को लेंगे।
0: हाँ कोई है हमारे पास कॉलर?
1: नहीं अभी नहीं है।
0: अभी नहीं है। कहाँ हो भाई, को भी दें फूलों, आओ जरा खुशबू लगा के मुझे बताओ कि ये सेल्फ केयर कब खुदगर्जी बन जाती है, सेल्फिशनेस बन जाती है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, जरा
1: जल्दी से कॉल कीजिए, जल्दी से कॉल कीजिए वरना फिर हम कुछ शुरू हो जाएंगे।
0: मैसेज आ रहे हैं।
1: मैसेज आ रहा है, मैसेज पहले देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ खान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, गुड मॉर्निंग माविशी और सफा जी, कैसे हैं आप दोनों? होप वेल एंड वेलकम टू यू मैटर दिल से देसी, हैप्पी ट्यूसडे मॉर्निंग। हाँ तो अस्सलाम वालेकुम जी, माशाल्लाह फैयाज सैयद किसी बात पे तो माशाल्लाह। हमने खैर खैरियत पूछी थी क्या?
0: हाँ हमने पूछी थी शुरू में,
1: फिर वही वाली बात होगी। और अस्सलाम वालेकुम, और ये कहते हैं मुबीन बुखारी, आफ्टर 20 मिनट्स काम करना चालू करेंगे, तब तक सबर शांति।
0: वाह वाह क्या तो बात है, वाह क्या तो बात है।
1: ये चले रही कॉल आ गई हमारे पास। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, मैं माशाल्लाह आपका महवश खान पे बोला, महवश।
1: अच्छा महवश पे बोले थे। कैसे सैयद भाई?
2: माशाल्लाह उर्दू से कुछ बेहतरीन ताल्लुक है ना हमारा भी, तो उर्दू सब्जेक्ट था, अल्लामा इकबाल के पोएट्री सब सब सब पढ़ते थे, मजे लेते थे माशाल्लाह। तो बड़े भाई साहब तो उर्दू न्यूज प्रेजेंटर है ना, बताया था मैं आपको?
1: नहीं आपने तो नहीं बताया, पहली दफा बता रहे हैं आज।
2: जी जी बड़े भाई साहब उर्दू न्यूज प्रेजेंटर थे, बेस्ट न्यूज रेडियो माशाल्लाह।
1: कहाँ पर?
2: हैदराबाद इंडिया।
1: हैदराबाद इंडिया, वाह जबरदस्त भाई, ये तो बड़ी कमाल की बात बताई आपने।
0: छुपा रुस्तम निकले,
2: बड़ा ताल्लुक है माता।
1: अच्छा जबरदस्त जबरदस्त, मतलब ये बड़ी अच्छी चीज है, मतलब आपको ना उर्दू उर्दू की एक मोहब्बत अलग होती है, ये बात है। अब देखो मतलब लोग जो है ना छत देखने लगे, अब नहीं अगर किसी का जौक है शौक है तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन उर्दू की मोहब्बत ना एक अलग ही होती है भाई।
0: देखने वाले स्टूडियो में पंखा नहीं है ऊपर छत पर, मैं लटक जाऊं।
2: अरे
1: अगर पंखा होता तो ये लटक जाती
0: बंदर की तरह।
1: जी सैयद भाई,
2: क्वेश्चन बड़ा सही है उसमें, देखिए आप और करें तो जब सेल्फ मतलब क्या बोल रहे हैं आप,
1: सेल्फ केयर कब सेल्फिशनेस बन जाती है?
2: जब बन जाती है जब वो किसी दूसरों को तकलीफ देना शुरू कर दे, समझ रहे हैं, या किसी की जान पे बात आ जाए फिर भी आप अपना देख रहे हैं, बचा रहे नहीं उसको, आगे तमाशा देख रहे हैं ठहर के, किसी की बच्ची की बच्चे की इज्जत पे बात आ जाए, और फिर भी आप तमाशा देख रहे हैं, और सेल्फिशनेस जब है मतलब आप अपने ही देख रहे हैं।

0: इतना यहाँ तक कि भाई आगे वाले का नुकसान हो रहा है, यहाँ तक कि उसको डैमेज हो रहा उसका, तो फिर वो सेल्फिशनेस है मेरे हिसाब से।
1: हाँ वैसे बात सही है, मतलब अक्सर ऐसा होता है ना कि हम अपने अपना मसले में फंस जाएं, इसलिए हम किसी के और मसले में जाते नहीं है, उसको सॉल्व नहीं करते, हम अपना सोच रहे होते हैं। आजकल तो पूरी दुनिया इसी पे चल रही है सईद भाई।
0: जी नहीं भाई, अगर इसके बरक्स करना है, मतलब ऑपोजिट करना है हमको, क्योंकि हमारा इस्लाम यही सिखाता है तमाशा नहीं देख सकते हैं डायरेक्टली।
1: सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही जबरदस्त
0: जी। तो यही है आंसर, तो मेरे हिसाब से तो देखिए सेल्फिशनेस जहाँ पर किसी का नुकसान होता है वहाँ अपना देखना ठीक है मेरे हिसाब से, समझ रहे हैं आप, जहाँ पर दूसरे का नुकसान हो जा रहा फिर भी आप अपना ही देख रहे हैं बोले तो दिस इज नॉट फेयर यू नो।
2: और वो भी तब जब आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपकी इस्तेदात है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: सही बात है, बिल्कुल सही, जबरदस्त आंसर। लेकिन जब मैं रेडियो मैंने ज्वाइन किया था ना उस वक्त उन्होंने मेरा करेक्शन कराई थी, उन्होंने कहा था ये तुम्हारे अच्छा तुम वही हो जिसके नाम पे धूम मची हुई। मैंने कहा यार मेरे नाम पे ऐसी धूम क्यों मच गई भाई, तो वो पता चला कि मेरे पीछे काफी डिस्कशन हो चुकी थी कि जो लड़की अपना नाम सही नहीं लेती वो शो क्या करेगी।
2: अरे भाई
0: अल्लाह,
2: जजमेंटल।
1: हाँ तो फिर उन्होंने करेक्शन कराई, फिर मैंने कहा नहीं सर आप बेफिक्र हैं, मैं शो कर लूंगी और नाम भी सही कर लूंगी।
0: पर कैसा कैसे देखो, अभी आपने एक नई चीज बता दी मेरे दिमाग में, बात आ गई, लोग कहाँ तक सोच लेते हैं भाई, देखो नाम सही नहीं बोले शो क्या करेगी भाई, शो बेस्ट कर रहे हो इसका बता दो माशाल्लाह।
1: ये ना बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो खैर काफ़ी अच्छी किस्मत है अल्हम्दुलिल्लाह। एक हमारे साथ ना जब मैंने ऑडिशन दिया था तो हमारे साथ ही होते थे, बड़े काबिल इंसान थे ना, बड़े अच्छे थे, लेकिन ये काफ और काफ इसमें थोड़ा सा मसला होता है लोगों का, और उनकी ना बदकिस्मती से उनका नाम था अकील और उनको वो बोलना नहीं आ रहा था, तो वो जब बोलते हैं मेरा भी इतना अच्छा नहीं है इसलिए मैं मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करी, तो वो अपना बेचारा नाम से ना वो इतना अच्छा बोलते थे, लेकिन वो जहाँ अपना नाम ले वो कहते भाई अपने नाम की करेक्शन करो, अब वो उनका ठीक ही नहीं होके दिया तो वो उसकी वजह से बेचारे रिजेक्ट हो गए हर दफा, उन्होंने पता नहीं कितने ऑडिशंस दिए लेकिन उनका नाम उनकी राह में रुकावट बन गया।
2: तो ये नाम बदल लेती
1: हाँ एग्जैक्टली। तो ये भी होता है, और हमारे यहाँ क्योंकि ना हमारा था उर्दू, ये जो आपका जो है ना रेडियो पाकिस्तान तो उसका था, और वहाँ के जो उस वक्त के जो लोग थे ना वो बड़े ही पक्के उर्दू में थे, मतलब वो उर्दू के ऊपर कोई समझौता नहीं कर सकते थे थोड़ा सा भी।
0: अच्छा मुझे दो तीन क्वेश्चन बता रहे हैं, पूछूंगा आप प्लीज।
1: जी जी बिल्कुल।
0: अच्छा देखिए आप लोग शो करते हैं, अब इतना आदत हो जाती है बोलने की, तो कभी भी मतलब आप घर में बैठे ऐसा मुंह से निकल जाता है या नींद में से उठते हैं हाँ मैं आरजे बात कर रही हूँ, मैं भी बात कर रही हूँ, ऐसे करते हैं आप?
1: नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ।
2: शो करती थी फजील के साथ, जो कुछ साल पहले ना फजील के साथ एक शो था, तो मुझे ख्वाब में ये आए कि वो जैसे हम लोग ब्रेक लेते हैं ना गाना चलाने के लिए, तो सॉन्ग ब्रेक लेते हैं, तो वो फेडर तो ऑन हो गया लेकिन गाना पता नहीं किस टाइप का चल गया ना,
1: तो बहुत होता है।
2: मैं तो जो ख्वाब में उठकर अच्छा मैं ख्वाब में उठकर चीख रही हूँ, उठ गई मैं नींद से और मैं कह रही हूँ गाना गलत चला दिया है। मेरे घर वाले
0: अल्लाह का शुक्र है आप लोग खुश हो गए मेरे क्वेश्चन से। और एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन ये है, अभी देखिए जैसा कोई पायलट बनते हैं, कोई मतलब जैसा प्लेन में पहली बार वो फ्लाई कर रहे हैं, तो वो उनकी माँ को पहले डेडिकेट करते हैं, फादर को, आप न्यूज देख सकते हैं कि भाई वो बहुत खुश होते हैं मेरी माँ पहली बार, मैं जब मैं प्लेन चला रहा हूँ तो मेरी माँ आई, मेरे बाबा आए या मेरी बहन मेरी बीवी, तो मतलब जैसा आप आरजे करते हो आप लोग ख्वाहिश नहीं होती है कि आप हस्बैंड कॉल करके हमारे जैसा पूछे हाँ भाई का मैं भी बात कर रहा हूँ, कोई कभी किसी का सुना नहीं कि किसी के हस्बैंड कॉल कर रहे हो?
1: नहीं मेरे तो बहुत ज्यादा करते थे, मेरे तो नाम बदल बदल के करते थे मेरे तो मतलब जो इंटरव्यूज करती थी ना जिन दिनों में, तो उन दिनों तो अगर कोई नहीं आ रहा होता था तो मेरे हस्बैंड कर देते थे कि भाई मतलब गेस्ट के सामने ना एक इम्प्रेशन पड़ना चाहिए, तो करते हैं। और मेरा अच्छा आप लोगों को आइडिया भी होता होगा मैं बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड टाइप की हूँ ना, तो

0: जिस वक्त पहले ही जब रेडियो ज्वाइन किया था तो उस वक्त भी मैं अपने घर के एक एक बंदे को, उस वक्त ना बर्थडे की बड़ी शौकीन थी, तो एक एक बर्थडे को अम्मी की, पापा की, बहन भाइयों की, सबकी बर्थडे में विश करती थी ऑन एयर, और फिर सब लोग भी करते थे। तो वो मेरा मामला ये रहा है, मतलब मेरी तो मतलब फैमिली ने खुली किताब होती है हमेशा, मतलब बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सेलिब्रेट करती हूँ, तो वो रहता है, होता है।
1: मेरे मियाँ तो ये करते हैं, कहते हैं वो सुनते हैं क्योंकि वैसे ही खामोश तबीयत है। मैं कहती ना जमीन आमाविश देखा है, जमीन आसमान
0: मेरे वाले भी बहुत खामोश तबीयत, लेकिन क्या है ना कि वो एक मुझे सपोर्ट करने के लिए वो हो जाता
1: है। मुझे ये होता है कि मुझे जो ना फिर वो क्या कहते हैं उसे, हम ऑफ एयर जो हमें फीडबैक मिलता है ना, अच्छा इस चीज को ये ऐसे ऐसे नहीं ऐसे हो सकता था।
0: और सैयद भाई, आपने शुरू में मेरा प्रोग्राम सुना नहीं, हर दिन नया दिन और बाकी और जो मैं शोज करती थी ना, तो उन दिनों में प्रोमोज अपने खुद बनाती थी, यहाँ पे होते नहीं थे उन दिनों प्रोमोज वगैरह, अभी से बिल्कुल चेंज था हमारा रेडियो, तो उसमें ज्यादातर मेरे हस्बैंड की आवाज होती थी। वो अनफॉर्चुनेटली आपने सुनी नहीं है, कभी मैं लगाऊंगी अपने फेसबुक वगैरह पे, आप सुनिएगा। हाँ
2: जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस, अच्छा, सुभानअल्लाह।
0: जी जी जी, ऐसा रहा है बिल्कुल।
2: देखो भाई, 107 वाले हैं, उनको जरा डायरेक्टर कौन है आपका, जो डीन है उनको बोलना पड़ेगा भाई, जरा बहुत बड़े बड़े महारथी है, इससे पहले भी बोला था जैसे जर्म से पल से संभाल कर रहे हो, कुछ सैलरी वाले बढ़ा दो, इंक्रीमेंट दो।
0: अरे हाँ ना, बिल्कुल बोले ना, ये बात तो बोले बार बार आके बोला करे।
2: अरे भाई, मैं तो खतरे के टॉप पे चढ़ के बोलूंगा भाई, कौन हमारा तो राइट है, पब्लिक है, बोल सकते हैं।
0: वैसे ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आज, तो और अच्छे लग रहे हैं।
2: भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई, कुछ मतलब होना भी तो चाहिए, समझ रहे ना आप। बस वही चल रहा है, बोला था जरा, और देखिए वो होने से ना, और आप लोग गर्मजोशी से है ना, गर्मजोशी से और अच्छा शो करेंगे, समझ रहे हैं।
0: बिल्कुल बात सही,
1: आप समझ रहे हैं, कोई और नहीं समझ रहा ना, मसला ये। काश की इतनी समझ दूसरों की भी होती। ऑफ एयर बात करेंगे, ऑफ एयर
2: भाई साहब,
1: सर भाई, ऑफ एयर, ऑफ एयर, ऑफ एयर बात करेंगे इसके बारे में।
0: थैंक यू सैयद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहे।
2: थैंक यू,
0: थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।
2: आप लोग सबको, आप लोग के फैमिलीज को सलामत रखे। ये दो क्वेश्चन थे, वो दिल से चल रहे थे दिमाग में, मैं पूछ लूंगा।
0: नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सईद भाई, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल। थैंक यू जी, ख्याल रखिएगा। रोहित तो हमारे साथ थे सईद भाई, और हमेशा की तरह बहुत ही मतलब खुश अखलाक बंदा, जब भी कॉल करते, कभी कभी ऐसा होता है कि ये मूड में नहीं होते, तो उस दिन मुझे फिक्र हो जाती है कि भाई क्या हो गया आज। यूजली अच्छा भाई, सवाल हम दोहरा देते हैं कि सवाल हमारा है क्या।
1: तो भाई हमारा सवाल ये चल रहा है, देखें आज जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, वो बात ये कर रहे हैं कि इंसान की जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि कंफर्ट जोन से वो अपना इतना अटैच हो जाता है कि वो ये बात समझ ही नहीं पाता कि सेल्फ केयर जो है ना, वो कभी कभी आप उसके अंदर, अब तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है मोस्टली लोग ऐसे ही चल रहे हैं कि एक तो हम कहते हैं ना, फिकर ना फाका ऐश कर काका, उस वाले मोड से निकल कर फिर वो क्या करते हैं, जो सेल्फ केयर होती है ना, उससे फिर वो सेल्फिशनेस पे चले जाते हैं। भाई अब जैसे आजकल का दौर है, खुदा ना खास्ता कोई रोड पे एक्सीडेंट हुआ, कोई गिरा पड़ा है, कुछ है, वीडियो बना रहे हैं उसकी, ये नहीं कोई इमरजेंसी कॉल कर लो, ये नहीं कि उसे उठा लो, उसे पानी पिला लो, कुछ कर लो, लोग ये एक एक लोगों ने अपना एक माविश बनाया हुआ है ना, कि हमारा एक क्या कह लें उसे, एक सर्कल है, एक कंफर्ट जोन है, जिसके अंदर हमारे पास मोबाइल हो, हम अपनी वीडियोस बनाएं, हम अपने सॉन्ग्स प्ले करें, एक्स वाई जेड कुछ भी, हमारा मोबाइल हमारी दुनिया बन गया है। तो वो भी एक किस्म के आपके, जब आपने रिलैक्स करना होता है तो आपकी सेल्फ केयर में आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अब वही वाली बात जो सैयद भाई कह रहे थे कि जब आपकी इस हरकत से दूसरों को तकलीफ पहुंचने लगी, कोई हादसा हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, आप खड़े हुए मोबाइल निकाल कर, और आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि सामने वाला, अल्लाह माफ करे, मर रहा है, जी रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप उसकी हेल्प नहीं करोगे। अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमारी जो सेल्फ केयर वाली फैसिलिटीज होती हैं हमारे लिए, वो दूसरों के लिए अजाब बन जाती हैं।
0: बिल्कुल ऐसे ही।
1: तो हमारा आज का टॉपिक यही चल रहा है कि भाई, व्हेन डज सेल्फ केयर बिकम सेल्फिशनेस।
0: बिल्कुल। अच्छा, इसमें होता क्या है ना कि एक तो ये वाली चीज़ हो गई कि हम कहीं रोड पे किसी को देखें, हाँ, और फिर ये सारी जो चीज़ें, उससे हटकर एक और जो मामला है ना, वो जो आजकल अब तुम देखो कि फिटनेस को लेके, हाँ, लोग बहुत ज़्यादा क्रेजी हुए हैं, या फिर अपनी लुक्स को लेके, पहले इतना ज़्यादा नहीं होता था ये वाला मामला कि बंदा मतलब लगा हुआ होता था अपने घर वालों के लिए और सब कुछ इस तरह से कर रहा होता था, लेकिन अब ये वाला मामला बहुत ज़्यादा होता जा रहा है कि यार मेरा मतलब जो ना खाना, मेरी मील ऐसी होनी चाहिए, मेरा ये ऐसा होना चाहिए, मैं इस वक्त ये शेक पीता हूँ तो पीऊँगा, या मतलब पीऊँगी, ठीक है, या फिर ये मतलब जो ना मेरा सेल्फ केयर का टाइम है,

0: क्रीम लगानी है, ये करना है, वो करना है, तो उसमें चाहे कुछ भी हो जाए बच्चे इग्नोर हो रहे हो, बहुत सारी जगहों पे ये चीजें भी हो रही हैं।
1: मैं भी यही मिसाल देने लगी थी कि माँ जो होती है ना खास तौर पे, वैसे इट्स नॉट मैंडेटरी, ये फरीजा नहीं है, लेकिन एक एक एक प्रायोरिटी है ना कि माँ की प्रायोरिटी घर होता है, बच्चे होते हैं, ठीक है। अक्सर औकात ऐसा होता है, ये सोशल मीडिया की वजह से भी ऐसा बहुत कुछ हुआ है, और जो है ना अक्सर ऐसा होता है कि माँ अपना जो जो आप कह रहे हैं ना वो सेल्फ केयर वाला टाइम होता है वो खींचने के लिए, फिर वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आप उनसे दूर होते चले जाते हैं। बच्चा रो रहा है खाने के लिए, आपने एक्सपेक्टेड उसे कुछ भी कचरा जंक फूड पकड़ा दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ आपने उसको रफा दफा करना है, और आप लगे हुए किस चीज के अंदर। चलो एक होता है आपकी नींद पूरी नहीं हो, एक होता है आप थकावट में हो, एक होता है कि आपकी तबीयत खराब है, दैट इज जेन्युइन, एक होता है नहीं मेरा टाइम है, दिस इज मी टाइम, मैंने जो है ना अपनी कोई फेस रूटीन करनी है तो 7 स्टेप्स वाली तो 15 स्टेप वाली तो उसके लिए मुझे 1 घंटा चाहिए या कुछ चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, उसके अंदर भी फिर जो है ना वो आप क्या होता है आपकी फैमिली रुलती है फिर। अक्सर औकात ऐसा होता है कि जैसे हमारे हमारी अम्माओं के जमाने में कहा जाता था कि औरतें ना बड़ी साबिर होती हैं, क्यों, क्योंकि वो हर चीज में एडजस्ट हो जाती हैं। आजकल उस चीज को मुझे ऐसा लगता है कि वो जो हम फेमिनिज्म कहते हैं ना उसको बड़े रॉन्ग एंगल में लिया जा रहा है कि विमेन पावर, हाँ ठीक है विमेन आर एम्पावर्ड, होना चाहिए, हर औरत को होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब मैं हजरत खतीजा का सुनती हूँ तो शी वॉज माशाल्लाह माशाल्लाह उनके पास बिजनेस था पूरा पूरा, शी वॉज एन इंडिपेंडेंट वुमेन, और उसके बावजूद भी बहुत डाउन टू अर्थ थी।
0: हाँ एग्जैक्टली, अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि आप ना अपनी लुक्स के बजाय या अपनी मतलब हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, हर बंदे को रखना चाहिए, लेकिन उसमें भी किसी भी चीज़ में ना अगर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट मतलब हद से ज़्यादा
1: ओवर हो जाओ ना
0: पे चले जाते हो तो वो चीज़ ना फिर आपकी फैमिली को सफ़र करना पड़ती है, फिर वहाँ पे आप कह सकते हो कि एक सेल्फिशनेस आ जाती है। अच्छा एक कॉलर है हमारे साथ जो होल्ड करें, हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी क्या हाल चाल है आपके?
2: अल्हम्दुलिल्लाह
0: गुड, जबरदस्त। अच्छा जिस गुमशुदा की आपको तलाश है वो गुमशुदा नहीं है, वो यहीं पर है,
1: वो सरदर्द से डील कर रही है आज।
0: हाँ और क्यों मतलब क्यों तलाश है, मुझे ये समझ में नहीं आता है, रोजाना यही वाली बात क्यों करते हैं आप चाहते हैं कि गुम हो जाए?
1: अल्लाह माफ करे, मिसिंग के पोस्टर लगे हो मेरे हर जगह।
2: अब देख रहे हैं कितने रूप बदल रहे हैं।
0: नहीं नहीं रूप तो नहीं बदल रहे, वो तो हर बंदे का होता है ना, मतलब कभी सिंपल होता है, कभी वो थोड़ा सा मतलब दिल चाहता है तो थोड़ा सा तैयार होता है, तो ऐसे ही होता है हर बंदे के साथ, ऐसे ही होता है।
2: अब दोनों तो रंग बदल दिए
0: हैं,
2: कभी आप तारीफ, कभी आप हस्बैंड की तारीफ कर रहे हैं, कभी उनकी बुराई कर।
0: कब बुराई की भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो कोई बुराई नहीं की। कहाँ बुराई की,
1: आप शायद कंफ्यूज कर रहे हैं, मतलब कुछ लेडीज होती हैं कुछ जो कर रही होती
0: हैं। हम हमेशा तारीफ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह,
1: हमने तो अपने मियाँ को सोने का पानी चढ़ा कर रखा है 18 कैरेट गोल्ड का,
0: ज्यादा हो गया। जी नसीम भाई बोलिए, टॉपिक पे बात कीजिए ना, गुमशुदा को छोड़ें, गुमशुदा को रहने दें, वो मतलब यही है, आपको अलग अलग रंग दिखाती रहेगी, कोई मसला नहीं।
1: नसीम भाई
0: को समझ में नहीं आ रहा, नसीम भाई लाजवाब हो गया, कह रहे मैं क्या बोलूं।
1: नसीम भाई आज का हमारा टॉपिक ये चल रहा है कि आपको क्या लगता है ये जो हमारी सेल्फ केयर होती है ये जो है वो सेल्फिशनेस कब बन जाती है,
0: कब बन जाती है
2: जब अपने आप को सही करने में दूसरों को गलत करने गलत समझने लगते हैं।
0: अच्छा बस इतना,
2: अपने आप इतना खो जाते हैं कि दूसरों को ये नहीं देखते कि वो गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, बस अपने आप में मगन है।
0: अच्छा सही हो गया, ठीक चले नसीम भाई, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू जी। तो नसीम भाई जो
1: है वो, नसीम भाई नाश्ता नहीं किया,
0: वो गुम है, गुमशुदा की तलाश में गुम है वो।
1: मुझे आज पता है माइग्रेन हो रहा है,
0: हाँ।
1: और मुझे हर चीज धुंधली नजर आ रही है, यहाँ तक कि चश्मा लगाने के बावजूद भी हर चीज धुंधली नजर आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ प्लीज एक ब्रेक ले लो,
0: ब्रेक ले ले,
1: एक ब्रेक ले लो,
0: हम एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।

0: आप सुन रहे हैं यू मैटर
1: आरजे सफा और आरजे महविश के साथ
0: एफएम 107 पर दिल से देसी।
2: वेलकम बैक, हम आ गए एक दफा फिर से और आज हम बात कर रहे हैं सेल्फ केयर वर्सेस सेल्फिशनेस।
3: और आज जो है वो आप मैसेज कर आज क्या वैसे ही मैसेज करते हैं आप हमें मैसेज कर सकते हैं आप हमें 666
2: ये बता रहा है चीख चीख के माइग्रेन जो है वो बहुत
3: सर चढ़ के बोल रहा है।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु दोनों बहनों को, मेरा मानना है और ये अच्छा दोनों बहनों को सलाम। फिर मेरा मानना है सेल्फ केयर, आप थक गए हैं या मेंटली एग्जॉस्टेड हैं इसलिए आप किसी इवेंट या मदद के लिए नो बोलते हैं ताकि आप रेस्ट कर सकें।
3: हाँ, दिस इज ठीक
2: है। सेल्फिशनेस कब बनती है? तो ये बनती है जब आप हर बार सिर्फ
3: अपनी सोचते
2: लेजीनेस की वजह से अपने

0: दोस्तों या परिवार को मना करने लगते हैं, उस वक्त भी जब उन्हें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। इश्तियाक उस्मानी, क्या बात है।
1: एक बात याद आती है कि हमारे, हम मुसलमान हैं ना, तो हमारे लिए ये फ़र्ज़ है कि, हम लोग कहते हैं ना कि एक फरीज़ा होता है कि मोमिन के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि नमाज जनाजा में जाया जाए, शामिल हुआ जाए। तो मैंने लोग ऐसे भी देखे हैं माविश, मैं बहुत कुछ ऐसा है जो मैंने शादी के बाद बहुत लिटरल अपनी आंखों से एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है ना वो किया है। मेरे मियाँ को ना भी पता हो ना कि कौन है या कौन नहीं है, तो मैंने उनको देखा है कि अगर कोई दोस्त ही बोले ना यार फलाने की नमाज जनाजा तो इतने इतने बजे, वो सब कुछ छोड़कर भागते जाते। तो उससे आपको जो है ना प्रायोरिटीज समझ में आती है कि ये प्रायोरिटीज। और मैंने वो लोग भी देखे अपनी आंखों से जिनके अपने करीबी होंगे ना, तब भी वो नहीं जाते।
0: और मैंने अभी, मतलब मैं सुनती रहती हूँ कुछ लोगों की बातें कि अपना इतना ख्याल है अपनी, मतलब अक्सर लोग अपने सगे भाई बहन, अगर किसी को कोई कैंसर हो गया, कुछ जिस किस्म का हो गया,
1: नहीं करते,
0: उनसे नहीं मिलते, जबकि पूरी दुनिया को पता होगा कि लगने वाली बीमारी नहीं होती है।
1: लेकिन ये बहुत ज्यादा, दिस इज, मुझे नहीं पता इसको ट्रॉमाटाइजिंग कहना चाहिए, इसे मेंटल सिकनेस कहना चाहिए, इसे कुछ कुछ है कि लोग अपने आप से इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये कहीं ना आपकी अपब्रिंगिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कैसा इन चीज़ों के ऊपर रिएक्ट करते हो। हमें शुरू से ये सिखाया गया भाई, दूसरों के मामलों में जब दूसरों को मदद हो, जब आपसे आपसे कोई मदद मांगे, यकीन जानो कुछ अल्लाह ताला ने, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, कुछ अल्लाह ताला ने नेचर ऐसी रखी और कुछ घर की तरबियत ऐसी मिली कि ना नहीं कहा जाता। जब आपसे कोई मदद मांग रहा है ना, तो भाई आपका चाहे वो सेल्फ केयर का टाइम हो, चाहे कुछ भी हो, ना तो कहा नहीं जाता। और कहीं ना कहीं वो, मुझे लगता है कि वो चीज़ हमें डैमेज कर जाती है कभी कभी। हम थके हुए होते हैं, हमें बुखार है, हमें जुकाम है, खांसी है, खुद हॉस्पिटल में चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अगले के लिए हॉस्पिटल पहुंचे हुए कि भाई फलाने की बच्चे की तबीयत खराब है, फलाने की बेगम की तबीयत खराब है। अगर किसी ने मदद मांगी ना आपसे, तो ना वाला मुंह हमारे पास नहीं है, अनलेस और अनटिल आप एडमिट नहीं हुए खुद। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मामला ये होता है कि वो कर सकते हैं, लेकिन अच्छा फलाने से हमारी 2 दिन पहले 3 दिन पहले टसल हुई थी, हम तो ना बात करते, हम तो नहीं करते,
0: है मसला,
1: क्योंकि हमें अपना पीस ऑफ माइंड चाहिए।
0: अच्छा हाँ, ये भी तो एक बड़ा मसला आ गया आजकल,
1: पीस ऑफ माइंड, मेरी उससे लगती नहीं exactly. है, तो मुझे पीस ऑफ माइंड
0: चाहिए। तो ये पीस ऑफ माइंड का भी बड़ा मसला आ गया। और ये भी, मतलब लोग नहीं समझ पा रहे होते कि यहाँ कहाँ पे सेल्फ केयर और कहाँ ये जो ना चेंज हो जाता है सेल्फिशनेस की तरफ, कि बंदा जो है वो समझ अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा इस चीज को। ठीक है, आपको जो है अपना पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है बहुत सारी जगहों पर, जैसे कल हम बात कर रहे थे कि कुछ लोग इस किस्म के होते हैं कि जिनको आप अपनी जिंदगी में अगर दोबारा शामिल कर लोगे तो आपको बिल्कुल पीस चला जाएगा, तो हाँ, वो हाँ, नहीं हाँ। करना। लेकिन कुछ जगहों पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे आपको ये नहीं सोचना होता कि
1: इसने मेरे साथ क्या किया या क्या हुआ।
0: एग्जैक्टली, कुछ मवाक़े ऐसे होते हैं, मैं बल्कि ये कहूंगी कि अगर वहां पे आपकी नहीं भी बनती है, आप उसको मतलब अपनी जिंदगी में नहीं भी वापस लेकर आए, लेकिन वहां पे ये जरूरत आ जाती है कि आप ये नहीं देखोगे कि इससे मेरी बनती है नहीं बनती, मेरी जिंदगी में ये है कि नहीं है, लेकिन उस वक्त आपके जहन में ये बात होती है कि यार मतलब एक अल्लाह ताला की तरफ से एक मौका मिल रहा है मुझे।
1: खौफ खुदा होता है ना जिन लोगों के, फिर वहीं पे घूम फिर कर बात आती है जिनकी दीनी तालीम बेशक इतनी ना हो, लेकिन इतनी जरूर हो कि खौफ खुदा हो
0: एटलीस्ट,
1: तो वो लोग कर जाते हैं
0: बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये सईद भाई का मैसेज है, वो कहते हैं कि जब मुझे मेरी फैमिली की याद आती है ना, तो फिर मैं लो फील करता हूँ, और मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते आप। फैमिली की याद आती है वो अच्छी बात है, आती है और डेफिनेटली मतलब बंदा जो ना उदास भी हो जाता है, लेकिन अब जब ऐसे बात करते हैं ना, तो सईद भाई नहीं लगते, कोई और है, तो खुश रहा करें। और इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम माविश खान सिस्टर एंड सफ़ा जी, आई हैव वन ऑफ VVIP हैं, शी लिसन योर शो, प्लीज़ प्ले वन अरबिक सॉन्ग फॉर हर।
1: क्या एक दफा पे पढ़े,
0: पता नहीं, मैं लिखा तो यही है लेकिन
1: आई हैव वन
0: ऑफ लिखा है, मुझे लगा छुट्टी उट्टी है इनकी। हाँ, लेकिन कुछ और सीन है, हर नेम इज सोहेला, तो अरेबिक सॉन्ग। अच्छा, खादिम भाई हैं ये, हो अच्छा,
1: खादिम भाई अंग्रेजी विच गल ना किया करो, देखो तुसी करने हो तो फिर पंजाबी विच। अच्छा, कर लो,
0: कोशिश करते हैं, आखिरी गाना लगा देते हैं आपके लिए अरेबिक। और मुबीन बुखारी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, अच्छा ये तो मैंने पढ़ लिया था, लेकिन कुछ और भी कह रहे हैं साथ में। मोहम्मद यूसुफ खान कहते हैं, सेल्फ केयर कब सेल्फिशनेस बन जाती है, मैं कहूँगा कि सेल्फिश जब बन जाती है जब तब कि आप सामने वाले को कुछ ना समझें, यानी किसी की रिस्पेक्ट ना करें। सो सेल्फ केयर उतना ही करें जितने कि किसी को

0: वो दीन के लिहाज से भी उसको ऐसा मरोड़ कर पेश किया जा रहा है ना कि वो एक बात होती है ना कि आप कहते हो हाँ की तो गई है दीन में ये बात, लेकिन फिर आप जब खोदते हो तो उसका उसकी तफसीर होती है, उसका जो मतलब होता है वो कुछ और ही निकलता
1: मतलब
0: है।
1: अपने फायदे के लिए हर चीज को इस्तेमाल करना, चाहे वो दीन हो चाहे वो दुनिया हो कुछ भी हो, वो अपने फायदे के लिए।
0: हाँ, वो मोहल्ले वाली एक आंटी होती है ना जो मसाला लगा के बात पेश कर देती है, लोगों ने वैसा कर दिया एम्पावरमेंट।
1: अभी रिसेंटली मैंने एक चीज देखी, मतलब वो नहीं नाम लेना चाहिए तो नाम मैं नहीं ले रही, किसी ने किसी दूसरे मतलब जो ना शख्सियत को एक बिल्कुल सही बात के ऊपर मतलब एक सवाल किया
0: सही,
1: तो उसके ऊपर वो उन्होंने तो इतना माइंड नहीं किया, वो इंटरव्यू चल रहा था उस वक्त, लेकिन फिर बाद में सोशल मीडिया पे लगा के मुझसे ये सवाल किया गया और फिर वो सारे के सारे लोग ना उनकी हिमायत में कूद पड़े। अब जितने भी लोग हैं, अब आप देखो मतलब वाकई अब समझ में आता है कि जो बात की जाती थी ना पहले कि एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग अच्छाई को बुरा और बुरे को अच्छा कहेंगे, तो मतलब आप बेहयाई को सब प्रमोट कर रहे हैं और नाम क्या है विमेन एम्पावरमेंट, कोई मना नहीं कर सकता कि आप क्या पहन रहे हो आप क्या कर रहे हो, सवाल करने वाला नहीं है,
0: मेरी मर्जी है मेरी जिंदगी है।
1: एग्जैक्टली मतलब अगर आप कुछ गलत कर रहे हो ना तो आप उसको इतना कम से कम अपने अंदर ना वो जो कराची की लैंग्वेज में बोलते हैं तप्पड़ रखो कि आप मानो कि हाँ ये गलत है।
2: नहीं तो फिर जब आप वो कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि मेरी जिंदगी या जो मैंने रिएक्ट करना है इसमें, तो आप दूसरों को भी इग्नाइट कर देते हैं या ट्रिगर कर देते हैं कि उस वक्त फिर उसकी क्या मर्जी चल रही है वो उस पर रिएक्ट कर देते हैं।
0: अच्छा ये एक प्रॉब्लम है हमारी आवाम का ना, ये एक प्रॉब्लम है, जहाँ रिएक्ट नहीं भी करना ना वहाँ पे भी रिएक्ट करेंगे, फजूल का डांस करेंगे वहाँ कर, ये है कुछ
2: डांस या इन चीज़ों का नहीं मकसद है कि वो जो कहते हैं ना जिसने की शर्म उसकी की वरम, यानी ऐसी ऐसी जगहों पे ऐसे जुमले बना बना के फिट कर दिए हैं ना कि वाकई वो शर्म करने वो तो उसको नहीं आती लेकिन देखने वाले करने वाले वो खुद बेचारे शर्मसार हो रहे हो।
0: मैं तभी कहती हूँ कि भाई अपने बच्चों को जो है ना इतना शऊर दिया जाए कि उनको ये पता हो कि बेटा ये सही है ये गलत है। अक्सर औकात लोग हमारे अम्मा अब्बा तो हमें डांट दिया करते थे हम सवाल करते थे, लेकिन आजकल की जो आवाम है ना उसको जवाब दो। अपने बच्चों आपके बच्चा कुछ सवाल करता है ना आपसे तो दिमाग लड़ा दो उसको ये बात समझाने में, और उसके तरीके से लेक्चर से नहीं उसी की मिसाल देकर उसे समझाओ कॉन्सिक्वेंसेस का।
2: वो कई सवालों के जवाब सोशल मीडिया इधर उधर से खुद ही पता कर लेते
1: हैं, तो इसलिए वाकई जरूरी है कि हमें हाँ एग्जैक्टली तो इसलिए हमें भी ना वो वाला जो पहले वाला जो एटीट्यूड हुआ करता था हमारा कि हम तो मतलब हमने बचपन में मुझे याद है एक दो बातें कुछ पूछी थी इतनी भी बुरी नहीं थी लेकिन थप्पड़ पड़ गया था उसके ऊपर, तो अब ये वाला एटीट्यूड हम रख नहीं सकते।
2: तो उनको जवाब बताए ना, कहते नहीं आपने जवाब गलत बताया इसका जवाब
0: है। मेरे अपने बच्चे मेरी बेटी ना 12-13 साल की है तो उसने मुझसे एक दिन ऐसे सवाल पूछा कि ये सोसाइटी को लेकर सवाल पूछ रही थी ना वो यही कि वाई शुड आई केयर अबाउट व्हाट अदर्स थिंक, कि मैं लोगों के साथ आकर बैठूं मैं जो ना लोगों के साथ आकर बैठूं और उनसे गुफ्तगू करूं और ये करूं। मैंने कहा देखो वी आर ह्यूमंस, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके घर में कोई मेहमान आए आपने सलाम दुआ की और आप अंदर चले गए, सोचो तुम खुद जाओ किसी घर पर तुम्हें कैसा लगेगा, इस तो मैं जाऊंगी नहीं, व्हाई शुड आई गो। मतलब उनको फिर भी आपको स्टेबल रखना पड़ता है उनके दिमाग को, उनसे गुफ्तगू करें वो, और ये नहीं कि तुम सही हो मैं गलत हूँ, डिबेट उनसे एक अलग ही लेवल पे करनी पड़ती है आपको।
2: नहीं उनको लेके जाए कि आप गायब हो जाएं सारे, आप लोग सिर्फ खुद बातें करते रहे उधर वो,
0: फिर मामला ये आता है ना ओ देयर सो रूड, अरे अप्पा चला ये रूड, हाँ ये रूड हो रहा है ना।
2: तो ऐसी चीजें जो हैं, बाकी अल्लाह आपको सेहत दे और मेरे लिए भी दुआ करें, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी हो रही है। और मैं आपको शुरू से प्रोग्राम सुन रहा था, बस रुका चल रहा था, मैं भी सोच में पड़ा कॉल करूँ ना करूं।
1: आज सफा को चल रहा है माइग्रेन और सफा ने आज पहले कहा था कि मैं नहीं आऊंगी और मैं सोच कर आई थी कि मैं सफा को आज मिस करूंगी, ऐसा मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं मिस करूँ।
2: ये जुबान की पक्की नहीं है इसका,
0: इसे हम पॉजिटिव लेंगे, आप लोगों की मोहब्बत खींच लाई।
2: ओके जी,
1: थैंक यू ज़ुल्कर्नैन साहब, थैंक यू टू अल्लाह हाफिज़। राइट जी, तो हमारे साथ हमारे ज़ुल्कर्नैन साहब थे और इसके साथ हमारे पास है सईद खादिम भाई, आपका चलेगा गाना मैंने निकाल के रख लिया। कहते हैं कि ढेर सारी दुआओं के साथ आदाब और एक बहुत खसूसी लिसनर आपका शो सुन रही है, नाम है सुहेला, वो अरबी

0: सॉन्ग सुनना चाहती हैं, बिल्कुल बिल्कुल चलाएंगे चलाएंगे। तो ये मैंने आखिरी जो है ना रख लिया है, ये नारी नारी जो है अरेबिक सॉन्ग है,
1: हाँ, हाँ,
0: हाँ, तो वो चल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही है फैयाज सैयद कहते हैं थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, और आई एम गेसिंग जब आपको थप्पड़ पड़ा तो कैसा लग रहा होगा जब आप छोटे थे, बहुत पढ़े हैं भाई, बहुत पढ़े। अच्छा अम्मी से नहीं पढ़ते थे, अम्मी से दो तीन दफा पढ़े,
1: अब्बा से
0: ये वाले तो खैर अम्मी से ही पढ़ा था जिसकी मैं बात कर रही थी ना, अब्बा से तो हिम्मत ही नहीं थी
2: मेरी अम्मा के हाथ इतने नरम मुलायम थे कि उनका
0: मारती नहीं थी। जिंदगी में दो तीन थप्पड़ मारे मुझे और जो मेरे दिल पे लगे हैं वो आज तक मैं भूलती नहीं हूँ कि वो मेरे दिल पे लगे हुए। हमारी नहीं, हमारी भी नहीं मारती थी, बिल्कुल भी नहीं मारती थी।
2: अब्बा बड़े स्ट्रिक्ट थे,
0: अब्बा ने तो मतलब ऐसी वैसी पिटाई हुई है वो बताने वाली अच्छा मैं और मेरा भाई हम दोनों की लगी, और मैं इतनी मिस्कीन बच्ची थी, इतनी मासूम बच्ची थी, मैं अपने मुंह से क्या बोलूं, मतलब लोगों को अंदाजा हो गई इस बात का लेकिन मैं वाकई बहुत मासूम थी, अब की बात छोड़ो तो मैं बहुत मासूम थी। तो इसके बावजूद यार पप्पा पत्थर ही क्या, मतलब उनको कुछ था।
1: मैं अपने अब्बा की लाडली थी, लेकिन उसके बावजूद
0: हाँ लाडली मैं भी थी, लेकिन मैं लाडली थी इसलिए पिटती थी ये अजीब सा लाड था। मैं और मेरा भाई पिटे, बाकी लोगों की नहीं हुई, लेकिन हमारी तो सैयद भाई वो पड़ी है कि आपकी सोच है और इसके साथ जी हमारे पास मैसेजेस ही आ रहे हैं, अभी कॉल नहीं है तो अभी क्या करें, माइग्रेन का क्या हाल है, कुछ बेहतर हुआ?
2: नहीं, माइग्रेन तो मेरी जान ये रहेगा, ये दो तीन दिन ऐसे ही चलेगा।
0: एक कॉल आ गई, ले लेते हैं इनको। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग।
0: यस अज्जू भाई, हाउ आर यू?
3: गुड, हाउ आर यू बोथ?
2: ऑल गुड अज्जू भाई। अज्जू भाई बताएं, व्हेन डज सेल्फ केयर बिकम सेल्फिशनेस?
3: सेल्फ केयर बिकम सेल्फिशनेस, आपका अकेले सनस्क्रीन लेकर डालेगा तो आपका वाइफ को नहीं देता ना।
0: हैं फिर से बोलेगा?
3: आई बाय सनस्क्रीन।
2: ओके,
0: हां हां हां,
3: only for me, not for my wife.
2: कितनी तो हाँ ये अच्छा लोग you know, अज्जू भाई ये आपने बड़ा सेंसिटिव बात बोली है आपने, बहुत that you go for shopping.
3: this is small, okay? Last time I buy McDonald's burger only for me and my daughter, but
0: not for your wife.
2: अज्जू भाई how did you survive?
3: he start triggering so many questions against me. You're not taking care of me. Blah blah blah. So many questions.
2: Oh my God! How did you survive, Ajay bhai? How did you survive?
3: Next day I bought him for burger.
2: Aye, kiti pyari si begum.
0: Allah,
2: she's so
0: pyari.
2: Maan bhi nahi jaldi.
3: Sorry.
2: मैंने कहा she's so sweet. Maan bhi gayi itni jaldi. So the thing so, is
3: tell me a thing.
2: No, you were saying something.
3: No, actually for example main khud ka cheez main kar raha to mera wife ko aur mera beti ko self care nahi karega to wo selfish keh raha hai.
2: हाँ वो सेल्फिशनेस हो जाती है, इफ आई डू थिंग्स ओनली फॉर माई सेल्फ एंड आई डू नॉट कंसिडर माई फैमिली, सो दैट मीन्स दैट्स अच्छा मैंने बहुत सारे आदमी ऐसे देखे एंड दिस इज यू नो नाउ डेज आई कीप ऑन आर्ग्यूइंग मेरे घर में भी ना आई कीप ऑन आर्ग्यूइंग विद माई हस्बैंड नाउ डेज मैन आर नॉट मैनिंग सो दिस इज अ फ्रेज आई एम सेइंग कंटिन्यूसली बिकॉज देर वॉज अ टाइम वेन मैन यूज टू गो ऑन वॉर्स एंड दे यूज टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज एज वेल सो इट वॉज यू नो हम कहते हैं ना कि स्ट्रेंथफुल एक चीज आप कहते हो कि गॉड गिफ्टेड एक होता है उनके अंदर स्ट्रेंथ होती है तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आजकल के दौर में ना लड़के बड़े पापा की परी बनते जा रहे हैं लड़के बनते जा रहे हैं अब मैन आर चेंजिंग वेरी डिफरेंटली पता नहीं क्यों ऐसे हो गए दैट दे विल बी टेकिंग मोर केयर ऑफ देम सेल्फ रादर देन बीइंग प्रोवाइडर्स दे आर जस्ट बिकमिंग अ बिट सेल्फिश टूवर्ड्स देम सेल्फ कोई चीज लेने भी जाएंगे दुकान से शॉपिंग करने जाएंगे तो अपने लिए कुछ ले लिया कोई चीज ऐसी नहीं यू नो जेस्टर्स होते हैं ना जेस्टर्स आउट ऑफ लव आउट ऑफ केयर जस्ट टू शो एक फ्लावर ले दिया एक लिपस्टिक ले दिया कुछ भी
3: हर फैमिली में ये प्रॉब्लम है कोई भी शॉपिंग जा रहा है बाहर जा रहा है कोई भी लेने के लिए जा रहा है कभी कभी हम लोग को सेल्फिश होता है, हम लोग फॉर वी कैन बाय ओनली फॉर अस.
0: हाँ हाँ हाँ.

0: हाँ अच्छा नॉट जस्ट फॉर शॉपिंग अदर स्टफ आल्सो
1: या इवन अदर स्टफ आल्सो व्हाटएवर यू आर गोइंग टू बाय और यू आर गोइंग टू डू एनीथिंग sometimes we forget or something happen we just buy for us only तो देन देन आफ्टर दिस प्रॉब्लम शुरू होने के लिए शुरू होता है
0: अच्छा एंड देयर इज वन मोर थिंग आई डोंट नो इफ यू विल

0: डस्ट, क्लीनिंग अप द होम. माय डैड यूज टू हेल्प हर आउट. और उनका जो सेल्फ केयर वाला टाइम होता था ना, वो भी उसे साथ में एंजॉय करते थे. चलो अच्छा पार्क चल लेते हैं, चलो अच्छा आइसक्रीम खाने चलते हैं. वो भी उनका एक सेल्फ केयर का था. दे यूज टू बी टुगेदर इन इट.
1: For our daily work, I'm not helping. Just even washing my clothes also, my wife.
2: चले गुड है दुबई, जो है सो है, कोई मसला नहीं है. चले हम आपसे लेंगे इजाजत. थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, क्योंकि जाने का वक्त हो गया. अच्छा मेरे भी पापा ना वो खाना भी पकाते थे, सारे काम करते थे, और मैंने उनको पूरी जिंदगी देखा सब कुछ करते हुए. लेकिन मेरा एक अलग मसला है, मतलब मुझे, मैं चाहती थी कि ना करे काम, और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करता काम. क्योंकि मैंने देखा है कि जो लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं ना घर की चीजों वगैरह में, तो वो फिर बहुत इन्वॉल्व, हाँ वो कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है. तो मैं चाहती थी नहीं भाई, जो मेरा काम है मैं करूँ और मैं ही करूँ बस, मतलब मेरी चीजों में नहीं कोई आए.
0: मेरा भी एग्जैक्टली यही हिसाब है वो, क्योंकि हम इतने हाइपर इंडिपेंडेंट हो चुके हैं कि हमें जो है वो
2: मुझे पसंद नहीं था. और यही मतलब जो अज्जू भाई बोल रहे थे, तो हमारे घर पे भी बिल्कुल भाई यही हिसाब किताब है. मतलब ना कपड़े धोने, ना इस्तरी करनी है, ना कुछ करना है, सब कुछ. लेकिन
0: लेकिन कभी कभी ना
2: मैं कहती हूँ इट्स ओके यार, मतलब मुझे चलता है, मुझे चाहिए ये था. अच्छा अस्सलाम वालेकुम माबश मैम, सफा जी, दोनों बातों में कुछ पॉइंट्स हैं. जब आपकी राहत दूसरों के लिए नुकसान का सबब बने, जब आप एहसास से जिम्मेदारी को नज़रअंदाज करें, क्योंकि हम इंसान हैं और एक सोसाइटी और रिश्तों से मुंसलिक हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी है, और आप में एहसास से हमदर्दी ज़रूरी है. इसके अलावा बाउंड्रीज भी ज़रूरी हैं, कि आप सेल्फ केयर लोगों के दरमियान, मतलब आपका सेल्फ केयर और लोगों के दरमियान अच्छा बैलेंस ज़रूरी है. दूसरा आपका भी ख्याल रखें, एक हाथ से ताली नहीं बजती. और रियाज हैं ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया रियाज. और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हुए. अब मैं आखिर में ना वो गाना चला देती हूँ. सैयद कह रहे हैं यू आर स्टिल मासूम, यही सुनना था बस. सैयद भाई इतने अच्छे लगते हैं ना मुझे, बस मैं क्या बताऊं. सैयद
0: भाई कितना, कितनी पेमेंट दी है इन्होंने आपको, कितना
2: देख लो सफर देख लो. चले जी आप गाना एंजॉय करें, और इंशाल्लाह आपसे कल मिलते हैं. इंशाल्लाह उम्मीद है कि सफा की तबीयत भी ठीक होगी, ज़ुल्करनैन साहब की तबीयत भी ठीक होगी, बाकी सबकी तबीयत ठीक होगी इंशाल्लाह ताला. कल आपसे मुलाकात होती है. अल्लाह हाफिज़.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार देंगे।

0: सकता है इन हादल कुराना यहदी इलिल्लती ही अक्वम। और इसी उसूल की एक और सूरत हमें इस फरमान में मिलती है या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिह, अल्लाह और उसके रसूल से आगे न बढ़ो ए मोमिनो। यानी अपना नजरिया, अपनी पसंद, अपने जमाने का दबाव या किसी मुफक्किर की फिक्र किसी चीज को अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से आगे मत रखो। और जब इख्तिलाफ पैदा हो जाए तो कुरान क्या कहता है, फइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूलि इन कुंतुम तुमिनून बिललाहि वल यौमिल आखिर। इख्तिलाफ हो तो मामला अल्लाह और रसूल की तरफ लौटाओ अगर तुम अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो। सामने कराम जरा इस ताल्लुक की गहराई देखिए कि कुरान सिर्फ हमें जो है ना मामला यहाँ एक इल्मी तरीक़े कार का नहीं बता रहा, कुरान इसको ईमान से जोड़ता है। तो जिम्मेदारी सिर्फ उलमा के कंधों पर रखकर हम अलग नहीं हो सकते। हर मुसलमान अपने मैदान में खुद से पूछ सकता है कि मैं कुरान की अकौमियत को अपने काम में कैसे जाहिर कर सकता हूँ। एक डॉक्टर अपने शोबे में, इंजीनियर हैं तो इंजीनियरिंग में, मईशत से वाबस्ता हैं तो माली मामलात में, ताजर हैं तो बाजार में, सियासत और समाजी खिदमत में हैं तो वहाँ। यानी कुरान की अकौमियत तमाम तर जगह में हमने नाफिज कर दी है। अगर मेरे पेशे में कोई काम अल्लाह की नाफरमानी में तावुन बन रहा है और मैं जानते बूझते उसका हिस्सा हूँ तो मुझे खुद से पूछना होगा कि कुरान की बालादस्ती मेरे पेशावराना फैसले में कहाँ गई। और अगर खैर के किसी बड़े काम में मेरे इल्म, महारत या वसाइल की ज़रूरत है लेकिन मैं तावुन से पीछे हट रहा हूँ तो वह तावन अलल बिर्र व तक्वा कुरान की आयत मुझसे बेमुखातिब है। तो इस तरह कुरान को सामिन किराम अल्लाह सुबहानहु ताला ने आसान बनाया है नसीहत कबूल करने के हवाले से। अब आसान होने का मतलब ये नहीं कि कुरान खुद चलकर हमारी ज़िंदगी बदल देगा। कुरान रास्ता दिखाता है, रास्ते पर कदम हमें रखना है। अब सामिन किराम हमारी गुफ्तगू का हासिल यही है और पिछले कई हलकों से गुफ्तगू इसी सिमत चल रही है और इसी बात को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुरान की अकवामियत को हम अपनी ज़िंदगी में कैसे नाफिज करें। अगर हम कहते हैं कि कुरान अकवम रास्ता दिखाता है, सबसे बाला तरीन रास्ता दिखाता है, हमारी फ़िक्र की इसलाह करता है और हमारे लिए मीज़ान भी बनाता है, तो यहाँ एक सवाल बाकी रह जाता है कि जो कुछ कुरान चाहता है वो हमारी अमली ज़िंदगी में कैसे उतरे। क्योंकि एक चीज़ है इम्कान किसी हुक्म का मुमकिन होना और दूसरी चीज़ है तमकीन इस इम्कान को हकीकत में कायम कर देना। ठीक है, मसलन अल्लाह ताला ने शूरा का हुक्म दिया। शूरा कोई ख्याली तसव्वुर नहीं, उसे इज्तिमाई ज़िंदगी में कायम किया जा सकता है लेकिन जब तक वो हमारे इदारों, फैसलों और इज्तिमाई निज़म में हकीकत न बने तब तक वो सिर्फ एक मुमकिन उसूल है, एक ऐसा हुक्म जिसे अभी ज़मीन पर जगह मिलनी बाकी है। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूद को हराम करार दिया। हुक्म वाज़ह है लेकिन एक ऐसा माशी निज़ाम कायम करना जहाँ इस हुक्म को हकीकी तौर पर नाफिज किया जा सके, उसके लिए सिर्फ हराम जान लेना काफ़ी नहीं, उसके लिए इल्म, इदारे, मुतबादल रास्ते, इज्तिमाई कोशिश और तमकीन दरकार है। और यही दरअसल अक़वामियत कुरान का मनसूबा है। तो पिछले हलकों में ज़मीन कराम कुरान की अकौमियत को अपनी ज़िंदगी में कायम करने के रास्ते में जो बड़ी बड़ी रुकावटें खड़ी होती हैं इस पर हमने गुफ्तगू की थी। इस पर हमने ये भी बताया था कि कुरान से दूरी एक बड़ा सबब है, मज़ीद कुरान के साथ अदम सदाकत, यानी आपको अपने आप के साथ भी सच्चा होना है और अल्लाह सुबहानहु व तआला के साथ भी सच्चा होना है। इस मौजू को एक मिसाल से समझ सकते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए किसी ने एक नज़रिए पर 20 साल काम किया, एक पूरा इदारा कायम कर दिया, किताबें लिखीं, लोगों को उसकी दावत दी और फिर एक दिन कुरान की कोई वाज़ह रहनुमाई उसके सामने आकर बताती है कि रास्ता दुरुस्त नहीं था। तब जाकर असल इम्तहान शुरू होता है। क्या वो कहेगा कि अगर कुरान मेरी इसलाह कर रहा है तो मैं अपनी सिमत बदल दूंगा या अपनी 20 साल मेहनत बचाने के लिए कुरान की ताबीलें तलाश करेगा। यहाँ इखलास पहचाना जाता है। अल्लाह के साथ सच्चा इंसान कहता है कि मैंने एक नियति से कोशिश की थी, गलती वाजे हो गई तो रास्ता बदल दूंगा। मेरी मेहनत अल्लाह के लिए थी, मेरे आना के लिए नहीं। इदारा मेरा मकसद नहीं, अल्लाह की रजा मेरा मकसद है। यहाँ एक और हकीकत समझना ज़रूरी है कि जब आप हक की बात करेंगे तो इस सिलसिले में मुखालफत तो ज़रूर होगी, ठीक है। तो पिछले हल्के में हमने इस तरफ इशारा भी किया था कि कई सारे तबकात होते हैं सिलसिले में। आप जब भी कोई हक का दावा लेकर आते हैं तो इस सिलसिले में रद्द अमल के तौर पर आपको चार तबके नज़र आएंगे। एक तबका वो है जिसके मफादात हक से मुतासर होते हैं। कुरान का बुनियादी पैगाम अदल कायम करना है। अब जो शख्स जुल्म से फ़ायदा उठा रहा हो अदल के निज़ाम का खैर मकदम क्यों करेगा? जुल्म और अदल एक ही तख्त पर नहीं बिठाया जा सकता, ठीक है ना। इसीलिए कुरान जब नाजिल हुआ तो मुखालफत सिर्फ इसलिए नहीं हुई कि लोगों को अल्फाज पसंद नहीं थे, बल्कि उस पैगाम से बहुत से कायम शुदा मफादात हिल रहे थे। बुतों के गिर्द मजहबी हैसियत थी, तिजारत भी, मुआशी मफाद भी। हक आया तो सिर्फ एक अकीदा नहीं बदला, मफादात के पूरे ढांचे को चैलेंज मिला। आज भी जब कुरान किसी ऐसे निज़ाम, कारोबार या तर्ज जिंदगी का एहतसाब करता है जिस पर किसी की मर्तबा या असर और रसूख कायम हो, तो मुमकिन है मुखालफत कुरान से मोहब्बत के पर्दे में सामने आए लेकिन अंदर कहीं मफाद खतरे में हो। दूसरा तबका है हसद करने वालों का। इनका मसला जरूरी नहीं कि फिक्र से हो, कभी मसला फिक्र पेश करने वाले शख्स से होता है। कोई कहता है फुला आलम ने 20 या 30 किताबें लिख दी हैं, इतनी किताबें मियारी कैसे हो सकती हैं? पूछिए आपने उनकी किताबें पढ़ी हैं? जवाब आता है नहीं, तो फिर फैसला किस चीज पर हुआ? किताब के मवाद पर नहीं है या मुसन्निफ के नाम पर? मुमकिन है उस शख्स ने 30 साल इल्म के लिए वक्फ किए हों, खामोशी से पढ़ा हो, तहकीक की हो। जब नाकिद ने इल्म को सिर्फ अपने फारिग वक्त के चंद टुकड़े दिए हैं, फिर दोनों की इल्मी पैदावार बराबर कैसे होगी, ठीक है ना। इसलिए जब बहुत से लोग किसी शख्सियत के खिलाफ बोल रहे हों तो इतराज की बुनियाद तलाश कीजिए। अगर वाकई इल्मी गलती है तो उसे कबूल कीजिए, लेकिन अगर दलील की जगह हसद, जाती रंजिश या मफाद है तो उसे भी पहचानिए। तीसरा तबका है मौका परस्त लोगों का। ये लोग किसी खैर के मंसूबे के इब्तदाई दिनों में आपके साथ नहीं खड़े होंगे, क्योंकि उस वक्त रास्ता मुश्किल है, कुर्बानी देनी है और कामयाबी यकीनी नहीं। लेकिन जिस दिन मंसूबा कामयाब हो गया, फायदे के दरवाजे खुल गए, नाम और मकाम मिलने लगे, वही लोग कहेंगे अरे हम भी आपके साथ हैं। कुरान हमें ऐसा तर्ज अमल दिखाता है जो हुदैबिया के मौके पर पीछे रहे इनके हवाले से, लेकिन जब खैबर की तरफ जाने और माल गनीमत के इम्कान सामने आया तो साथ चलने की ख्वाहिश जाहिर करने लगे। यानी पहले तो वो पीछे पीछे रहे, लेकिन बाद में वो आगे बढ़ने लगे, क्योंकि वहाँ उनको यकीन था कि अब गनीमत मिलने वाली है। जहाँ कीमत अदा करनी थी वहाँ कदम पीछे था, जहाँ फ़ायदा नजर आया वहाँ कदम आगे बढ़ गया। आज भी आप कोई हकीकी इस्लाही मनसूबा शुरू करें तो मुमकिन है यही मंजर सामने आएगी। जिनके माली मफादात मुतासर होंगे वो मुखालफत करेंगे, कुछ लोग हसद की वजह से रास्ता रोकेंगे और कुछ दूर बैठकर इंतजार करेंगे कि यह कामयाब होता है या नहीं। कामयाब हुआ तो काफिले में शामिल हो जाएंगे। लेकिन मुहतरम सामिन, एक चौथा तबका भी है और असल तवज्जो उसी पर होनी चाहिए। ये हैं मुखलिस लोग। इनका मसला हक से दुश्मनी नहीं, इनका मसला सिर्फ ये है कि हक अभी उन तक पहुंचा नहीं। वो सच जान ले तो उसे कबूल करने के लिए तैयार हैं, दलील वाज़ह हो जाए तो अपनी राय बदलने के लिए तैयार हैं, कुरान की रोशनी सामने आ जाए तो उस रोशनी में चलना चाहते हैं। अपना वक्त, अपनी तवानाई और अपनी इल्मी कुव्वत सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों पर सर्फ कीजिए। हर मुखालिफ के पीछे दौड़ते रहना जरूरी नहीं, हर तंज का जवाब देना जरूरी नहीं, हर एतराज को अपनी जिंदगी का मसला बनाना भी जरूरी नहीं। कुरान कहता है فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا, जो हमारी याद से मुंह मोड़ता है, जो सिर्फ दुनिया चाहता है उससे एराज कीजिए, क्योंकि अगर आप अपनी पूरी तवानाई ऐसे शख्स को कायल करने में लगा दें जो हक जानता ही नहीं या जानना ही नहीं चाहता, तो मुमकिन है वो शख्स महरूम रह जाए जो हक का प्यासा है मगर उसे रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं। इसीलिए कुरानी हिकमत, कुरानी मोती हमें यही बताता है कि ये पहचाना जाए कि चिराग कहाँ जलाना है, कौन ज़्यादा प्यासा है, किसको भूख लगी है, किसे खुराक चाहिए। और यही अक़वामियत कुरान के सफ़र का एक बुनियादी सबक है। کہ قرآن کے سامنے اپنی رائے لے کر فیصلہ سنانے نہ آئیے، اپنا دل لے کر آئیے اور فیصلہ قرآن سے لیجئے۔ اگر قرآن ہماری پسند کی تائید کرے تو الحمدللہ، اور اگر قرآن ہماری پسند کی اصلاح کر دے تو تب بھی الحمدللہ، کیونکہ مومن کی کامیابی یہ نہیں کہ ہر بار اس کی رائے درست نکلے، مومن کی کامیابی یہ ہے کہ جب حق واضح ہو جائے تو وہ خود کو حق کے مطابق درست کر لے۔ اور شاید قرآن کے ساتھ سچی نسبت کی سب سے خوبصورت علامت یہی ہے کہ میں قرآن کو اپنے مطابق نہیں ڈھالتا، میں خود کو قرآن کے مطابق ڈھالتا ہوں۔ اب آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے سامعین کرام، ایک مرتبہ پھر ذہن نشی کر لیجئے کہ قرآن سے ہدایت لینا صرف علماء اور مشائخ کی ذمہ داری نہیں، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن، صرف ایف ایم 107 پر۔
0: ویلکم بیک سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام قرآن کے موتی میں۔ گفتگو ہو رہی ہے اقوامیت قرآن کے حوالے سے، یعنی ہماری فکر، ہمارا علم، ہماری معلومات، اس کا ماخذ، سب سے بالا ترین ماخذ، سب سے سیدھا اور متوازن راستہ، جس کا ہم یقین کرتے ہیں، جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ وہی راستہ ہے جس کی طرف قرآن ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ اچھا جی، اب بات کو ایک دوسرے رخ کی طرف لے جاتے ہیں۔ اقوامیت قرآن کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ بعض اوقات ہم نے دین کے ساتھ اپنا تعلق کچھ یوں بنا لیا ہے کہ شیخ بولیں گے، اہل علم قرآن میں غور کریں گے اور ہمارا کام صرف سننا ہوگا۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی میں تقسیم نظر نہیں آتی تھی کہ کچھ لوگ قرآن سے راستہ تلاش کریں اور باقی صرف تماشائی بن کر بیٹھ جائیں۔ وہاں ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق قرآن سے جڑتا، اسے سیکھتا اور اسی کی روشنی کو اپنی زندگی میں اتارتا تھا۔ اسی لیے کوئی شخص یہ عذر نہیں کر سکتا کہ قرآن سے رہنمائی حاصل کرنا میرا کام نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ قیامت کے دن سوال ہوگا، الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا میری آیات تمہارے سامنے پڑھی نہیں جاتی تھی؟ یعنی قرآن کی صدا سب کے لیے ہے، تو اس کی ہدایت میں بھی ہر ایک کا حصہ ہے۔ البتہ یہ حصہ سب کا یکساں نہیں ہوگا، کسی کے پاس زیادہ علم ہے، کسی کے پاس کم، کسی کی فہم وسیع ہے، کسی کی محدود، مگر کوئی بھی قرآن سے بالکل بے حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تدبر کی دعوت دی ہے، مگر ساتھ ہی دین کا ایک نہایت رحمت بھرا اصول بھی عطا فرمایا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو۔ مزید کہا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں کرتا۔ لہذا قرآن آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ آپ ایک دن میں مفسر بن جائیں، نہ یہ کہتا ہے کہ جس علمی گہرائی تک ایک عالم پہنچتا ہے، ہر شخص لازماً وہیں تک پہنچے۔ مطالبہ صرف اتنا ہے کہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق قرآن کے سامنے بیٹھیں، سوچیں، سمجھیں اور اپنی زندگی کے لیے اس سے روشنی حاصل کریں، اور جہاں قدم رک جائے، جہاں مفہوم سمجھ میں نہ آئے، جہاں شرعی مسئلہ آپ کے علمی حد سے باہر ہو، وہاں اہل علم سے پوچھئے، یہی صحیح راستہ ہے۔ لیکن سوال کسی عالم سے پوچھنا اور قرآن سے اپنا ذاتی تعلق ہی ختم کر دینا، یہ دونوں ایک چیز نہیں۔ عالم آپ کو قرآن تک پہنچنے میں مدد دے سکتا ہے، مگر قرآن سے آپ کے حصے کی روشنی آپ کی طرف سے کوئی دوسرا نہیں لے سکتا۔ جس طرح کوئی شخص دریا کے کنارے کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ دوسرے پانی پی رہے ہیں اس لیے میری پیاس بھی بجھ جائے گی، اسی طرح قرآن ہدایت کا چشمہ ہے، ہر شخص کو اپنی استطاعت کے مطابق اس چشمے تک آنا ہوگا، اپنا حصہ لینا ہوگا، اور پھر اس ہدایت کو اپنی ذات، اپنے گھر، اپنے پیشے اور اپنے معاملات میں زندہ کرنا ہوگا۔ یہی اقوامیت قرآن کا اصل تقاضا ہے کہ قرآن ہمارے فیصلوں میں ہماری رہنمائی کرے، قرآن ہمارے کردار میں دکھائی دے، یہ صرف محفلوں میں سنائی نہ دے بلکہ زندگی کی سمت متعین کرے۔ تو سامعین کرام، آج کی گفتگو کا سب سے اہم سوال یہی ہے کہ میرے اپنے حصے کا قرآن کہاں ہے، میں اس سے کیا سیکھ رہا ہوں، वो मेरी सोच में क्या बदल रहा है, मेरे फैसलों में उसकी कितनी रोशनी है या उसकी रहनुमाई कितनी है, और मेरी जिंदगी में उसकी हिदायत कितनी नजर आ रही है। क्योंकि कुरान से हिदायत ये हम सब का सफर है। अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने के साथ साथ समझने, इसमें तदब्बुर करने और तदब्बुर के साथ उसे अपनी जिंदगी में उतारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।
1: आइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान सिर्फ FM 107 पर।
2: दोस्तों, फायरवर्क्स या फायर क्रैकर्स को लाइसेंस के बगैर यूज करना या अपनी कस्टडी में रखना कानूनन मना है, और ये एक जुर्म है जो आर्टिकल नंबर 18 ऑफ लॉ नंबर 7 ऑफ 2020 ऑन फायरवर्क्स के तहत पनिशेबल है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स फायरवर्क्स को बिना इजाजत इस्तेमाल करता है तो उस पर जुर्माना हत्ता के जेल तक की सजा लग सकती है। आपकी अवेयरनेस और कानून की अंडरस्टैंडिंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आसपास के लोगों की सेफ्टी के लिए भी बेहद अहम है। फायरवर्क्स जाहिरी तौर पर फन लगते हैं, लेकिन बिना कंट्रोल के वो पब्लिक सेफ्टी रिस्क भी बन सकते हैं, इसलिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से प्रॉपर लाइसेंस लेना लाजमी है। वजारत दाखला का कहना है कि कानून का एहतराम करना हम सब की जिम्मेदारी है ताकि हम अपनी कम्युनिटी को सेफ और रिस्पॉन्सिबल बना सकें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
3: Gen Z, Gen X, Gen Alpha, Millennials, ये सब महज टर्म्स नहीं हैं, ये अलग अलग ख्याल आदतें, इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा।
2: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक, जनरेशन टॉक विद आरजे कबीर एंड आरजे सफा एवरी ट्यूसडे एट 3 PM, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 पर पैगाम।
2: इस दुनिया में रहते हुए हर शख्स को अपनी जिंदगी में अच्छे और बुरे हालात का सामना जरूर होता है। इंसान को हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए और अपनी बेहतरी के लिए दुआगो रहना चाहिए। याद रखिए कि दुआएं मुसीबतों का रुख बदल देती हैं। दुआएं मांगते और देते रहा करें। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम और अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और आप पर रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए।
1: पैगाम ऑन FM 107।
3: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
5: आज ही राब्ता करें
4: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
6: आइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान सिर्फ FM 107।

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर
1: ए बनी आदम क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो दुआ को हकीर समझते हो हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं खता नहीं करते अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है तो दोस्तों प्रोग्राम आज की दुआ इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे सामने कराम प्रोग्राम आज की दुआ में हम कुरान सुन्नत की मुंतखब दुआओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उनके अंदर छुपे सबक आमोज पैगाम पर गौर करते हैं आज की दुआ है कुरान करीम की सूरत आले इमरान की वो दुआ जो अहले ईमान ने अल्लाह की बारगाह में मांगी थी रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना या अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा वकफ़िर अन्ना सय्यातिना और हमारी खताओं और लग़्ज़िशों को महू कर दे वतवफ़ना मअल अबरार और हमें नेक लोगों में शामिल करके अपने पास बुलाइए सामने किराम यहाँ पर लफ्ज अल अबरार बड़ा जामे है अल अबरार वो हैं जिन्होंने अल्लाह की इताअत और दीन की खिदमत में अपनी जिंदगियां लगा दी बाज़ ने कहा ये अंबिया और सिद्दीकीन हैं बाज़ ने कहा ये वो मोमिनीन हैं जो अपने ईमान में सच्चे और अमल में फरमाबरदार हैं मुफस्सिर कुरान अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इस दुआ में तवफ्फना अबरारन के बजाय तवफ्फना माल अबरार कहा गया है यानी हमें नेककार बनाकर अपने पास बुलाइए के बजाय हमें नेककार के साथ शामिल करके अपने पास बुलाइए इस तरह कहा गया है ताकि दुआ में आजिजी और इंकसारी जाहिर हो वह बंदे ये अर्ज करते हैं ए अल्लाह अगर हम खुद इस मकाम के अहल नहीं तो हमें तेरे बुरगजीदा बंदों के साथ ही शामिल फरमा दे तो सामीन हमें अपने मकसद और बुराइयों के मिटने की दुआ भी करनी है साथ साथ ये भी मांगिए कि हमारा खात्मा नेकों की माइयत में हो बदकार और बदकारी की हालत में हमारा खात्मा ना हो आइए हम सब आजिजी के साथ ये दुआ पढ़ें रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यातिना वतवफ़ना मअल अबरार
2: जेन ज़ी जेन एक्स जेन अल्फा मिलेनियल्स ये सब महज टर्म्स नहीं हैं ये अलग अलग ख्याल आदतें इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा
3: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक जनरेशन टॉक विद आरजे कबीर एंड आरजे सफा एवरी ट्यूसडे एट 3 PM ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी
4: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, feeling of missing out, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे

0: एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 आरजे फजील के साथ, रहिए अपडेटेड हर ट्यूसडे रात 9 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं एफएम 107,
2: एफएम 107, दिल से देसी।
3: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामीने किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामीने किराम, सदके का नाम आते ही हमारे जहन में उमूमन क्या आता है? किसी गरीब को रकम देना, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना या किसी खैराती इदारे को हतिया देना। यकीनन ये सब अजीम नेकियां हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि सुबह आप अपने घर के लिए जो रोटी खरीदते हैं, बच्चों की ज़रूरत पूरी करते हैं, अहलिया के अखराजात उठाते हैं, घर का किराया अदा करते हैं, ये सब भी अल्लाह के यहाँ अजर का जरिया बन सकता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दीनार वो है जो तुमने अल्लाह की राह में खर्च किया, एक दीनार वो जो तुमने किसी गुलाम की आज़ादी में खर्च किया, एक दीनार वो जो तुमने किसी मिस्कीन पर सदका किया और एक दीनार वो जो तुमने अपने अहलोयाल पर खर्च किया। इनमें सबसे ज्यादा अजर वाला वो दीनार है जो तुमने अपने अहलोयाल पर खर्च किया है। सामने किराम, जरा इस तरतीब को देखिए कि अल्लाह की राह में खर्च, किसी इंसान की आज़ादी के लिए खर्च, मिस्कीन पर सदका और फिर अपने घर वालों पर खर्च। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अअज़मुहा अजरा, इनमें ज्यादा अजर वाला वो है जो तुमने अपने अहल पर खर्च किया है। यहाँ इस्लाम हमारी रोजमर्रा जिंदगी को इबादत से जोड़ देता है। एक पाप जैसा कि सुबह काम पर गया, सारा दिन मेहनत करता है, वो शाम को थका हुआ घर लौटे, उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा कहाँ जाता है? घर के किराए में, बच्चों की जरूरियात में, इलाज में, कपड़ों में। बाज़ औक़ात महीना के अख्तिताम पर उसके अपने पर्सनल सेविंग्स बहुत कम होती हैं। वो सोचता है, मैंने इस महीने कोई ख़ास सदका नहीं किया। लेकिन नबवी सुन्नत हमें ये बताती है कि ज़रा अपनी नीयत को देखिए। आपने हलाल कमाया, अपने अहल वयाल का हक अदा किया, उनकी ज़रूरत पूरी की। अगर ये सब अल्लाह की रजा और अपनी शरी जिम्मेदारी अदा करने की नीयत से किया है तो ये महज घर का बजट नहीं रहा, ये अजर बन गया है। सबने किराम, एक ही रकम दो इंसान खर्च करते हैं। एक शख्स घर के अखराजात देता है और पूरा वक्त दिल में बोझ महसूस करता है कि ये सब मेरे पैसे ख़त्म कर रहे हैं। दूसरा भी वही अखराजात देता है लेकिन दिल में नियत करता है कि या अल्लाह, तूने उनकी जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं तेरी रजा के लिए उनका हक अदा कर रहा हूँ। रकम शायद एक जैसी हो लेकिन नियत ने दूसरे शख्स के मामूल को इबादत से जोड़ दिया है। सबने किराम, आज की रूह परवर सुन्नत का एक अहम पहलू ये भी है कि खैर के कामों में तरजीहात को समझना चाहिए। आपकी कमाई में आपके ज़ेर कफालत लोगों का भी हक है, इसलिए अपने अहल पर मुनासिब तरीके से खर्च करना कोई एहसान जताने की चीज़ नहीं, ये जिम्मेदारी है और सवाब का काम है। मजीद सामने किराम, आज की रूह परवर सुन्नत हमें ये भी बताती है कि नफली सदका और खैर को सिर्फ एक ही जगह महदूद नहीं करना चाहिए बल्कि ज़रूरत और मसलहत के मुताबिक खैर के मुख्तलिफ मैदानों में खर्च करना बेहतर है। यानी इस्लाम सखावत को एक ही शक्ल में कैद नहीं करता। किसी वक्त एक मिस्कीन की ज़रूरत ज़्यादा है, किसी वक्त किसी बीमार की, किसी वक्त किसी रिश्तेदार की और किसी वक्त सबसे ज़्यादा फौरी हक आपके अपने घर में मौजूद होता है। समझदार मोमिन ये देखता है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा हक और ज़रूरत कहाँ है। अल्लाह ताला हमारे रिज़्क में बरकत अता फरमाए, हमें हलाल कमाने, हिकमत के साथ खर्च करने, अपने अहलो अयाल के हुकूक खुश दिली से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। اسی دعا کے ساتھ پروگرام روح پرور سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے, سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر. دل سے دیسی.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi. Your health matters.
1: Assalamu alaikum listeners. Your health matters. Jahan hum baat karte hain aapki sehat se jude aise mauzuat par jo hamari rozmarra zindagi ka hissa hain. आज का जो मौजू है बहुत ही सादा सा है लेकिन हमारी सेहत के लिए बहुत अहम है यानी डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी की कमी हम में से बहुत से अफराद पानी उस वक्त पीते हैं जब बहुत ज्यादा प्यास लगती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ प्यास लगना ही पानी की कमी की अलामत नहीं है बाज़ुकात हमारा जिस्म पानी की कमी के बारे में हमें उससे पहले इशारे दे रहा होता है हमारे जिस्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है पानी पर ही मुश्तमिल है और पानी जिस्म के तकरीबन हर अहम काम में हिस्सा लेता है जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन हो हमारे जो जिस्म का टेम्परेचर है उसे बरकरार रखना हो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हाजमा है या जिस्म से जो फाजिल मादों का अखराज है और बहुत से दूसरे काम मुनासिब हाइड्रेशन के साथ ही जुड़े हुए होते हैं जब जिस्म से पानी ज़्यादा मकदार में खारिज हो जाए तो उसके मुकाबले में पानी की मकदार पूरी ना हो तो फिर डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो सकती है मसलन गर्मी में यानी मौसम गर्म है और आजकल जैसे कि हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पर जो है गर्मी ज़्यादा है तो गर्मी में स्वेटिंग ज़्यादा होती है पसीना आता है और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो तब भी इसी तरह अगर टेम्परेचर है या वॉमिटिंग हो रहा है या फिर ये कि आपको जो दस्त हैं या फिर दिन भर बहुत कम पानी पीना इसकी आम वजूहात में शामिल हो सकते हैं मगर अब सवाल यह है कि हमें कैसे मालूम हो कि हमारे जिस्म को पानी की ज़रूरत है सबसे जो आम अलामत है वो तो प्यास है लेकिन इसके अलावा मुंह का खुश्क हो जाना बहुत ज़्यादा थकन महसूस करना चक्कर आना सर दर्द कमज़ोरी और इसी तरह जो यूरिन है उसका रंग ज़्यादा गहरा होना भी जिस्म में पानी की कमी की तरफ इशारा कर सकते हैं बाज़ अफराद को पानी कम पीने की वजह से कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी हो सकती है गर्मी के मौसम में पानी की ज़रूरत ख़ास तौर पर ज़्यादा हो जाती है क्योंकि स्वेटिंग के ज़रिए जिस्म में पानी जो है वो ज़्यादा खारिज होता है और इसी तरह से अगर आप बाहर काम करते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं या फिर धूप में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो पानी और फ्लूइड्स का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है लेकिन एक बात याद रखिए कि सिर्फ एक ही असूल सब अफराद पर लागू नहीं होता हर शख्स को लाजमन इतना ही पानी पीना चाहिए पानी की ज़रूरत उम्र हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं मौसम है या ग़िज़ा है और सेहत की हालत के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है अपने जिस्म के सिग्नल्स पर तवज्जो देना बेहद ज़रूरी है एक आसान आदत यह है कि पानी को सिर्फ प्यास लगने के बाद पीने के बजाय दिन भर मुनासिब वक्फों से लिया जाए सुबह उठकर पानी पीना खाने के दौरान और दिन के मुख्तलिफ औकात में मुनासिब मकदार में पानी लेना और एक्सरसाइज या फिर ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है या ज़्यादा पसीना आ रहा है तो उसके दौरान अपने फ्लूइड्स का अपने पानी का जो है वो ख्याल रखना ये बहुत ही अच्छी आदत में शामिल है अब हम बात करेंगे कुछ बच्चों और बुज़ुर्गों की बच्चे हमेशा खुद ये नहीं बता पाते कि उन्हें पानी की ज़रूरत है खेलते हुए वो पानी पीना भूल सकते हैं इसलिए वालदैन को चाहिए कि बच्चों को वक्फे वक्फे से पानी पीने की आदत डालें इसी तरह से बाज़ बुज़ुर्ग अफराद को प्यास का एहसास पहले की निस्बत कम हो सकता है इसलिए उनमें जो हाइड्रेशन है उसकी तरफ ख़ास तवज्जो देना बेहद ज़रूरी है अगर किसी शख्स को वॉमिटिंग हो या ये है कि डायरिया हो तो उसकी वजह से जिस्म से पानी के साथ साथ जो नमकियात हैं वो भी ज़्यादा मकदार में खारिज हो रहे होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सादा पानी काफ़ी नहीं होता ऐसी सूरत में डॉक्टर या किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल के मशवरे से ORS इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन यहाँ एक अहम बात भी है कि पानी ज़्यादा पीना हमेशा बेहतर नहीं होता बहुत ज़्यादा पानी एक ही वक्त में पीना बाज़ हालात में नुकसानदेह हो सकता है इसलिए ये मकसद भी यही है कि जिस्म को मुनासिब मकदार में जो फ्लूइड्स हैं वो मिलते रहें ना कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी पिया जाए अब ज़रा हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर नज़र डालें तो क्या आप सुबह घर से निकलते हुए पानी की बॉटल अपने साथ रखते हैं क्या आप काम में मसरूफ होकर कई घंटे पानी पीना भूल जाते हैं? क्या आपको अक्सर सर में दर्द या थकान महसूस होती है? और आपने कभी सोचा कि शायद आपने आज पानी नहीं पिया? अगर जवाब हाँ है तो फिर एक छोटी सी तब्दीली कीजिए। अपनी काम की जगह पर पानी रखिए, अपने सफर के दौरान पानी रखिए, बच्चों को भी पानी की बोतल दीजिए और गर्मी में एक्सरसाइज के दौरान अपने जिस्म की जरूरत को नजरअंदाज मत कीजिए। अगर पानी की कमी बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर शदीद चक्कर, बेहोशी, बहुत कम यूरिन का आना और कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मेडिकल हेल्प जो है वो लेना बेहद जरूरी है। तो लिसनर्स, आज का आसान सा जो हेल्थ मैसेज है वो ये है कि प्यास का इंतजार ना कीजिए, अपने जिस्म के सिग्नल्स को समझिए, अपनी जो वाटर बॉटल है अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए, खास तौर पर गर्मी, सफर और फिजिकल एक्टिविटी के दौरान। हम फिर मिलेंगे किसी और मुफीद मौजू के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रखिए और याद रखिए, योर हेल्थ मैटर्स।
2: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, गाड़ी की रूफ टॉप पर बैठना या विंडो से बाहर झांकना सिर्फ एक ट्रैफिक वायलेशन नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी रिस्क भी है। जब गाड़ी चल रही होती है तो ऐसे रवैयों से ना सिर्फ आपकी अपनी जान खतरे में होती है, बल्कि दूसरे लोग भी नुकसान उठाते हैं। ऐसे अनसेफ और इलीगल एक्शंस का सामना करते हुए हम ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं, बल्कि दूसरों को भी चोटों का शिकार बना सकते हैं। ट्रैफिक लॉज का मकसद सिर्फ कानून पर अमल करना नहीं, बल्कि हमारी और हमारे आसपास के लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करना है। गाड़ी के अंदर रहकर सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना और विंडो के अंदर रहना जरूरी है। ये सब प्रिकॉशंस ना सिर्फ हमारे लिए, बल्कि हमारे बच्चों और दूसरे सफर करते लोगों के लिए भी जरूरी हैं। ट्रैफिक वायलेशंस का अंजाम सिर्फ फाइंस या लीगल एक्शंस तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि इससे सीरियस इंजरीज और एक्सीडेंट्स का खतरा भी होता है। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 83 के तहत ऐसे रवैयों को कानून के तहत सजा मिलती है, जो हमारे लिए एक जरूरी वार्निंग है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलने की तालीम दें और उन्हें सफाई और हिफाजत के तरीकों का एहसास दिलाएं। आइए हम सब मिलकर ट्रैफिक रूल्स को अपनाकर ना सिर्फ अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करें, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक बेहतर और सेफर इन्वायरमेंट क्रिएट करें। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है। कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है। मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर। क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
2: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
1: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी ट्यूसडे एट 1 PM।
2: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की,
3: स्पोर्ट्स की। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। आज मेरे पास बहुत कमाल की वेबसाइट्स हैं, बहुत ऐसी भी हैं जो बोर्डम को किल करेंगी। मेजरली आज मेरा फोकस रहा है कि कुछ ऐसी वेबसाइट हो जो टाइम पास के लिए ना बैठे बैठे कुछ ऐसी खामखा, क्योंकि मेरी आदत है कि कुछ चीजें ऐसी एक्सप्लोर करनी चाहिए। जो चीजें खामखा होती है ना वो बैक ऑफ द माइंड को थोड़ा रिलैक्स देती है। हर चीज काम की नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो आज वेबसाइट जो है ऐसी है जो आपके बोर्डम को किल भी करेंगे और आपको मजा भी आएगा। तो शुरुआत करते हैं पहली वेबसाइट से। इस वेबसाइट का नाम है moviescenemap.com, moviescenemap.com। सीन वाला जो नजारे वाला सीन होता है तो वो वाला डालने का है, moviescenemap.com। इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपके पास एक पूरा मैप आएगा, डिजिटलाइज्ड वर्जन उसका सामने आएगा और उसमें बहुत सारे डॉट्स लगे होंगे जगह जगह, तो आपको पता लगेगा कौन सी मूवी कहाँ शूट हुई थी। यू नो खामखा चेक करने के लिए मजा आता है मुझे। इनफैक्ट आप कोई भी गेम जो खेलते हैं उस गेम की शूटिंग कहाँ हुई है, वो कहाँ पे लोकेशन एक्चुअल में प्रेजेंट है वो आप चेक कर सकते हैं। डिफरेंट फिल्टर्स लगा सकते हैं, डिफरेंट मूवीज सर्च कर सकते हैं। यू विल गेट टू नो कौन सा घर यूज किया गया है, कौन सी सड़क यूज की है, कहाँ पे शूटिंग हुई है, एंड बहुत बढ़िया टाइम पास है। एक बार आप जाएंगे इस रैबिट होल में ना तो आप चलते चले जाएंगे बोलेंगे यार ये मुझे अच्छा क्यों लग रहा है, ये ढूंढते हुए मुझे मजा क्यों आ रहा है, इज दैट काइंड ऑफ थिंग। तो ये आपके सिर्फ बोर्डम को खत्म करने के लिए मैंने फोन पे भी चला के देखा, मस्त चलती है, कमाल की चीज है। तो ट्राई दिस वन आउट जस्ट टू किल योर बोर्डम। कितना सोचता हूँ मैं आपके बारे में, समझ रहे हैं आप। आगे वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं। अगली वेबसाइट है hooktheory.com, HOOK hook theory, theory.com, hooktheory.com। जब आप इस पे जाएंगे तो भाई साहब आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। एक चीज हो तो बताऊं, इस पे जो गाने हैं उनके कॉर्ड्स क्या क्या हैं गिटार पे बजाने के लिए, आप जो है इसके साथ साथ ये भी देख सकते हैं कि उनको जो है पियानो पे की कौन सी कीज यूज की जा सकती हैं, अपना खुद का आप म्यूजिक प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कौन सी की जो की है वो पियानो पे बजी है, कैसे इसको दूसरे इंस्ट्रूमेंट से बजाया जा सकता है, सब कुछ जो है आप चेक कर सकते हैं। इट इज सो इजी टू यूज, ऊपर से फ्री, कोई साइनअप वाइनअप कुछ नहीं चाहिए भाई, ऐसे ही हो जाएगा। मैं सच्ची बताऊं मुझे बहुत काम की चीज लगी, क्योंकि एक कलर ग्रेडिंग के हिसाब से, ग्रेडिंग कह रहा हूँ कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको की समझाता है, बहुत इजीली समझाता है। तो इफ यू आर इनटू म्यूजिक, यू वांट टू क्रिएट समथिंग, तो ये आपके काम आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते अगली वेबसाइट के लिए आपको गूगल पे जाके टाइप करना है ह्यूमन एटलस वर्सेल, वर्सेल ही बोलेंगे इसको, ह्यूमन HUMAN एटलस ATLAS फिर स्पेस देके VERCEL। इसके बाद एक वेबसाइट खुलेगी, मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी, सबसे पहली वेबसाइट पे को क्लिक करना है, ह्यूमन एटलस बड़ा बड़ा लिखा आएगा और उसके बाद हमारी जो पूरी बॉडी की एनाटॉमी है वो आपके सामने आ जाएगी, कौन सा मसल क्या है, क्या काम आता है उसका, और बॉडी का एक एक हिस्से के बारे में जो जानकारी है बहुत कमाल की। आप मेडिकल स्टूडेंट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, आप हैं तो बहुत ही बढ़िया, नहीं है कोई टेंशन नहीं है, ये फिर भी आपके काम आएगी। मैं सही बता रहा हूँ, टू अंडरस्टैंड योर ओन बॉडी इज सुभान अल्लाह, इट एक्चुअली मेक्स यू मोर थैंकफुल के अल्हम्दुलिल्लाह लमिया, ये सब कॉम्प्लेक्सिटी में हम कैसे इसको शुक्र अदा नहीं करते इस चीज का। और ऊपर से आपको चीजें पता लगेंगी कि मुझे क्या क्या खाना चाहिए, कौन सी चीज पे क्या असर करता है, एंड इट इज अमेजिंग। तो ये काम की आप देखिएगा जरूर, काम आने वाली चीजें बताता हूँ मैं, बाकी तो मैंने बोर्डम को मिटाने के लिए आपको वेबसाइट्स बताई। अब जरा बढ़ते खबर की तरफ। तो खबर बहुत बड़ी ये आई है कि OnePlus 16 ऑफिशियली रिवील हो चुका है। आई होप आपने देख लिया होगा, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तब ये रिवील हुआ ही था। तो OnePlus 16 आ चुका है और 1 TB स्टोरेज के साथ आया भाई, तीन तीन रंगों के साथ लॉन्च कर दिया है, क्या बात है। देखो डिजाइन में ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क को लेके आए हैं कैमरा मॉड्यूल में, मैंने अभी बाकी स्पेसिफिक्स पर काम नहीं किया, लेकिन ओवरऑल लुक जो है वो ठीक लग रहा है। वन प्लस थोड़ा सा बीच में चला गया था बेचारा, पता नहीं वो दूर का कजन होता ना, जब तक नानी के घर जाओगे नहीं जब तक मिलेगा नहीं, वैसा वाला सीन था इसके साथ। बट नाउ दैट वन प्लस इज टेकिंग ड्रास्टिक मेजर्स, तो हो सकता है कि इट माइट जस्ट डू वंडर्स इन और कंपीट विद द बिग जायंट्स। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इसी टेक अपडेट, जाना नहीं आपने, मैं हूं दोहा वाला कबीर, स्टे ट्यून्ड।

0: tuned for more updates. Tech update. Tech
1: update. आप सुन रहे हैं FM 107.
2: दिल से देसी.
0: Scam alert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का. ये शो सुन रहे हैं आप फ्रॉड अवेयरनेस. और अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि जब भी इस टाइम पे मैं आता हूँ इसका मतलब ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस का, जहाँ पर आपको जल्दी से एक नए जमाने के नए फ्रॉड या स्कैम के बारे में पता चलता है. और इस हफ्ते हम जिन स्कैम्स के बारे में पता करेंगे या बात करेंगे वो एक्चुअली हर हाल में आपसे रिलेटेड होने वाला है. क्योंकि अभी तक जब हम स्कैम के बारे में या फ्रॉड के बारे में बात करते थे तो होता ये था कि कई बार वो एम्प्लॉयज़ के लिए होता था, कई बार वो बच्चों के लिए होता था, कई बार वो बिजनेसमैन लोगों के लिए होता था. लेकिन अब जिस इस हफ्ते जिस हम बात करेंगे स्कैम के लिए, उसमें कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट या आपसे रिलेटेड वो चीज़ ज़रूर होगी. तो शुरू करते हैं आज जिस हम स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं. ये स्कैम है सप्लायर स्कैम. ये एक बहुत ही चालाकी से भरा और डेंजरस फ्रॉड है. और आजकल आमतौर पर रिटेल बिजनेसेस या फिर हो सकता है कि आप अपने घर में या फिर आप अपने लोगों के लिए सामान मंगवा रहे हो और ये स्कैम आपके साथ हो जाए. ये स्कैम कैसे काम करता है जरा इस पर नजर डालते हैं. इसमें आमतौर पर फेक वेबसाइट आपको देखने को मिलती है. स्कैमर मशहूर ट्रस्टेड होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स की बिल्कुल मिलती जुलती फेक वेबसाइट्स बना लेते हैं. ये देखने में इतनी असली लगती है कि एक आम इंसान फर्क नहीं समझ सकता. उसके अलावा ईमेल हाईजैकिंग भी होती है. वो किसी पुराने और ट्रस्टेड वेंडर का ईमेल अकाउंट हैक कर लेते हैं, फिर उन्हीं के ऑफिशियल ईमेल से आपको मैसेज भेजते हैं, जिस वजह से आपको कोई शक नहीं होता. वेल, अगर तरीके की बात करें तो इसमें होता है ये कि अर्जेंट इन्वेंट्री शॉर्टेज का बहाना बनाया जाता है आपके साथ. स्कैमर्स रिटेल ओनर्स को कॉन्टेक्ट करते हैं और कहते हैं कि मार्केट में माल की बहुत कमी चल रही है, इसलिए जल्दी से जल्दी ऑर्डर करें. सस्ती डील का लालच दिया जाता है. वो आपको बहुत ही कम कीमत पर एक्सक्लूसिव बल्क डील्स ऑफर करते हैं, जो देखकर कोई भी रिटेल ओनर लालच में आ जाता है. या फिर अगर आप आमतौर पे होलसेल में कोई सामान मंगवाना चाहते हैं या कोई भी चीज आप मंगवाना चाहते हैं तो आपके साथ ये चीज हो सकती है. एडवांस पेमेंट का प्रेशर बनाते हैं. फिर वो कहते हैं कि अगर आपने अभी के अभी पैसे नहीं दिए तो माल किसी और को भेज दिया जाएगा. वो आपसे वायर ट्रांसफर, कॉर्पोरेट डिजिटल वॉलेट या क्रिप्टो करेंसी के जरिए फॉरन अपफ्रंट पेमेंट मांगते हैं और गायब हो जाना. जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं वो फ्रॉडलेंट सप्लायर्स अपने फोन और ईमेल बंद कर देते हैं. ना आपको माल मिलता है और ना ही आपके पैसे वापस आते हैं. इससे रिटेल बिजनेस पूरी तरह तबाह हो जाते हैं. कई बार आप अपने घर में कोई सामान फर्नीचर का कोई काम है ना, आपको बेड बनवाना है, आपको टीवी के लिए एक फर्नीचर बनवाना है, आपको कुर्सी बनवाना है, आपको डाइनिंग टेबल बनवाना है, तो आप सामान यानी कि लकड़ी जो है वो बल्क में खरीदना चाहते हैं, भले आपका बिजनेस नहीं है. तो जब आप बल्क में खरीदने की कोशिश करते हैं और आप देखते हैं कि मार्केट में जो है एक किलो की लकड़ी फलाने की लकड़ी जो है वो 10 रियाल पर केजी में मिल रही है, लेकिन आप उस सप्लायर से किसी तरह से कॉन्टेक्ट में आते हैं जो आपको 5 कतरी रियाल, 4 या 3 या 6 कतरी रियाल में पर केजी में आपको दे रहा है, तो आपको लगता है जल्दी से जल्दी इनसे मंगवा लें और फिर मैं अपने मर्जी का कस्टमाइज फर्नीचर बनवाऊंगा घर पे. लेकिन यहां पर होता है सबसे बड़ा स्कैम, क्योंकि इस तरह का स्कैम बहुत ही आसानी से लोगों के साथ किया जा सकता है. लेकिन इससे बचने के कुछ सॉल्यूशंस भी हैं. वेंडर को डबल चेक करना. अगर आपको कोई ट्रस्टेड वेंडर की तरफ से अचानक बैंक डिटेल्स बदलने या पेमेंट का नया तरीका मिले तो फौरन ईमेल पर रिप्लाई ना करें. उनके पुराने और वेरीफाइड फोन नंबर पर कॉल करके कंफर्म कर लें क्या ये ईमेल उन्हीं पे है, उन्हीं के पास है. उसके अलावा अर्जेंसी और लालच से बचें. जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर आप पर फौरन पेमेंट करने का दबाव डाले या मार्केट प्राइस से बहुत ही सस्ता माल ऑफर करे तो समझ जाइए ये कुछ गड़बड़ है. जेन्युइन बिजनेसेस कभी इस तरह अचानक प्रेशर नहीं डालते हैं. उसके अलावा वेबसाइट यूआरएल को लाजमी चेक करना. ये तरीका मैं आपको कई बार बता चुका हूँ. उसके अलावा सेफ पेमेंट का मेथड हमेशा इस्तेमाल करें. इससे अगर आपके साथ खुदा ना खास्ता गलत पेमेंट आपकी तरफ से हो जाती है तो भी आपके पास पैसे वापस आ जाते हैं. कभी भी किसी अनजान सप्लायर को भी एडवांस में क्रिप्टो करेंसी, वायर ट्रांसफर, डिजिटल वॉलेट से पेमेंट ना करें. इससे आप बचे रहेंगे. उसके अलावा स्टाफ की ट्रेनिंग कराएं. अगर आप डायरेक्ट पैसों में इत्तला नहीं होते हैं या फिर आपको इत्तला नहीं किया जाता है, कोई अकाउंटेंट है जिसको आपने रखा है वो पेमेंट करता है, तो अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दें. अपने प्रोक्योरमेंट और अकाउंट्स टीम को इस तरह के स्कैम्स के बारे में सिखाएं ताकि वो कोई भी बड़ी पेमेंट करने से पहले हर चीज पर अच्छी तरह नजर रखें और वेरीफाई करें. इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए और आपको आगाह करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट, आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

दोस्तों आज हम बात करेंगे अमेरिकन टेनिस के एक ऐसे लेजेंड की जो अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल्स, लेफ्ट हैंडेड सर्व, ब्रिलियंट वॉलीज और कोर्ट पर जज्बाती अंदाज की वजह से दुनिया भर में मशहूर हुआ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। अंदाजा लगा लिया होगा आपने, यहां मैं बात कर रहा हूं जॉन मैकेनरो। मॉडर्न जनरेशन के स्पोर्ट्स लवर्स शायद जॉन मैकेनरो को याद ना कर पाए, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं सोशल मीडिया पे जाइए, नाम सुनिए और थोड़ा सर्च करिए। जॉन मैकेनरो 16 फरवरी 1959 को बस जर्मनी में पैदा हुए, लेकिन वो अमेरिका के लिए टेनिस खेलते रहे। उन्होंने बहुत कम उम्र में टेनिस दुनिया में अपनी पहचान बना ली। 1977 में सिर्फ 18 साल की उम्र में विंबलडन के सेमीफाइनल तक पहुंचा और ये उनके करियर का एक अर्ली ब्रेक थ्रू माना जाता है। मैकेनरो का गेम ट्रेडिशनल पावर टेनिस से काफी मुख्तलिफ था। उनका सबसे बड़ा जो वेपन रहा है उनका लेफ्ट हैंडेड सर्व था, जबकि नेट पर उनकी टच और वॉलिंग एबिलिटी लाजवाब थी। कोर्ट पर वो बहुत तेजी से मूव करते और एंगल्स क्रिएट करने में माहिर थे। उनका स्टाइल देखने में सिंपल लगता था दोस्तों, लेकिन ओपोनेंट के लिए उनके शॉट्स को रीड करना बहुत मुश्किल होता था। दैट वाज जॉन मैकेनरो। बंडाना लगा के मैदान पे यानी टेनिस कोर्ट पर उतरना एक अजीब एक वो जो कैरेक्टर जो हमें टेनिस कोर्ट में हमें बहुत नजर नहीं आती इस तरह के कैरेक्टर्स, लेकिन जॉन मैकेनरो वो सच अ कैरेक्टर। 1978 में प्रोफेशनल बनने के बाद मैकेनरो ने बहुत तेजी से सक्सेस हासिल की। 3 मार्च 1980 को वो पहली बार वर्ल्ड नंबर 1 बने। ATP यानी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स के मुताबिक जॉन मैकेनरो ने अपने करियर में टोटल 170 हफ्ते वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन पर रहे। वो 1981 से 1984 तक लगातार 4 सीजन्स के ईयर एंड वर्ल्ड नंबर 1 भी रहे। ग्रैंड स्लैम लेवल पर भी जॉन मैकेनरो का रिकॉर्ड शानदार रहा। उन्होंने अपने करियर में 7 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल जीते। विंबलडन में उन्होंने 3 मरतबा 1981, 1983 और 1984 ट्रॉफी हासिल की। US ओपन में उनका रिकॉर्ड और भी इम्प्रेसिव था, जहां वो 1979, 1980, 1981 और 1984 में चैंपियन बने। दोस्तों मैकेनरो का 1984 सीजन टेनिस हिस्ट्री के सबसे रिमार्केबल सीजन में से एक है। उस साल उन्होंने 82 मैचेस जीते और सिर्फ 3 मैचेस हारे। एंड मैकेनरो को हराना बड़ा मुश्किल था। एंड ऑन द डे व्हेन ही वाज इन द टॉप फॉर्म उनका विनिंग परसेंटेज 96.5 था, और जो कि ATP टूर के ओपन एरा में एक सिंगल सीजन सिंगल्स रिकॉर्ड है। इसी सीजन में मैकेनरो ने 13 सिंगल्स टाइटल्स भी जीते। उनके ओवरऑल सिंगल्स स्टैटिस्टिक्स भी इंप्रेसिव हैं। मैकेनरो ने करियर में 77 टूर लेवल सिंगल्स टाइटल्स जीते और उनका ATP सिंगल्स रिकॉर्ड 883 जीत और 198 हार के करीब रहा। लेकिन मैकेनरो सिर्फ सिंगल्स के चैंपियन नहीं थे, डबल्स में भी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी खिलाड़ी थे। उन्होंने 78 डबल्स टाइटल्स जीते, जिसके साथ उनके कंबाइंड सिंगल्स और डबल टूर लेवल टाइटल्स की तादाद 155 बनती है दोस्तों। ATP के मुताबिक ये ओपन एरा का एक रिकॉर्ड है। अच्छा, मैकेनरो की पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा बता। उनकी पर्सनैलिटी भी उनके टेनिस करियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अंपायर्स के फैसलों पर उनका गुस्सा और कोर्ट पर उनकी फेमस आर्ग्यूमेंट्स ने उन्हें टेनिस के सबसे रिकॉग्निजेबल कैरेक्टर्स में शामिल कर दिया, बागी जिसको हम कहते हैं। तो ये थे जॉन मैकेनरो। लेकिन इन कॉन्ट्रोवर्सीज के बावजूद उनकी टेक्निकल एबिलिटी और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट पर कोई सवाल नहीं था। नोबडी कुड क्वेश्चन हिज टैलेंट, हिज एबिलिटी, हिज टेनिस एक्यूमेन, हिज ब्रिलियंस ऑन द टेनिस कोर्ट। उनकी राइवलरीज भी टेनिस हिस्ट्री का हिस्सा बन गई। जिमी कॉनर्स के खिलाफ मैकेनरो ने 20 ऑफ 34 मीटिंग्स जीती, जबकि बियॉन बॉक के खिलाफ दोनों खिलाड़ियों ने 14 मैचेस में 7-7 विक्ट्रीज हासिल की। इवान लेंडल के साथ भी उनकी राइवलरी टेनिस के गोल्डन एरा की सबसे इंपॉर्टेंट राइवलरीज में शुमार होती है। जॉन मैकेनरो का करियर हमें एक ऐसे टेनिस प्लेयर की कहानी सुनाता है जो सिर्फ ट्रॉफीज की वजह से नहीं, बल्कि अपनी यूनिक स्टाइल, क्रिएटिविटी, टेम्परमेंट और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट की वजह से भी याद रखा जाता है। 7 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल, 77 सिंगल्स टाइटल, 78 डबल्स टाइटल,
170 हफ्ते वर्ल्ड नंबर वन और 1984 का हिस्टोरिक 82 विन एंड 3 लॉसेस। ये नंबर्स जॉन मैकेनरो के एक्स्ट्रॉर्डिनरी करियर की कहानी खुद बयां करते हैं। जॉन मैकेनरो एक चैंपियन, एक आर्टिस्ट और टेनिस कोर्ट पर एक ऐसा कैरेक्टर जिसे फैंस आज भी नहीं भूले। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये सेगमेंट पसंद आया होगा। अगली बार एक और इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स कैरेक्टर के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे अनिमा मदमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: 107 इसीलिए लगाते हैं बिकॉज हर घंटे सबसे ज्यादा गाने हम बजाते हैं.
1: The radio station with more music. FM 107. FM 107. दिल से देसी.

0: kali kali. Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Assalamualaikum. आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट. मैं हूं आपकी आरज़ू महावश. इस पांच मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की. यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है. आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें. कतर की सकाफत में रिवायती किले और बुर्ज बहुत अहम मकाम रखते हैं. ये इमारतें सिर्फ पत्थर और दीवारों का मजमुआ नहीं बल्कि माजी की जिंदगी, हुनरमंदी और माशरे की यादों की निशानियां हैं. इन्हें देखकर अंदाजा होता है कि पुराने जमाने में लोग अपने घरों, पानी के जराए और बस्तियों की हिफाजत के लिए किस तरह मुनज्जम इंतजाम करते थे. कतर के किले मुख्तलिफ इलाकों में बनाए गए. कुछ किले साहली बस्तियों के करीब थे और कुछ सहराई इलाकों में.

पहचान भी होते थे। किले का सबसे नुमाया हिस्सा उसका बुर्ज होता था। बुर्ज ऊंची जगह होती थी जहां से दूर तक नजर रखी जा सकती थी। पुराने दौर में ये निगरानी के लिए इस्तेमाल होता था। आज के बुर्ज हमें पुरानी सोच और तामीराती महारत का दिलचस्प नमूना दिखाते हैं। किले की दीवारों को इस तरह तैयार किया जाता था कि वो मजबूत रहे। पत्थर, मट्टी और प्लस्तर जैसे मौसम के मुताबिक मौजू वसाइल इस्तेमाल किए जा सकते थे। सख्त गर्मी और हवा का सामना करने के लिए इमारत का नक्शा और बनावट सोच समझ कर रखी जाती थी। किले के अंदर जगह को भी खास तरतीब से बनाया जाता था। इसमें बैठने, सामान रखने, पानी महफूज करने या फिर रोजमर्रा जरूरियात के लिए मुख्तलिफ हिस्से हो सकते थे। अंदर का इंतजाम इस बात को जाहिर करता था कि पुराने लोग कम वसाइल में भी बेहतरीन तरतीब और सहूलत पैदा करना जानते थे। कतर के किले अक्सर मकामी पत्थर और रिवायती तामीरी तरीकों से बनाए जाते थे। हुनरमंद दीवार की मजबूती, दरवाजों की बनावट और सजावटी काम पर बहुत तवज्जो देते थे। इन इमारतों में सादगी के साथ साफ सोच और महारत नजर आती थी। किला सिर्फ हिफाजत की जगह नहीं होता था बल्कि किसी इलाके की मरकजी पहचान भी बन सकता था। इसके आसपास लोग अपनी रोजमर्रा के काम अंजाम देते थे, बाजार लगते या खानदानी जिंदगी के मामला चलते थे। इसी तरह किला जिंदगी और वर्से दोनों से जुड़ा हुआ था। आज के दौर में कतर के पुराने किलों की हिफाजत और देखभाल पर तवज्जो दी जाती है और इन्हें इसी तरह महफूज रखा जाता है ताकि नई नस्ल अपने मुल्क के तामीराती वर्से को देख और समझ सके। तामीर की शक्ल, दीवार की बनावट और जगह का इंतखाब हमें पुराने वक्त की जिंदगी के बारे में मालूमात देते हैं। म्यूजियम और सकाफती मकामात में किलों से मुतालिक नुमाइशें भी देखी जा सकती हैं। यहाँ पुराने औजार, तस्वीर, सकाफती अशिया और तामीराती मालूमात पेश की जाती हैं। ये कोशिशें लोगों को विरसे के मुख्तलिफ पहलुओं से जोड़े रखती हैं। किले बच्चों के लिए भी सीखने का दिलचस्प जरिया है। जब वो किसी किले को देखते हैं तो उनके जहन में सवालात पैदा होते हैं। ये कब बना होगा, इसे किस तरह तैयार किया गया होगा और यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी कैसी होती होगी। ऐसे सवालात उनकी मालूमात और दिलचस्पी को बढ़ाते हैं। रिवायती किले हमें पुरानी जिंदगी की सादगी और मुनज्जम सोच का एहसास दिलाते हैं। आज हमारे पास जदीद सहूलियात हैं लेकिन पुराने हुनरमंदों की मेहनत और उनकी तामीराती समझ अब भी काबिले कदर है। उन्होंने मकामी माहौल को समझकर ऐसी इमारतें बनाई जो वक्त के सफर में अपनी पहचान कायम रख सकें। किले सिर्फ गुजरे हुए जमाने की निशानियां नहीं बल्कि हमारे लिए जिम्मेदारी भी है। उनकी हिफाजत करना, उन्हें साफ रखना और उनकी तारीखी अहमियत को समझना वर्से की कदर है। जब हम किसी सकाफती इमारत का एहतराम करते हैं तो हम उन लोगों की मेहनत और हुनर को भी इज्जत देते हैं जिन्होंने उसे बनाया। आज का कल्चर मोमेंट इसी पैगाम के साथ मुकम्मल करते हैं कि कतर के किले सिर्फ पुरानी इमारतें नहीं बल्कि हमारे वर्से के जिंदा सफात हैं। उन्हें देखना, माजी को समझना, हुनरमंदी की कदर करना और अपनी सकाफत को मुस्तकबिल तक पहुँचाना है। तो लिस्टनर्स, आज के कल्चर मोमेंट को यही मुकम्मल करते हैं। याद रखिए, सकाफत सिर्फ गुजरे हुए वक्त का नाम नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। मैं हूँ आपकी आरजे महाविश। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए और कतर की खूबसूरत सकाफत को हमेशा इज्जत और मोहब्बत के साथ याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: स्पोर्ट्स राउंड अप विद आवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों स्पोर्ट्स राउंड अप में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं मैं एफएम 107 की जानिब ये स्पेशल प्रोग्राम स्पोर्ट्स देखिए जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं स्पोर्ट्स इज अ पार्ट एंड वे ऑफ लाइफ है और स्पोर्ट्स चारों तरफ है आप लोग देखते ही होंगे देख रहे होंगे और जैसे कि आपको मालूम चल रहा होगा कि एशियन गेम्स जारी है तो आप लोगों ने एशियन गेम्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आप बता सकते हैं मुझे जुड़ सकते हैं इस प्रोग्राम में 666-22-107 पर आपके जो ख्यालात हैं स्पोर्ट्स को लेकर वो बता सकते हैं स्पोर्ट्स कितना अहमियत रखता होगा आप लोगों की ज़िंदगी में ये भी आप बता सकते हैं इस पर शेयर योर ओपिनियन शेयर योर फीलिंग्स एंड स्पोर्ट्स को लेकर आप लोग क्या देखते हैं ये भी आप शेयर कर सकते हैं ऑन 666-22-107 पर आज मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा सवाल बहुत ज़्यादा पूछ लिए मैंने और आप लोगों के लिए जो मैं पिछले दफा भी कहा था इतवार को इट्स अ गोल्ड शो में कि आप लोग स्पोर्ट्स को लेकर क्या सोचते हैं स्पोर्ट्स कहां तक आपकी जिंदगी में इतने इंपॉर्टेंट है या नहीं है ये आप बता सकते हैं अच्छा स्पोर्ट्स राउंडअप शो है यहां पे क्रिकेट फुटबॉल टेनिस ओलंपिक्स जो भी कुछ हो रहा है स्पोर्ट्स की दुनिया में सब कुछ यहीं पर मिलता है आप लोगों को आपको पता है स्पोर्ट्स राउंडअप शो एंड हर खेल का हर पहलू सिर्फ आपके लिए स्पेशली क्यूरेट किया जाता है फॉर FM 107 listeners जिन्होंने भी ट्यून इन किया है थोड़ा लेट थोड़ा आगे थोड़ा पीछे तो बताते चलूं कि स्पोर्ट्स राउंड अप शो हो जा रही है आप लोग मुझे बताइए कि स्पोर्ट्स को लेकर आप लोग क्या समझते हैं क्या सोचते हैं फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है क्या खेलते हैं आप लोग वीकेंड में क्या करते हैं स्पोर्ट्स को लेकर क्या कॉमेंट्री सुनते हैं या टीवी के सामने बैठे रहते हैं स्कोर्स देखते हैं क्रिकेट है ओलंपिक्स है एशियन गेम्स है और कतर स्पोर्ट्स में काफ़ी कुछ हो रहा है इन दिनों तो अभी थोड़ा सा हम लोग एशियन गेम्स की तरह मुड़ जाते हैं जापान चलते हैं जापान के आईची नागोआ शहर में यहाँ पर एशियन गेम्स अभी जारी है एंड कतर ने बहुत खूब परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है दोस्तों मतलब तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए लेकिन क्या करें हम लोग यहाँ बैठ के बस टीवी पर देख सकते हैं सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं कतर की जितने भी परफॉर्मेंसेस हैं और धमाकेदार परफॉर्मेंस आई वुड से दैट क्योंकि विद कन्विक्शन कतरी एथलीट्स हैव शोन ओवर द डेज इन द लास्ट वन वीक कतर स्पोर्ट्स इज ऑन द राइज एंड कतर हैज रियली डन वेल और मजमू तौर पर अगर थोड़ा मेडल्स पे आप लोगों को बता दूं कि कतर ने अभी टोटल 7 मेडल्स अपने जेब में डाल चुके हैं एंड 7 तो मेडल्स में से अगर बात करूं गोल्ड मेडल की तो 3 गोल्ड मेडल्स और 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स टोटल 7 मेडल्स इन द कतरी कंटिंजेंट के पास है और अभी गोल्ड मेडल्स की उम्मीद है हैंडबॉल टीम हैज़ क्वालिफाइड फॉर द फाइनल ऑफ द मेंस इवेंट और वहां पर कतर इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है फाइनल तक पहुंची है दोस्तों तो यहां पर एक मेडल की उम्मीद है वहीं बीच वॉलीबॉल में भी उम्मीद मैं रख सकता हूं और हम लोग ये दुआएं हैं कि बीच वॉलीबॉल में भी कतर विंस अ गोल्ड मेडल फिलहाल जो गोल्ड मेडल कल कतर को मिला है मैं आपको बता दूं कि बासिम मोहम्मद 400 मीटर हर्डल्स में ही हैज वन अ गोल्ड मेडल एंड दैट इज समथिंग रियली गोइंग टू किक अप द स्टॉर्म आई मीन कतरी एथलेटिक्स की जो जो परफॉर्मेंसेस हैं ओवर द इयर्स इन एशियन कॉम्पिटिशन्स और खलीज में जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहाँ पे कतरी एथलीट्स आर रियली डूइंग वेल लेकिन दो चीज़ें दो ऐसे वाकया जो हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग भी थोड़ा सा सरप्राइज रहेंगे और मैं भी थोड़ा सा बड़ा है ना आई वुड से कि थोड़ा सैड रहा कि दोनों मारूफ एथलीट्स कतरी मारूफ एथलीट्स दोनों अपने इवेंट्स में फाइनल में पहुँचने के बाद दे हैड टू विदड्रॉ चोट की वजह से जी हाँ दोस्तों बात हो रही है मुताज बारशम की जिन्होंने फाइनल तक पहुंचे एंड

एंड यू नो हाई जंप फाइनल तक पहुंचने के बाद ही हैड टू पुल आउट, यानी अपने आप को अपना नाम उन्होंने वापस ले लिया बिकॉज ऑफ द इंजरी. मुताज बाशिम को कई सालों से इस इंजरी का एक यू नो ज़बरदस्त झटका मिलते आ रहा है. एंड ये एथलीटिक्स आई मीन एथलेटिक्स इवेंट्स या एथलीट या फिजिकली जो स्पोर्ट्स हैं जो वहाँ पे फिजिकल स्पोर्ट्स हैं इसमें खिलाड़ियों को चोट तो इट्स हो ही जाता है. तो इसी के साथ कतर के पास जो एक मौका था एक गोल्ड मेडल का वो कतर ने जो है गंवा दिया है. एनीवे मैन बेटर लक नेक्स्ट टाइम. और वहीं अगर बात करूं कि 200 मीटर स्प्रिंट में वहाँ पर अब्दुलरहमान सांबा इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट. एशियन चैम्पियन रह चुके हैं एंड उनका भी ये मेडल होना था एंड उन्होंने फाइनल में भी क्वालिफाई कर लिया था लेकिन चोट की वजह से ही हैड टू पुल आउट. सो कतर के पास दो गोल्ड मेडल्स हम लोग जो सोच रहे थे, मैंने पिछले हफ्ते ही बताया था कतर के पास ये दोनों गोल्ड मेडल्स एकदम सटीक यू नो इट वॉज देयर बट समहाउ क्या करें इंजरी इज समथिंग अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है यू नो खिलाड़ियों के साथ स्पेशली जो फिजिकल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं. तो वहीं अगर बात करूँ कि यू नो अगर यू नो एथलेटिक्स की फर्दर अगर बात करूँ स्टिपल चेस 3000 मीटर रेस में कतर के बड़े ही यू नो वन ऑफ द स्टिपल चेस देखिए बहुत डिफिकल्ट है 3000 मीटर स्टिपल चेस आप फॉलो करिएगा कि स्टीपल चेस क्या होता क्या है. थोड़े बहुत पानी है थोड़ा सैंड है वहाँ पे आपको दौड़ना है और इसी में आपको टॉप ऑफ द एथलीट के साथ कम्पीट करना है. जी हाँ दोस्तों यहीं स्टीपल चेस में कतर को एक ब्रॉन्ज मिल गया है एंड ये ब्रॉन्ज लाया है कौन ज़करिया अलहमी ने. ज़करिया अलहमी ने 3000 मीटर स्टीपल चेस में कतर को ब्रॉन्ज दिलाया एंड दैट इज़ अ फन फील्ड एंड आई वुड से कि मेडल फील्ड डे रहा है कतर के लिए. एंड कतर के पास मजमू तौर पर जैसे मैंने शुरू में बताया कि 7 मेडल्स और इस 7 मेडल्स में से 3 गोल्ड है 2 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज मेडल है. दोस्तों आप लोग स्पोर्ट्स को लेके क्या समझ रहे हैं थोड़ा सा टाइप करिए एंड बताइए स्पोर्ट्स कहाँ तक आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खेलते क्या हैं, क्या कर रहे हैं और आप लोग वीकेंड में क्या करने जाएंगे. हालांकि 2 दिन ही रह गए हैं इस वीकेंड के लिए एंड यहाँ पर आप लोगों के लिए स्पोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है. मैं बार बार इसको दावे के साथ कह सकता हूँ कि स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है एंड स्पोर्ट्स इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट आप अपने को फिजिकल एट्रीब्यूट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है. तो स्पोर्ट्स जहाँ एशियन गेम जारी है कतर की परफॉर्मेंसेज हैं इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश दे आर ऑल इन द एशियन गेम्स. आप लोग क्या कर रहे हैं थोड़ा मुझे बताइए. 666-2107 पर जो FM 107 का व्हाट्सअप नंबर है. मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन. आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स राउंड अप प्रोग्राम एंड से टच अमीन. इसके बाद ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे आप लोगों से सवाल दोबारा पूछूंगा. कीप लिसनिंग टू FM 107 दिल से देसी.

0: Sports Roundup. Sports Roundup with our sports journalist Mohammad Amin. Sirf FM 107 par. Dil se desi.
1: वेलकम बैक स्पोर्ट्स राउंडअप शो में आप सभी का इस्तकबाल है दोस्तों. जैसे कि मैंने बताया कि एशियन गेम्स जारी है जापान के आईची और नगोवा में है कि अभी अभी एक अपडेट देखिए कतर के हवाले से. डिफेंडिंग चैंपियन शरीफ यूनुस और अहमद तिजान ने वन स्टेप क्लोजर यानी एशियन गेम्स के थर्ड कंसेक्यूटिव बीच वॉलीबॉल गोल्ड के लिए एकदम पूरी तरह तैयार हैं एंड दे हैव क्वालिफाइड फॉर द क्वार्टर फाइनल्स. इसके बारे में मैंने आप लोगों से जिक्र भी किया था कि बीच वॉलीबॉल में कतर इज सुपर चैम्प एंड यहाँ पर एक उम्मीद है कि कतर को गोल्ड मेडल जीतना. बिकॉज यूसुफ ये यूनुस और जो तिजान हैं ये दोनों बहुत ही टॉप लेवल के बीच वॉलीबॉल प्लेयर्स हैं और इन्होंने ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल हासिल किया था. आप लोगों को याद होगा 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में. सो दे वेर वंस नंबर वन पेयर और बीच वॉलीबॉल एक बहुत ही सख्त खेल है जहां पे ना सिर्फ वॉलीबॉल तो ऐसे कोर्ट में खेली जाती है इंडोर में, यह तो आउटडोर है और यहां पे देखिए आपको रेत के ऊपर भागना पड़ता है एंड दैट इटसेल्फ इज सो डिफिकल्ट. रेत के ऊपर भागना दौड़ना ये आप लोगों को पता है कि कितना मुश्किल होता है. सो यहां पर शरीफ यूनुस और अहमद तिजान ये दोनों ने कतर के लिए एक मेडल ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं कि कंफर्म कर लिया है कि हो सकता है कतर को एक मेडल यहां पे मिल जाए. सो दे हैव क्वालिफाइड फॉर द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द एशियन गेम्स 2026 और इन्होंने कतर ने आज स्ट्रेट सेट में वियतनाम को हरा दिया 21-9 और 21-16 पॉइंट्स सेट विंस हैं और इनके लिए तो तालियों की गड़गड़ाहट तो बिल्कुल होनी चाहिए. और अब क्वार्टर फाइनल में कतर का सामना होगा ईरान से और ईरान के दो खिलाड़ी हैं अब्बास पुरस्कार और अलीरेजा आगाजानी और ये खिलाड़ी जो हैं ईरानियन के खिलाड़ी इन्होंने आज जापान को 2-1 से हराने के बाद दे ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द एशियन गेम्स बीच वॉलीबॉल. जब बता दूं कि यूनुस और तिजान जो है अनबीटन रहे इन देयर रन अप टू द एशियन गेम्स डोमिनेंस और दो बार चैंपियंस रह चुके हैं एंड अभी फिलहाल ग्रुप ए में टॉप हैं एंड यहां पर गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं. मैं बता दूं कब 2018 के एशियन गेम्स में और हैंगजू जो पिछले बार के जो एशियन गेम्स हुआ था इन चाइना में और वहाँ पर दो मरतबा. तो उनका टारगेट यह है कि तीन मुसलसल अगर गोल्ड मिल जाए तो बीच वॉलीबॉल विल बिकम डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट इन कतरी स्पोर्टिंग फ्रटर्निटी में. तो दोस्तों दिस इज समथिंग रियली रियली यूनिक फॉर अहमद तिजान और यूनुस. सो उम्मीद है कि यहाँ पर कतर को गोल्ड ही मिलेगा, उम्मीद है इंशाल्लाह और हम उम्मीद कर सकते हैं. रेस्ट देखने है कि क्या होने जा रहा है. अच्छा दोस्तों जिनको हॉकी पसंद है, हॉकी के जो फैंस हैं, मैं आप लोगों को बता दूं इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक मुकाबला होने जा रहा है एशियन गेम्स. जी हाँ दोस्तों एशियन गेम्स में इंडिया एंड पाकिस्तान वी आर अप अगेंस्ट ईच अदर और ये काफ़ी टक्कर वाली मैच होने जा रही है. सो इस मैच में इंडिया और सामना होगा पाकिस्तान का. देखो दोनों अलग अलग मुख्तलिफ ग्रुप्स में थे एंड पाकिस्तान इस बार काफ़ी कुछ दे आर शोइंग दैट दे हैव दैट पावर एंड स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना टू

who win the Asian Games medal. और इंडिया वहीं अनबीटन रहे हैं अपने ग्रुप में एंड ग्रुप ए में एंड दे हैव क्वालिफाइड एंड इस मैच को आप लोग देखना मत भूलिएगा. 1 अक्टूबर को ये मैच होने जा रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान. हमेशा से हॉकी इन दोनों ममालिक में नंबर वन स्पोर्ट रहा है. आज क्रिकेट का बोलबाला है लेकिन हॉकी के दीवाने जो हैं वो हॉकी या वो उस लिहाज से देखा जाए कि हॉकी की पॉपुलैरिटी जो है वो काफ़ी नीचे तक हमें देखने को मिल रहा है कि अब वो लेवल नहीं है. लेकिन हॉकी एक अलग इमोशन है, अलग यू नो जज्बात है जिसके बलबूते पर इंडिया और पाकिस्तान काफ़ी इंजॉय करते हैं हॉकी को. मैं बांग्लादेश भी हॉकी पे यू नो दे आर प्लेइंग हॉकी. बांग्लादेश, जापान, ये लोग सब हॉकी खेल रहे हैं. सो उम्मीद है कि इंडिया पाकिस्तान वाला मैच जो है काफ़ी कुछ यू नो हमें एक्साइटमेंट का जो कड़ी है, जो एक्साइटमेंट की हर एक लेवल है वो हमें देखने को मिलेगा इस मैच से. अच्छा, वहीं अगर बात करूं क्रिकेट की, जहां दोस्तों एशियन गेम्स में क्रिकेट भी है, जैसे आप लोगों को पता तो चल रहा हूँ मैं कि एशियन गेम्स इंडिया एंड पाकिस्तान ये दोनों टीमें हैं. और पिछले दिनों अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान के अगेंस्ट में मैच जो था वो वॉश आउट हो गया था. वहीं पाकिस्तान का मैच जो अगेंस्ट हांगकांग के साथ वो वॉश आउट हो गया था. तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये मैच श्रीलंका और नेपाल का मैच भी यू नो वॉश आउट हो गया था. सो ये तमाम चीज़ें हैं कि बारिश है, काफ़ी बारिश तेज़ बारिश हो रही है अभी इन दिनों इन जापान में, आइची नागोवा में. और यहाँ पर डायरेक्ट इन लोगों को सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर दिया गया है विदाउट अ बॉल हैज़ बीन बोल्ड बिकॉज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो है और श्रीलंका, ये टॉप टीम्स हैं, टॉप टीमें हैं आईसीसी के लेवल के मुताबिक. तो इनको आगे तक पहुँचा दिया गया है एंड फाइनली इंडिया विल फेस श्रीलंका इन द एशियन गेम्स 2026 के मेंस क्रिकेट सेमीफाइनल में. वहीं पाकिस्तान का सामना होगा बांग्लादेश से. दोस्तों ये दोनों मैचेस जो हैं फर्स्ट को ही है, दोनों सेमीफाइनल्स हैं एंड उम्मीद कर सकता हूं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल हो जाए. और लेकिन कह कुछ नहीं सकते हैं क्योंकि श्रीलंका इज़ ऑल्सो अ डोमिनेंट क्रिकेटिंग नेशन है. और वहीं बांग्लादेश अगेंस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश ने पिछले कई सीजन्स में बांग्लादेश ने प्रूव किया है कि दे हैव बीटन पाकिस्तान. सो बांग्लादेश को अब हल्के में मत लीजिएगा. तो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश क्रिकेट सेमीफाइनल एशियन गेम्स में और इंडिया वर्सेस श्रीलंका सेकेंड सेमीफाइनल एशियन गेम्स में. ठीक है दोस्तों, ये कोई सीरीज का मैच नहीं है, ये आई एम टॉकिंग अबाउट द एशियन गेम्स. और आज पूरी तरह मैंने एशियन गेम्स पे ही बातचीत हमने की है. सो ये दोनों मैचेस आप लोग देखना मत भूलिएगा. दीज आर द इम्पॉर्टेंट मैचेस जो कमिंग अप ऑन द 1st of October. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर क्रिकेट गेम्स. जी हाँ दोस्तों, अब सीरीज की बात करते हैं. एंड इस सीरीज़ में क्या हुआ है कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का परसों जो है मैच शुरू हुआ था, सीरीज़ का आगाज़ हुआ था. एंड इस मैच में 300 रन का चेज करते हुए इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया एंड 8 विकेट से. दैट्स अ कन्विंसिंग विक्ट्री. और इस विक्ट्री के पीछे किन का सबसे ज़्यादा अहम रोल रहा है दोस्तों? विराट किंग कोहली का. विराट कोहली ने एक दफ़ा नहीं बल्कि बार बार मुसलसल दिखाते जा रहा है कि जो मैच फिनिशर्स होते हैं क्रिकेट में वो उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए. तो विराट कोहली ने प्रूव किया, दिखाया कि मैच फिनिशर्स ऐसे होते हैं. एंड इमेजिन उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ एक पारी खेली और उस रिकॉर्ड तोड़ पारी में ही हैज़ ब्रोकन कपल ऑफ रिकॉर्ड. सचिन तेंदुलकर का एक रिकॉर्ड जो 15,000 रन्स बनाने का जो रिकॉर्ड है वो सबसे ज़्यादा इनिंग्स में सचिन ने स्कोर किया था एंड उसको विराट कोहली ने सबसे कम इनिंग्स में खेलकर वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है. अगेन जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं उनमें से अगर किसी बैट्समैन की बात करूं तो विराट कोहली हैज़ क्रिएटेड अ रिकॉर्ड एज द फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 15,000 रन्स इन ODI. आज भी विराट कोहली उसी फॉर्म से खेल रहे हैं जैसे आज से 15 साल पहले वो खेलते थे. ये आई मीन यहाँ पर यह है कि मैच्योरिटी, कॉन्फिडेंस, वो जज्बा, वो क्रिकेट और वो मोहब्बत जो है आज भी विराट कोहली के इस बल्ले से हमें देखने को मिलता है. एंड 9 sixes एंड दैट्स अमेजिंग. आई मीन का फॉर्म देखिए, 50 स्कोर किया एक सिक्स लगाकर, 100 स्कोर किया एक सिक्स लगाकर. सो दिस डिस्क्राइब्स विराट कोहलीज़ परफॉर्मेंस. आज भी वो कहते हैं कि अगला वर्ल्ड कप जो है खेलने के बाद 2027 में वो रिटायर
हो जाएंगे. फाइनली एक उनसे हिंट मिल गया है कि फाइनली ही इज गोइंग टू प्ले हिज लास्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2017.

27 में जो कि साउथ अफ्रीका नामीबिया और जिम्बाब्वे में होने जा रहा है ओडीआई वर्ल्ड कप. तो दैट्स ऑल आई मीन आई वुड कुड से कि बेस्ट ऑफ लक टू विराट कोहली, बेस्ट ऑफ लक टू द इंडियन टीम. अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि इंडिया का नेक्स्ट गेम कब है, इंडिया प्लेइंग वेस्ट इंडीज, कब इंडिया का है मैच होने जा रहा है. इंडिया का नेक्स्ट मैच है कल 11:30 और ये मैच जो है गुवाहाटी में, आसाम जो स्टेट है उस गुवाहाटी शहर में होने जा रहा है बरसापारा स्टेडियम में. और वहीं पाकिस्तान में भी एक सीरीज, आई मीन देयर इज़ अ स्टार्टिंग अ सीरीज विद श्रीलंका और इंग्लैंड, दोनों टीमें पाकिस्तान पहुंचेंगे. और पाकिस्तान की इस जो मेन, जो अबिल से कि जो मेन टीम है वो अभी पाकिस्तान में तैयारियां कर रहे हैं कि दे वुड कम अप अगेंस्ट श्रीलंका इन द फोर्थ कमिंग ओडीआई सीरीज. और ये वाइट बॉल सीरीज है, यहाँ पे टेस्ट मैचेस नहीं है. और तो यहाँ पे सीरीज में पाकिस्तान विल कम अक्रॉस अगेंस्ट श्रीलंका एंड इंग्लैंड. और इंग्लैंड की बात करूँ, इंग्लैंड बड़ा ज़बरदस्त, दे आर अ वेरी ग्रेट टीम. सो इंग्लैंड अब देखना है कि पाकिस्तान में जाकर इंग्लैंड की टीम की परफॉर्मेंस क्या है, क्योंकि हाल ही में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया था इन टेस्ट सीरीज में. नाउ लेट्स सी, लेट्स होप. 9 अक्टूबर को फर्स्ट जो मैच है T20 का वो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का है. 11 अक्टूबर पाकिस्तान श्रीलंका का सेकंड गेम है और 13 अक्टूबर को पाकिस्तान श्रीलंका का आखिरी गेम जो है वो होने जा रहा है. ये ऑल गेम्स हैं, ये मैचेस हो रहे हैं इसलिए कि अगले साल जो है ओडीआई वर्ल्ड कप है और इस ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले तैयारियां लाजमी हैं दोस्तों. तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोग स्पोर्ट्स को लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और आप लोग स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं. मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग जब कतर में रहते हैं, हम लोग काम काम काम, इसमें हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं कि हम लोग फिटनेस पर ध्यान ही नहीं देते. हाँ, जिम वगैरह लोग चले जाते हैं, बट अगेन आई बिलीव कि जिम हर एक के लिए नहीं है दोस्तों. जिम जाने से पहले ज़रूर एंड ज़रूर डॉक्टर से एक टेस्ट ज़रूर करवा लीजिएगा, बिकॉज जिम इज़ नॉट फॉर एवरीवन. ठीक है ना. वॉकिंग इज़ मैंडेटरी है. अगेन वॉकिंग कितना, कितनी दूरी तक आपको जाना है, क्या आपका टारगेट है, क्या आपने गोल सेट किया है, 10,000 स्टेप्स या 15,000 स्टेप्स, तो इसमें भी आप लोग ध्यान रखिएगा. एंड व्हेन यू वॉक, आप लोग जब चलेंगे या वॉकिंग का जो आप लोगों का टाइम है, मैं आपको बता दूं, एक थोड़ा सा एक मशवरा है, हाथ में एक बॉटल, पानी का बॉटल ज़रूर रखिएगा, बिकॉज वी आई मीन द वेदर इज़ स्टिल नॉट दैट इतना कम्फर्टेबल नहीं है, स्पेशली दिन के टाइम में और शाम में ज़्यादातर लोग निकलते हैं वॉकिंग के लिए. फिर भी मैं आप लोगों से ये एक सलाह देना चाहूँगा कि कीप अ बॉटल ऑफ वाटर ऑलवेज विथ यू. और अगर आपको कहीं पर भी ये महसूस हो कि आपको वॉकिंग नहीं करनी चाहिए, फौरन बैठ जाइएगा. अगर चक्कर आ रहा हो तब भी बैठ जाइएगा, बिकॉज एज अ सैड दैट ऑलवेज गो फॉर अ मेडिकल टेस्ट. मेडिकल टेस्ट लाजमी है. मेडिकल टेस्ट से पहले आप लोग कुछ मत करिए, ना जिम ज्वाइन करिए, ना वेट उठाइए, ना स्विमिंग में जाइए, कुछ भी मत करिए, बिकॉज दिस इज सो सो सो डेंजरस. ठीक है ना, क्योंकि बॉडी के पैरामीटर्स, हेल्थ पैरामीटर्स, हर एक के पास हर एक पैरामीटर्स होते हैं और वहाँ पर वी डोंट नो हमारे बॉडी के अंदर में क्या केमिकल रिएक्शन चल रहा हो, हमें पता नहीं है. तो इसीलिए डॉक्टर से एक छोटा सा मेडिकल टेस्ट करवा लीजिए, जनरल टेस्ट जिसको कहते हैं, एग्जामिनेशन करवा लीजिए आपके हार्ट, बीपी एंड ऑल दिस थिंग्स. सो स्पोर्ट्स इज इंपॉर्टेंट. स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करिए, फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए, एंड जो यंगस्टर्स हैं उनको हमेशा इनक्रेज कीजिए. वालेकुम अस्सलाम, मुमताज का मैसेज है, बहुत अच्छा लग रहा है मुमताज, आपने बड़ा ही अच्छा मैसेज दिया है. एंड मेरा फेवरेट क्रिकेट है, गेम है क्रिकेट, और 2022 फीफा से फुटबॉल का दीवाना हूँ, बहुत अच्छी बात है. ये जो जापान में एशियन गेम्स हो रहा है, पूरा बारिश ने मजा जो है ख़राब कर दिया. जी हाँ, वो मौसम वैसा ही है. जापान वन ऑफ द ट्रॉपिकल नेशंस हैं जहाँ पे बारिश होती है, और आज 3 दिन से कोई मैच नहीं हुआ. मेरा नेपाल ऐसे ही बाहर हो गया. हाँ, अफसोस. मैं तो सोच रहा था नेपाल वर्सेस इंडिया फाइनल खेलेगी, लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन हाँ मुमताज़, ये काफ़ी अफसोस की बात है. और मैंने एक कहीं पर लिखा भी था कि क्या एशियन गेम्स में क्रिकेट होना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से टीमों को बाहर कर देना मुझे अच्छा नहीं लगा. एंड अफगानिस्तान, नेपाल, ये जितने भी टीमें हैं, अफगानिस्तान नेपाल अच्छी टीमें हैं. एंड अगर इस तरह जो टूर्नामेंट रूल्स ही अजीब हैं कि जो टॉप सीडेड टीम्स हैं उनको अब आगे कर रहे हैं और जो जो जिन्होंने खेला भी नहीं है उनको आपने बाहर कर दिया है. तो मुमताज़, उम्मीद है कि अगली बार, अगली दफ़ा आई बिलीव कि एशियन गेम्स में क्रिकेट के जो टूर्नामेंट शेड्यूल्स हैं उसको

थोड़ा सा चेंज किया जाएगा. देर विल बी एन एक्स्ट्रा डे फॉर द मैचेस. एंड इसी उम्मीद के साथ मैं नेपाल के लिए, तो हमारे लिए हमेशा हमेशा यू नो बहुत ही यू नो आई वुड से कि गुड मैसेजेस होते हैं कि नेपाल क्रिकेट टीम इज़ रियली रियली गुड. अच्छा, इसी के साथ यहाँ पे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन एक बात है, एक बताऊँगा कि वीकेंड में काफ़ी मैचेस हैं, आप लोग इस मैचेस को इन्जॉय कीजिएगा. जैसे कतर के मैचेस हैं, इंडिया पाकिस्तान के मैच, हॉकी मैच है, क्रिकेट मैचेस हैं, और साथ साथ 3 अक्टूबर को इंडिया इज़ प्लेइंग ब्राज़ील इन कलकत्ता, इन कोलकाता, इन अ फ्रेंडली गेम. तो दोस्तों, इसी के साथ मैं लेता हूँ इजाज़त, अगली बार दोबारा मुलाकात होती है आप लोगों के साथ ऑन दिस प्रोग्राम. टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड कीप लिसनिंग टू FM 107, दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
1: FM 107 Time Check
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh स्टूडियो की घड़ी में 1:31

0: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी देसी।
1: राइट दोस्तों, सलाम आदाब, अ वेरी गुड आफ्टरनून। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। सरवर और नाजिया हम दोनों आ चुके हैं, पूरा एक घंटा आपके साथ रहने वाले हैं। आज है ट्यूसडे का दिन और आज है 29th of September, और मुझे लग रहा है कि आने के साथ ही सरवर हम जो हैं वो स्टार्ट कर देते हैं हमारा टॉपिक, एटलीस्ट बताना शुरू करते हैं, जिससे कि लोग जो है थोड़ा सा सोचेंगे, उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा और फिर वो हमारे साथ जब कनेक्ट होंगे तो कहाँ होंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं 666-22-107 पर, या फिर आप हमें अगर कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 443-443-77। अब बता दें आज क्या है खास बात।
2: वाह वाह नादिया, वाह वाह, क्या शायरी करी आपने आज प्रोग्राम की शुरुआत से ही
1: बिना इरशाद कहे।
2: और इरशाद भाई आ जाएंगे थोड़ी देर में, जुड़ भी जाएंगे हमारे साथ, कह भी रहे थे कि मैं आऊंगा, और अभी दो चार लोग और भी शायरी लेकर जरूर आएंगे जो अपनी शायरी लिखते हैं हमारे लिए खासम खास। बहरहाल जैसे कि नादिया ने कहा भाई कि मंगल है और वो दिन
1: सितंबर है,
2: बीचों बीच का वो दिन हफ्ते का,
1: हाँ
2: जब हम पूरे तरीके से ना कहना चाहिए
1: इधर के हैं
2: ना उधर के होते
1: हैं, अब एनर्जी आर के
2: तो फिलहाल है ही हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे कि वीकेंड करीब आ रहा है तो कल से जो है थोड़ी सी वाइब्स जो हैं वीकेंड के हवाले से वो शुरू हो जाती हैं। और बुध का दिन कल, ना दे आप किस दिन पैदा हुई थी वैसे, कुछ याद है आपको?
1: जुमा।
2: अरे ऐसा मत कहिए,
1: यही सच्चाई है।
2: अरे नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता, जुम्मे के दिन कैसे पैदा हो सकती हैं आप? जुम्मे के दिन तो आप जाने की ख्वाहिश करिए, ताकि ये है कि जो भी सोना दाना है वो अल्लाह ताला खैर को आफियत का मामला करे।
1: आमीन इंशाल्लाह।
2: वैसे नाजिया क्या खा के आई थी आज सुबह सुबह?
1: आज मैंने सुबह सुबह एप्पल खाया, आज मैंने सुबह सुबह जो था वो मैंने इडली खाई।
2: अरे वो आपने एक चीज और भी तो खाई, दिमाग खाया आपने मेरा, वो नहीं बताएंगे किसी को? अच्छा खासा दिमाग मेरा यहाँ तक आते आते खत्म हो गया
1: है। कब आपके पास है ही
2: मतलब? चलिए जितना बचा कुछ था खर्च खर्च के खाया आपने, चमचे से निकाल निकाल के
1: उतनी मैं दिल अंदर नहीं
2: नादिया। वैसे आप खाइए, इतना आप खाना आप बनाती हैं है ना पूरे घर के लिए, और देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा
1: आज आपने बोल दिया, वरना तो आपका कहना था मैं तो बनाती ही नहीं हूँ खाना, मेरा तो ऐसे
2: मेरी बात पूरी कहाँ हुई अभी? अच्छा, बात तो पूरी हो रही थी। अच्छा, आपको पता चलेगा, हकीकत सामने आ जाएगी। मतलब इतना खाना जो आप बनवाती हैं उसमें वाव गायब था, डब्लू गायब हो गया था बीच में, तो लेट मी करेक्ट माय सेल्फ। आप जो इतना खाना बनवाती हैं और उसके बाद वो जो टेबल पे आ जाता है और फिर उसमें सब खाते हैं थोड़ा थोड़ा घर में, और जो बच जाता है खाना उसके बाद आप उसका क्या करती है, मैं ये जानना चाहता हूँ
1: आपको। मैं कितने पार्सल्स भेजती हूँ
2: अब उसके अलावा?
1: आप आगे भेजते
2: नहीं, फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि लेफ्ट ओवर फूड के साथ आप क्या करती हैं, क्योंकि आज यही हमारा मकसद भी है। हाँ। और वजह ये कि आज खासम खास दिन है, इंटरनेशनली ऑब्जर्व किया जा रहा है। क्या
1: आज है? इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट,
2: विच इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: और वाकई इस दिन का जो मकसद है, पूरी दुनिया में फूड लॉस और वेस्ट के जो बहुत बड़ा मसला है उस हवाले से लोगों को अवेयर करना है, लोगों को मोटिवेट करना है। और मैं आपको यहाँ ये बता दूँ कि यूनाइटेड नेशन ने इस डे को ऑब्जर्व करा, और उनका ये मकसद है कि फूड लॉस दुनिया में एक बहुत बड़ा मसला बन रहा है, फूड वेस्टेज जो है बहुत बड़ा मसला है, जिसके खिलाफ कलेक्टिव एक्शंस को प्रमोट किया जाना बहुत बहुत ज़रूरी है। खाना जो हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट या प्रोसेसिंग के दौरान ज़ाया होता है उसे हम कहते हैं फूड लॉस, ये भी बहुत बड़ी क्वान्टिटी में है। देन ऑफकोर्स फूड वेस्ट, जो खाना शॉप्स में पहुँचता है, रेस्टोरेंट्स में पहुँचता है, हाउस होल्ड में जो है हमारे घरों में पहुँचता है, उसके बाद जो ज़ाया हो जाता है यानी जो खाने लायक नहीं रहता, जिसे हम प्रॉपर स्टोर नहीं करते, जिसे हम सही तरीके से कंज्यूम नहीं कर पाते, और वो फूड वेस्ट हो जाता है। और इसके चलते पूरी दुनिया में जो बहुत बड़ा थ्रेट सामने आ रहा है वो है फूड को लेकर। आने वाले टाइम में हो सकता है फूड की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा बड़ी शिद्दत से महसूस हो, तो अब हमें, वैसे तो हमेशा ही हम और सबको इस चीज़ को समझना है कि खाने की अहमियत, उसे वेस्ट ना करें, उसे ख़राब ना करें, उसको जितना मैक्सिमम रीयूज़ कर सकते हैं या जैसे भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, स्टोर प्रॉपर करना चाहिए, और कोशिश ये कीजिए कि इतना ज़्यादा खाना ना बने कि वो वेस्ट हो, इतना ज़्यादा आप शॉप ना करें कि वो आपके इस्तेमाल में ही नहीं आए। बहुत सारे लोग जो हैं वो बना के वेस्ट करते हैं खाने को, कुछ लोग जो हैं वो रॉ फूड ही वेस्ट कर देते हैं, मतलब एक्सपायर हो जाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता, नई चीज़ें निकाल रहे हैं, नए दाल्स हैं उनके पैकेट्स आप निकाल रहे हैं क्योंकि वो सामने रख के खटाखट निकाला पकाया।

0: कुछ है वो डंप होती चली गई होती चली गई, फिर एक दिन आपकी नजर पड़ी, आपने देखा वो ये तो एक्सपायर हो गई, फिर आपने यूं ही उस उठा के कचरे में डाल दिया। अब देखिए कितना
1: फूड। तो देखिए इसके अलग अलग तरीके भी हैं, और जो लोग कल का बचा हुआ खाना जो है उसको इस्तेमाल करना जानते हैं या जो खाना बच गया उसको इस्तेमाल करना जानते हैं, उनकी भी तारीफ है,
0: उनकी भी तारीफ। और सबसे बड़ी बात जो हम शायद कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि दुनिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जिन्हें एक वक्त का खाना भी सही से मैसर नहीं होता। सो फॉर दैट हम जो है वो इस फूड को जाया नहीं कर सकते, ये हमें अपने जहन में रखना है। तो आज इसी टॉपिक को हम फर्दर एक्सप्लोर करने वाले हैं, आपसे कि आप बचे हुए खाने का इस्तेमाल क्या करते हैं, क्या लेफ्ट ओवर फूड को क्रिएटिव तरीके से दूसरी तरह के तरीके से रीयूज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं नसीम भाई? इनका तो सारा फूड वेस्ट हो जाता, खा ही नहीं पाते।
0: क्यों?
1: इतने आराम आराम से पहुंचते हैं खाने तक के घर वाले लिपटा देते हैं सारा का सारा, कह रहे अब कुछ नहीं बचा, सॉरी शाम में आइएगा।
0: क्या वाकई
1: नसीम भाई?
2: जी सर, फरमाइए।
1: कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत वगैरह ठीक है? कैसा गुजरा अभी तक का दिन आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आगे भी अच्छा गुजरवाए। तो नसीम भाई आज बात हो रही है जिस हवाले से, क्या कहना चाहेंगे उसमें, खाना वगैरह वेस्ट करने से बचते हैं, बचाते हैं और किस तरीके से उसको रीयूज कर लेते हैं, कुछ ऐसी ट्रिक बताइए हमें बची हुई चीजों के साथ, बचे हुए चावल के साथ, बची हुई रोटी के साथ, बची हुई चाय के साथ। चाय बची हुई तो नादी पी जाती है खैर।
0: सरल भाई के घर कभी मत पीजिएगा चाय, ये बची बची एक कप में कर लेते हैं।
2: वैसे तो रात के बचे हुए चावल सुबह में मैं बहुत कम ही इस्तेमाल करता हूँ, मौका ही नहीं मिलता।
1: जाहिर बात है वो कबूतरों पे इस्तेमाल करने चाहिए, अपने ऊपर इस्तेमाल भी नहीं करनी चाहिए, साइंस भी हमें ये कहती है। ये तो अच्छा कर रहे हैं आप।
2: कभी कभी कभी मौका मिल जाए तो फिर उसको हम फ्राई करते हैं, अच्छा से भून के फिर खाते हैं।
1: भून के खा जाते हैं चने मटर की तरह,
0: मतलब फ्राई, फ्राइड राइस बना लिया,
2: फ्राई करके ओ अंडा वंडा डाल करके अच्छा
0: एक नई डिश बना लेते हैं।
1: यही तो ढूंढ रहा हूँ मैं, ये मैं वही चाह रहा हूँ।
0: इनके खाने पे भी आपकी नजर है?
1: नहीं नजर नहीं है, एक्चुअली नाजिया को मैं कुछ ऐसे टिप्स देना चाहता हूँ क्योंकि हफ्ते में एक बार खाना बना पाती कहीं ना कहीं, पूरे हफ्ते का स्टोर करती हैं, तो वो तरीके तरीके से क्या चावल बना लिए उनका क्या और 10 चीजें बना लूं।
2: अगर चावल बच जाता है, अच्छा चावल है तो सुबह में उसमें अंडा उंडा डाल के उसको फ्राई कीजिए, देखिए कितना मस्त खाना।
0: फ्राई अगर आपका बॉइल्ड राइस बच गया है, स्टीम राइस बच गया है, तो सुबह उसका फ्राइड राइस बना लीजिए अलोंग विद द एग्स एंड वेजीज। वाओ, एक क्रिएटिव डिश।
1: चलिए नहीं, सबसे अच्छी बात ये है कि खाना वेस्ट नहीं कर रहा।
0: अच्छा,
1: मेरा
0: आप वेस्ट करते हैं खाना, आपका फेंकता है, जाया होता है, या फिर आप इतना ही बनाते हैं जितना आप कंज्यूम कर लें?
2: हमारा तो मेस में बनता है, हम लोग 4-5 आदमी एक जगह बनाते हैं।
0: अच्छा, मेस
2: तो बर्बाद हो ही जाता है।
1: बर्बाद हो ही जाता है।
0: बर्बाद हो रहा है, ये तो अफसोस की बात है। आप में से किसी ने सोचा नहीं कि इनिशिएट करें हम इस फूड वेस्टेज को जो है कंट्रोल करें?
2: एहतियात करते हैं, फिर भी कभी कभी बच जाता है।
1: तो उस बचे हुए खाने को फेंकने के बजाय हम अगर किसी को खिला दें, किसी से मेरा मतलब इंसान से नहीं है,
0: सर्वर भाई को खिला दीजिए,
1: मतलब हाँ ठीक है वो तो बात समझ में आती है।
2: सर्वर साहब कोई बात नहीं, आप पता भेज दीजिए, मैं रोज पार्सल कर दिया करेंगे।
1: अरे नहीं मेरा भाई, कैसा मोहब्बत आपकी, ये तो बहुत अच्छी बात है,
0: ये तो सही हो रहा है आपके लिए। आज
1: काफी खाना जमा हो जाएगा। नहीं मेरे कहने का मतलब ये है नसीम भाई के उसको अगर हम चुड़ियों को, कबूतरों को या मजीद दूसरी चीजों को खिला सके तो भी तो अच्छा है।
0: तीसरी चीज भी तो है आपको खिला सकते,
1: उसके अलावा बात हो रही है।
0: चौथी चौथी भी आप ही
1: है नसीम भाई?
2: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप,
1: तो इसका ख्याल कीजिए इंशाल्लाह ताला। आने वाले टाइम में
0: वेस्ट ना हो,
1: मैं आपको बताऊं नसीम भाई के साथ साथ, मैं सभी को बताऊं, नादिया भी, मैं एक्चुअली क्या है, जो ब्रेड होती है, जो स्लाइस होती है, मैं उसके कॉर्नर्स जो है नहीं खा पाता हूँ यूजुअली, आई डोंट लाइक इट, बट उनको वेस्ट करना ये एक बहुत खतरनाक चीज है। तो मैं क्या करता हूँ कि वो 3-4 दिन के जब जमा हो, जी
0: ब्रेड क्रम्स आप बना लेते हैं।
2: आपका दांत इतना मजबूत है फिर भी।
0: अरे वो नहीं है, वो ये नकली से चला रहे
1: हैं, ये तो दिखाने के हैं भाई, खाने के तो कुछ और होते हैं ना, ये तो आपने पता ही है आपको।
0: आपको पता ही है हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, कैसे भूल गया?
1: चलिए
2: हड्डी चबा जाते हैं, वो तो
1: हड्डी चबा जाते हैं,
0: आप तो हड्डी हड्डी चकना चूर करके खा जाते हैं।

0: नहीं मैं वैसे भी चकनाचूर कर सकता हूँ अगर आप
1: दूसरे तरीके से
0: भी, तो सुन लो भाई मेरी बात, तो दोनों
1: अच्छा,
0: में मिलके मैं कह रहा हूँ कि वो जो जैसे
1: क्रम्स बना लेते हैं,
0: ब्रेड क्रम्स भी बन जाते हैं, और मैं उनको पूरे हफ्ते का इकट्ठा करके फिर उनको धूप लगा के सुखा के उसका अच्छा सा चूरा बना के मैं फीड कर देता हूँ जहाँ पे भी कबूतर वगैरह या परिंदे वगैरह।
1: अरे तो आप उनको डायरेक्ट भी तो डाल सकते थे।
0: डायरेक्ट इसलिए नहीं डालते थे, वो दो चार होते हैं तो फिर उनमें लड़ाई होना शुरू हो जाती है और रोज जाते हैं मैं फिर फेंकना टाइम भी नहीं मिलता, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि वीकेंड आने तक वो जमा हो जाए इतना और सूखने के बाद इस्तेमाल। तो इस तरीके से काफी लोग भी और भी कुछ करते होंगे, कहते हैं ना
1: बस चलिए अच्छी बात है,
0: कंडे अपनाते होंगे।
1: तो आज आपको वही शेयर करना है,
0: आज आपके लिए यही नसीहत कि भाई नसीम भाई खाना वेस्ट मत करें और कोशिश ये करी जाए कि कम बनाएं ताकि अगर हम कम खा लें तो परेशानी ना हो, ज्यादा खा के भी बच रहा है तो ये परेशानी वाली बात,
1: ज्यादा खाना भी प्रॉब्लम है।
0: ज्यादा खाना प्रॉब्लम है, अब मैं तो खा जाता हूँ जैसा कि बचने नहीं देता, मेरे साथ हो यही रहा है, गेम यही हो रहा है घर के अंदर कि यार ये फेंकेगा लेट्स ईट इट, यही तो हो रहा है लेट्स ईट इट, यार ये फेंकेगा अब ये मुझे ही खाना पड़ेगा।
1: वो लोग सोच रहे हैं कि उस डस्टबिन में डालें कि इसमें डालें, चलो इसी में डाल दें,
0: चलो कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगा, खाना है कहीं ना कहीं तो।
1: लेकिन अच्छी बात, अगर आप ये कर रहे हैं इस नियत से कर रहे हैं तो वाकई सल्यूट है, वाकई सल्यूट।
0: नसीम भाई तो आज कुछ है, कुछ आ रहा है, शेर आ रहा है?
2: नहीं, कल एक आदमी वो बोला था ना कि सब मजा खराब कर दिए।
0: क्या बोला था?
2: मैं एक सब मजा खराब कर दिया नसीम
1: ने मैसेज लिखा।
0: अच्छा यार हमें याद नहीं, खैर इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि नसीम भाई आ जाते हैं हमारे साथ प्रोग्राम कनेक्ट होते
2: हैं। अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर है।
0: अच्छा, इरशाद।
2: किसी के ऐब को तू बेनकाब ना कर।
0: नादिया ये आपके लिए आ रहा है शेर, बिल्कुल खासम खास। किसी के ऐब को तू बेनकाब ना कर,
2: खुदा हिसाब करेगा तू हिसाब ना कर।
0: नादिया,
1: और जो खुदा हिसाब करेगा तो होगा।
0: अच्छा आगे भी है।
2: और मुझको बुरी नजर से ना देख,
0: सुन लो नादिया
1: आपके लिए।
2: और मुझको बुरी नजर से ना देख, ऐ देखने वाले, मैं तो लाख बुरा सही तू अपनी नजर खराब ना कर।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत
1: क्या जवाब दिया है माशाल्लाह,
0: बहुत अच्छे भाई नसीम भाई, बहुत ही अच्छे।
1: और याद रखिए कि आप बहुत सारे लोगों को खुश भी कर रहे हैं, तो जो लोग आपकी कॉल से आपसे बात करके अच्छा लग रहा है,
0: कुछ भी नहीं कर सकते, ये भी याद रखिए, दोनों ही चीजें याद रखने वाली।
1: हर कोई आपसे खुश होगा भी नहीं,
0: हर कोई आपसे खुश भी नहीं होगा, और हर कोई आपसे,
1: और आपको जरूरत भी नहीं है सबको खुश करने की, एक दो लोग भी आपसे खुश हैं, आप खुश रहिए इस बात,
0: समझ गए?
1: ठीक है,
0: तो बस अब जब भी खाना बनेगा एक हिस्सा मेरा निकलेगा, मुझे खुश करके रखिए, इंशाल्लाह ताला खैर होगी।
1: जो बच जाए वो यू डोंट माइंड।
0: बचने से क्या मतलब है यार, वो बनाएंगे ही मेरे लिए, बचने से क्या मतलब है?
1: अरे मतलब उनका अपने में
0: हमारा हमारा ना हमारा हमसे मोहब्बत कोई कर रहा तो बच जाए, बच जाए। नहीं भाई, मोहब्बत में बनाएगा इंसान
1: फिर ज्यादा बन जाएगा, फिर कहाँ जाएगा,
2: जो भी बच जाए मैं लेते आऊंगा।
0: चलिए ठीक है, अल्लाह ताला आपको सेहत दे और खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू,
0: ओके अल्लाह हाफिज। और ये थे नसीम भाई,
1: कॉल
0: ले लें या गाना लगा देना दिया, कॉल ले ली,
1: व्हाट डू यू से,
0: ले ली कॉल, कनेक्ट हो रहे हैं,
1: हेलो,
0: नहीं हो पा रहे,
1: आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई,
0: कॉल ड्रॉप हो गई, तो अब हम बढ़ रहे हैं
1: और कॉलर हमारे साथ यहाँ, तीसरे कॉलर छोड़ रहे हैं,
0: कॉलर की जाने,
1: हेलो
3: हेलो, आफ्टरनून ऑल,
1: very good afternoon, कौन है हमारे साथ?
3: अजू विते।
1: ओहो अजू, इतने टाइम के बाद अजू आपसे बात हो रही है, कैसे हैं आप?
3: अल्हम्दुलिल्लाह very good,
1: nice, चलिए, और बहुत अच्छा लग रहा है कि मॉर्निंग में तो आपसे बात हो जाती थी हमारी, बट आफ्टरनून में आई थिंक पूरे ऑलमोस्ट एक मंथ के बाद आपसे,
0: कौन है हमारे साथ? अज्जू,
3: एक्चुअली अभी ड्यूटी में गाड़ी में, इसलिए रेडियो ऑन किया था।
1: अच्छा अच्छा, नाइस,
0: तो बहुत दिनों बाद रेडियो ऑन किया अज्जू भाई।
3: नहीं, मेरा ड्यूटी 1:00 खत्म होने वाला है,
1: खत्म हो जाती है इसीलिए फिर तो अपने घर चले
3: जाओ, मेरा ओवरटाइम चल रहा है अभी तो,
0: हाँ हाँ हाँ हाँ, तो इसमें तो हमारा भी हिस्सा निकल आया ओवरटाइम, अब आप हमारे साथ हैं।
1: लेकिन अच्छी बात ये है कि अज्जू बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़ा प्रैक्टिकल बोलते हैं, और एक अच्छे
3: टॉपिक में आएगा, तो अभी फूड वेस्टिंग करने का पहले अभी आपको प्लान करने का, बिफोर यू बाइंग ए फूड, एंड कुक द राइट अमाउंट ऑफ फूड. आपको कितना चाहिए वो आपको कैलकुलेशन होने का.
1: ट्रू ट्रू.
3: एंड देन अभी थोड़ा खाना बच गया उसको स्टोर करने के लिए आपको प्रॉपर तरीके होना चाहिए. अगर उसका डेट एंड एक्सपायरी डेट एंड हाउ टू स्टोर द फूड आपको थोड़ा नॉलेज होने का तो फ्रिज में वो खराब नहीं होता है.
1: सही.
3: एंड लाइक आपका घर में कोई पेट्स है तो आपका थोड़ा प्लेट में वेस्ट होगा ना वो फूड पेट्स को दे सकते हो स्पेशली डॉग्स एंड कैट.
1: नाइस.
3: अभी मेरा बेटी था वो समटाइम्स वो चिकन खाता ना वो खा के थोड़ा वेस्ट करता है. मैं बेटी को बोलता है उसको इतना प्लेट में वेस्ट करने का मेरे को अच्छा नहीं लगता है. आप जितना ले लो उसको खाने का अगर वेस्ट हो रहा है तो मैं बोलता आप बिल्ली और डॉग को देने के लिए नहीं बोलता हूँ. सो इट कैन बी द फूड वाज शेयर इन अवर पेट आल्सो. And the similar, you can always take more if you are still hungry. But आपको खाना आज खाना बहुत अच्छा लग रहा है. आप प्लेट पूरा भर के आधा खा के बस आपको भूख खत्म हो जाएगा. पहले आप थोड़ा लेके खाने का फिर और चाहे तो और लेने का क्योंकि खाना किधर भी नहीं जाएगा.
1: सरवर भाई आपके लिए थी थोड़ा थोड़ा ही लीजिए. किधर भी नहीं जाएगा. खाने के पैर भी नहीं है सर भाई कहीं नहीं जाएगा. ये ऐसे ही करते इतना भर लेते हैं उसके बाद पूछते हैं अरे भाई कुछ लोगे हमसे कुछ लोगे बहुत हो गया. अरे इतना क्यों डालते हैं आप प्लेट में.
0: बदनीयती इसको कहते हैं नदीदापन कहते हैं इसको. अगर आपको नहीं मालूम मैं बता दूं कूट कूट के खासियत भरी हुई है मेरे अंदर तो मैं क्या करूं कहीं तो लेके जाऊंगा इसको. अजू भाई बहुत ही अच्छी बात कही आपने. वंडरफुल. और मैं ये सोच रहा हूँ कि आप बहुत ही एहतियात से काम लेते हैं हर चीज़ में. और आपने अपनी बेटी का जिक्र किया अल्लाह ताला उसको खुश रखे. वो आपके साथ ही हैं आपके साथ होती हैं यहाँ कतर में.
3: हाँ कतर में मेरा साथ है.
0: क्या नाम है उनका.
3: आयरा.
0: आयरा आयरा को भी हमारी तरफ से पूछिएगा बहुत सारा प्यार एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग. और डेली अब ओवर टाइम आप हमारे साथ करेगा और हम भी उसके अंदर थोड़ा अपना हिस्सा लगाएगा. ओके
1: मैं समझी. आप कह रहे हो ओवर टाइम में जो पैसा मिलेगा उसमें हमारा हिस्सा होगा.
0: वही है इंशाल्लाह. अच्छा, इतनी खुल के कहने की जरूरत थी सबने सुन लिया. कंपनी वाला कोई सुन ले बॉस अज्जू भाई का तो मुश्किल हो जाएगी भाई. ओके अज्जू भाई एनीथिंग एल्स.
1: आने में इनका जो है वो
0: एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू शेयर अज्जू भाई.
1: फॉर टुडे आई थिंक आपकी तारीफ बहुत हो गई.
3: ये ओके बहुत सारा कॉलर्स वेट कर रहा मैं अवॉइड नहीं करने का.
0: लव यू अज्जू भाई. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. एलन वाज एलन.
1: एंड प्लीज कल भी कोशिश कीजिएगा अगर आप ज्वाइन करें.
0: डेली कोशिश कीजिए हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे अहेड. बाय बाय. अल्लाह हाफिज.
1: अल्लाह हाफिज. आर वी गोइंग
0: भाई थे हमारे साथ.
1: आर वी गोइंग फॉर नेक्स्ट कॉलर. व्हाट यू से. से यस यस यस यस. ओके लेट्स हैव वन मोर कॉलर. हेलो
4: जनाब सानू भी ब्रेड खवा रहे हो.
0: क्या बात है. ब्रेड तो खाने नहीं आए आप.
1: तोड़ना पड़ेगा
0: हमसे. मीठी मीठी बातें करने जरूर आए गावा भाई हमारे साथ. कैसे हैं गावा भाई.
4: मैं तो ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों भी कुशल मंगल हो गए.
0: बिल्कुल बिल्कुल. कैसा गुजरा शाहजी अभी तक का दिन आपका.
4: अभी तक का सर परफेक्ट. ओके रिपोर्ट.
0: क्या बात है. आगे भी अच्छा गुजरने वाला है. आज खास हम खास दिन है. खाना बचाओ बातचीत हम कर रहे हैं और खाना बचाओ खाना खाओ ये स्लोगन नादिया ने रखा है आज का.
1: खाना बचाओ खाना खाओ.
0: तो क्या कहते हैं
1: आज का मेरा स्लोगन है फीफो. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. फीफो. इट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट.
4: फीफो. ओके.
0: फर्स्ट इन यानी पहले पेट के अंदर.
1: फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी जो चीज पहले खरीदी उसका इस्तेमाल और जो चीज बाद में उसका बाद में इस्तेमाल.
4: सर्वर भाई आप पेट से आगे मत बात करना.
0: यार ये भी तो खाने की बात हो रही है यार.
4: हाँ वही मैं बात कर रहा हूँ.
0: यार ये भी तो खाने के लिए कह रही हूँ जो खरीदेंगे वो खाएंगे.
1: इनका पेट ज्यादा चलता है दिमाग है नहीं
0: भाई. खाना ये जो खाएंगे है नादिया आपकी बातों में कैलोरीज बिल्कुल नहीं होती मगर मेरा दिल बहुत और पेट भी भर जाता है आपकी बातों से. माशाल्लाह माशाल्लाह जी गावा भाई.
4: सर्वर भाई यार ये जो ब्रेड की लेयर आपने बताया है ना अभी ब्रेड की लेयर के बिना मेरे को ब्रेड अच्छा लगता है. आप जैसे लोगों को देख के अभी मार्केट में भी वो फैसिलिटी अवेलेबल कर दी है बेकरीज ने.
0: राइट राइट राइट. ओके बिना कॉर्नर्स की ब्रेड आने लगी है.
1: तो ये कॉर्नर्स ही ब्रेड लगते हैं ब्राउन वाला साइड उसका ब्रेड लगता है. वही वही.
0: जी गाबा भाई।
4: तो नाजिया जी मेरा मानना ये है, अगर हम अपना बचा हुआ फूड किसी को देते हैं प्लेट में बच गया, वो मेरे ख्याल से मैडम नहीं देना चाहिए।
1: हाँ वो तो खैर एक तरह से वेस्ट ही हो रहा है, लेकिन हाँ जैसे उन्होंने बोला कि पेट्स को दे सकते हैं, बर्ड्स को दे सकते हैं, तो वो आप डाल सकते हैं जानवरों को या पेट्स को।
4: मैडम आप हर चीज पेट्स को नहीं दे सकते ना।
0: नहीं और प्लेट में निकाली क्यों रहे हैं इतना, जब हमें पता है कि इतना नहीं खा सकते हम, अब बुफे में ना दिए चली जाती है।
4: मैं इसी बात पे आ रहा हूं।
0: हाँ मैं भी, मेरी भी तो सुन लो, चलते चलते ये बुफे सिस्टम में अगर चली गई और कहीं फ्री में चली गई शादी वादी में, तो ऐसा लगता है इनकी प्लेट ही बुफे बनी हुई है, इसी में से सबको लेना है पूरी पूरी महफिल को, तो अब ये तरीका अच्छा थोड़ी है।
1: ये अपना ये अपना शेयर करते रहते हैं,
0: अपना हर चीज अपनी हो गई, हमारे हम नहीं है भाई अपने।
1: सरवर भाई आपको देख के ही लोग समझ लेंगे कि बुफे प्लेट है कि पहला कार्ड।
0: जी गाओ भाई।
4: तो मैं बात करूं सरवर भाई, हमारे वहाँ पे तो आपको कल्चर है पता है ना पंजाब में, हम लोग तो बहुत सारे लोगों को खिलाते भी हैं, कोई नेचुरल डिजास्टर होता है तो हम लोग वहाँ पे भी पहुँचते हैं सर,
1: लंगर वगैरह बहुत होते हैं। सही कहा आपने
4: जी। ये तो हो गई एक साइड मैडम, अगर हम लोग दूसरी साइड देखें ना शादियों में, तो शादियों में मैडम इतना खाना बनता है ना, जिन लोगों के पास पैसा है वो लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं शादियों में। तो मैडम अगर कोई, मैंने बहुत सारी शादियों में ये मैं आई विटनेस हूँ इस चीज का, मैंने देखा है बाहर बेचारे सफाई वाले बच्चे खड़े रहते हैं, उनको कोई अंदर नहीं आने देता। क्यों? क्योंकि उनके कपड़े अच्छे नहीं होते, पैरों में जूती नहीं होती। हाँ वही अगर कोई थोड़ा सा हेल्दी बंदा आ जाए, वो पेशेंट भी है डायबिटीज का, उसको हम लोग खुद मैडम प्लेट में डाल के देते हैं, आप रसगुल्ला खाओ, गुलाब जामुन खाओ। अपनी तरफ से मैडम जो बंदा रजा हुआ आता है ना, हम लोग मैडम उसको रजाते हैं, ये चीज मेरे को अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी।
1: सही कहा आपने, वाकई कोई भी ऐसा नहीं है जो पसंद करे कि भाई बाहर कितने लोग हैं और खाना कितना वेस्ट चला जाता है। हम लोग जैसे आपने कहा ना प्लेट्स में भर लेते हैं, फिर खा भी नहीं पाते और वो फेंक देते हैं, ऐसे ही उठा उठा के शादियों में तो बहुत ही कॉमन है कि दूसरे ने किया खर्चा तो हमारे ऊपर तो पड़ नहीं रहा, तो धार से पूरी भरी भरी प्लेट्स फेंक दी, स्पेशली बच्चों की प्लेट्स में बहुत खाना और बच्चे खा नहीं रहे, पूरा फेंक दिया और आप गरीबों को या जरूरतमंद लोगों तक पहुँचा ही नहीं रहे जो कि बाहर खड़े हैं।
4: देखिए मैडम जहाँ पे चलो प्लेट सिस्टम है वहाँ पे तो चलो पॉसिबल नहीं है, वो चीज तो जस्टिफाई है, मगर मोस्टली मैडम घरों में भी तीन चार दिन प्रोग्राम चलता है ना, वहाँ पे भी तो हलवाई होते ही है ना।
1: हाँ जी।
4: वो तो इतना खुला सामान होता है ना, वो मैडम फिर बाद में गिरना ही पड़ता है, या तो वो पकौड़ों की हालत ऐसी हो जाती है ना, वो जानवरों को डालने पड़ते हैं।
1: बताइए ये थोड़ा सा अच्छे से प्लानिंग करके करना है कि खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा हो ही रहा है कि मतलब खाना आपका कंज्यूम नहीं हो रहा, तो उन्हें जरूरतमंद लोगों तक जरूर पहुंचाइए। आजकल तो फूड बैंक्स कितने कॉमन है, वहां पे आप आराम से जाके रख सकते हैं खाने, फूड बैंक्स में रख दीजिए, फ्रिजेस हैं, कम्युनिटी फ्रिज है, वहां तक पहुंचा दीजिए।
0: तो अच्छी है और गावा ने बड़ी अच्छी बात बताई, वैसे मतलब इस टॉपिक से हटके नाजिया बहुत अच्छी तरह रिलेट कर सकती है इस बात को, आपने बताया ना कि शादी ब्याह में जो बाहर बच्चे खड़े हुए होते हैं, बच्चे तो नहीं मगर नाजिया को कई बार चलता किया गया है वहां से भारी भार से, इनको ये बात रिलेट कर पाई होंगी कहीं ना कहीं, है ना। गाबा भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना वक्त निकालने के लिए भाई, बहुत शुक्रिया।
4: अच्छा, सरवर भाई एक बात और है,
0: दो
4: नाजिया जी आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कोई रिपोर्ट शेयर कर रहे थे ना स्टार्टिंग में फूड से रिलेटेड।
1: नहीं मैंने बताया था यूनाइटेड नेशन ने इस दिन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। जी जी जी।
4: जहाँ तक नाजिया जी मेरा मानना है ना, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है मैडम, फूड तो बहुत दूर की बात है, आने वाले टाइम में साफ पीने का पानी भी बहुत ज्यादा दिक्कत से मिलेगा।
1: सही है,
4: बहुत सारी कंट्रीज में,
1: बहुत सारी कंट्रीज में, और ये तो शुरू हो ही चुका, आप देख ही रहे हैं।
0: अल्लाह ताला खैर आफियत का मामला करे सभी के साथ,
1: परेशानियां तो शुरू हो ही रही
0: है, मन में रखे और वाकई हम सबको बहुत एहतियात करनी चाहिए।
4: नाजिया जी मैं यही सोचता हूँ, मेरी इतनी बड़ी औकात तो है नहीं, मैंने जितना सीखा है ना मैडम, हर बंदे को अपने पड़ोसी की या किसी फैमिली की या फ्रेंड की, एक आधे बंदे की जरूर जिम्मेदारी उठानी चाहिए अगर आप समर्थ हो तो।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बात, और खाने पीने में तो सभी का ख्याल रखें, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया गाबा भाई, थैंक यू सो मच,
1: जबरदस्त आप लाते हैं हमेशा ही बात, बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।
0: ओके बाय, तो भाई ये थे गाबा भाई हमारे साथ, और अब कुछ मैसेजेस ब्रेक पे जाने से पहले, और फिर हम कॉलों की जानिब बढ़ेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, सरवर ने नाजिया कैसे हैं आप? लियाकत साहब हैं यहाँ पर, हो मुझे कोई याद आ गया इस नाम से। ओके आरिफ अंसारी अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को, ये जो शायरी अभी अभी सुनाई गई है क्या हमें लिख के मिलेगा?
1: देखिए नसीम जी आप हिट हो गए,
0: आप कह रहे हैं ऐसी बात है। अस्सलाम वालेकुम सरोज भाई, नाजिया बाजी इंशाल्लाह खैरियत से होंगे, सरोज भाई आपकी तरफ से एक कलाम हो जाए। अच्छा मेरी
1: सलाम
0: तरफ से,
1: हो जाए आपकी तरफ।
0: मेरी तरफ से शेर सुनना चाहते हैं, जरूर वक्त मिला तो सुनाता हूँ। हम तो नसीम भाई के फैन हैं, कहते हैं ले नसीम।

0: सर जी कैसे हैं आप? सर नाजिया जी को कॉल उठाने की बहुत जल्दी होती है, इसी वजह से बाद में मैसेजेस रह जाते हैं। और सर जी टॉपिक के बारे में हम ये बात करेंगे कि हमसे खाना नहीं बचता, हम तो एक्स्ट्रा भी खा जाते हैं। क्या तो बात है मेरा भाई अरबाज खान, सलमान खान का छोटा भाई, जब भी उसकी हालत ऐसी हो गई है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, उसके हिस्से का छिन गया सब एक्चुअली। अस्सलाम वालेकुम सर भैया, नाजिया मैडम जी, हैप्पी डे कहते हैं, क्या बात है यार। आपको भी भाई मखसूस साहब बहुत ही हैप्पी वाला डे। मुबीन बुखारी के 33 मैसेज यहाँ पर, और कहते हैं क्या है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाजिया जी, सरवर जी आपको और तमाम लिसनर को गुड आफ्टरनून। बाकी तो उनकी जो बातें हमसे पर्सनल होती हैं वो हो ही रही हैं इसके अंदर। लियाकत नेम से आपको कौन याद आ रहा है? आपने सही लिखा है, अली मकसूद मकसूद बहुत अंदर तक पहुंच चुके हो। एफएम सर आप और नाजिया खा का है कहाँ के हैं कहना चाहते होंगे? एफएम 107 का ऑफिस कहाँ है? नाजिया दोनों बातों का जवाब दिए जल्दी।
1: बिलाल भाई तो प्लैनेट के ही लगते हैं, है सर भाई?
0: गोला गोला हम इसी गोला से हूँ क्या? और एफएम 107 का स्टेशन जो है कहाँ पर?
1: आप बताइए
0: भाई, ये
1: आपके ऊपर
0: बिलाल भाई, ये कदर मीडिया कॉरपोरेशन के अंडर में ही हैं हम लोग। अगर आप अल जजीरा का ऑफिस जानते हैं, बी इन का ऑफिस जानते हैं और मुख्तलिफ ऑफिस, ये सब इसी तरह
1: जैसे कदर मीडिया कॉरपोरेशन डालेंगे ना।
0: हाँ बिल्कुल,
1: पटाक से आपको
0: आप चेक भी कर सकते हैं, तो ऑब्वियस है, बट वो जानना चाह रहे होंगे किस क्षेत्र में हैं हम लोग। तो बिन उमरान कहलाता है। सही बात कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर भाई, नाजिया मैम कैसे हो दोनों? गुड आफ्टरनून। मैं तो खाना हिसाब से बनाता हूँ, अगर कोई दूसरा बनाता है उसको भी बोल के रखता हूँ भाई। nice. खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए, अगर घर पे रहते हो तो वाइफ को भी ये बात बोल के रखो।
1: बहुत अच्छा,
0: खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए, अगर हो जाता है तो पड़ोसी के पास बकरी है, मेरी माँ उसको दे देती हैं। कुछ लोग हाँ. यूं फेंक देते हैं
1: हाँ.
0: बचे हुए खाने को, शायद उन्हें अंदाजा नहीं भूखे तरसते हुए। हाँ मतलब यही कहना चाहते
1: हैं, बहुत अच्छी बात की। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो खाने में इतनी कमियां निकालते हैं,
0: भूखे तरसते हैं उसको पाने के लिए, उस खाने को
1: मुक्त करना बहुत अच्छी बात है। बेचारों को नहीं मिलता और आप यूं ही उठा के फेंक देते हैं, आप उनमें इतने ऐप निकाल देते हैं कि ऐसा बनाइए वैसा बनाइए, मैं नहीं खाऊंगा, ये मुझे पसंद नहीं, पर नहीं कितना कितना, और लोग बेचारे।
0: क्या बात है यार नाजिया, आप हर टॉपिक को इतना इंटरेस्टिंग बना देती हैं,
1: इमोशनल बना देती हूं।
0: नहीं मुझे ऐसा तो नहीं कि मैं ही खाली और फारिग बैठा हुआ हूं, ऐसा तो नहीं कहीं इसके अंदर, या आपका हर टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है कहीं ना कहीं से, क्या कहती है नाजिया जी?
1: सर मुझे लगता है कि जो कमी आपके अंदर है वो जाहिर होने लग गई है।
0: अच्छा कैसे? ये भी बता दिए
1: ऐसे ऐसे हुई जाहिर, कैसे पूछते ही जाहिर होगी
0: कम इतना हो रहा है। चलिए कुछ मैसेज तो और लेते हैं।
1: अच्छा,
0: क्योंकि आज बिना गाने के ही हमें
1: मेरे पास कॉल्स भी आ रही हैं,
0: ब्रेक पे जाना पड़ेगा,
1: आपने बोलना होगा तभी मैं
0: तो चलिए
1: ले लेते हैं
0: ब्रेक पे, हाँ, लेते दो मिनट तो बात कर ही सकते हैं।
1: हेलो
0: एंड हाय,
2: अस्सलाम
0: वालेकुम, सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हैं, कौन है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों खैरियत से हैं। आज के हमारे टॉपिक के हवाले से क्या कहना चाहेंगे?
2: टॉपिक बहुत ही अच्छा है,
1: थैंक यू जी।
2: बचपन में शाम का भात रह जाता था वो याद आ गया, आज सुबह उसको भून के देती थी तेल में थोड़ा अंडा उंडा मिला के, वो बीवी याद आ गई।
0: बीवी याद आ गई,
1: वो दिन याद आ गए,
0: वो दिन याद आ गए,
2: वो दिन याद आ गया सर भाई, बीबी याद आ गई,
1: वो दिन याद आ गए। तो मतलब ये कह रहे हैं लेफ्ट ओवर फूड को कितना क्रिएटिव तरीके से इनकी अम्मी जो है उसका इस्तेमाल कर लेती थी, रात का बचा खाना सुबह एक और डिश बन गई। नाइस, तो कौन सी डिश आपने बताई जो बन जाती थी और कौन से लेफ्ट ओवर फूड से? एक बार सॉरी वापस से बताएंगे।
2: हम लोग तो उसको भुना हुआ भात बोलते हैं अभी।
1: अच्छा भुना हुआ भात यानी चावल। ओके ओके, तो मतलब रात का जो चावल बचता है वो सुबह आप ब्रेकफास्ट में यूज कर लेते हैं उसको, कुछ और चीजें। अच्छा ये वही है जैसा नसीम जी ने बोला था कि हम
2: उसे नाइस,
1: बहुत ही अच्छी बात है कि आप फेंक नहीं रहे हैं उसको, यूज कर रहे हैं उसका, इस्तेमाल हो रहा है, वेरी नाइस। और कुछ लोग ना फैशन समझते हैं खाना यूं ही प्लेट में वेस्ट कर देना है, थोड़ा सा छोड़ना। मैं कहती हूँ थोड़ा भी आप क्यों छोड़ते हो भाई, क्यों छोड़ रहे हो?
2: नहीं नहीं, हम लोग
1: सुनने तरीका है पूरा खाइए।
2: सर्वर भाई हम लोग तो एक भी नहीं छोड़ते,
1: ये तो प्लेट भी नहीं छोड़ते।

0: भले तो मैं छोड़ देता हूँ। और एक बात जो आप लोगों ने कहा खाने की कमी, तो एक मैं कभी कभी हम लोग इंटरनेट पे वीडियो देखते रहते हैं, तो अफ्रीका कंटिनेंट से वीडियो आती है ना, इन लोग जो मिट्टी सुखा के खाते हैं,
1: सही बात है,
0: वो सब देखो तो इंसान की मतलब वो अलग ही डायमेंशन में चला जाता है की ऐसे तो हम लोग इतना वेस्ट कर रहे हैं। और
1: बताइए
0: कहीं कहीं पे खाने का एक चावल का दाना भी नहीं।
1: बिल्कुल, बहुत ही सही कहा। और इस तरह के वीडियोस देखते रहिए, जरूरी है कि हमें एक तरह का लेसन मिलता रहे।
0: खाने के लिए तो हम लोग इधर कमाने आए ना, घर छोड़ के माँ बाप को।
1: सही बात है, बिल्कुल,
0: फैमिली पूरे छोड़ के इधर आए
1: हम। अच्छा, ये भी लोग कहते हैं कि हम जो है ना इतनी मेहनत करते हैं तो हम तो सिर्फ फ्रेश और अच्छा ही खाएंगे। अरे तो इतना ज्यादा बनाते क्यों है कि वो वेस्ट हो रहा है, तो वो कहाँ जाएगा खाना? या तो प्रॉपर तरीके से डिस्पोज कीजिए।
0: मैं जिधर काम कर रहा हूँ कंपनी का नाम है सुपर खाना कंपनी कहते हैं, मेज का खाना है हम लोग का।
1: अच्छा अच्छा,
0: खाना मतलब खान पे जाता है तो मतलब मजबूरन बस, या कभी जब पैसे खत्म होने लगे लास्ट के महीने में तो खाने डेली 10 आदमी का खाना फेंकते हैं कंपनी से हमारे। 10 आदमी 15 आदमी का खाना फेंका जाता है, क्यों खाना अच्छा नहीं बनाते लोग।
2: यही मसला नाजिया के भी घर वाले करते हैं, क्या करें बेचारे, जब गले से निकला ही नहीं जाता, उतरा ही नहीं
1: फिर
2: जाता,
1: फिर भी निकली
2: जबरदस्ती करने।
1: अब आदमी जब भूखा होगा तो क्या क्या नहीं खा लेगा।
2: हाँ, नहीं, बात तो सही है, घर वालों को 3-3 दिन भूखा रहना पड़ता है इस चक्कर में कि ये वाला खाना खा लूं। अरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए और अच्छी अच्छी बातें सिखाने और करने के लिए, बहुत शुक्रिया अरे भाई, बहुत शुक्रिया,
1: अल्लाह हाफिज।
2: छोटा सा ब्रेक, यूं गए हम दोनों और यूं वापस आए। सुनते रहिए FM 107।

0: नहीं आ, कल तो बोर पूछा
1: ना भाई, वहीं पे मुलाकात होगी, टेंशन मत लो, आओ।
2: अच्छा इस चक्कर में मैं जो दो चार
0: शाम में ये सोते हैं, ख्वाब में मिलते हैं।
2: सुनिए तो
1: अरे सरवर भाई का सोने का प्रोग्राम नहीं है।
2: अरे इन चक्करों में
0: अरे मैं कह रही हूँ भाई आप सोते हैं, ख्वाब में मिलते हैं।
1: नहीं नहीं मैं नहीं सोता, मैं सुबह को सोता हूँ, 1:30 बजे उठता हूँ।
2: अच्छा इनकी हरकत तो ये हुआ कि मैं जो इधर उधर जा रहा था मैंने वो जाना बंद कर दिया, ऐसा ना हो दादी बाकी मुझसे मिलना, ये मसला हो गया भाई। चलिए जैसे भाई बहुत बहुत शुक्रिया,
1: और कॉलरों को भी टाइम मिला।
2: एलन वस एलन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत समझदारी दिखाई, थैंक यू सो मच। वही थे जसीम भाई हमारे साथ, हमारे प्यारे प्यारे और अच्छी अच्छी बातों वाले जसीम भाई। नाजिया कुछ मैसेजेस यहाँ पर, उसके बाद हम कॉलर की जाने बढ़ते हैं। कहाँ से शुरू करूँ, यहाँ से। गुड आफ्टरनून सर मैम, प्लीज प्ले फॉर माय प्रिंसेस, शी इज स्टिल नॉट वेल, ओ आई एम वेरी सॉरी यार। नाजिया वही अपनी क्या नाम था बच्ची का, मैं भूल गया, आयशा मेरे ख्याल में, इकराम साहब की जो बेटी है और उनका, हाँ मेरे ख्याल में एक हफ्ता हो गया।
0: Is it a viral or something else?
2: खैर अल्लाह ताला बेटी को शिफा कामिल, सेहत कामिल अता फरमाए, यही हम सब की दुआ है और इंशाल्लाह ताला खैर जरूर होगी।
0: इंशाल्लाह
2: बच्चों की तबीयत जल्दी अच्छी हो भी जाती है, क्योंकि जाहिर बात है उनको, उनके लिए कैसे इम्तिहान, अल्लाह ताला खैर करे सबके साथ। इकराम भाई इंशाल्लाह खैर ही खैर है,
0: और हमारी दुआएं आपके साथ है इंशाल्लाह।
2: बढ़ते हैं आगे। सर क्या हम आपके पास आ सकता है? सर आप कौन से सेंटर से है? और नाजिया, नाजिया बिलाल भाई को बता दो ना, बिलाल भाई
0: मतलब
2: कौन सी जगह से कहना चाहते हैं? हम लोग यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, इंडिया से हैं, और इंडिया में यूपी के अंदर एक जगह है अलीगढ़, वहां से हैं, और अलीगढ़ में एक मोहल्ला है सर सैयद नगर, वहां से हैं। और इससे आगे भी कुछ चाहिए तो मैं लिख के भेज दूंगा, और हम दोनों एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं। ये मेरा नसीब फूटा था जो मेरे साथ ऐसे पड़ोसी मिले, और वहां से यहाँ तक का सफर मेरा ऐसे पड़ोसी फूटा ही फूटा, फूटा ही फूटा। बिलाल भाई इससे ज्यादा क्या बताऊं,
0: अब कितना फूटेगा, फूट ही जाए पूरा।
2: तबस्सुम साहिबा है हमारे साथ और कहती है अस्सलाम वालेकुम नाजिया मैम, सरवर भाई बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। हमारे घर में बचे हुए चावल में थोड़ा सा नमक और हल्की सी मिर्च डालकर उसे छोटे छोटे बॉल्स धूप से सुखाते हैं, और फिर टोटली सूखने के बाद उसे फ्राई करके एज अ स्नैक खाते हैं।
0: Nice.
2: क्या बात है भाई तबस्सुम साहिबा,
0: तबस्सुम जी आपने बेखाल से अब तक की बेस्ट लेफ्ट ओवर डिश, यूनिक डिश बिल्कुल।
2: और मैं तो ये कहूंगा 3-4 सैंपल ट्राई कर दीजिए, इंशाल्लाह वापसी में आपके यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं, ताकि हम खा के भी देखें वो लग कैसे रहे हैं।
0: सरवर भाई आप बना के देखें,
2: नाजिया जो है कलेक्ट कर लेंगे,
0: खाने के लिए तो मैं खा लूंगी, आप बनाएं।
2: खादर अब्दुल हादी अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई, नाजिया जी सरवर भाई, हैड यू डन अ क्लिफ हैंगओवर चेंज? आई केम टू नो फ्रॉम सम sources that you are specialized in
0: what?
2: यार कौन है ये, मेरे नाम से कोई और टहल रहा है मार्केट पे क्या? मेरा कोई बेरुपिया आ गया,
0: मुझे भी बहुत
2: लोगों से मिल भी रहा
0: है,
2: बात तो पता
0: नहीं चल रही
2: है। यूसुफ भाई का मैसेज ना दिया आप प्लीज,
0: मैं ले लेती हूं।
2: हाँ, अदा
0: और एक कॉलर भी है उसके साथ यहाँ पर। सलाम कहते हैं हम दोनों को, गुड आफ्टरनून कहते हैं, कैसे हैं आप दोनों? होप वेल, वेलकम टू एनर्जी, दिल से देसी, हैप्पी वाली ट्यूसडे मॉर्निंग आपको भी। खाना वेस्ट करना सबसे बुरा काम है, अल्लाह के रिस्क की तौहीन। हम लोग, मैं और मेरी वाइफ, खाने का दाना भी वेस्ट नहीं करते, एक भी दाना वेस्ट नहीं करते। घर में खाना बनता है सही क्वांटिटी में, यानी घर के मेंबर्स प्लस एक्स्ट्रा शख्स अगर कोई है तो उसके हिसाब से, पर जो भी बचता है वो नेक्स्ट डे दस्तरखान पे लगता है, खाया जाता है, या फिर उसका थोड़ा सा दूसरा वर्जन निकाल के उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर चावल बच गया थोड़े मसाले डालकर फ्राई करके खाते हैं, फ्राइड राइस की तरह, जैसे किसी ने बताया भी, लेकिन वी स्ट्रिक्टली कोशिश करते हैं कि खाना वेस्ट ना हो, और एक्स्ट्रा खाना हम नहीं लेते, केयरफुल रहते हैं व्हेन इट कम्स टू वेस्टेज। बहुत ही खूबसूरत मैसेज मोहम्मद यूसुफ खान जी का, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। बाकी हमें बाकी स्ट्रिक्ट रहना चाहिए और बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए व्हेन कम्स टू फूड वेस्टेज। वी आर कनेक्टेड टू वन मोर कॉलर, राइट? हेलो,
3: हेलो, अस्सलाम
0: वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे पीछे से डांट रहे
2: हम ठीक हैं, आप लोग कैसे हैं?
3: जी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे हैं, बढ़िया, एकदम जबरदस्त।
0: ये बताइए पीछे से किसने आपको टोका?
2: वो असल में गुद्दी पे जो है ना सलामी होती रही। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, हमने गुद्दी की भी आवाज सुनी और हमने अब मैं क्या कहूँ शुभ भाई, आप मेरा ख्याल में शुभ भाई बात भी जो है बहुत एहतियात से करवाई जाती है शुभ भाई से, ये है मामला।
0: माशाल्लाह
2: माशाल्लाह।

0: कैसे हैं शुभ भाई? और खाना तो बच ही नहीं रहा होगा घर में, मुझे पता है। मैं तो जानू
1: क्यों,
0: मेरे
1: आप
0: तो
1: जाते हैं
0: काम ही यही है, मैं जानू
1: आप इनके घर जाते हैं?
0: नहीं नहीं भाई, बना रहा है तो इतना ही बना रहा है कि खुद भी ना खाए।
1: अच्छा।
0: हाँ, क्योंकि खुद बनाना पड़ रहा है ना। कैसे शुभ भाई, ऐसे ही है?
2: बिल्कुल ऐसे ही है भाई साहब।
0: भाई खुद बनाना पड़ता है।
2: नहीं नहीं बोलिए बोलिए,
0: नहीं मैं कह रहा हूँ खुद बनाना पड़ता है तो आदमी उसी हिसाब से बनाता है ना, कि बस बेगम को खुश कर दिया जाए, वो उनका पेट भर दिया जाए,
1: बाकी बातों से पेट भर रहे हैं।
0: अब कम बना रहे हैं
1: मिसाल
2: के चक्कर में। नहीं, कल बेगम ने बनाया था, वो अभी तक रखा हुआ है।
1: ये आपकी बेगम की स्ट्रेटेजी तो नहीं है कि बनाओ ऐसा अगला खा ही ना पाए?
0: ये नादिया क्योंकि माशाल्लाह करती आ रही है सालों से, मैं आपको बता दूं ये गेम नादिया के घर में भी हो रहा है। अच्छा,
1: अच्छा
0: मतलब क्या नहीं होता वो स्टाइल,
1: मतलब
0: खाना नहीं
1: होता,
2: स्पाइसेस बहुत ज्यादा होते हैं, हर चीज में कोकोनट डालते हैं।
0: अच्छा,
2: वो चीज, हाँ तो वो चीज समझ में नहीं आती।
1: नॉर्थ इंडियन पसंद है। आप दिल्ली से हैं? कहाँ से हैं?
2: जी मैं दिल्ली से।
1: दिल्ली से है, ओके, इसीलिए इनको तो आप लोग मतलब बीच का रास्ता भी तो निकाल सकते हैं थोड़े लेस स्पाइसेस।
2: हाँ, बीच का रास्ता ये है, जैसे की अभी संडे नाइट को, संडे को मैं फिशिंग के लिए गया था, तो अच्छी खासी फिश आई है, वो फ्रिज में ऐसी रखी है। मैंने उनको कई बार बोला कि जब तुम फिश अच्छी बनाती हो तो बना लो, बोलते नहीं यार अभी मूड नहीं है। अभी तो उनके मूड का इंतजार कर रहा
1: हूँ। उनके मूड की बात नहीं कही उन्होंने, कहा फिश का मूड नहीं है फ्राई होने का।
0: वाह नादिया, क्या शेर सुनाया आपने। चीजों का तो इंतजार करता हूँ मैं, पूरा मैं इंतजार किसका करता हूँ, इन्हीं चीजों करता हूँ। फिश जो है,
2: पेड़ रुक सिर ही गिरता है,
1: याद रखिए पेड़ आपके सामने ही गिरेगा,
2: जहाँ तो उसका रुख होगा वो वही गिरेगा।
1: बस मेरा रुख ही उधर की तरफ है।
0: तो मतलब मीटिंग के साथ खाना वाना भी रखवाइएगा, कुछ अच्छा इंतजाम करवाइएगा ना। आरजे नादिया आ रही है भाई, छोटी बात थोड़ी है, साथ में मैं ड्राइवर जो हूँ ड्रॉप करने आऊंगा।
1: ये मोटी बात है,
0: तो मैं जरा सा
1: चौड़ी बात हूँ।
0: पहले मैं असल में मैडम जहाँ भी जाती है मैं खाना चेक करता हूँ, पहले खुद खाता हूँ फिर
1: खाने लायक है कि नहीं।
0: अच्छा, चेक करने के बाद जब ये खाती हूँ तो मैं उसमें भी साथ में खाता हूँ, ये भी एक चीज है।
1: तो चेक कर तो सही खा रही है, कुछ और तो नहीं,
0: वही तो नहीं खा रही, बदल तो नहीं दिया, कोई मिलावट नहीं। चलिए साहब, शेफ भाई अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और ये तो हम ऐसे कमेंट करते रहते हैं,
1: ज्यादा से ज्यादा खाना चेकिंग में ही चला जाता है,
0: चेकिंग में ही निकल जाता
1: निकल जाता है।
0: ये गेम हो रहा है, देखिए
2: मैं भी ऐसे ही हूँ, ज्यादातर जब खाना बनाता हूँ ना सर्वे साहब, तो मैं चेक करता रहता हूँ और पेट उसी में भर जाता है जरा, फिर बाद में खाना आने की गुंजाइश ही नहीं रहती।
0: नहीं, इसको चेक करना नहीं कहते, इसको समझौता कहते हैं, जब घर में ऐसा मामला हो भाई, इसको कहते हैं समझौता।
1: लेकिन देखिए, एक दिन आपके टेस्ट का बनता है तो एक दिन उनके टेस्ट का भी बनना चाहिए, है ना, ऐसे मिलजुल के।
2: मेरे जो टेस्ट का बनता है ना मैडम को बहुत पसंद आता है, हद से ज्यादा, लेकिन जो उनके टेस्ट का बनता है जो बनाती है ना,
1: हाँ हाँ,
2: बस उनकी दो तीन चीजें ऐसी है जो बहुत अच्छी आला दर्जे की बनाती है।
1: अच्छा।
2: कुछ डिशेस हैं जैसे कि पाव भाजी,
0: पहली तो मुझे पता ही है खैर क्या बना रही हैं वो।
2: हो सकता है भाई।
1: अरे शुभ, मुझे लगता है आप मुझसे मीटिंग मतलब इनकी करवा दीजिए एक मीटिंग।
0: शुभ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे भाई।
1: थैंक यू जी,
0: इंशाल्लाह ताला खैर होगी, मैं समझ सकता हूँ खैर होगी मेरे भाई के साथ इंशाल्लाह ताला। ऑलराइट देन, थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू सो मच। वाकई बड़े सच्चे इंसान,
0: बहुत सच्चा आदमी भाई, बहुत सच्चा आदमी। यहाँ पर कुछ मैसेजेस,
1: इस मार्केट में क्या कर रहे हैं इतनी सच्चाई के साथ।
0: एमबीबी कुछ दुआ कर रहे हैं और आखिर में कह रहे हैं आमीन, जो भी दुआ है अल्लाह ताला अगर जायज दुआ है तो कबूल फरमाए, क्योंकि दुआ मुझे दिख नहीं रही। आखिर में आमीन लिखा भाई ने, तीन चार स्टिकर भेज किया, पता नहीं स्टिकरों में क्या है ऐसा। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये कॉल हमें इस नंबर पे आ रही है, नादिया बता दी किस नंबर पे कॉल करनी है।
1: हाँ जी, अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं हमारा नंबर है 443443।
0: फिलहाल भाई ने बड़ा अच्छा सा स्टिकर भेजा, कहते हैं सलाम सरवर भाई एंड नादिया बहन, सरवर भाई आपका घर किधर है कतर में, सब बता दूं मैं इतने पैसों में ना।

0: कबीर भाई,
1: अगर आप कहें तो मैं इनका एड्रेस भेज दे।
0: कबीर भाई इन दीज हॉट डेज। अच्छा कबीर भाई ये मुझे कबीर भाई कहना है, कादर अब्दुल हादी। In these hot days, leftover rice, I take it with curd, green chili and onion. I take it in liquid form, keeping in the fridge cold.
1: लेकिन सबसे best dish मुझे तबस्सुम जी की लगी।
0: हाँ ये रहे और बोल इंग्लिश में रहे कि दही खा रहे हो चावल के साथ मिला के, ये ना कह पा रहा अपना भाई।
1: This is really healthy.
0: बहुत healthy है। वो भी यही कह रहे थे। Hello, Assalamu alaikum.
2: Alaikum assalam, rahmatullah barakatuh. जी भाई साहब,
1: जी भाई साहब।
0: नहीं वो बैकग्राउंड म्यूजिक एंजॉय कर रहे थे जरा, मैं और नाजिया, तो वो पहले रेडियो को जरा सा बंद कर दीजिए,
1: स्लो कर दीजिए।
2: हमने ऑफ कर दिया है।
0: क्या बात है, कौन है हमारे साथ, नाम बताइए पहले अपना।
2: जी मैं मोहम्मद शमशाद बोल रहा हूँ।
0: शमशाद, क्या बात है यार, बड़े दिनों बाद सुना ये नाम मैंने। कैसे हैं शमशाद भाई, खैरियत से हैं?
2: जी फर्स्ट टाइम में हमारी आपसे बात हो रही है।
0: बिल्कुल मैं समझ गया हूँ, अहलन बस अहलन। देखिए कितने एहतियात से और मोहब्बत से आपसे मैं बात कर रहा हूँ, इसी बारे के पहली बार आपकी आमद हुई है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। कहाँ से ताल्लुक है शमशाद?
1: पहली बार ही आप इतना अच्छा बात करते हैं।
2: जी मैं इंडिया बिहार से हूँ।
0: आ क्या शेर सुनाया भाई, बिहार में कहाँ से?
2: बिहार मधुबनी डिस्ट्रिक्ट।
0: आए हाय हाय हाय हाय हाय, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से?
1: टेंशन से।
2: मधुबनी डिस्ट्रिक्ट हमारा, आप कहाँ से हैं?
0: अरे फिर मैं
1: ये तो टेंशन से है।
2: मधुबनी डिस्ट्रिक्ट हमारा पड़ता है घर ये बिस्सी ब्लॉक।
0: कौन सा?
2: बिस्सी ब्लॉक।
0: बिस्सी ब्लॉक,
1: और आप हस्सी ब्लॉक में?
0: नहीं यहाँ तक नहीं पहुँच पाया मैं।
1: आप हैं तो अब हस्सी ब्लॉक में।
0: क्या क्या नाम बताया भाई ने अपना?
1: शमशाद।
0: शमशाद, तो शमशाद भाई पहली बार सुना आपने हमें या सुनते हैं फिर?
2: नहीं नहीं सुन तो रहा हूँ काफी जमाने से, लेकिन बात अभी फर्स्ट टाइम ही हो रही है।
0: चलिए साहब अहलन व सहलन, और हमें बड़ा अच्छा लगा कि आपने कॉल करी और आपने वक्त निकाला, और मुझे लगता है कि आज जो मौजू है इसके हवाले से आप कुछ कहना चाहते होंगे।
2: मैं अभी जस्ट फादर पहले ही रेडियो चालू किया हूँ तो, और आज मैं सोचा कि सर आज बात कर लेना ही बेहतर होगा, इसलिए काफी दिनों से सुन
0: रहे हैं। मेरी मोहब्बत खींच लाई मतलब आपको यहाँ तक है?
2: जी जी जी जी,
0: क्या बात है,
1: टकरा गए।
2: शेर बोल दो?
0: अरे बिल्कुल, हाँ शेर बोल दीजिए, बिल्कुल बोल दीजिए, शायर भी बोल दीजिए, शायर तो शमशाद साहब है। जी
1: बोलिए बोलिए।
2: आपकी तो वो मिसाल जैसे कोई दरख्त। हेलो
0: जी जी, मैं सुन रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ तक।
1: चढ़ गए आप
2: वो मिसाल जैसे कोई दरख्त दुनिया को छांव देख के धूप में जले। दुनिया को छांव देख के खुद धूप में जले।
0: वाह वाह वाह वाह, बट ये है कि दरख्त से मिलाया आपने मुझे, बस यहाँ पे मैं जरा खामोश हो गया था।
1: मैं समझी आप बैनियन ट्री से गए, मैं कहाँ से।
0: शमशाद भाई तो क्या कहते हैं खाने खाने के हवाले से, क्या कहते हैं आप इतनी खूबसूरत जगह से जहाँ बड़े स्वादिष्ट खाने बनाए जाते हैं, और हाँ। जब खाना स्वादिष्ट हो तो ज्यादा भी बन जाता है, और जब ज्यादा बन जाता है तो फिर ज्यादा खाने के बाद भी बच जाता है, तो उसमें क्या करा जाता है या क्या करें?
2: हम तो ज्यादा ये करते हैं कि ऐसा हम बनाए जो हमारा एक बार में ही पूरा खत्म हो जाए।
0: अच्छा,
2: बात का फिर नया दी तो
0: ताजा।
1: Nice.
0: क्या बात, चलिए भी
1: ये भी बहुत बहुत ही गट्स वाली बात है कि सुबह शाम अलग।
2: और दूसरा वक्त पे जो मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह
0: माशाल्लाह। तीसरा
1: पानी पी लिया
2: जी, तीसरा जब हम आप एक साथ खाएंगे फिर बता देंगे।
0: यही तो पहुंचाना चाह रहा था मैं,
1: आपने इनको इनके डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचा दिया।
0: बिहार से है शमशाद भाई, इतने तो बनता है समझना, तो इंशाल्लाह ताला। चलिए ठीक है साहब, आपसे अल्लाह ताला राजी।
2: मैं ये जानना चाह रहा था आप कहाँ से हैं?
0: मैं कहाँ से हूँ नादिया बताइए?
1: यूपी से हैं। यूपी से?
2: अच्छा यूपी। अच्छा यूपी में कहाँ पे? इलाहाबाद, कानपुर, बनारस,
1: मुजफ्फरपुर,
2: लखनऊ, देवरिया।
1: अलीगढ़।
2: अलीगढ़ से? अच्छा अलीगढ़। जी जी जी,
0: पूछिए अलीगढ़ में कहाँ से। पूछिए ना,
1: पूछिएगा।
2: मैं अलीगढ़ नहीं गया हूँ।
0: अलीगढ़ नहीं गए? बिहार के होके अलीगढ़ नहीं गए?
2: मैं कानपुर रहा हूँ काफी दिन।
0: कानपुर रहे हैं काफी दिन,
1: बस वहीं से कुछ देर का रास्ता है।
0: हाँ है तो थोड़ी दूरी है, बट चलिए साहब बहुत मोहब्बत और बड़ा अच्छा लगा आपसे पहली बार बात करके, और उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा, आगे इंशाल्लाह जुड़ते रहिए।
1: हम तो नहीं जुड़े, लेकिन हमें पता है कि बिहार में मेरे नाना पोस्टेड थे सीवान में।
2: अच्छा,
1: जी जी जी, तो वहाँ पे जो है वो वहाँ की पिक्चर्स, वहाँ के किस्से हमने

0: और खाने के लिए तो खैर है ही मशहूर, विद नो डाउट।
1: देख रहे हैं आप,
0: बहुत मशहूर।
1: अब हमारे साथ रिश्तेदारी हो गई, अब आपकी अब देखा, अब आप मानेंगे ना, डेली कॉल करना पड़ेगा आप रिश्तेदारी।
2: सुन लीजिए आप अपने लिए।
1: अच्छा एक और अपने लिए, तने से मत मिला दिए, दरख्त से तो मिला चुके हैं।
2: नहीं नहीं,
0: अब झाड़ से
1: इरशाद,
2: आप देखते होंगे गांव घर में जो आग तापते हैं ना अंगेठी में, आपको मालूम होगा।
1: जी जी जी,
2: छोटी पे एक शहर है कि बहुत देर से राखों में फेर रहा था उंगलियां,
1: हाँ
2: हाँ, गौर से देखा तो आपकी तस्वीर बन गई।
1: आए हाय हाय हाय हाय हाय हाय, यार क्या है यार, देखिए कितनी मोहब्बत करते हैं शमशाद भाई मुझसे।
0: मुझे याद आ गए, वो जो जलते थे ना, जलाए जाते थे राउंड राउंड।
1: हाँ मैं समझ गया आप कहाँ पहुँच रही हैं, आप मुझे ऐसी चीजों से मिला सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शमशाद साहब आपके वक्त का, इंशाल्लाह ताला कल दोबारा तशरीफ लाइएगा, फिर और बात होगी
2: इंशाल्लाह।
1: ओके भाई ओके, अल्लाह
0: हाफिज।
1: यहाँ पर कुछ मैसेजेस ले लेते हैं जल्दी से, वक्त हुआ जाता है प्रोग्राम का भी,
0: हमारे पास कॉलर्स भी हैं, वो कंप्लेन करते हैं कि आप कॉल नहीं लेते।
1: नहीं नहीं बिल्कुल, हम उनकी कॉल भी लेंगे। रियाज अहमद है, अस्सलाम वालेकुम नाजिया जी एंड सरवर भाई। सरवर भाई आपके लिए गुड न्यूज है, आज सुबह एक बंदा कबीर भाई को कॉल करके डांटा था, कबीर भाई ने पूछ लेना कि कैसा लगा, आपको हर स्टोरी में एक करेक्टर देते हैं, आपने तो किसी को पैसा देकर कॉल नहीं करवाया। अरे यार ये क्या हो गया, क्या क्या हो, कौन है रियाज भाई
0: है?
1: मैंने जल्दी में पढ़ भी दिया पूरा मैसेज, मेरे भाई को किसी ने डांटा, मेरे भाई को डांट वो खा ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता कि डांटा, उन्होंने अपनी बात रखी होगी।
0: नहीं वो कह रहे हैं डांट से काम नहीं चलेगा,
1: उस आदमी को कोई डांट ही नहीं सकता भाई, मैंने बहुत कोशिश करी मैं नहीं कर पाया आज तक, उसको डांटेगा कौन।
0: मतलब ये आप लोगों को जो है उकसा रहे हैं कि डांटने तक।
1: अच्छा मुझे लगता है कुछ ऐसी बात मतलब हाँ गरम गुजर गई होगी, तो मैं इसके अंदर एक चीज कहना चाहता हूँ, सब लिसनर्स हमारे अपने हैं और इसमें एक छोटी सी चीज है, जब आपका मूड ऐसा है जब के अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी, कोई लड़ाई झगड़ा है, गुस्सा है, कोई और बात है, तो उस वक्त सिर्फ हमें सुने, बात करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर उस वक्त आपने हमसे बात कर ली तो मूड और खराब हो जाएगा, हमारी तो बातें ही अच्छी होती
0: हैं। एक चीज हम आप लोगों को सबको बताना चाहेंगे, और ये बहुत ही सीरियस नोट पे, कि हम जितने भी आरजेज हैं हमारा आपस में बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन है, बहुत ही अच्छा कोऑपरेशन है, एक दूसरे से बहुत अच्छा बॉन्ड है, कई बार हम आपको खुश करने के लिए इस तरह से एक्ट करते हैं।
1: मेरी बहुत इज्जत करती है, मैं माइक बंद कर दूं यहीं पे, यहीं माइक बंद कर दूं, तो इसका मतलब आप लोग ये समझिए कि इस कहानी का जो तात्पर्य है वो ये निकला है, शायर यहाँ पर ये कहना चाहता है ऊपर दिए शेर में, ऊपर दी गई गजल में, कि मैं सरवर भाई की बहुत इज्जत करती हूँ, और ये तो बस मैं सिर्फ तनख्वाह के लिए कर रही हूँ। माइक दोबारा खोल दिया ना दिया, देखिए इससे आगे कोई बात मत करिएगा।
0: तात्पर्य
1: अच्छा, वो जो भी था आ गया मेरे ऊपर ही। कबीर भाई का क्या शेर सुनाया शमशाद चाचा ने। कबीर भाई के फैन है, मेरा भाई कैसा हुसैन कौन है।
0: अच्छा हमारे साथ एक कॉलर यहाँ
1: मोहम्मद हुसैन जैसा,
0: अब हमारे पास टाइम ही नहीं है,
1: टाइम नहीं है मेरे ख्याल में, तो मुझे ऐसा लगता नाजिया कॉल अब नहीं ले पाएंगे, और मुआजरत चाहते तो मैं और नाजिया यही है कि आपसे खूब खूब बातें करें, जैसे कि नाजिया ने बताया कि भाई इसी मारे के दिन का अगला जो हिस्सा है बचा हुआ वो अच्छा गुजर जाए आप लोगों।
0: और बस जाते जाते आपसे यही कहना चाहेंगे, ये खाने फूड वेस्टेज को जो है वो मिनिमाइज कीजिए, बहुत सारे लोग इस दुनिया में है जिन्हें एक वक्त का खाना भी ठीक तरीके से नहीं मिलता, और आप और हम यूं ही खाने को डस्टबिन में फेंक देते हैं, और खाना जो है बचाना या खाने का ख्याल करना सिर्फ पैसों की बचत नहीं है, ये पानी की, जमीन की और एनवायरनमेंट की भी हिफाजत है। तो प्लीज अपना ख्याल रखिए, और आज का ये दिन हमें और आपको ये सिखाता है कि जितना आपको चाहिए उतना ही खरीदें और उतना ही इस्तेमाल करें।
1: भाई क्या बात है, अब इसी गाने के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, जावेद अली कह रहे हैं तू मेरी रोजा, असल में रोजा से बात कर रहे हैं, ये नहीं कहते तू रो ले भाई ना दिया, तू रोजा कोई इसमें बात नहीं। आज के लिए ले रहे हैं इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, देखते और सुनते रहिए FM 107।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामीने किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामीने किराम, सदके का नाम आते ही हमारे जहन में उमूमन क्या आता है? किसी गरीब को रकम देना, किसी जरूरतमंद की मदद करना या किसी खैराती इदारे को हतिया देना। यकीनन ये सब अजीम नेकियां हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि सुबह आप अपने घर के लिए जो रोटी खरीदते हैं, बच्चों की जरूरत पूरी करते हैं, अहलिया के अखराजात उठाते हैं, घर का किराया अदा करते हैं, ये सब भी अल्लाह के यहाँ अजर का जरिया बन सकता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दीनार वो है जो तुमने अल्लाह की राह में खर्च किया, एक दीनार वो जो तुमने किसी गुलाम की आज़ादी में खर्च किया, एक दीनार वो जो तुमने किसी मिस्कीन पर सदका किया और एक दीनार वो जो तुमने अपने अहलोयाल पर खर्च किया। इनमें सबसे ज्यादा अजर वाला वो दीनार है जो तुमने अपने अहलोयाल पर खर्च किया है। सामने किराम, जरा इस तरतीब को देखिए कि अल्लाह की राह में खर्च, किसी इंसान की आज़ादी के लिए खर्च, मिस्कीन पर सदका और फिर अपने घर वालों पर खर्च। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अअज़मुहा अजरा, इनमें ज्यादा अजर वाला वो है जो तुमने अपने अहल पर खर्च किया है। यहाँ इस्लाम हमारी रोजमर्रा जिंदगी को इबादत से जोड़ देता है। एक पाप जैसे कि सुबह काम पर गया, सारा दिन मेहनत करता है, वो शाम को थका हुआ घर लौटे, उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा कहाँ जाता है? घर के किराए में, बच्चों की जरूरियात में, इलाज में, कपड़ों में। बाज़ोकात महीना के अख्तिताम पर उसके अपने पर्सनल सेविंग्स बहुत कम होती हैं। वो सोचता है, मैंने इस महीने कोई खास सदका नहीं किया। लेकिन नबवी सुन्नत हमें ये बताती है कि जरा अपनी नीयत को देखिए। आपने हलाल कमाया, अपने अहल वयाल का हक अदा किया, उनकी जरूरत पूरी की। अगर ये सब अल्लाह की रजा और अपनी शरी जिम्मेदारी अदा करने की नीयत से किया है तो ये महज घर का बजट नहीं रहा, ये अजर बन गया है। सबने किराम, एक ही रकम दो इंसान खर्च करते हैं। एक शख्स घर के अखराजात देता है और पूरा वक्त दिल में बोझ महसूस करता है कि ये सब मेरे पैसे खत्म कर रहे हैं। दूसरा भी वही अखराजात देता है लेकिन दिल में नियत करता है कि या अल्लाह, तूने उनकी जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं तेरी रजा के लिए उनका हक अदा कर रहा हूँ। रकम शायद एक जैसी हो लेकिन नियत ने दूसरे शख्स के मामूल को इबादत से जोड़ दिया है। सबने की नमाज की रूह परवर सुन्नत का एक अहम पहलू ये भी है कि खैर के कामों में तरजीहात को समझना चाहिए। आपकी कमाई में आपके जेर कफारत लोगों का भी हक है, इसलिए अपने अहल पर मुनासिब तरीके से खर्च करना कोई

एहसान जताने की चीज नहीं, ये जिम्मेदारी है और सवाब का काम है। मजीद सामने किराम, आज की रूह परवर सुनत हमें ये भी बताती है कि नफली सदका और खैर को सिर्फ एक ही जगह महदूद नहीं करना चाहिए, बल्कि ज़रूरत और मसलहत के मुताबिक खैर के मुख्तलिफ मैदानों में खर्च करना बेहतर है। यानी इस्लाम सखावत को एक ही शक्ल में कैद नहीं करता। किसी वक्त एक मिस्कीन की ज़रूरत ज़्यादा है, किसी वक्त किसी बीमार की, किसी वक्त किसी रिश्तेदार की, और किसी वक्त सबसे ज़्यादा फौरी हक आपके अपने घर में मौजूद होता है। समझदार मोमिन ये देखता है कि इस वक्त सबसे ज्यादा हक और जरूरत कहाँ है। अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, हमें हलाल कमाने, हिकमत के साथ खर्च करने, अपने अहल वयाल के हुकूक खुश दिली से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम रूपर व सुन्नत के आज के हल्के से तकनीकी मुआविन शकील अहमद और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते रहिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। आज मेरे पास बहुत कमाल की वेबसाइट्स हैं, बहुत ऐसी भी हैं जो बोर्डम को किल करेंगी। मेजरली आज मेरा फोकस रहा है कि कुछ ऐसी वेबसाइट हो जो टाइम पास के लिए ना बैठे बैठे कुछ ऐसी खामखा, क्योंकि मेरी आदत है कि कुछ चीजें ऐसी एक्सप्लोर करनी चाहिए। जो चीजें खामखा होती है ना वो बैक ऑफ द माइंड को थोड़ा रिलैक्स देती है। हर चीज काम की नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो आज वेबसाइट जो है ऐसी हैं जो आपके बोर्डम को किल भी करेंगे और आपको मजा भी आएगा। तो शुरुआत करते हैं पहली वेबसाइट से। इस वेबसाइट का नाम है moviescenemap.com, moviescenemap.com। सीन वाला जो नजारे वाला सीन होता है तो वो वाला डालने का है, moviescene.com। इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपके पास एक पूरा मैप आएगा, डिजिटलाइज्ड वर्जन उसका सामने आएगा और उसमें बहुत सारे डॉट्स लगे होंगे जगह जगह, तो आपको पता लगेगा कौन सी मूवी कहाँ शूट हुई थी। यू नो खामखा चेक करने के लिए मजा आता है मुझे। इनफैक्ट आप कोई भी गेम जो खेलते हैं उस गेम की शूटिंग कहाँ हुई है, वो कहाँ पे लोकेशन एक्चुअल में प्रेजेंट है, वो आप चेक कर सकते हैं। डिफरेंट फिल्टर्स लगा सकते हैं, डिफरेंट मूवीज सर्च कर सकते हैं। यू गेट टू नो कौन सा घर यूज किया गया है, कौन सी सड़क यूज की है, कहाँ पे शूटिंग हुई है, एंड बहुत बढ़िया टाइम पास है। एक बार आप जाएंगे इस रैबिट होल में ना तो आप चलते चले जाएंगे, बोलेंगे अरे ये मुझे अच्छा क्यों लग रहा है, ये ढूंढते हुए मुझे मजा क्यों आ रहा है, इज दैट काइंड ऑफ थिंग। तो ये आपके सिर्फ बोर्डम को खत्म करने के लिए मैंने फोन पे भी चला के देखा है, मस्त चलती है, कमाल की चीज है। तो ट्राई दिस वन आउट जस्ट टू किल योर बोर्डम। कितना सोचता हूँ मैं आपके बारे में, समझ रहे हैं आप। आगे वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं। अगली वेबसाइट है hooktheory.com, HOOK hook theory, theory.com, hooktheory.com। जब आप इस पे जाएंगे तो भाई साहब आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। एक चीज हो तो बताऊं, इस पे जो गाने हैं उनके कॉर्ड्स क्या क्या हैं गिटार पे बजाने के लिए, आप जो है इसके साथ साथ ये भी देख सकते हैं कि उनको जो है पियानो पे की कौन सी कीज यूज की जा सकती हैं, अपना खुद का आप म्यूजिक प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कौन सी की जो की है वो पियानो पे बजी है, कैसे इसको दूसरे इंस्ट्रूमेंट से बजाया जा सकता है, सब कुछ जो है आप चेक कर सकते हैं। एंड इट इज सो इजी टू यूज, ऊपर से फ्री, कोई साइन अप वाइन अप कुछ नहीं चाहिए भाई, ऐसे यूज हो जाएगा। मैं सच्ची बताऊं मुझे बहुत काम की चीज लगी, क्योंकि कलर ग्रेडिंग के हिसाब से, ग्रेडिंग कह रहा हूँ कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको की समझाता है, बहुत इजीली समझाता है। तो इफ यू आर इनटू म्यूजिक, यू वांट टू क्रिएट समथिंग, तो ये आपके काम आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते अगली वेबसाइट के लिए आपको गूगल पे जाके टाइप करना है ह्यूमन एटलस वर्सल, वर्सल ही बोलेंगे इसको, ह्यूमन HUMAN एटलस ATLAS फिर स्पेस देके VERCEL। इसके बाद एक वेबसाइट खुलेगी, मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी, सबसे पहली वेबसाइट को क्लिक करना है, ह्यूमन एटलस बड़ा बड़ा लिखा आएगा और उसके बाद हमारी जो पूरी बॉडी की एनाटॉमी है वो आपके सामने आ जाएगी, कौन सा मसल क्या है, क्या काम आता है उसका, और बॉडी का एक एक हिस्से के बारे में जो जानकारी है बहुत कमाल की। आप मेडिकल स्टूडेंट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, आप हैं तो बहुत ही बढ़िया, नहीं है कोई टेंशन नहीं है, ये फिर भी आपके काम आएगी। मैं सही बता रहा हूँ, टू अंडरस्टैंड योर ओन बॉडी इज सुभान अल्लाह, इट एक्चुअली मेक्स

0: मेक्स यू मोर थैंकफुल के अल्हम्दुलिल्लाह लमिया ये सब कॉम्प्लेक्सिटी में हम कैसे इसको शुक्र अदा नहीं करते इस चीज का. और ऊपर से आपको चीजें पता लगेंगी कि मुझे क्या क्या खाना चाहिए, कौन सी चीज पे क्या असर करता है, एंड इट इज अमेजिंग. तो ये काम की आप देखिएगा जरूर, काम आने वाली चीजें बताता हूँ. बाकी तो मैंने बोर्डम को मिटाने के लिए आपको वेबसाइट्स बताई. अब जरा बढ़ते खबर की तरफ. तो खबर बहुत बड़ी ये आई है कि OnePlus 16 ऑफिशियली रिवील हो चुका है. आई होप आपने देख लिया होगा, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब ये रिवील हुआ ही था. तो OnePlus 16 आ चुका है और 1 TB स्टोरेज के साथ आया भाई, तीन तीन रंगों के साथ लॉन्च कर दिया है, क्या बात है. देखो डिजाइन में ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क को लेके आए हैं कैमरा मॉड्यूल में. मैंने अभी बाकी स्पेसिफिक्स पर काम नहीं किया, लेकिन ओवरऑल लुक जो है वो ठीक लग रहा है. वन प्लस थोड़ा सा बीच में चला गया था बेचारा, पता नहीं वो दूर का कजन होता ना, जब तक नानी के घर जाओगे नहीं जब तक मिलेगा नहीं, वैसा वाला सीन था इसके साथ. बट नाउ दैट वन प्लस इज टेकिंग ड्रास्टिक मेजर्स, तो हो सकता है कि इट माइट जस्ट डू वंडर्स इन और कम्पीट विद द बिग जायंट्स. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. इसी टेक अपडेट जाना नहीं आपने, मैं हूं दोबारा कबीर, स्टे ट्यून्ड for more updates. Tech update. Tech update.
1: Scam alert. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का. ये शो सुन रहे हैं आप फ्रॉड अवेयरनेस, और अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि जब भी इस टाइम पे मैं आता हूँ इसका मतलब ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस का, जहाँ पर आपको जल्दी से एक नए जमाने के नए फ्रॉड या स्कैम के बारे में पता चलता है. और इस हफ्ते हम जिन स्कैम्स के बारे में पता करेंगे या बात करेंगे वो एक्चुअली हर हाल में आपसे रिलेटेड होने वाला है, क्योंकि अभी तक जब हम स्कैम के बारे में या फ्रॉड के बारे में बात करते थे तो होता ये था कि कई बार वो एम्प्लॉयज़ के लिए होता था, कई बार वो बच्चों के लिए होता था, कई बार वो बिजनेसमैन लोगों के लिए होता था. लेकिन अब जिस इस हफ्ते जिस हम बात करेंगे स्कैम के लिए, उसमें कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट या आपसे रिलेटेड वो चीज़ ज़रूर होगी. तो शुरू करते हैं आज जिस हम स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं. ये स्कैम है सप्लायर स्कैम. ये एक बहुत ही चालाकी से भरा और डेंजरस फ्रॉड है, और आजकल आमतौर पर रिटेल बिजनेसेस या फिर हो सकता है कि आप अपने घर में या फिर आप अपने लोगों के लिए सामान मंगवा रहे हो और ये स्कैम आपके साथ हो जाए. ये स्कैम कैसे काम करता है जरा इस पर नजर डालते हैं. इसमें आमतौर पर फेक वेबसाइट आपको देखने को मिलती है. स्कैमर मशहूर ट्रस्टेड होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स की बिल्कुल मिलती जुलती फेक वेबसाइट्स बना लेते हैं. ये देखने में इतनी असली लगती है कि एक आम इंसान फर्क नहीं समझ सकता. उसके अलावा ईमेल हाईजैकिंग भी होती है. वो किसी पुराने और ट्रस्टेड वेंडर का ईमेल अकाउंट हैक कर लेते हैं, फिर उन्हीं के ऑफिशियल ईमेल से आपको मैसेज भेजते हैं, जिस वजह से आपको कोई शक नहीं होता. वेल अगर तरीके की बात करें तो इसमें होता है ये कि अर्जेंट इन्वेंट्री शॉर्टेज का बहाना बनाया जाता है आपके साथ. स्कैमर्स रिटेल ओनर्स को कॉन्टैक्ट करते हैं और कहते हैं कि मार्केट में माल की बहुत कमी चल रही है, इसलिए जल्दी से जल्दी ऑर्डर करें. सस्ती डील का लालच दिया जाता है, वो आपको बहुत ही कम कीमत पर एक्सक्लूसिव बल्क डील्स ऑफर करते हैं, जो देखकर कोई भी रिटेल ओनर लालच में आ जाता है. या फिर अगर आप आमतौर पे होलसेल में कोई सामान मंगवाना चाहते हैं या कोई भी चीज़ आप मंगवाना चाहते हैं तो आपके साथ ये चीज़ हो सकती है. एडवांस पेमेंट का प्रेशर बनाते हैं. फिर वो कहते हैं कि अगर आपने अभी के अभी पैसे नहीं दिए तो माल किसी और को भेज दिया जाएगा, वो आपसे वायर ट्रांसफ़र, कॉरपोरेट डिजिटल वॉलेट या क्रिप्टो करेंसी के जरिए फ़ौरन अपफ्रंट पेमेंट मांगते हैं और गायब हो जाना. जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं वो फ्रॉडलेंट सप्लायर्स अपने फोन और ईमेल बंद कर देते हैं, ना आपको माल मिलता है और ना ही आपके पैसे वापस आते हैं. इससे रिटेल बिजनेस पूरी तरह तबाह हो जाते हैं. वेल कई बार आप अपने घर में कोई सामान फर्नीचर का कोई काम है ना, आपको बेड बनवाना है, आपको टीवी के लिए एक फर्नीचर बनवाना है, आपको कुर्सी बनवाना है, आपको डाइनिंग टेबल बनवाना है, तो आप सामान यानी कि लकड़ी जो है वो बल्क में खरीदना चाहते हैं, भले आपका बिजनेस नहीं है. तो जब आप बल्क में खरीदने की कोशिश करते हैं और आप देखते हैं कि मार्केट में जो है 1 किलो की लकड़ी फलाने की लकड़ी जो है वो 10 रियाल पर केजी में मिल रही है, लेकिन आप उस सप्लायर से किसी तरह से कॉन्टैक्ट में आते हैं जो आपको 5 कतरी रियाल, 4 या 3 या 6 कतरी रियाल में पर केजी में आपको दे रहा है, तो आपको लगता है जल्दी से जल्दी इनसे मंगवा लें और फिर मैं अपने मर्जी का कस्टमाइज फर्नीचर बनवाऊंगा घर पे. लेकिन यहां पर होता है सबसे बड़ा स्कैम, क्योंकि इस तरह का स्कैम बहुत ही आसानी से लोगों के साथ किया जा सकता है, लेकिन इससे बचने के कुछ सॉल्यूशंस भी हैं. वेंडर को डबल चेक करना. अगर आपको कोई ट्रस्टेड वेंडर की तरफ से अचानक बैंक डिटेल्स बदलने या पेमेंट का नया तरीका मिले तो फौरन ईमेल पर रिप्लाई ना करें। उनके पुराने और वेरीफाइड

0: नंबर पर कॉल करके कंफर्म कर लें क्या ये ईमेल उन्हीं पे है, उन्हीं के पास है। उसके अलावा अर्जेंसी और लालच से बचें। जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर आप पर फौरन पेमेंट करने का दबाव डाले या मार्केट प्राइस से बहुत ही सस्ता माल ऑफर करे तो समझ जाइए ये कुछ गड़बड़ है। जेन्युइन बिजनेसेस कभी इस तरह अचानक प्रेशर नहीं डालते हैं। उसके अलावा वेबसाइट यूआरएल को लाजमी चेक करना, ये तरीका मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। उसके अलावा सेफ पेमेंट का मेथड हमेशा इस्तेमाल करें, इससे अगर आपके साथ खुदा ना खास्ता गलत पेमेंट आपकी तरफ से हो जाती तो भी आपके पास पैसे वापस आ जाते हैं। कभी भी किसी अनजान सप्लायर को भी एडवांस में क्रिप्टो करेंसी, वायर ट्रांसफर, डिजिटल वॉलेट से पेमेंट ना करें, इससे आप बचे रहेंगे। उसके अलावा स्टाफ की ट्रेनिंग कराएं। अगर आप डायरेक्ट पैसों में इत्तला नहीं होते हैं या फिर आपको इत्तला नहीं किया जाता है, कोई अकाउंटेंट है जिसको आपने रखा है वो पेमेंट करता है, तो अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दें, अपने प्रोक्योरमेंट और अकाउंट्स टीम को इस तरह के स्कैम्स के बारे में सिखाएं ताकि वो कोई भी बड़ी पेमेंट करने से पहले हर चीज पर अच्छी तरह नजर रखें और वेरीफाई करें। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए और आपको आगाह करते हुए। सुंदर एफएम 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट।
2: हेलो एंड वेलकम टू अ सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया। दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं मनी एंड रिलेशनशिप्स की। शुड कपल्स हैव जॉइंट और सेपरेट फाइनेंसेस? हाँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, शादी जब होती है या शादी हो जाती है तो ये सिर्फ दो लोगों का एक इमोशनल रिश्ता नहीं होता, बल्कि ये एक फाइनेंशियल पार्टनरशिप भी है। इसीलिए अक्सर इसे समझना और इस पर गौर करना बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए अक्सर कपल्स के दरमियान एक इम्पॉर्टेंट सवाल भी पैदा होता है, क्या हस्बैंड और वाइफ को अपने फाइनेंसेस जॉइंटली मैनेज करने चाहिए या फिर सेपरेट अकाउंट्स होने चाहिए। देखिए, इस टॉपिक का अगर मैं कोई परफेक्ट आंसर देना चाहूँ तो शायद मैं कोलैप्स करूँ, क्योंकि हर कपल की जो सिचुएशन है उनकी इनकम, उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से, और ये शायद डिफरेंट है। जो सिस्टम एक कपल के लिए काम करेगा जरूरी नहीं कि वो दूसरों के लिए भी इफेक्टिव हो। लेकिन हाँ, जॉइंट फाइनेंसेस ये क्या है ये पहले समझते हैं। देखिए, जॉइंट फाइनेंसेस का मतलब है कि हस्बैंड और वाइफ अपने इनकम को एक कॉमन अकाउंट में रखें और घर के तमाम एक्सपेंसेस उसी अकाउंट से मैनेज करें। और इस सिस्टम का बड़ा फायदा है ट्रांसपेरेंसी। दोनों पार्टनर्स को पता होता है कि कितनी इनकम आ रही है और कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं। इससे होता यह है कि दोनों में ट्रस्ट बिल्ट होता है और शायद फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पे, अगर कपल घर खरीदना चाहते हैं या फिर बच्चों की एजुकेशन के लिए सेविंग कर रहे हैं तो जॉइंट फाइनेंसेस प्लानिंग को सिंपल बना देते हैं। लेकिन हाँ, कुछ चैलेंजेस भी हैं। अगर एक पार्टनर स्पेंडर हो और दूसरा सेवर तो कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होते हैं। एक को लग सकता है कि दूसरा अननेसेसरी शॉपिंग कर रहा है और दूसरा समझता है कि ये जिंदगी को मुझे एंजॉय नहीं करने देता। वहीं पर सेपरेट फाइनेंसेस का भी इसके बारे में भी समझते हैं। देखिए, सेपरेट फाइनेंसेस में हस्बैंड्स और वाइफ अपने अकाउंट्स अलग रखते हैं और अपने पैसे खुद मैनेज करते हैं। जैसे घर के एक्सपेंस एक अग्रीड फॉर्मूला के मुताबिक शेयर किए जाते हैं। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। हर पार्टनर को अपनी इनकम और स्पेंडिंग पर कंट्रोल होता है। मिसाल के तौर पे, अगर वाइफ अपने लिए कोई कोर्स करना चाहती है, खरीदना चाहती है, या फिर हस्बैंड किसी हॉबी पर पैसे स्पेंड कर रहा है, तो उन्हें हर छोटी चीज के लिए एक दूसरे से अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। अब एक और सवाल है कि मनी से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। देखिए, असल में जॉइंट अकाउंट या फिर सेपरेट अकाउंट, ये दोनों चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है। असल मसला कम्युनिकेशन है। कई मैरिजेस

लोन्स हैं, फ्यूचर प्लान्स हैं, इमरजेंसी फंड्स हैं। जब पार्टनर्स फाइनेंशियल मैटर्स पर ऑनेस्टली बात करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम हो जाती हैं और ये होनी चाहिए। आखिर में बस यही कहूंगी कि चाहे आप

और कम्युनिकेशन। कोई भी फाइनेंशियल सिस्टम तभी सक्सेसफुल होता है जब दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें और कॉमन गोल्स के लिए मिलकर काम करें। बस जाते जाते एक चीज याद रखिए, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप सिर्फ मोहब्बत से नहीं बल्कि स्मार्ट फाइनेंशियल टीम वर्क से भी बनती है और शायद ये ट्रांसपेरेंसी से भी बनती है। तो बस अपनी फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को कायम रखें, अपने गोल्स को मिलकर डिसाइड करें और कॉमन गोल्स के लिए मिलकर काम करें। वेल, वैसे कहने को और भी बहुत कुछ था लेकिन आज नहीं कल। फिलहाल मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107।

दोस्तों आज हम बात करेंगे अमेरिकन टेनिस के एक ऐसे लेजेंड की जो अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल्स, लेफ्ट हैंडेड सर्व, ब्रिलियंट वॉलीज और कोर्ट पर जज्बाती अंदाज की वजह से दुनिया भर में मशहूर हुआ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। अंदाजा लगा लिया होगा आपने, जहां मैं बात कर रहा हूं जॉन मैकेनरो। अच्छा, मॉडर्न जनरेशन के स्पोर्ट्स लवर्स शायद जॉन मैकेनरो को याद ना कर पाए, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ सोशल मीडिया पर जाइए, नाम सुनिए और थोड़ा सर्च करिए। जॉन मैकेनरो 16 फरवरी 1959 को बस जर्मनी में पैदा हुए, लेकिन वो अमेरिका के लिए टेनिस खेलते रहे। उन्होंने बहुत कम उम्र में टेनिस दुनिया में अपनी पहचान बना ली। 1977 में सिर्फ 18 साल की उम्र में विंबलडन के सेमीफाइनल तक पहुंचा और ये उनके करियर का एक अर्ली ब्रेक थ्रू माना जाता है। मैकेनरो का गेम ट्रेडिशनल पावर टेनिस से काफी मुख्तलिफ था। उनका सबसे बड़ा जो वेपन रहा है उनका लेफ्ट हैंडेड सर्व था, जबकि नेट पर उनकी टच और वॉलिंग एबिलिटी लाजवाब थी। कोर्ट पर वो बहुत तेजी से मूव करते और एंगल्स क्रिएट करने में माहिर थे। उनका स्टाइल देखने में सिंपल लगता था दोस्तों, लेकिन ओपोनेंट के लिए उनके शॉट्स को रीड करना बहुत मुश्किल होता था। दैट वाज जॉन मैकेनरो। बंडाना लगा के मैदान पे यानी टेनिस कोर्ट पर उतरना एक अजीब एक वो जो कैरेक्टर जो हमें टेनिस कोर्ट में हमें बहुत नजर नहीं आती इस तरह के कैरेक्टर्स, लेकिन जॉन मैकेनरो वो सच अ कैरेक्टर। 1978 में प्रोफेशनल बनने के बाद मैकेनरो ने बहुत तेजी से सक्सेस हासिल की। 3 मार्च 1980 को वो पहली बार वर्ल्ड नंबर 1 बने। ATP यानी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स के मुताबिक जॉन मैकेनरो ने अपने करियर में टोटल 170 हफ्ते वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन पर रहे। वो 1981 से 1984 तक लगातार 4 सीजन्स के ईयर एंड वर्ल्ड नंबर 1 भी रहे। ग्रैंड स्लैम लेवल पर भी जॉन मैकेनरो का रिकॉर्ड शानदार रहा।

Zahari. And backhand row ko harana bada mushkil tha. And on the day when he was in the top form, unka winning percentage 96.5 था, और जो कि ATP टूर के ओपन एरा में एक सिंगल सीजन सिंगल्स रिकॉर्ड है. इसी सीजन में मैकेनरो ने 13 सिंगल्स टाइटल्स भी जीते. उनके ओवरऑल सिंगल्स स्टैटिस्टिक्स भी इंप्रेसिव हैं. मैकेनरो ने करियर में 77 टूर लेवल सिंगल्स टाइटल्स जीते और उनका ATP सिंगल्स रिकॉर्ड 883 जीत और 198 हार के करीब रहा. लेकिन मैकेनरो सिर्फ सिंगल्स के चैंपियन नहीं थे, डबल्स में भी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी खिलाड़ी थे. उन्होंने 78 डबल्स टाइटल्स जीते, जिसके साथ उनके कंबाइंड सिंगल्स और डबल टूर लेवल टाइटल्स की तादाद 155 बनती है. दोस्तों ATP के मुताबिक ये ओपन एरा का एक रिकॉर्ड है. अच्छा, मैकेनरो की पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा बता. उनकी पर्सनैलिटी भी उनके टेनिस करियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. अंपायर्स के फैसलों पर उनका गुस्सा और कोर्ट पर उनकी फेमस आर्ग्यूमेंट्स ने उन्हें टेनिस के सबसे रिकॉग्निजेबल कैरेक्टर्स में शामिल कर दिया, बागी जिसको हम कहते हैं. तो ये थे जॉन मैकेनरो. लेकिन इन कंट्रोवर्सीज के बावजूद उनकी टेक्निकल एबिलिटी और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट पर कोई सवाल नहीं था. नोबडी कुड क्वेश्चन हिज टैलेंट, हिज एबिलिटी, हिज टेनिस एक्यूमेन, हिज ब्रिलियंस ऑन द टेनिस कोर्ट. उनकी राइवलरीज भी टेनिस हिस्ट्री का हिस्सा बन गई. जिमी कॉनर्स के खिलाफ मैकेनरो ने 20 ऑफ 34 मीटिंग्स जीती, जबकि बियॉन बॉक के खिलाफ दोनों खिलाड़ियों ने 14 मैचेस में 7-7 विक्ट्रीज हासिल की. इवान लेंडल के साथ भी उनकी राइवलरी टेनिस के गोल्डन एरा की सबसे इंपॉर्टेंट राइवलरीज में शुमार होती है. जॉन मैकेनरो का करियर हमें एक ऐसे टेनिस प्लेयर की कहानी सुनाता है जो सिर्फ ट्रॉफीज की वजह से नहीं, बल्कि अपनी यूनिक स्टाइल, क्रिएटिविटी, टेम्परमेंट और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट की वजह से भी याद रखा जाता है. 7 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल, 77 सिंगल्स टाइटल्स, 78 डबल्स टाइटल, 170 हफ्ते वर्ल्ड नंबर वन और 1984 का हिस्टोरिक 82 विन एंड 3 लॉसेस. ये नंबर्स जॉन मैकेनरो के एक्स्ट्रॉर्डिनरी करियर की कहानी खुद बयां करते हैं. जॉन मैकेनरो एक चैंपियन, एक आर्टिस्ट और टेनिस कोर्ट पर एक ऐसा कैरेक्टर जिसे फैंस आज भी नहीं भूले. उम्मीद है आपको आज का हमारा ये सेगमेंट पसंद आया होगा. अगली बार एक और इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स कैरेक्टर के साथ हम हाजिर होंगे. तब तक के लिए मुझे इमाम अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज़.

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: आप सुन रहे हैं एफएम 107
2: दिल से देसी
3: जेन जी जेन एक्स जेन अल्फा मिलेनियल्स ये सब महज टर्म्स नहीं

0: अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा?
1: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक्स। जनरेशन टॉक्स।
2: अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत खुशामदीद साथियों, आप सुन रहे हैं जनरेशन टॉक ऑन एफएम 107 कतर। और भाई मैं हूँ आपकी होस्ट सफा। साथियों, जनरेशन टॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मुख्तलिफ जनरेशन्स के एक्सपीरियंसेस, सोच और ओपिनियंस एक ही कन्वर्सेशन में एक साथ मिलते हैं। देखिए, यहाँ हम बात करते हैं उन टॉपिक्स के बारे में जो हम सब की जिंदगी का एक हिस्सा है, हमारी आइडेंटिटी है, हमारे एम्बिशंस हैं, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, रिलेशनशिप्स, करियर, वैल्यूज और फ्यूचर। क्योंकि हर जनरेशन की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, अपने चैलेंजेस होते हैं और सक्सेस को देखने का अपना ही एक अलग अंदाज होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सक्सेस का मतलब वक्त के साथ बदल गया है? देखिए भाई, एक जनरेशन के लिए अच्छी जॉब, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबल लाइफ सक्सेस हो सकती थी, जबकि आज की यंगर जनरेशन पैशन, फ्लेक्सिबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप और वर्क लाइफ बैलेंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे सकती है। तो भाई आज हम इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे, यानी कि द चेंजिंग डेफिनेशन ऑफ सक्सेस अक्रॉस जनरेशंस। और साथियों, अगर आप भी अपने ओपिनियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 666-22-107 पर, और चाहे तो हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो किया जा सकता है जिसका हैंडल है FM107 कतर। इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आकर मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी एक बहुत ही हमारे अच्छी और प्यारी सी गेस्ट से, और उनसे हम अपना बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। तब तक के लिए सुनते रहें FM107 दिल से देसी। वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं FM107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा, और भाई हमारे शो का नाम है जनरेशन टॉक। चलिए भाई शुरू करते हैं एक ऐसी कन्वर्सेशन जो शायद आपको अपनी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दे। और भाई आज इस मीनिंगफुल कन्वर्सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है अरीज यूसुफ। देखिए, अरीज जो है ना वो टेक्निकल इंजीनियर के प्रोफेशन से ताल्लुक रखती हैं और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी खासी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया हुआ है, लेकिन इंजीनियरिंग के साथ साथ उनका एक और पैशन है, पता है क्या? टीचिंग, दूसरों को इल्म बांटना। अरीज ने मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के स्टूडेंट्स को टीच किया है, और जहां उनका एक्सपीरियंस सिर्फ एकेडमिक्स तक लिमिटेड नहीं रहा बल्कि उन्होंने 4 साल के बच्चों से लेकर 18 साल के स्टूडेंट्स तक का जो है उन्होंने उनको पढ़ाया है, उनका साथ दिया है। आज वो एक प्राइवेट ट्यूटर के तौर पर अपना टीचिंग का जो करियर है, जो जर्नी है, उसको कंटिन्यू कर रही हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अरीज माशाल्लाह से 5 सिबलिंग्स में सबसे बड़ी हैं और उनकी यंगेस्ट सिबलिंग जो है वो सिर्फ 11 साल की हैं। भाई इस वजह से भी मैं कहूँगी कि उन्हें डिफरेंट एज ग्रुप्स की थिंकिंग, एक्सपेक्टेशंस और पर्सपेक्टिव को क्लोजली ऑब्जर्व करने का मौका भी मिला है। मैं अरीज को जितना जानती हूँ भाई, तो भाई उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ने उन्हें उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, पहली बात तो ये, और इतनी अच्छी हैं कि उन्हें पाकिस्तान की तरफ से जापान में डेलीगेट बनकर रिप्रेजेंट करने का मौका दिया गया था, और आज वो हमारे साथ ये एक्सप्लोर करने के लिए आई हैं कि सक्सेस का मतलब डिफरेंट जेनरेशंस के लिए डिफरेंट हो सकता है। अच्छा, अरीज को वेलकम करते हैं। अरीज, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप?
3: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताइए।
2: पहले तो मैं आपसे कहूँगी कि अरीज, माशाल्लाह से मुझे वैसे तो पता है कि आप बहुत पोलाइटली बात करती हैं, लेकिन आपकी आवाज़ ना मुझे बहुत कम आ रही है, तो आपको थोड़ा सा अपना वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा।
3: चलिए, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसी हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स सो वंडरफुल टू हैव यू एट दिस प्लेटफॉर्म। अच्छा जी अरीज, मैं आपको बहुत खुशामदीद कहती हूँ जनरेशन टॉक में।
3: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।
2: और क्योंकि आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मेरे साथ शेयर की थी, मेरी थोड़ी सी अरीज से ऑफ एयर भी बात हो चुकी है, तो इन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग और बड़ी डिफरेंट किस्म की बात मुझसे शेयर की थी, जो कि मेरी ऑब्जर्वेशन में आई तो मुझसे रहा ना गया कि मैं जो है अरीज को कहूँ कि आप ऑन एयर आएँ और हमारे साथ ये बात अलग लेवल पे करें। अरीज का मानना है कि डिफरेंट जनरेशंस में बर्नआउट की डेफिनेशन भी डिफरेंट हो सकती है। तो भाई आज की कन्वर्सेशन में हम सक्सेस के साथ साथ बर्नआउट प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस और वर्क लाइफ बैलेंस को भी एक्सप्लोर करेंगे। और अरीज, सबसे पहले तो भाई आपकी तरफ गेंद उछाला जा रहा है, सवाल ये किया जा रहा है कि आपके नज़दीक सक्सेस का असली मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, करियर अचीवमेंट, पर्सनल हैप्पीनेस या अपनी जिंदगी पर कंट्रोल?
3: मेरी नज़र में हर किसी का इस पे अलग पर्सपेक्टिव होता है, क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस की वजह से जो है वो ये पर्सपेक्टिव फॉर्म होता है। और मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस में ये चेंज हुआ है। जैसे इनिशियली मेरी नज़र में था कि मुझे ग्रेजुएशन करनी है, मुझे एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे एक अपने करियर पाथ परस्यू करना है, अपनी फील्ड में एक जॉब करनी है और उसी में रिसर्च करनी है। अच्छा, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन भी बदल के अगर हम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे फोकस करें तो उसमें मुझे हो गया कि नहीं, मुझे एक फिक्स टाइमिंग अपनी उसमें कैद नहीं होना। आई वांट टू बी एबल टू चूज कि मैं किन आवर्स में जो है वो खुद ऑपरेट करती हूँ और उससे मुझे कंबाइन करना है अपना पैशन, ताकि मुझे ये फील ना हो कि क्या मुसीबत है कमिंग टू द थिंग विद बर्नआउट। कि जब आप ऐसा कुछ करें तो जब आपका पैशन नहीं है तो फिर यू फील बर्न आउट बिकॉज यू आर स्पेंडिंग सो मच टाइम, जिसमें आप ऐसा महसूस करने लगते हैं, थकन होने लगती है, यही वजह है इसके। तो मेरे लिए पर्सनली एक शॉर्ट उसमें कहा जाए तो है सेल्फ कंटेंटमेंट, जो इनर पीस होता है,
2: इनर पीस
3: वो मेरी नजर में सक्सेस है।
2: ओके ओके ओके ओके। अच्छा, दूसरा सवाल ये आपसे कि आपने डिफरेंट एज ग्रुप्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, ठीक है, आप क्या कहेंगी कि ये जो यंग बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, आपने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा कि इनको लेकर अगर मैं बात करूं तो क्या मेजर चेंज आपने ऑब्जर्व किया कि इनके लिए सक्सेस का मतलब या इन्हें समझ में नहीं आ रहा, या बस इख्तलाफ रखना इन्होंने सक्सेस के तरीके से या सक्सेस को लेकर, तो ये कुछ मुख्तलिफ है बाकी जनरेशन से?
3: मेरी नज़र में आजकल बेचारी रीसेंट जो नई जनरेशन है उनको बहुत ज्यादा जो है वो गलत समझा जाता है।
2: अच्छा,
3: उनको समझा जाता है जैसे कि उनको समझ नहीं है और भटक गए हैं ऐसा कुछ। लेकिन हमें ऐसा महसूस इसलिए होता है क्योंकि उनकी वही बात है, डेफिनेशन अलग है हमसे। हम उन लोगों में से हैं या हमारे जो पिछली जनरेशन है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, उनकी जनरेशन में ऐसी सोच है कि भाई आपके सक्सेस का मतलब है कि भाई वही आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए, एक फैमिली है, आप एक जगह है, आपका घर चल रहा है, बस यही है।
2: सही।
3: लेकिन आजकल की जनरेशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ज्यादा अपनी मेंटल हेल्थ को, जैसा कि आपने कहा,
2: वर्क लाइफ
3: बैलेंस को प्रायोरिटी देते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर देम। कि ऐसा नहीं है कि वो करियर ओरिएंटेड नहीं है या उनके पैशन नहीं है, लेकिन उनके लिए ये बहुत स्ट्रिक्ट रेड लाइन है कि भाई हमें जो है वो ये इन चीजों को प्रायोरिटी देनी है, आपकी मेंटल हेल्थ को, अपने पैशन को फॉलो करने का और अपने वक्त पे अपना कंट्रोल होने का, जैसा कि आपने कहा अपनी लाइफ में अपना कंट्रोल होने का।
2: सही,
3: ये सब चीजें वो देखते हैं और उनकी नजर में है। और मैं इस चीज से हैरान होती हूँ कि उनकी ये जो डेफिनेशन है सक्सेस की, ये बहुत जल्दी चेंज हो गई। मतलब मैंने देखा कि बहुत कम एज के जो बच्चे होते हैं उनसे अगर कम एज में मेच्योर, जैसे मेरी उनसे बात हो रही थी, कभी किसी नए स्टूडेंट से होती है, कभी जो जिन स्टूडेंट से मेरा चल रहा होता है उनसे बीच बीच में कॉन्वर्सेशन होती रहती, तो उनसे आप पूछें तो आपको क्या बनना है, तो बहुत आपको मुख्तलिफ जवाब मिलेगा। हमारी तरह डॉक्टर इंजीनियर पे नहीं रुक जाएंगे।
2: सही सही सही।
3: तो ये चीज बिल्कुल डिफरेंट है जनरेशन में। और मैं ये नहीं कहूंगी कि उनको समझ नहीं है, मैं ये कहूंगी उनकी समझ मुख्तलिफ है।
2: सही। अच्छा, मेरा आपके साथ एक पर्सनल कनेक्शन भी है मेरा इनके साथ, और ये बात तो मैं मानती हूँ कि अरीज जो है ना वो बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से संभाल लेती हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेरेंट्स भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि मामला ये है कि जनरेशन गैप होता ही होता है बच्चों में और जो है ना माँ बाप में। तो अम्मा अब्बा कभी कभी चाहते हुए भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, समझा नहीं पा रहे होते, और भाई आपको जो मैंने जैसा मैंने आपकी इंट्रोडक्शन में बताया था कि आपको एज अ डेलीगेट भी चूज किया गया था, तो ये बात तो मैं मानती हूँ कि हाँ अरीज जो है ना वो 10/10 है, जो नई जनरेशन है उनके लिए समझा लेती है बात. अच्छा अरीज मुझे एक बात बताइएगा कि ओल्डर जनरेशन के लिए सिक्योर जॉब सक्सेस की निशानी थी एक टाइम पर. ये था हमारे अम्मा अब्बा के लिए भी था कि हाँ भाई ये फलाना फलाना जॉब है, इतना इतना कमा लेते हैं तो जिंदगी बहाल हो गई. जबकि आज की यंगस्टर्स पैशन और फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं. भाई आपके ख्याल में ये जो एक फ्लिप आया है, एक बिल्कुल ही रोटेशन चेंज हो गई है ना, तो आपको क्या लगता है ये कभी क्या ये कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है या ये कोई अच्छा पॉजिटिव चेंज है, ये क्या क्रिएट कर रहा है सोसाइटी में?
3: मेरी नज़र में इसका जो है ना मुख्तसर सा जवाब ये होगा कि पहले जो है वो इंसान मशीन की तरह चल रहे थे और अब इस नई सोच और नए पर्सपेक्टिव की वजह से ऐसा नहीं होगा. इंसान इंसान की तरह होंगे,
2: सही,
3: मशीनों की तरह नहीं.
2: सही.
3: तो ये बिल्कुल मेरी नज़र में जो है वो एक अच्छा पॉजिटिव चेंज है. और क्योंकि मैंने पर्सनली खुद इस चेंज को एक्सपीरियंस किया है, जैसे मेरे अपने करीबी जो है वो बहुत सारे फैमिली के और वैसे भी लोग हैं जिनको मैं देखती हूँ, स्पेशली फीमेल्स जिनको मैं देखती हूँ कि वो अपनी जॉब भी फिर घर भी और इन सब चीजों में वो इतनी एग्जॉस्टेड हो रही थी बिकॉज देयर स्प्रेडिंग देमसेल्फ सो थिन. मतलब ये भी कर लूँ जल्दी जल्दी कर लूँ, ये भी होने के मध्य में, ये भी होने के मध्य में, तो इस वजह से जो है वो इस जनरेशन को वो फेस नहीं करना पड़ेगा.
2: सही.
3: क्योंकि अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हैं.
2: सही सही सही. अच्छा ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि हर जगह आप यू स्प्रेड योरसेल्फ थिन, तो हम इसे एक किस्म का बर्नआउट ही कहते हैं. लेकिन डिफरेंट जनरेशन में बर्नआउट की डेफिनेशन डिफरेंट थी. आपके एक्सपीरियंस में एक ओल्डर पर्सन या एक ओल्डर जनरेशन का जो इंसान होता है, आपको क्या लगता है कि इस जनरेशन में क्या बर्नआउट खत्म हो गया है? और अगर इस जनरेशन में बर्नआउट है भी, ऐसा हो नहीं सकता कि बर्नआउट ना हो उनके पास, आपको कुछ लगता है कि ये बर्नआउट को कुछ डिफरेंट तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं? क्या कहते हैं?
3: यही है बात, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करती हूँ कि डिफरेंट तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं. इसकी मेरे पास एक मिसाल कि जैसे हमारी जो ग्रैंड मदर्स होती हैं, नानियां हमारी, हाँ, दादियां,
2: सही, सही.
3: उनका ये होता है कि उनको है कि उनको ये प्रूव करना होता है कि भाई हमने तो इतना सा खाया. एग्जैक्टली कि उनको ये शो करना होता है, प्रूव करना होता है कि हमारी जो
2: बेसिक
3: की नीड्स होती है ना वो भी हमें करने की जरूरत नहीं है, हम तो बस काम ही करते रहते हैं जिसके उनको दिखाने की जरूरत होती है. तो उनका जो बर्नआउट है ना, मेरी नजर में बहुत ज्यादा फिजिकल था.
2: सही सही.
3: क्योंकि वो सही ये चीजें प्रूव करने के लिए जो है वो सही खाते पीते और आराम फरमाना नहीं करते थे.
2: आराम तो वो था ना, आराम तो ये था कि लेजी ने, जैसे आजकल की जनरेशन को ताना पड़ता है कि भाई ये तो लेजी है, ये इनके पास जो है ना.
3: आपने सही बात की है.
2: तो हमारे जनरेशन में जो है वो, या हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में सबसे बेहतरीन इंसान वो था जो फिजिकल वर्कआउट में नजर आए, लुक बिजी नजर आओ लेकिन नजर आओ,
3: बिल्कुल बैठा होना दिखे भाई, ज्यादा आराम करता होना दिखे, बड़ा लेजी है.
2: अच्छा ये
3: लेकिन आज के जनरेशन में ऐसा,
2: आज की जनरेशन दिमाग से कुछ अलग हटके काम करती, बहुत अलग से थे वो.
3: बर्नआउट है जो आजकल की जनरेशन है, लेकिन इनका फिजिकल नहीं है वो,
2: इनका मेंटल बर्नआउट है मेरे ख्याल से.
3: एग्जैक्टली, मेंटल बर्नआउट है. ये लोग स्ट्रेस को बहुत अलग नजर से देखते हैं जो मेरी नजर में अच्छी वो है.
2: कहीं इसी वजह से तो ऐसा नहीं कि ये खामोश रहते हैं?
3: जी
2: सही सही सही. तो सामीन मैं चाहूंगी कि हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लें. सुनते रहिए FM 107 पर जनरेशन टॉक विद सफा.
0: जेन जी, जेन एक्स, जेन अल्फा, मिलेनियल्स, ये सब महज टर्म्स नहीं है, ये अलग अलग ख्याल आदतें, इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा?
1: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक्स. जनरेशन टॉक्स.
2: आजकल की जनरेशन का एक और इशू है ना कि ये ज्यादा इनके बारे में, ये भी एक, आप मानती हैं इस बात को, इनके बारे में एक ये भी राय दी जाती है, एक ओपिनियन दिया जाता है कि ये बड़े रूखे सूखे से हैं, इनको ना तमीज नहीं है, बस सलाम किया और निकल गए, अपने कमरों में जाकर बैठे रहते हैं, ना बाहर निकलते हैं ना किसी से बातचीत करते हैं. अगर इनसे बातचीत करनी में तो इनके इंटरनेट बंद करो तो फिर जाकर जो ना ये कमरों में से बाहर निकल कर आएंगे.
3: अब देखें ये इंटरनेट की बात तो आपने अलग की ना, ये अलग टॉपिक है, बिल्कुल
4: अलग टॉपिक है.
3: वो बिल्कुल अलग टॉपिक है. लेकिन जहाँ तक ये बात है कि खामोश खामोश से हैं या हर किसी से घुलते मिलते नहीं हैं, तो मेरी नजर में उसकी वजह ये है कि ये इनकी बाउंड्रीज है. क्योंकि वही बात हमने जैसे डिस्कस किया कि ये अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत प्रायोरिटाइज करते हैं, तो उसमें सिर्फ वर्क लाइफ बैलेंस नहीं आता, उससे भी पहले जो है वो आती हैं बाउंड्रीज. और उन बाउंड्रीज की वजह से हर किसी से घुलते मिलते नहीं है, सिलेक्टिव लोग होते हैं. और जैसा आपने पहले कहा ना कि आपकी नजर में मैं समझा लेती हूँ, उसकी मैंने ये ऑब्जर्वेशन की कि पेरेंट्स जो है वो समझाने की कोशिश करते हैं, समझने की बहुत कम करते हैं.
2: Listening power, chai, you need ears.
3: Exactly. जब बच्चे को फील होगा ना कि भाई सामने वाला बंदा नहीं सुनाए जा रहा, मेरी सुन रहे हैं भाई, मेरी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वो आपकी भी समझेंगे, रेसिप्रोकेट करते हैं फीलिंग.
2: सही सही सही सही. अच्छा भाई ये बताएं कि क्या आज की जनरेशन एक्चुअली ज्यादा एम्बिशियस है या एम्बिशन के ना इनके डिफरेंट तरीके निकल कर आ रहे हैं, किसी और ही तरीके से एक्सप्रेस करते हैं ये चीजों को. अक्सर औकात तो इनके एम्बिशियस इतने एम्बिशियस होते हैं और एम्बिशंस इतने अलग होते हैं कि पेरेंट्स को तो समझ में नहीं आ रहा होता.
3: बात यह है कि एम्बिशंस अलग भी हो सकते हैं और उनका जो है मैनिफेस्टेशन भी अलग हो सकती है, लेकिन गलत नहीं होता ना एम्बिशन. एम्बिशन तो एम्बिशन होते हैं, उनमें गलत सही की बात अलग है. तो जो पेरेंट्स समझते हैं कि भाई ये अलग है एम्बिशन, तो बेशक अलग है लेकिन गलत तो नहीं है. तो ये बात है कि उसकी मैनिफेस्टेशन डिफरेंट है. जैसे अगर कोई भी एम्बिशन है किसी का भी, तो वो हमारी तरह या हमसे पिछले जनरेशन की तरह बस वो या तो साइड में कहीं हॉबी में रह गया या वो भी नहीं, क्योंकि भाई क्या करें, अब तो बड़े हो गए, अब तो एडल्ट हो गए, अब तो जिम्मेदारियां आ गई, तो उनको पूरा करने में एम्बिशन गया कहीं कोने में, या कभी भूल भी जाते हैं लोग, इतना आगे बढ़ जाते हैं अपनी जिम्मेदारियों में और अपनी इस सक्सेस की डेफिनेशन में. इन लोगों की सक्सेस की डेफिनेशन शुरू ही एम्बिशन से होती है.
2: सही. अच्छा ये इस चीज पे आप अग्री करती हैं? मैंने आजकल की जनरेशन में ये टॉक बहुत इन देखी है कि ये कहते हैं कि सक्सेस के लिए ना कोई एज नहीं होती. हमारी जनरेशन में एक प्रॉब्लम ये था कि देयर वाज अ लिमिटेड एज. ये कहते हैं नहीं, हाँ एज इज जस्ट अ नंबर. ये एक्चुअली उस चीज को लिव करते हैं. क्या आपने ये चीज नोटिस की है?
3: मैंने बिल्कुल नोटिस किया. असल में बात यह है कि ये इस चीज से बहुत क्या कहते हैं, दे पुट अप अ फाइट फॉर इट. ये लड़ते हैं, लड़ जाते हैं इस बात पे कि जी आपकी जिंदगी में ना हर चीज को, हर लेवल को, हर मंजिल को पहुंचने के लिए कोई स्पेसिफिक एज नहीं है. हमारे लिए क्या है, हमारे लिए होता था कि भाई हर चीज डिफाइंड है, इस एज से इस एज तक बस यहाँ पढ़ ले, इस एज से इस एज तक यहाँ पढ़ ले, इस एज में ग्रेजुएशन कर ले, इस एज में जॉब कर ले, लड़कियों के लिए इस एज में शादी कर ले. लेकिन इनके लिए ऐसा नहीं है, इनको भी हमें एज वेज ना पता. हमें पता है जब
2: हमें करना है,
3: जब सही होगा हम करना ही करना है, अभी करना है बाद में करना हम कर लेंगे. एज ना लगाओ, उस पर लिमिट ना लगाई जाए.
2: सही. अच्छा ये चीज आपको सही लगती है या नहीं लगती? मुझे सही लगती है, पता नहीं अब लोग क्या कहेंगे इसके बारे में, लेकिन आपको क्या लगता है ये चीज सही है कि नहीं?
3: नहीं लगती.
2: आपको सही नहीं लगती?
3: नहीं लगती. मतलब कि मैं वजाहत करना चाहूंगी कि मुझे जो ये स्पेसिफिक एज डिसाइड की हुई है ना कि इस एज तक ये हो जाना चाहिए, इस एज तक ये हो जाना चाहिए, ये चीज मुझे सही नहीं लगती.
2: हाँ ये चीज तो मुझे भी सही नहीं लगती. हाँ. मैं दूसरे उससे जेन जीज के बारे में बात कर रही हूँ कि वो कहते हैं ना किसी डोंट काउंट थिंग्स इन नंबर्स. नंबर्स बैंक अकाउंट में ही अच्छे लगते हैं.
3: मैं अग्री बिल्कुल अग्री करती हूँ इस बात से, क्योंकि देखें अब इसमें हमारा ये एस्पेक्ट भी तो आ जाता है ना, देर ये कदर भी कुछ होती है. हर चीज का वक्त इंसान तो नहीं तय करते.
2: सही.
3: यूनिवर्स में कदर में ये सब चीजें आती हैं, जिसका सही वक्त होता है होता है. इसकी असल बात ये कि इनका जो डिस्प्यूट है हमारे साथ जो वो इसी बात पे है कि भाई आपको किसने दिया है ये इख्तियार कि आप लगा दे भाई 25 साल की उम्र तक ये करो, 30 साल की उम्र तक ये हो जाना चाहिए, 40 में ये हो जाना चाहिए. वो नहीं है हम कोई लगाने वाले, तो वो इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं और हमारी पिछली जनरेशन नहीं करती.
2: सही सही सही. अच्छा चले आपकी तरफ आते हैं. जनरेशन के बारे में तो मैं बात कर ली. आप खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, ठीक है, लेकिन टीचिंग को आपने अपना पैशन के तौर पर परस्यू किया है. क्या आपकी जर्नी ये प्रूव करती है कि भाई डिग्री और करियर का रास्ता हमेशा एक ही होना जरूरी नहीं होता? ये बताएं कि ये कैसे हुआ, ये क्या था?
3: ये काफी लंबी तवील कहानी है, आपको मुख्तसर करती हूँ. वो ये है कि मेरे असल में फादर जो हैं वो इंजीनियर हैं.
2: सही.
3: और वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है. तो उनको जो मैंने बचपन से देखा है, बीइंग द एल्डर डॉटर, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था. और फिर उनके साथ भी मेरा थोड़ा लगना हुआ, जब उन्होंने देखा कि मेरा इंटरेस्ट है तो उन्होंने उनको बहुत जो है ना इंकरेज किया. तो इस

0: वजह से हम चले गए इस करियर में।
1: सही।
0: हमें पढ़ना है इंजीनियरिंग। अब जब पढ़ने गए इंजीनियरिंग तो वहाँ मेरे अपने कुछ प्रोफेसर ने मुझसे बात कही थी कि तुम जो है ना टीचिंग में जो है ना
1: कम्युनिकेशन अच्छा है बच्ची का।
0: यस, बिकॉज यू वुड बी अ गुड टीचर।
1: सही।
0: ये मेरे अपने प्रोफेसर ने कहा।
1: उस्ताद कैसे होते हैं, कैसे बच्चे को परख लेते हैं।
0: Exactly. तो अब उन्होंने जब मुझसे कहा तब मुझे तो नहीं भाई, मुझे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना है वगैरह। फिर वही बात है भाई, आप प्लान बनाते हैं लेकिन
1: जिंदगी के अपने
0: बदलते हैं। एग्जैक्टली। तो प्लान तो था भाई PhD करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना है, लेकिन आपका प्लान अलग होता है, होता कुछ और है। तो यही हुआ कि ग्रेजुएशन के बाद जो है वो काफी अरसा मैं कशमकश में रही कि क्या करूं, मास्टर्स के लिए जाया जाए
1: या फिर
0: जॉब की जाए, क्या किया जाए वगैरह वगैरह। और कुछ अरसे ऑब्जर्वेशन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि फैक्ट इज कि मुझे 9 to 5 जॉब नहीं करना। और फिर मेरे अंदर वो असल में मेरी जो कहते हैं ना, मेरी जो जनरेशन है वो बेचारी किसी जनरेशन में नहीं आती, वो बिल्कुल 90s के एंड के और 2000 के शुरू के किसी कहीं के नहीं बेचारे, मिक्स प्लेट है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे हुआ कि उस वक्त आके मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मुझे जो है वो अपना टाइम अपनी मर्जी से चाहिए, मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए जॉब का। तो उसकी वजह से, और फिर टीचिंग में मैं पैशनेट थी क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो तब भी मैं ट्यूशन पढ़ाती थी।
1: ओके गुड।
0: तो ट्यूशन में काफी अरसे से पढ़ाती हूँ, तो जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तब वहाँ भी पढ़ाती थी इंटर की बच्चियों को वगैरह।
1: और यकीन जाने इट इज अ टास्क विच नॉट एवरीबॉडी कैन परस्यू, और किसी किसी को सूट करता है। मजे की बात ये कि आपका तो मैंने खुद देखा हुआ है कि भाई आपके तो माशाल्लाह से बच्चों की ग्रेडिंग भी इतनी, एक होता है ग्रेडिंग के पीछे भागना, अरीज का मसला कुछ और है। अरीज ग्रेडिंग के पीछे नहीं भागती, अरीज बच्चे की समझ के पीछे भाग रही होती है कि बच्चे को समझ में आ जाए।
0: मैं आपकी ऑब्जर्वेशन पे हैरान हूँ, ये बिल्कुल आप जो है ना बजा फरमाया। ऐसा है कि
1: एक उस्ताद वो होता है एक उस्ताद वो होता है जो कहता है अच्छा मैं 18-10 बच्चों को पढ़ा लूंगा, जेब में मेरी माल आ जाएगा, मैं रखूंगा और ये जा वो जा, मुझे क्या जिस बच्चे ने किया किया नहीं किया नहीं किया। अरीज क्या करेंगी, हर बच्चे को अपना ही एक टाइम देती है और एड़ी चोटी का जोर लगा देती है, डबल ट्रिपल ट्रिपल मेहनत, ओवर वर्क करती हैं खुद, और कहती हैं बस किसी तरह से बच्चे को समझ में आ जाए, बस किसी तरह से। और मुझे इस बात के पर आपकी इट्स अ वेरी रेयर थिंग क्योंकि आज के ज़माने में ना एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा वीक कर दिया गया है। वो ये जो आप चीज़ करती हैं ना, ये मैंने कहीं अल्कीमियाई के दौर के जो मैं वर्गे खोलती हूँ तो पढ़ती हूँ कि उस्ताद उस ज़माने में ऐसे हुआ करते थे, तो वो चीज़ मुझे आपके अंदर नज़र आती है।
0: देखिए इसका रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि मेरी जो अपनी एजुकेशन रही है ना, उसमें हर दौर में कहते ना हायर एजुकेशन हो गई आपकी, फिर आपकी यूनिवर्सिटी हो गई, तो हर टाइम में एक कोई ना कोई एक टीचर ऐसे रहे हैं मेरे।
1: सही, इसे कहते हैं जौहरी को हीरे की पहचान होती है। अच्छा भाई, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्योंकि आप इतना क्लोजली बच्चों के साथ भी इंटरेक्ट करती हैं, कल का दौर ये है कि भाई आप खाना भी ऑर्डर करोगे ना, टेबल पर आया है आपकी खाना। हम तो ये थे, हमें हमारा एक दिमाग था कि भाई अपनी नेमतों को आप डाउन टू अर्थ रहो और अपनी नेमतों को आप छुपा के रखो ताकि किसी की नज़र ना लगे, किसी के पास हो नहीं हो हमें नहीं पता ना, तो हम लोग कुछ और दिमाग से रेज थे। इस जनरेशन का मसला ये कि ये खाने बाद में जाएंगे, रिपोर्ट पहले डालेंगे सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई हम फलानी जगह जा रहे हैं फलाना खाना खाने।
0: भाई ये तो खुशी शेयर हो रही है ना, लेकिन बात यह है, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि मेरी जो मेरी नज़र में ये जो सोशल मीडिया में कंपैरिजन है ना, ये बिल्कुल है। और इसकी वजह से एक नया किस्म का खौफ है जो शायद हम लोगों को नहीं था। मैं ही नहीं कहूँगी कि हमारी जनरेशन में कंपैरिजन नहीं था, बिल्कुल था, बस फर्क ये था कि हमारा कंपैरिजन जो है वो हमारे खानदान के लोगों तक महदूद था, या शायद कि हमारे कुछ दोस्तों में। लेकिन यहाँ तो पूरी दुनिया में भाई जिसका सोशल मीडिया अकाउंट है उससे आपका कंपैरिजन है,
1: सब शाहरुख खान बनने के चक्कर में
0: है, ऐसा है। लेकिन एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, और वो ये कि सोशल मीडिया की वजह से मैंने ऑब्जर्व किया है कि आजकल के जनरेशन में बहुत ज्यादा जो उस साइड पर है इंटरनेट की, क्योंकि इंटरनेट की बहुत सारी साइड,
1: सही सही सही,
0: तो जो उस साइड पर है उनमें सेल्फ अवेयरनेस आ रही है, वो इस
1: अभी आ रही है। सही।
0: ओवरकम भी कर रहे हैं, आ रही है मतलब इट्स नॉट ऑल बैड.
1: सही. अच्छा अरीज, अब हमारे पास टाइम भी बहुत कम रह गया है, जाने का टाइम भी हो गया है, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर आपको अपनी यंगर सेल्फ को या ये जो जनरेशन है इसको कोई करियर के बारे में एडवाइस देनी हो या लाइफ के बारे में कोई एडवाइस देनी हो आज के हालात के मुताबिक, तो भाई क्या एडवाइस देंगी?
0: सबसे पहली बात जो मैंने तजुर्बे से सीखी है कि कितने नंबर आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता. आपके कौन सा डिवीजन आया इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्क पड़ता है कि आपके पास स्किल है या नहीं. अगर आपके पास स्किल है नोबडी केयर कि आपके ग्रेड्स क्या थे. और अगर आप टॉपर हैं लेकिन आपको काम नहीं आता, क्योंकि दुनिया तो काम पे चलती है, प्रैक्टिकल लाइफ में दुनिया काम पे चलती है. अगर आपके पास स्किल नहीं है तो फिर आपकी फर्स्ट डिवीजन और वो नंबर जिनके पीछे आप भाग रहे थे, इतना स्ट्रेस ले रहे थे, उसका कोई फायदा नहीं होगा. तो करियर से रिलेटेड तो ये बात है, लाइफ से रिलेटेड सिर्फ ये बात है कि हैप्पीनेस एंड सेल्फ कंटेंटमेंट, ये जो दो चीजें हैं ना,
1: सही,
0: ये बहुत अंदर का मामला है आपके खुद के,
1: ये खुद
0: बाहर से नहीं मिलती,
1: ये आपको खुद को
0: अंदर से कल्टीवेट करनी पड़ती है, अपने अंदर बनानी पड़ती है. तो फिर उसके ये अगर आपके नजरिया हो स्पेशली इनर पीस को लेकर, तो फिर इंशाल्लाह सब कुछ सही होता है.
1: तो भाई आज की कन्वर्सेशन ने हमें एक बात तो बहुत इम्पोर्टेंट समझा दी है कि सक्सेस की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं होती. हर जनरेशन अपने वक्त, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने चैलेंजेस और प्रायोरिटीज के मुताबिक ही सक्सेस को डिफाइन करती है. कभी एक स्टेबल जॉब और कभी फाइनेंशियल सिक्योरिटी सक्सेस की सबसे बड़ी निशानी थी, और आज पैशन, फ्लेक्सिबिलिटी, वो जो इनर पीस की बात हम कर रहे हैं वो, एंटरप्रेन्योरशिप, पर्सनल फ्रीडम और वर्क लाइफ बैलेंस भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती है जितनी किसी जमाने में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी रखती थी. लेकिन शायद शायद असल सक्सेस सिर्फ ये नहीं है कि हम कितना कुछ अचीव कर लेते हैं, बल्कि ये भी है कि जो कुछ हम अचीव कर रहे हैं क्या उस जर्नी में हम खुद को कहीं खो तो नहीं रहे. जैसा कि अरीज ने कहा कि भाई इनर पीस तभी आती है जब आप अपने आप से जुड़े रहते हो. तो भाई अरीज ने बर्नआउट के हवाले से जो ऑब्जर्वेशंस शेयर की वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थी. हो सकता है कि एक जनरेशन के लिए बर्नआउट का मतलब लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो, जबकि दूसरी जनरेशन के लिए कंट्रास्ट ऐसा हो कि भाई प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस, कंपैरिजन, ऑलवेज बी प्रोडक्टिव रहने की वो फीलिंग जो होती है ना, और वो जो दिमागी काम होता है वो भी बर्नआउट में आ सकता है. तो शायद जनरेशंस के दरमियान डिफरेंस को समझने का बेहतरीन तरीका यही है कि हम एक दूसरे से बात करें, कम्युनिकेट करें, पूछें कौन सही है कौन गलत है, ये नहीं पूछें, बल्कि ये पूछें कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर क्या सीख सकते हैं. अरीज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ आवर शो जिसका नाम है जनरेशन टॉक. हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, अपने पर्सपेक्टिव्स हमारे साथ शेयर किए. इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू.
0: सेम हियर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी.
1: तो भाई साथियों, आप भी जरा सोचिए, जितने तमाम सामीन ने हमें सुना है आप भी जरा सोचिए, आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? पैसा, पोजीशन, पैशन, फ्रीडम या सुकून? इसी नोट के साथ भाई मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे जनरेशन टॉक ऑन एफएम 107. अपनी राय हमें जरूर बताइएगा 666-22-107 पर, और चाहे तो हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं जो कि है @FM107 Qatar. अगली मुलाकात तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दूसरी जनरेशन को समझने की कोशिश कीजिए, और याद रखिए सक्सेस की रेस में सबसे जरूरी बात ये है कि मंजिल तक पहुंचते पहुंचते अपने आप से दूर ना हो. सुनते रहिए FM107, दिल से देसी. थैंक यू अरीज, थैंक यू सो मच. अब मैं वापस से उस कॉलर को कॉल करूं जिसने जिसकी रिकॉर्डिंग
0: बिचारी की रिकॉर्डिंग हो गई.
1: चले भाई,
0: थैंक यू सो मच.
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
3: दिल से देसी.
4: दोस्तों,
3: गर्मियों के मौसम में जब गर्मी अपनी शिद्दत पर होती है ऐसे वक्त में फायर इंसिडेंट्स का रिस्क भी बढ़ जाता है इसलिए रूफ टॉप्स या छत की सेफ्टी पर खास तवज्जो देना जरूरी है अक्सर बिल्डिंग्स की छतों को लोग एक्स्ट्रा सामान रखने की जगह समझकर इस्तेमाल कर लेते हैं

0: लेकिन ये आदत बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। कोई भी सामान खास करके फ्लेमेबल मटेरियल्स जैसे कि पुराने कार्टन्स, प्लास्टिक, कपड़े या पेट्रोल पेंट के डब्बे आग लगने की सूरत में बहुत जल्द आग या फ्लेम्स को फैला देते हैं। रूफटॉप या अपनी छत को साफ रखना और वक्तन फावक्तन उसको देखते रहना बहुत जरूरी है। हमेशा कोशिश करें कि छत पर फकत जरूरी ही सामान रखा जाए और वो भी ठीक तरीके से। अगर वायरिंग या इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स छत पर हैं, तो उनको भी चेक करना लाजमी है क्योंकि पुरानी या खराब वायरिंग से भी स्पार्क होकर आग लग सकती है। रेगुलर इंस्पेक्शन एक ऐसी आदत होनी चाहिए जो हर बिल्डिंग मैनेजमेंट या हर फर्द अपने घर पर लाजमी बनाए। महीने में कम से कम एक मर्तबा अपनी छत को जरूर चेक करें। सामान की सफाई करना और किसी भी अनयूजुअल स्मेल, वायर या गर्म होने वाले इक्विपमेंट्स को देखना बहुत मददगार साबित होता है। ये भी बात याद रखें कि एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना रूफटॉप और बिल्डिंग दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये इंश्योर करें कि फायर एक्सटिंग्विशर एक्सेसिबल हो, उसकी एक्सपायरी डेट चेक हो और हर वक्त काम करने की पोजीशन में हो। ये सब छोटी छोटी एहतियात आपकी और आपके आसपास रहने वालों की जिंदगी को महफूज बनाती हैं। वजारत दाखला का कहना है कि याद रखें, आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सोशल जिम्मेदारी भी है क्योंकि आपकी एहतियात से दूसरे लोग भी महफूज रहते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं, पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है, मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी। यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर।
1: FM 107 टाइम चेक, टाइम चेक, चेक चेक चेक टाइम चेक। इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे हुए शाम के 4:01, यानी इट्स टाइम फॉर,
0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: तो यस माय देसी ऑडियंस, क्या हाल चाल है? बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन FM 107 पर। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता, द रिक्वेस्ट शो सुन रहे हैं आप और पूरा एक घंटा हम साथ रहने वाले हैं। आज सिर्फ और सिर्फ मीनिंगफुल गाने होने वाले हैं, आपकी फरमाइशें और आपकी बातें और एक मजेदार क्विज भी, जहाँ पर आपका फिल्मी नॉलेज चेक होगा। अच्छा ये बताओ, कब कब आपको ऐसा लगा कि आपने कोई गाना एकदम से सुना एंड यू फेल्ट कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो गाना सिर्फ आपके लिए ही बज रहा है, उस गाने के बोल आपसे ही कुछ

कह रहे हैं और आपको लग रहा है कि दिस इज माई सॉन्ग. हाँ, अक्सर ऐसा होता है और ये तब ज्यादा होता है जब हम किसी ना किसी उलझन में फंसे होते हैं, है कि नहीं. तो सोचिए वो कौन सा गाना है जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपको इंस्पिरेशन देता है, जो आपको लाइफ लेसन सिखाता है. मतलब एक वैल्यूएबल लेसन उसने दिया ही दिया है. किसी सिचुएशन में अगर आप फंसे हैं, परेशान हैं, मूड अच्छा नहीं है, कुछ भी हो सकता है, पर सडनली आपने उसे सुना और आप वापस ट्रैक पर आ गए, तो कौन सा गाना है सोचिए और बताइए उसके पीछे की स्टोरी भी. 666-22-107 पर अपने नाम के साथ अपने डेडिकेशंस भेजिए. और आज का थीम यही है, लाइफ्स जर्नी, सॉन्ग्स दैट टीच अस वैल्यूएबल लेसंस. तो वो कौन से गाने हैं आपकी जिंदगी के. फिलहाल मेरी और मेरे दोस्तों की जिंदगी का एक गाना है जो काफी लाइमलाइट पे रहता है, एंड दैट इज फ्रॉम द मूवी मैरी कॉम, एंड व्हाट अ सॉन्ग. ये तो गाना भी और इसका वीडियो भी देखो तो ऐसी फीलिंग आती है कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, यू कैन विन, है ना. तो चलो एंजॉय करते हैं. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: यस नाउ वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप द रिक्वेस्ट शो पर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है और क्या कह रहा मजा ही आ गया इस गाने को सुनकर जिद्दी दिल ओहो। वैसे ये बता दो कि वो कौन सा गाना है जिसने मुश्किल वक्त में आपको सहारा दिया। शायद किसी गाने ने ये याद दिलाया कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, या फिर किसी गाने ने आपको रुकना सिखाया कि देखो थोड़ा रुक जाओ, भागो मत, छोटे छोटे जो पल आपकी लाइफ में आ रहे हैं उसे महसूस करो और अपनी जिंदगी को नजरअंदाज मत करो, मेक श्योर करो कि यू आर इम्पोर्टेंट। हाँ तो बस कौन सा वो गाना है आपकी लिस्ट का शेयर करो ना 6622107 पर 6622107 पर अपने नाम के साथ अपने डेडिकेशंस भेजो और अपने पसंदीदा गाने के पीछे की स्टोरी भी बताओ। यहाँ पर अभी हमें असलम की रिक्वेस्ट आई है और वो कहते हैं कि अमिता ये गाना आप प्लीज़ प्ले करो एंड आई वॉन्ट टू डेडिकेट दिस सॉन्ग टू माई डॉटर एंड वॉट अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। क्या बात है, गेस कर लिया कौन सा गाना है? डियर जिंदगी मूवी का लव यू जिंदगी। जिंदगी से प्यार करना हो तो फिर बस इस गाने को सुनो, खो जाओ, है कि नहीं? सो वील एंजॉय दिस सॉन्ग पूरा पूरा, लेकिन इसके बाद का जो गाना है ओ हो हो हो क्या रिक्वेस्ट आई है। अमर की रिक्वेस्ट है, कहते कि अमिता मैं एथलीट हूँ और मुझे जब भी लो फील होता है लाइफ में तो मैं इस गाने को सुनता हूँ। कौन सा गाना है ये? सुखविंदर सिंह की आवाज, आहा, एंड द सॉन्ग इज चक दे इंडिया, कुछ करिए कुछ करिए। डेफिनेटली ये दोनों ही गाने आपकी राहों में आने वाले हैं, पहला लव यू जिंदगी, दूसरा चक दे इंडिया कमिंग अप ऑन योर वे। आपकी प्लेलिस्ट का कौन सा गाना है जो आपकी लाइफ का इंस्पिरेशनल सॉन्ग है, बताएं जल्दी 6622107 पर 6622107 पर। अभी बने रहिए एफएम 107 पर दिल से देसी।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं। ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राह रास्त पर आ जाएं।
3: सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान आरजे तलहा और आरजे सरवर के साथ हर जुम्मा दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
4: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें। हर हफ्ते इतवार से जुमेरात सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर। आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
1: Yes, जनाब, वेलकम वंस अगेन FM 107 सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। और द रिक्वेस्ट शो की मतलब यूं कहें तो आज जो थीम चुनी गई है वो ऐसा लगता है कि हर किसी के दिल के बहुत करीब है। यहाँ पर हमारे एक लिसनर है फजल भाई, उनका कहना है कि देखो अमिता, मुझसे कोई गाना मत पूछो, हर एक गाना जो FM 107 पर बजता है ना वो मेरे मूड को काम डाउन कर देता है और हर 5 मिनट बाद मतलब मैं अच्छा फील करने लगता हूँ, चार्ज अप हो जाता हूँ। सो फजल भाई, थैंक यू सो मच फॉर सच काइंड वर्ड्स और इतने प्यारे जेस्चर के लिए। और इसी के साथ अब अगली रिक्वेस्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो बाय द वे 666-22-107 इज़ आर नंबर जिसके जरिए आप अपनी रिक्वेस्ट हम तक पहुँचा सकते हैं। और हमारे कुछ लिसनर्स हैं जो कि हमारे FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ते हैं और आरजे मीता मतलब मैं यानी मैं मेरी प्रोफाइल से भी जुड़ते हैं और रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो हम हर एक रिक्वेस्ट को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो आपको बताना चाहते हैं, अभी मुझे सोशल मीडिया से हमें रिक्वेस्ट आई है, दैट इज़ ऑफ रुमाना। और रुमाना कहती हैं कि अमिता मुझे ये गाना प्ले कर दो मेरे लिए, क्योंकि अरमान मलिक की आवाज़ मुझे पहली चीज़ तो बहुत पसंद है एंड सेकेंड जब मैं ये गाना सुनती हूँ तो मेरी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो मैं सेटल हो जाती हूँ। एक्चुअली ये गाना बहुत प्यारा है MS धोनी फिल्म का, आपको एकदम से सेटल ही कर देता है। सो डेफिनेटली इस गाने को हम पूरा सुनेंगे और उसके बाद एक बड़ी कमाल की रिक्वेस्ट आई है और ये गाना इज पर्टिकुलरली माई फेवरेट टू। और ये है अमजद ने इस गाने की रिक्वेस्ट की है और इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि अमिता ये पर्टिकुलर गाना मुझे मेरे घर के जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके जजमेंट से बचाता है। ओए होए, नज़र ना लगे, क्या बात है अमजद। वैसे कहा जाता है कि वजह कैसी भी हो

और कोई भी जरिया हो जिससे आपको सुकून मिले, दैट्स द बेस्ट वन. लेकिन जब म्यूजिक को आप अपना जरिया बनाते हैं तो दैट्स द बेस्ट हीलर, है कि नहीं? तो वो कौन से गाने हैं आपकी प्लेलिस्ट के जो आपको हील करते हैं, इंस्पायर करते हैं, जिंदगी जिंदा दिली से जीने के लिए मजबूर करते हैं? बताओ ना. 666-22-107 पर, 666-22-107 पर अपने नाम के साथ अपने डेडिकेशंस भेजो. और अभी बने रहो हमारे साथ FM 107 पर, दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी
3: एब्सोल्यूट सिनेमा।
4: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर थर्सडे रात 9 बजे से RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा। गानों के पीछे की कहानी, लेटेस्ट ट्रेंड्स और ढेर सारी मस्ती आपका

0: सुनिए टॉप 10 विद ए फॉर अमिता हर फ्राइडे शाम 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी. आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
1: हाँ जनाब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन FM 107 पर द रिक्वेस्ट शो पर. मैं आपकी ए फॉर अमिता हाजिर हो चुकी हूँ. और वो कहते हैं ना कि जिंदगी मुश्किलों से बचने का नाम नहीं है, जिंदगी उन मुश्किलों से गुजर कर आगे बढ़ने का नाम है. और अगर ऐसे आगे बढ़ने में कोई गाना हमारा साथ दे जाए तो क्या कहना है कि नहीं. तो वो कौन से आपकी जिंदगी के इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स हैं जिन्होंने आपका साथ दिया एज अ फ्रेंड, जरूर शेयर करें 666-22-107 पर अपनी स्टोरी के साथ. किसी खास को गाना डेडिकेट करना है तो वो भी कर सकते हैं 666-22-107 पर. और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं FM 107 के, और आरजे अमिता को भी सोशल मीडिया पर ढूंढ सकते हैं. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. और अगली रिक्वेस्ट थोड़ी सी सैड लग रही है लेकिन गाना बड़ा कमाल का है. और ये रिक्वेस्ट है अमन की. कहते हैं कि अमिता, मोहित चौहान की आवाज़ में मैं ये गाना सुनना चाहता हूँ और किसी खास को डेडिकेट करना चाहता हूँ, बस इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा. और कहते हैं कि आपके शो का प्रेजेंटेशन बड़ा कमाल का लगता है एंड इट ऑल्सो हेल्प्स आउट इन हीलिंग. वाह, क्या कह दिया अमन आपने, मतलब इसके बाद कैसे मैं आपका शुक्रिया करूं. लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, इट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट कि आपको हमारा शो इतना पसंद आता है एंड समहाउ कि ये आपके किसी काम भी आता है. लेकिन चलिए इसी वक्त आपके नाम ये गाना हम करते हैं. वेल, इस गाने को सुनकर ये ना सोचें कि किसी शख्स को भुला दिया, उस पल को भुला दिया, उस सिचुएशन को भुला दिया जिसने हमें दर्द दिया है कि नहीं. इस गाने को हम इस तरह से सुनेंगे. इसी के साथ मोहम्मद फयाज की रिक्वेस्ट है और कहते हैं कि अमिता, मुझे ये गाना हर एक मुश्किल की घड़ी से बाहर निकालता है. चलो इसी बात पर ये दोनों ही गाने आपकी राहों में आ रहे हैं. और आपकी प्लेलिस्ट का कौन सा गाना है जिसने हमेशा आपको संभाला है, शेयर करें ना 666-22-107 पर. और अभी बने रहिए FM 107 पर दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: हाँ जनाब, वेलकम वंस अगेन, एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। और आज माहौल हमारे द रिक्वेस्ट शो का बड़ा कमाल का हो चुका है, फुल चार्जिंग वाला। मतलब चाहे कुछ हो जाए लाइफ में, हम हार नहीं मान सकते। तो चलो इसी बात पे आपका फिल्मी नॉलेज भी चेक हो जाए।
0: क्विज टाइम।
1: तो क्विज टाइम पर एक गाने की धुन सुनो, स्टार्टिंग का जो मुखड़ा तो नहीं है लेकिन हाँ ये इंट्रो है, आप सुनो पहचानो ये गाना कौन सा है। गैस गैस कौन सा गाना है, ये आवाज तो पहचान गए होगे, अपने दलेर पाजी है। हाँ तो गैस करो ये गाना कौन सा है, 666-22-107 पर बताओ, 666-22-107 पर अपने नाम के साथ, तो फिर ये गाना मैं आपके नाम करूँगी, ठीक है। और अभी हम बढ़ते हैं डेडिकेशंस की तरफ। तो एक बहुत ही प्यारी डेडिकेशन आई है, ये जनाब है इब्राहिम और कहते हैं कि अमिता ये चेयरफुल पॉजिटिव डेडिकेशन वो अपनी रास लफान के कार पूलिंग टीम के नाम करना चाहते हैं। और अपने दोस्तों का नाम उन्होंने लिखा है, फैजल, मनीष भाई, अर्पित, सुनीर, महेंद्र पटेल और उनके सारे जो कार पूलिंग फ्रेंड्स हैं। क्या बात है। और ये गाना है,
2: एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या।
1: बहुत खूब, बिल्कुल सूट हो रहा है आपके कार की ड्राइव पर। हाँ सो डेफिनेटली ये गाना आपको हम पूरा पूरा सुनाएंगे। और उसके बाद एक हमारे रेगुलर लिसनर है प्रिंसर, उनकी बड़ी प्यारी सी कहानी है, कहते हैं कि अमिता ये गाना प्लीज़ सुना दो क्योंकि इस गाने ने मेरी बहुत हौसला अफजाई की है। जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था तो मैं ज्योमेट्री में फेल हो गया था और ये सुनने में बहुत मज़ेदार लगेगा, आपको फ़नी लगेगा क्योंकि मैं क्लास का टॉपर था। पर क्या करूं, अब ये हो गया। और उसके बाद उनके क्लास के जो सारे बच्चे थे ना, चिंगो मिंगो, वो सब उनको परेशान करते थे एंड सेवरल टाइम्स उनको याद कराते थे कि वो फेल हो गए, बट दिस वाज द सॉन्ग।
2: जिंदगी की यही रीत है।
1: इस गाने ने इन्हें काफी मोटिवेट किया। सो मिस्टर इंडिया फिल्म का ये गाना भी आगे आएगा। तो

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: हां जी वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता द रिक्वेस्ट शो पर और बिल्कुल आखिरी मुकाम पर पहुंच गए जनाब। मतलब सच में क्या सफर रहा आज का, मजे आ गए आपकी रिक्वेस्ट सुनकर और एट द सेम टाइम वो जो मोमेंट होता है ना जब आपका माइंड बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता है एंड यू बिलीव कि हाँ लाइफ में हर चीज़ अच्छे से जी जा सकती है ना। चलें वैसे क्विज टाइम पर मैंने एक गाना आपको सुनाया था और कहा था कि पहचानो जल्दी से, बताओ। हाँ तो आप में से कुछ लोगों ने पहचान लिया है, कुछ अभी भी कंफ्यूज चल रहे हैं। तो आपको बताना था गाना कौन सा है, ये गाना है रंग दे बसंती दलेर मेहंदी और चित्रा की आवाज़ में और जिन्होंने सही पहचाने उनके नाम है रियाज अनम दीपक कुमार मोहम्मद अल्ताफ मोहम्मद यूसुफ खान। तो डेफिनेटली ये गाना आपके नाम होने जा रहा है और जाते जाते कहना चाहूँगी कि आज के गानों ने ना हमें एक चीज़ तो सिखा दी है, याद दिला दी है कि वक्त कभी रुकता नहीं है, ठीक है, और अपने ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश हमें हमेशा करते रहना चाहिए, है कि नहीं। चलिए इसी बात के साथ अब आप मुझे दीजिए इजाज़त, आपकी मेरी मुलाकात अब होगी कल सेम टाइम सेम प्लेस। तब तक क्या करना है, बने रहना है हमारे साथ और अभी जाते जाते ये कहना तो बनता है हम हेरा ही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। स्टे ट्यून टू एफएम 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का अहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

0: मीम्स बने, पैराडीज बनी, फ्रांस में कूदे बुले नाम का गाना भी पॉपुलर हुआ, टेलीविजन प्रोग्राम्स में इंसिडेंट को डिस्कस किया जाता था, न्यूज़पेपर्स ने वीक्स तक यानी हफ्तों तक इस पर एनालिसिस की, लिप रीडर्स ने वर्ड्स डिकोड करने की कोशिश की, डॉक्यूमेंट्रीज बनी और जिदान का ट्रॉफी के सामने से सर झुकाए गुजरना एक आइकॉनिक स्पोर्टिंग इमेज बन गया। लेकिन इस इंसिडेंट का एक और डायमेंशन भी था। जिदान अल्जीरियन इमिग्रेंट फैमिली से बिलोंग करते थे और फ्रांस में मल्टीकल्चरल आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंट सिंबल थे, इसलिए कुछ डिस्कशंस फुटबॉल से बाहर निकाल कर आइडेंटिटी, रेस्पेक्ट, इमिग्रेशन और सोशल बैकग्राउंड तक भी पहुंच गए। यह इंसिडेंट एक स्पोर्ट्स कंट्रोवर्सी से बढ़कर कल्चरल डिस्कशन बन गया। लेकिन जिदान की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अगर जिदान का करियर 2006 पर खत्म हो जाता तो शायद उनकी लेगेसी सिर्फ एक ब्रिलियंट फुटबॉलर और कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप फाइनल के कप्तान की होती। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: وعدت.
1: FM 107 पर पैगाम.
2: जैसा कि आप जानते हैं कि जिंदगी में हम सब मुख्तलिफ अदवार से गुजरते हैं और अच्छे और बुरे वक्त दोनों से हमारा वास्ता पड़ता है. वक्त के समझाने का अंदाज उमूमन सख्त और तकलीफ दे होता है, मगर इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि वक्त की समझाई हुई बात हतमी होती है, जो पूरी जिंदगी के लिए काफी होती है. अच्छा वक्त तो अच्छी तरह से गुजर जाता है, लेकिन बुरे वक्त में भी एक अच्छाई जरूर होती है, क्योंकि जैसे ही बुरा वक्त आता है

0: इसके नतीजे में कोई तो संवर जाता है तो कोई बिखर जाता है। दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हर किसी को बुरे वक्त से महफूज रखे।
1: पैगाम ऑन FM 107
2: number one hits music station anytime anywhere
3: yes anytime anywhere
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107 log into our website urduradio.qa or download the app QMC now।
4: जिदान ने फुटबॉल से डिस्टेंस लिया यानी दूरी बरकरार रखने का एक फैसला लिया, फिर कोचिंग की दुनिया में आए और फिर रियल मद्रिद। यहाँ दोस्तों यहाँ से उनकी दूसरी पारी शुरू हुई और ऑनेस्टली कहता हूँ मैं यहाँ पे ये इनिंग्स भी किसी फेरी टेल से कम नहीं थी। रियल मद्रिद में जब आए वो रियल मद्रिद के एज अ प्लेयर वाज इक्वली ब्रिलियंट इक्वली फेमस और रियल मद्रिद क्लब के लिए जब खेलते तो एक पॉपुलर एक सेंटिमेंट था जिनेदीन जिदान को लेकर विथ रियल मद्रिद फैंस और रियल मद्रिद क्लब के प्रेसिडेंट ने उन्हें अपने क्लब का उनको हेड कोच बनाया और उस वक्त रियल मद्रिद के ला लीग के परफॉर्मेंसेस यूएफए चैंपियंस लीग में परफॉर्मेंसेस वाज वेरी बैड। तो रियल मद्रिद अथॉरिटीज यानी मैनेजमेंट ने ये सोचा, क्लब मैनेजमेंट ने, व्हाई नॉट गिव हिम अ चांस। जी हाँ, जब बात हो रही है रियल मद्रिद और जिनेदीन जिदान के कोच बनने पर और जिनेदीन जिदान का ये प्रोग्राम जो है बेसिकली उनके ऊपर डेडिकेटेड है, द गेम चेंजर, हेडबट से लेकर कोच बनने तक का जो सफर है उसके बारे में आज हम जिक्र कर रहे हैं। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। तो रियल मद्रिद के कोच के तौर पर जिदान ने वो काम किया जो मॉडर्न फुटबॉल में बहुत कम मैनेजर्स कर सके हैं। उन्होंने रियल मद्रिद को लगातार 3 चैंपियंस लीग टाइटल जितवाए और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, जस्ट 10 इयर्स अगो 2016 2017 2018 मुसलसल 3 चैंपियंस लीग। अब सोचिए जरा, सोचिए ये खिलाड़ी के तौर पर सो मच पॉपुलर सो मच फेमस वर्ल्ड ओवर, उसके बाद उन्होंने अपने कोचिंग में भी वो दबदबा दिखाया, वो मतलब करिश्मा दिखाया जो कि आज भी लोग याद करते हैं कि हाँ बंदे में मतलब इतना भी है कि वो कोच भी इतना ही सक्सेसफुल है जितना खिलाड़ी के तौर पर थे। वो 3 कंसेक्यूटिव यूएफए चैंपियंस लीग टाइटल्स और ये अचीवमेंट ने जिदान की मैनेजरियल रेपुटेशन को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब वो सिर्फ लेजेंडरी फुटबॉलर नहीं थे, अब वो सक्सेसफुल कोच भी थे। पीपल स्टार्टेड टेकिंग हिम सीरियसली एज अ कोच। उन्होंने दिखाया कि उनकी लीडरशिप सिर्फ पिच पर यानी मैदान पर ग्राउंड पर फुटबॉल खेलने तक लिमिटेड नहीं थी, वो ड्रेसिंग रूम मैनेज भी कर सकते थे। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी अ गुड प्लेयर एंड अ गुड कोच एट द सेम टाइम। वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को हैंडल कर सकते थे, प्रेशर एब्जॉर्ब कर सकते थे और सबसे इंपॉर्टेंट बिग मोमेंट्स में टीम को परफॉर्म करवा सकते थे। बिकॉज जिनेदीन जिदान उसी दौर से गुजरे होंगे अपने प्लेयर्स की जिंदगी में, जब प्लेयर्स रह चुके अपने करियर के टाइम में, ही न्यू द सॉर्ट ऑफ प्रेशर, किस तरह के प्रेशर्स होते हैं अगेंस्ट स्मॉल क्लब्स अगेंस्ट स्मॉल टीम, बड़े क्लब के अगेंस्ट में किस तरह का माइंडसेट रखना चाहिए, किस तरह का यू नो एटीट्यूड रखना चाहिए। उसी तरह से कोच जब बने, जब मैनेजर बने, दोज थिंग गॉट ट्रांसलेटेड एज अ मैनेजर और वो अपने खिलाड़ी को बताते थे। देखिए जो मैनेजर जो कोच ड्रेसिंग रूम को हैंडल कर ले वो सबसे सक्सेसफुल होता है। मैदान पे खेल कुछ और है, असल गेम कैलकुलेशन मैथमेटिक्स जो है वो ड्रेसिंग रूम के अंदर ही चलता है। यहाँ जिदान की स्टोरी का पैराडॉक्स और इंटरेस्टिंग हो जाता है। 2006 में एक इमोशनल मोमेंट ने उनकी टीम को डैमेज किया था, लेकिन कोचिंग करियर में वो कामनेस और मैन मैनेजमेंट के लिए मशहूर हुए। यानी जिस खिलाड़ी ने एक वक्त अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया, उसी शख्स ने बाद में डजन ऑफ प्लेयर्स के इमोशंस और ईगोस मैनेज किए। कैन यू बिलीव दिस? जस्ट इमेजिन करिए, सोचिए, तसव्वुर करिए कि क्या ये मुमकिन हो सकता है। लेकिन जिनेदीन जिदान ने ये पॉसिबल करके दिखाया कि ये हो सकता है। दैट मैजिक वर्क विद जिनेदीन जिदान एट रियल मद्रिद। लेकिन अफसोस की बात है कि 2021 के बाद खामोशी हमें देखने को मिला और रियल मद्रिद से दोबारा वो अलग हुए 2021 में। और फिर एक अजीब चीज़ हुई, फुटबॉल की दुनिया को यकीन था कि जिदान जल्द ही किसी और मेजर क्लब का कोच बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक के बाद एक रूमर्स आते रहे, लेकिन जिदान ने कोई क्लब जॉब एक्सेप्ट नहीं की। 5 साल तक वो कोचिंग से दूर रहे और अब 2026 में हमें पता चला कि वो इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे थे। आपको भी पता होगा, आप लोगों ने भी न्यूज़ में या टेलीविजन सेट्स में या आपके यू नो सोशल मीडिया के

जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से आप लोगों को मालूम चला होगा कि जिनेदिन जिदान फ्रांस का हेड कोच, और जिदान के मुताबिक उन्हें पिछले 5 सालों में क्लब से ऑफर्स मिलते रहे लेकिन उन्होंने उन सब को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनका टारगेट फ्रांस नेशनल टीम का जॉब था, हाई प्रोफाइल जॉब। फ्रांस एक मजबूत यूरोपीय टीम, आई मीन यू नो फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यू नो आज के दौर में अगर मोस्ट कंसिस्टेंट यूरोपियन साइड्स में से वन ऑफ द टीम जिसके बारे में मैं कह सकता हूँ फ्रांस है फ्रॉम द यूरोप। उन्होंने इस पोजीशन को अपना ड्रीम बताया और फिर 28 जुलाई 2026 वो दिन आ गया, देन ही रियलाइज हिज ड्रीम, और दैट वॉज द मौका, दैट वॉज द अपॉर्चुनिटी, और कह लें दैट वॉज अ मोमेंट कह लें, जिदान वॉज वेटिंग फॉर इट। और जिदान की वापसी हुई फ्रांस में, फ्रेंच फुटबॉल फेडरेशन ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जिनेदिन जिदान फ्रांस के नए हेड कोच हैं। उन्होंने दिदिये देशॉम की जगह ली। देशॉम ने 14 साल तक फ्रांस को कोच किया था। ये देशॉम ही जिदान के साथ खेला था 1998 वर्ल्ड कप में जब फ्रांस को जीत हुई थी, वर्ल्ड कप टाइटल जीतने में वो कामयाब थे। देशॉम वॉज वन ऑफ द मोस्ट यू नो वेरी डेडिकेटेड प्लेयर्स ऑफ फ्रांस, और 14 साल तक वो फ्रांस के कोच बने। 2018 में फ्रांस को टाइटल भी जितवाया, आई मीन वर्ल्ड कप टाइटल एज अ मैनेजर, यूनिक रिकॉर्ड है उनके पास। और उनके एरा में जैसे मैंने कहा कि रशिया में फ्रांस ने 2018 वर्ल्ड कप जीता, क्रोएशिया को हराया, 2022 वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचे और 2026 वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल तक गए, तो इट्स अ रिकॉर्ड वाज गुड। लेकिन 2026 वर्ल्ड कप में स्पेन के खिलाफ सेमीफाइनल में 2-0 की हार के बाद देशॉम का लॉन्ग एरा खत्म हुआ और फ्रांस ने बैटन जिदान को दे दी, और जिदान का कॉन्ट्रैक्ट 4 साल का है, यानी उनका मैंडेट 2030 वर्ल्ड कप तक जाता है और यहां से एक नया चैप्टर शुरू होता है। दोस्तों जिदान के अपॉइंटमेंट के वक्त उनकी इमोशंस भी क्लियरली नजर आ रही थी, वाज वेरी इमोशनल जब उन्हें अपॉइंट किया गया, एंड उनके स्पीच में भी उन्होंने ये कहा कि ये वो जॉब है जो मैं चाहता था। उन्होंने कहा कि फ्रांस टीम को कोच करना उनका एक ख्वाब था, उनके लिए ये सिर्फ एक और कोचिंग असाइनमेंट नहीं थी, ये वो पोजीशन थी जिसका वो 5 साल तक इंतजार करते रहे। वेरी क्लियरली आई मीन ही सेड दैट क्लब कोचिंग में वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे बिकॉज बहुत हो गया रियल मैड्रिड का एक्सपीरियंस, तो उसके बाद ही डिडंट टेक अप एनी कोचिंग जॉब इन अ क्लब, तो उनका टारगेट था नेशनल टीम। दर की नेशनल टीम में जब कोचिंग करवाते वो प्रोफाइल ही अलग, यू नो यू कम्पीट एट द टॉप लेवल, वर्ल्ड कप, कॉन्टिनेंटल कप जैसे यूएफए चैंपियंस लीग है और नेशंस कप, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं नेशनल टीम के कोच होने से आपके जो प्रोफाइल है वो ज़्यादा यू नो मजीद बढ़ जाता है। जिदान ने कहा कि रियल मैड्रिड छोड़ने के बाद उन्होंने क्लब ऑफर्स एक्सेप्ट नहीं किए क्योंकि फ्रांस के साथ काम करना ही वो चीज थी जो वो करना चाहते थे। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्यों? अब बताता हूँ क्यों। क्योंकि जिदान ने अपने करियर के पीक पर लुक्रेटिव क्लब अपॉर्चुनिटीज के बजाय पेशेंस चूज की, उन्होंने वेट किया, इंतजार किया, सबर, और अब उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिल गई है। अब जिदान के सामने सबसे बड़ा चैलेंज, लेकिन ड्रीम जॉब मिल जाना और ड्रीम जॉब में सक्सेसफुल होना दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं दोस्तों। जिदान के सामने एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। फ्रांस के पास दुनिया के ऐसे कई मारूफ खिलाड़ियों में से कुछ ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जैसे कि किलियन एम्बापे, माइकल ओलिसे, ब्रैडले बारकोला, डिजायर डुओ, और एक ऐसी स्क्वाड जिसमें डेप्थ भी है और टैलेंट भी। लेकिन टैलेंट के बावजूद फ्रांस को 2026 वर्ल्ड कप में डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा। सबने सोचा था, मैंने भी सोचा था कि फ्रांस इज द फेवरेट टू विन 2026 का वर्ल्ड कप, मुझे लगा था। लेकिन मैं वो ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई जिसको कहते हैं कि फेवरेटिज्म की बात कर रहा हूँ, टीम के जो टीम में जो डेप्थ इन डेप्थ टैलेंट मुझे नजर आ, उसके बेसिस पर मैंने ये सोचा था कि फ्रांस एटलीस्ट विल गो टू द फाइनल, जीते या ना जीते, लेकिन सेमीफाइनल में ही उनको हारना पड़ा अगेंस्ट द इवेंचुअल चैंपियन स्पेन। होता है कभी कभार टैलेंटेड साइड, जैसे स्पेन के बारे में भी कहा गया था कि स्पेन 2022 वर्ल्ड कप में इतना, मतलब आई वुड नॉट से कि एज अ स्क्वाड

0: was not bad. It was full of youngsters, full of young players. And एक ट्रांजिशन उस टाइम हमें नज़र आया. एक ट्रांजिशन के बाद ये इसी यंग प्लेयर्स ने आज यू नो स्पेन को वर्ल्ड कप जितवाने में मदद की. तो वैसे ही हो सकता है कि जैसे स्पेन के साथ हुआ है कि फ्रांस 2030 वर्ल्ड कप भी जीत ले. आई मीन एनीथिंग इज़ अ पॉसिबिलिटी. एंड फ्रांस के लिए अगर जिदान वर्ल्ड कप जीत ले तो शायद 2006 का वो फाइनल थोड़ा भुला पाएगा एज अ प्लेयर जिस वक्त उन्होंने मतराजी को हेडबट किया था. तो मुझे लगता है कि कुछ स्ट्रेटेजिकली जिदान ने हैज टेकन अप दिस जॉब ऑफ फ्रांस कि फ्रांस को वर्ल्ड कप चैंपियन बनाना है, बनता है. एंड 2030 तक मैं वेट कर लूंगा और 2030 में वर्ल्ड कप में जितवाऊंगा फ्रांस को. हो सकता है इनका हदफ हो, इनका स्ट्रेटेजी हो, नोबडी नोज. नोइंग जिदान एंड नोइंग हिम एवरीबडी एज अ पर्सनैलिटी वेरी क्वाइट वेरी काम. और यहाँ पर कहना बड़ा मुश्किल होगा कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है. अब जिदान को टीम को रिबिल्ड नहीं बल्कि रिफाइन करना है. दैट वुड बी हिज यू नो प्रायोरिटी. रिबिल्ड करने की कोई जरूरत नहीं. जैसे मैंने कहा कि फुल ऑफ टैलेंट, उन्हें फ्रांस की अटैकिंग पावर को मेंटेन करते हुए डिफेंसिव बैलेंस भी इम्प्रूव करना होगा. और सबसे अहम बात, उन्हें अपनी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करनी होगी. यहाँ फ्रेंच टीम इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड क्योंकि देशों और जिदान दो बिल्कुल मुख्तलिफ फुटबॉल पर्सनैलिटीज हैं. देशों का फुटबॉल प्रैग्मेटिक, स्ट्रक्चर्ड और रिजल्ट ओरिएंटेड था. जिदान की प्लेइंग फिलोसफी नेचुरली अटैकिंग और टेक्निकल फुटबॉल के करीब समझी जाती है. देखिए जिदान एज अ प्लेयर आपको पता होगा कि ही वॉज एन अटैकिंग मिडफील्डर. गोल भी करते थे, मूव भी तैयार करते थे अपने साथी खिलाड़ी के लिए. तो एक तरफ ये देखा जा रहा है कि एज अ प्लेयर उनकी पर्सनालिटी किस तरह के वो खिलाड़ी थे. तो अगर वो यू नो अटैकिंग प्लेयर थे तो डेफिनेटली यू वुड लुक फॉर दोज अटैकिंग यू नो स्पार्क इन हिज टीम. और देशॉम के बारे में बताऊं कि वो डिफेंसिव मिडफील्डर थे अपने टाइम में. तो एक होता है अपना जो नज़रिया होता है वो आपके टीम पे यू नो इट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर टीम. सो दैट एग्जैक्टली व्हाट जिदान इज़ गोइंग टू डू नाउ कि जो नज़रिया उनका था दिशाओं का उसको थोड़ा चेंज करना है. जिदान परफेक्ट नहीं थे, ना प्लेयर के तौर पर, ना इंसान के तौर पर, ना कोच के तौर पर. लेकिन शायद इसी वजह से वो इतने फैसिनेटिंग हैं. उनकी स्टोरी में सब कुछ है. जीनियस, सक्सेस, फेलियर, इमोशन, कंट्रोवर्सी, रिडेम्पशन और अब रिस्पॉन्सिबिलिटी. 2006 में जिदान ने अपने टेम्पर को कंट्रोल नहीं किया और आज 2026 में उनके पास दूसरे प्लेयर्स के टेम्पर, प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 20 साल बाद. यह आयरनी फुटबॉल हिस्ट्री की सबसे इंटरेस्टिंग आयरनीज में से एक है. क्या जिदान अपनी सबसे बड़ी गलती को सबक बना सकते हैं? एक कोच के तौर पर जिदान का सबसे बड़ा चैलेंज टैक्टिकल नहीं हो सकता, हो सकता है साइकोलॉजिकल हो. उन्हें प्लेयर्स को समझाना होगा कि हाई प्रेशर मोमेंट्स में इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है. क्योंकि इंटरनेशनल फुटबॉल में एक मैच, एक मोमेंट, एक रेड कार्ड पूरी कैंपेन बदल सकता है. और जिदान इस बात को किसी और से बेहतर नहीं समझते हैं. उन्होंने खुद इसका एक्सपीरियंस किया है. उन्होंने देखा है कि एक सेकेंड का डिसीजन किस तरह करियर की सबसे आइकॉनिक तस्वीर बन सकता है. इसलिए शायद जिदान के प्लेयर्स को मेंटल प्रेशर और इमोशनल कंट्रोल के हवाले से जो लेसन्स मिलेंगे वो किसी टेक्स्ट बुक से नहीं बल्कि एक लिविंग एग्जांपल से मिलेंगे. और मतराजी 20 साल बाद भी मतराजी का नाम जिदान के साथ लिया जाता है. लेकिन वक्त ने दोनों की स्टोरीज को अलग अलग डायरेक्शंस में ले गया. मतराजी वर्ल्ड कप विनिंग इटाली टीम का हिस्सा रहे, जिदान फुटबॉल के ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में शुमार हुए, फिर रियल मद्रिद के सक्सेसफुल कोचेस में से एक बने और अब फ्रांस के हेड कोच हैं. यानी जिस इंसिडेंट ने जिदान के प्लेइंग करियर को एक कंट्रोवर्शियल नोट पर ख़त्म किया, आज वो इंसिडेंट उनकी पूरी स्टोरी का सिर्फ एक चैप्टर रह गया है, पूरी किताब नहीं. 2026 का जिदान वो जिदान नहीं जो 2006 में बर्लिन से बाहर निकला था. वो जिदान अब 20 साल ओल्डर है, एक्सपीरियंस के साथ, कोचिंग सक्सेस के साथ, फेलियर्स के साथ और सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंस के साथ. उन्होंने 5 साल इंतज़ार किया अब फ्रांस की जर्सी उनके प्लेयर्स पहनेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशंस वो जिदान के कंधों पर होंगी। फ्रांस के फैंस सिर्फ रिजल्ट्स नहीं चाहेंगे, वो जिदान फुटबॉल देखना चाहेंगे, वो अटैकिंग फुटबॉल चाहेंगे, वो क्रिएटिविटी चाहेंगे और सबसे बढ़कर वो ट्रॉफीज चाहेंगे, क्योंकि जिदान के लिए फ्रांस की नेशनल टीम का मतलब सिर्फ एक कोचिंग नौकरी नहीं, कोई असाइनमेंट नहीं, ये उनकी फुटबॉलिंग आइडेंटिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। 2030 का कॉन्ट्रैक्ट जिदान के पास है, 2030 वर्ल्ड कप तक जिदान का ये कॉन्ट्रैक्ट है। 2030 का वर्ल्ड कप स्पेन, पोर्चुगल और मोरक्को में होगा, और अगर जिदान अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो उनके लिए ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कल कंप्लीट करेगा। एक प्लेयर के तौर पर वर्ल्ड कप विनर, एक कोच के तौर पर फ्रांस के वर्ल्ड कप कैंपेन के लीडर, और बीच में 2006 का वो कंट्रोवर्शियल फाइनल, ये कहानी ऑलमोस्ट सिनेमैटिक है। 1998 जिदान वर्ल्ड चैंपियन, 2006 जिदान रेड कार्ड, 2016 से 18 जिदान चैंपियंस लीग विनिंग कोच, 2026 जिदान एज अ फ्रांस मैनेजर, 2030 क्या फ्रांस को दोबारा वर्ल्ड कप जितवा सकेंगे जिनेदिन जिदान? ये सवाल अभी जवाब मांगता है और इसका जवाब सिर्फ वक्त देगा। तो आखिर जिनेदिन जिदान का हेडबट गेम चेंजर क्यों था? क्योंकि उस एक मोमेंट ने हमें यह समझाया कि स्पोर्ट सिर्फ टैलेंट का नाम नहीं, स्पोर्ट प्रेशर का नाम भी है, इमोशंस का नाम भी है, और स्पोर्ट इंसानी वीकनेस का भी नाम है। जिदान ने उस रात एक गलत डिसीजन लिया, लेकिन उनकी कहानी उस डिसीजन पर खत्म नहीं हुई। उन्होंने रियल मद्रिद के साथ अपने कोचिंग करियर में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस हासिल की। 25 सितंबर को तुर्की के खिलाफ जब जिदान पहली मर्तबा फ्रांस के डगआउट में कॉम्पिटिटिव मैच के लिए खड़े होंगे, तो फुटबॉल की दुनिया एक बार फिर उनकी तरफ देखेगी। इस बार सवाल ये नहीं होगा कि जिदान अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं, सवाल ये होगा क्या जिदान फ्रांस को दोबारा दुनिया के टॉप पर ले जा सकते हैं, क्या वो 1998 की यादों को 2030 की रियलिटी में बदल सकते हैं, क्या वो डेशॉम के सक्सेसफुल एरा के बाद फ्रांस को एक नई आइडेंटिटी दे सकते हैं, और क्या वो अपनी कहानी का सबसे खूबसूरत चैप्टर अब कोच के तौर पर लिखेंगे? जवाब अभी बाकी है, लेकिन एक बात तय है दोस्तों, जिनेदिन जिदान की कहानी 2006 के हेडबट पर खत्म नहीं हुई, वो कहानी अभी भी जारी है और शायद असल गेम चेंजर अब शुरू हुआ है। गेम चेंजर सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। गेम चेंजर सीजन 2
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: FM 107 टाइम चेक
2: हाँ जी हैवी मी टाइम फॉर टाइम चेक एफएम 107 की स्टूडियो की घड़ी में 6:02 और आप सुन रहे हैं शो
3: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
4: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
2: मंगलवार क्या है हाल चाल ये जरूर बताइएगा 666-22-107 पे और आज एक बड़े बेहतरीन तो नहीं ठीक ठाक काम भर का किस्सा हुआ है वो ये कि अब मुझे कतर के बारे में ये बात बहुत अच्छी भी लगती है मैं गाड़ी चला रहा था तो क्या है कभी कभार आपसे गलती हो जाती है आपको थोड़ी देर में रियलाइज होता है लेकिन बेस्ट बात कतर की ये है कि अगर आपसे गलती हो गई आप जिससे जिसके सामने आपसे गलती हुई है या दूसरे कार वाले के सामने आपने एकदम से टर्न ले लिया हो तो उसका मूड खराब हो जाता है ना लेकिन आप बस हाथ उठा दे तो वो समझ जाता रहे सॉरी बोल लिया हाँ ना तो ये बेस्ट बात लगती है मुझे भाई मतलब आपसे कुछ भी गलती हो जाए है ना हो सकता है कभी कभार आप थोड़ा अटेंशन नहीं दे रहे हैं आपने इंडिकेटर दिया और मुड़ गए आपने देखा भी नहीं सही से साइड मिरर तो आपको ये लगता है कि यार ये तो गलती कर दी है मैंने अब वो आएगा सामने गुस्सा आएगा लेकिन आप हाथ उठा देते और ऐसे में एक दूसरे के बीच वार्तालाप हो जाती है क्या बेस्ट बात है यार इसमें कोई मसला नहीं होता वार्तालाप हो गई ऐसे ही किसी और ने गलती करी उसने हाथ दिखा दिया आपका मूड खराब है लेकिन वार्तालाप कॉन्वर्सेशन हो गया कि हाँ ठीक है भाई भाई भाई अपना भाई है ये सॉरी बोल लिया है और ऐसे कॉन्वर्सेशन हो जाता है तो मज़ा आ जाता है लेकिन मैं उस दिन का सोच रहा हूँ कि यार जब AI अपनी जॉब ले लेगा है ना जब वो ड्राइवर्स जो हैं रहेंगे नहीं कार में और अगर हमसे गलती हुई तो हम हाथ किसको दिखाएंगे या फिर जो कार के अंदर ड्राइवर है ही नहीं अगर उससे गलती हो गई तो वो हाथ किसको दिखाएगा तो ये मेरे को एक समझ नहीं आ रहा भाई कि कैसे चलेगा तो आज मैं सोच भी रहा था कि इसी के आसपास का एक बेहतरीन सवाल भी जो मेरे जहन में बहुत दिनों से चल रहा था उसी सवाल को लेकर मैं आज आया भी हूं और आज का सवाल AI को लेकर है ऐसा कार के ड्राइविंग को लेकर नहीं है चिल करो सवाल और जो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ 2-4-6 महीने 10 महीने में बार बार भी पूछा जाएगा

0: और सवाल है कि ऐसी कौन सी जॉब है जिसको एआई टेक ओवर नहीं कर सकता। भाई साहब, अभी तक आपने देखा कि हम मानते हैं चलो अकाउंट की जो जॉब है वो भी कर सकता है, लेकिन उसमें भी बड़े केस हैं यार। ऐसा थोड़ी है कि आपने चुटकी बजाया और एआई इतना ज्यादा ट्रेन हो गया कि अकाउंटेंट की जॉब ले गया। ठीक है, सेल्स मैनेजर, सेल्स की जॉब कैसे ले पाएगा? ऐसे दर्जनों काम है जिसकी जरूरत, जिसमें जरूरत इंसान की पड़ती ही पड़ती है। लेकिन सवाल तो ये बहुत ही मजेदार है भाई, ऐसी कौन सी जॉब है जो एआई टेक ओवर कर ही नहीं सकता, एआई वो काम कर ही नहीं सकता। और मुझे लगता है जैसा क्या कतर में तो कार जो है वो रोबोट वाली चल सकती है, एआई के थ्रू चला सकते हैं आप। अब उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी होता यह है कि बहुत ज़्यादा ट्रेन करना पड़ता है, एक इंसान को जितना ट्रेन करना पड़ता है उससे कहीं ज़्यादा। इंसान क्या है, धीरे धीरे धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको ट्रेनिंग हो जाती है, लेकिन एआई को क्या, अगर आपने अपनी कोई कंपनी बनाई तो उसको ट्रेन करना पड़ता है। हालांकि एआई को भी बहुत लंबे वक्त से लोग ट्रेन कर रहे हैं और ट्रेनिंग चल रही है, और चांसेस ये हैं कि ये एआई इंसान से पहले सीख जाए, और चांसेस हैं क्या है ही ऑब्वियसली। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल तो उठता है कि ऐसी भी तो कोई जॉब होगी ना जिसको एआई नहीं कर सकता। क्योंकि कुछ दिनों में मैंने देखा सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा चल रही है कि जो सिलाई करने वाले लोग हैं ना, तो उनके माथे पे एक कैमरा लगा हुआ है, वो कैमरा उनके सिलाई करने के पैटर्न को नोट करता है, उनके हाथ चलाने के पैटर्न को नोट करता है, उंगलियां चलाने के पैटर्न को नोट करता है, और पैर कैसे वो इस्तेमाल करते हैं, उनकी नज़रें कहाँ कहाँ जाती हैं, तो वो पूरा कैमरा जो है वो सब देख रहा होता है। तो क्या सिलाई करने वाले जो लोग हैं क्या उनकी नौकरी में भी, ठीक है। फिर उसके बाद एक और मैंने वीडियो देखी कि जो बाल काटने वाले हैं उनका भी, लेकिन ये वाला रिस्की है। मुझे लगता है कि कितने भी बेहतरीन एआई वाले या कितनी भी बेहतरीन मशीनें आ जाएं, भाई साहब सलून के जब जाएंगे तो डर तो लगेगा कि पता नहीं सर पे मशीन लगा दी, हाँ वो आपके हिसाब से आपके डिज़ाइन के हिसाब से काट तो देगा, लेकिन एक केस है कि अगर उस मशीन में कुछ खराबी हुई तो बाबा सुत जाएंगे अपन। क्या मालूम बैटरी खत्म हो गई, वहीं पर मशीन रुक गई, मशीन लेके क्या घर जाओगे? तो क्या करोगे? ये तो एक टेंशन वाली बात है, लेकिन फिर भी इन सब के बीच एक सवाल तो बनता है, ऐसी कौन सी जॉब है जिसे एआई टेक ओवर नहीं कर सकता। आपको बताना है 666-22107 पे, 666-22107 पे।
1: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील,
2: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: एक और जो जॉब है जो मुझे लगता है कि कोई भी एक तो करना भी पसंद नहीं करेगा और और ले भी नहीं पाएगा, वो है जो सफाई वाले आते हैं ना, जो घरों में मेड रहती हैं, है ना, उनकी जॉब चली जाए ये भी मुश्किल है एआई के थ्रू। आजकल तो ये भी मशीनें आ रही है ना जो झाड़ू पोछा भी घर में लगा दे रही हैं, उनके अंदर मैप सेट कर दो, वो गोल गोल होती है ना, और घर में साफ सफाई तो कर दे रही। लेकिन आंटी से अगर कह दो कि आंटी वो कपड़ा भी लपेट दो तो वो बढ़िया कर देती है, ये मशीन वो नहीं कर पाएगी। आंटी से कह दो आंटी रोटी बना दो यार आज, तो मशीनें तो रोटी नहीं बना पाएंगी ना, तो उसके लिए तो आंटी काम आएंगी, अपना काम फ्री हो जाएगा। तो मेड का काम मुझे लगता है सबसे बेस्ट है, उनकी जॉब कोई एआई नहीं ले पाएगा। बाकी मशीनें बन जाए उस एआई को ट्रेन करते हो भी सकता है, यू नेवर नो, फ्यूचर के बारे में अपने को क्या मालूम। बाकी मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, और ये मैसेज तौफीक साहब का है, सलाम वालेकुम, सलाम हबीबी कैसे हैं। फिर एक और मैसेज है इकबाल साहब का, सलाम वालेकुम भाईजान, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग कैसे हैं। एआई नहीं बना सकता क्योंकि एआई फ्रेंड नहीं बना सकता क्योंकि फ्रेंड किसी का कहा सुनती नहीं है। अब समझ लो फ्रेंड की जगह इनने क्या लिखा। ओके ठीक है, एआई फ्रेंड नहीं बना सकता क्योंकि हाँ, तो मतलब एआई को फ्रेंड की जरूरत भी क्या है, उनके अंदर कौन सा इमोशन चल रहे हैं भाई, वो कौन सा रावण का या किसी और का तरह रोबोट बना दे रहा है, चिट्ठी थोड़ी है यार वो, उसके अंदर इमोशन आ जाएगा। तो बहुत दूर की बात है। फिर उसके बाद देखो ये मैसेज है, द पर्सन हु एंटर डेटा फॉर एआई टू वर्क लाइक डेटा साइंस। ओ फो, क्या बात है, फराज अहमद ने बिल्कुल सही बात कही है। जिस एआई को ट्रेन करने के लिए जो बंदा लग रहा है

उसकी जॉब तो रहेगी। हाँ यार, ये एक बेस्ट क्रिएटिव जवाब है यार, ये क्रिएटिव जवाब है। बाकी आप बताएं, जो सुन रहे हैं, जिनको लगता है कि यार मेरी जॉब तो देखो कोई भी नहीं ले पाएगा, आप क्या ऐसा काम करते हैं या ऐसी जॉब जिसे AI टेक ओवर नहीं कर सकता है, वो जरूर बताएं 666-22107 पे। बाकी लोगों के मैसेज की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर बाकी लोगों के मैसेज कुछ ही देर में FM 107 पे। करण नवानी की आवाज में सात समंदर पार, ये गाना सुनो FM 107 पे वापस कुछ ही देर में, दिल से देसी।

0: क्या बात है
1: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
2: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
0: हाँ जी एफएम 107 दिल से देसी अनप्लग्ड इवनिंग ये शो 6 से लेकर 7 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है और इस बीच सवाल बड़ा ही आसान सा है कोई टेंशन भरा सवाल नहीं है आप ऐसे रोजमर्रा ऐसे लोगों के साथ या ऐसे लोगों के बीच होते होंगे जब आपको एहसास होता होगा यार इसकी जॉब कितनी बेस्ट है लेकिन इसी के बीच एक और सवाल बनता है कि क्या इसकी जॉब एआई ले सकता है तो आप लोगों को देखते हैं लोगों के आसपास रहते हैं ऐसी कौन सी जॉब आपको लगती है लोगों की जिसे एआई टेक ओवर नहीं कर सकता एआई नहीं ले सकता क्योंकि आजकल ये बात बहुत आम हो गई है यार AI तुम्हारी जॉब ले जाएगा AI सारी जॉब ले जाएगा अरे मेरे ठेंगे से AI नहीं ले जा पाएगा यार और इकबाल भाई ने एक बात कही है दिल जो है वो गार्डन गार्डन भी हो गया वो ये कि AI RJ वाली जॉब नहीं ले सकता क्या है जो RJ फजील भाई के साउंड में जो बात है उफ ओम ये देखो लग रहा गाना बजवाना चाह रहा अपना इकबाल साहब ये बात तो सही है RJ की जॉब देखो लेना मुश्किल दो वजह से पहला कि

हमारे पास कई बार वो बातें होती हैं जो एआई के पास तो नहीं हो पाएगी। एआई टहल थोड़ी रहा है, एआई तो सिस्टम में है और हम टहल रहे हैं भाई साहब। उसको क्या पता है कि मतार कदीम में एक चाय की दुकान है भाई साहब, उसका जो पकौड़ा उसके अंदर जो समोसा है लाजवाब है। अब एआई को क्या पता है किसी किसी समोसे में चिकन भी होता है भाई, आलू और चिकन दोनों होता है। ये एआई को क्या ठेंगा बताओ। एआई को ये पता चल जाएगा कि मॉल में क्या हो रहा है इस हफ्ते, लेकिन एआई को ये पता थोड़ी होगा कि मॉल में जो हुआ वो हुआ। अरे भाई साहब वहां झगड़ा भी हुआ, उनको ठेंगा पता चल रहा है। अरे आरजे वहां पर रहा मौजूद, तो उसको पता है कि मॉल में एक्टिवेशन बड़े अच्छे हुए, मॉल में इवेंट बड़े अच्छे हुए, एग्जीबिशन बड़े अच्छे हुए, लेकिन सिक्योरिटी और एक पब्लिक में जो लड़ाई हुई है, घूसे लाद चले, वो तो फजीली बताएगा ना। एआई तो सिस्टम में है बाबू, हम जो है ना वो डिटेल में जानते हैं वो कौन सा वहां पहुंच जा रही है। तो हम बहुत ही स्मार्ट आदमी लोग हैं। बाकी अपनी जॉब उम्मीद है, मैं दुआ तो यही करूंगा भाई। क्या मालूम कि उसको लड़ाई झगड़े का भी पता चल जाए और बड़े इंटरेस्टिंगली वो भी बता ले, है ना। कुछ लोग रील बनाने लग गए, वो रील से पता चला उसको, क्योंकि वो भी सिस्टम में है, उसको पता चला अरे मॉल में ये इवेंट हुआ था, लड़ाई भी हुई, अरे फजील दिख रहा है बगल में। क्योंकि किसी ने रील बना लिया भाई। खैर सिस्टम के थ्रू थोड़ा बहुत पता चलेगा, लेकिन बाकी जानकारी तो हमारे पास होती है, तो वो जनता को जो बताने वाली बात होती है, कनेक्ट करने वाली बात होती है, वो एआई कहाँ कर पाएगा। बाकी दुआ भी तो है ही है। उसके अलावा एक और मैसेज है अब्दुल रहमान मोहम्मद का, कहते हैं कुक की जॉब नहीं ले सकता। कुक की जॉब देखो, थोड़ा थोड़ा मशीनें तो ऐसी आ गई हैं, जैसे अवन पवन ये सब तो आए, लेकिन उसके लिए भी मैरिनेट तो अपने को करना पड़ता ना बाबा। तो अच्छा, कहीं कहीं रेस्टोरेंट में रोबोट भी रखे गए हैं, लेकिन उसके लिए भी खाना बनाने वाले तो चाहिए, तो वेटर तो हो जाएंगे। लेकिन एक वेटर पे लेकर भी एक भाई ने बात कही है, हाँ वेटर तो रोबोट हो सकते हैं, लेकिन कुक तो भैया अच्छा वाला चाहिए। अब क्योंकि क्या है, एआई तो उस हिसाब से खाना बनाएगा जिस हिसाब से उसके सिस्टम में डाला गया है, लेकिन नमक किसी को कम चाहिए ज़्यादा चाहिए, किसी को मसाला कम चाहिए, किसी को थोड़ा भैया दबा के, किसी को बटर गार्लिक थोड़ा बटर ज़्यादा होना चाहिए, किसी को अमृतसरी नान चाहिए लेकिन उसमें अमृत कम हो थोड़ा सा, नान नान हो, है ना। तो बहुत से उनके ड्रामे भी होते हैं जो कस्टमर आते हैं। तो ये बात तो है कि कुक जो है एज पर कस्टमर डिमांड वो चेंज कर सकता है खानों में। तो अब्दुल भाई की बात बिल्कुल सही है। एक और भाई हैं, नाम है शेख, और शेख भाई ने कहा है वेटर की जॉब, लेकिन वेटर की जॉब तो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि वेटर की जॉब तो ले लोगे, लेकिन ये सब कैसे बोलोगे, पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, समोसा, हरा भरा गावा। अच्छा हाँ, वो बोलते हैं ना वेटर जो आते हैं, हाँ भाई क्या लोगे, पनीर बटर मसाला दाल मखनी छोले भटूरे आलू मलाई कोफ्ता बटर चिकन है चिकन टिक्का मसाला मटर होगा, जो इस तरह पता नहीं चलता भाई, इतनी तेज बोलते कि भाई साहब एक बार फिर से रिपीट करो, और फिर वो इतनी तेजी से रिपीट करेगा, गुलाब जामुन है, रसमलाई है, गाजर का हलवा है, वेज चिकन बिरयानी है, जीरा राइस है, तंदूरी रोटी, अरे भाई रुको ना, रुको जरा सबर करो। खैर और भी ऐसी कौन सी जॉब है, एक और भाई का नाम है मोहसिन, मोहसिन कहते हैं एआई घर के छोटे बेटे की नौकरी नहीं ले सकता। ये मजाक मजाक में बात तो सही है, लेकिन थोड़ी लॉजिकल बात करो, घर का छोटा बेटा यार, तुमने एम्प्लॉय लगता है यार तुम। कितनी गलत बात है यार, घर का छोटा बेटा इनको एम्प्लॉय लग रहा है, लेकिन हाँ यार घर के छोटे बेटे की तो बहुत ही गद बनती है कि बेटा वो हरी धनिया ले आओ, और फिर जब लेकर आओ तो वापस भी करवाती है, अरे हरी धनिया नहीं कहा था पुदीना कहा था तुमसे। मुझे इन दो सब्जियों पर या जो भी हैं ये पत्ते जो भी हैं भाई, मेरे को बहुत खून खौलता है। मैं कई बार हरी धनिया लेने जाता था, पुदीना लेकर आता था, पुदीना अम्मा कहती थी तो हरा धनिया ले आता था, दोनों में की शक्ल इतनी ज़्यादा मिलती जुलती है, एक रवीना टंडन है तो एक जो है एक और हीरोइन थी याद नहीं आ रहा, दोनों सेम ही है यार, मेरे को बहुत मूड खराब होता है इन दोनों को देखकर। बाकी एक और मैसेज है, क्या नाम है आपका, नाम लिख देते, सलाम लिखा है, वालेकुम अस्सलाम, और कहते हैं बस कंडक्टर की जॉब सेफ है। आ भाई अलखोर अलखोर अलखोर, आ ये भी ठीक है। बस कंडक्टर की जॉब, अब तो मुझे नहीं लगता बस कंडक्टर, आप अगर आप कतर में देखें तो कहां आपको बस कंडक्टर दिखते हैं। हाँ वो भी है एक तरह से कि फ्री का मामला ज्यादातर रहता है ना, आपने कार्ड

चेपा और उससे काम हो गया। लेकिन यार हाँ ये बात है, कंडक्टर की जॉब तो गई, क्योंकि यहाँ पर पहले कई कई बार तो ऐसा है ना कि आपको पैसे देने ही पड़ते हैं। कुछ ऐसी बसेस हैं जहाँ पर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आपको पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन आप कार्ड जो है वो टैप कर दो और ये बस ड्राइवर ही देख रहा होता है टैप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो फिर आपका कट जाता है बैलेंस, है ना बैलेंस है ना। तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कंडक्टर की जॉब तो एक तरह से चली गई है, तो भाई आप तो गलत हैं, आपने नाम नहीं लिखा है, लेकिन नाम लिख देते तो बढ़िया हो जाता। ये तो एक दुख की बात है दोस्तों, और इस दुख में हम सभी कंडक्टर भाइयों के साथ हैं, लेकिन इंडिया में है यहाँ पर तो नहीं है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर बहुत सस्ता है या फ्री है, आप कार्ड टैप कर देते हैं, भीड़ भी बहुत ज़्यादा नहीं होती बसेस में। चाहे आप मेट्रो की लिंक मेट्रो लिंक पे देखें, आप एंट्री करते हैं, कार्ड टैप करते हैं, फिर आप बैठे रहते हैं, आप मेट्रो स्टेशन पे उतर जाते हैं, बड़ा ही ईजी है। ऐसी आप बसेस में जो यू नो दोहा से अलखोर जाती हैं या फिर गर्राफा से अलवखरा की तरफ जा रही हैं, तो उसमें जब आप बस में बैठते हैं आप सिर्फ टैप करते हैं अपना कार्ड और पेमेंट जो होता है वो कट जाता है। ऐसे में शुरुआत में ऐसा होता था कि आपको कंडक्टर की ज़रूरत पड़ा करती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी बात सही है काफी हद तक, लेकिन ये तो मैं कहूंगा कि जॉब थोड़ा खतरे में है ऐसे वाले मामले में। उसके अलावा एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, हमारे मोहल्ले में आंटियां गॉसिप करती हैं। अरे यार ये तो मजाक ही के लिए गॉसिप करने वाली आंटियों की जॉब नहीं जा सकती है, ह्यूमन सीसीटीवी है वो तो। आप ऐसे लोगों को देख लो, उनकी जॉब तो सही में नहीं जाएगी, लेकिन हो सकता है कि पकड़ में आ जाए ऐसे AI जो एक दूसरे की गिबत भी करें, क्योंकि गिबत से तो काफ़ी काम चलता है ना भाई। आंटियां खुद ऐसा AI बनाएंगी जिससे गिबत हो पाए। ए सरला पता है तुमको क्या हुआ? फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, 6:21 हमारे स्टूडियो की घड़ी में। आपके मैसेज ऐसे ही आते रहने चाहिए, लेकिन मजाक से हट गया, हो गया मजाक वाली तो बात अपनी है। अगर सवाल पूछा जाए कि एक ऐसी जॉब आपकी नजर में, ऐसी जॉब जो जिसे AI टेक ओवर नहीं कर सकता, AI उस जॉब को नहीं ले सकता, वो जॉब कौन सी है ये बताइए। नंबर है 666-22107, 666-22107।

0: कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया, तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर हर फ्राइडे दोपहर 2 बजे से आरजे सफा के साथ छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए। ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: म्यूजिक सिर्फ आवाज नहीं, एक एहसास है। कभी हमें पुरानी यादों में ले जाता है। कभी नए सपने दिखाता है। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ द रिक्वेस्ट शो। चाहे वो किसी की याद में एक दर्द भरा गाना हो, दोस्तों के लिए एक मस्ती भरा ट्रैक, हम बनेंगे आपकी आवाज। डेडिकेट कीजिए अपनी फेवरेट हिट सॉन्ग्स अपने अपनों को और बनाइए हर पल को खास।

0: सिर्फ आपके लिए संडे टू थर्सडे शाम 4 बजे से ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
1: जेन सी जेन एक्स जेन अल्फा मिलेनियल्स ये सब महज टर्म्स नहीं है ये अलग अलग ख्याल आदतें इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा
2: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक जनरेशन टॉक विद आरजे कबीर एंड आरजे सफा एवरी ट्यूसडे एट 3 PM एट 3 PM ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
0: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे सो नो फोमो एवर अगेन सुनिए कतर 2026 आरजे फजील के साथ रहिए अपडेटेड हर ट्यूसडे रात 9 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
3: FM 107 पर हर गाना हिट हर दूसरा गाना सुपर हिट
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
2: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
3: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी

0: आतिफ असलम और अलीशा शिनॉय की आवाज में ट्रैक सुना आपने FM 107 पे, और दोपहर के अगर 12:45 हो रहा हो तो गाना क्या बनता है। इस गंदे से जोक के बाद अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु, क्या है हाल चाल इस्तकबाल। 6:36 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और अब वक्त आ गया है कि हम खत की तरफ बढ़े कि खत क्या लिखवाना है, आज क्या लिखना है। लेकिन उससे पहले कुछ लोगों के मैसेज। अनिरुद्ध भाई ने कहा है, फजील भाई गुड इवनिंग, वेयर हाउस सप्लाई चेन AI नहीं ले सकता। देखो जो काम मेरे को आता नहीं मैं इस पर क्या कॉमेंट करूँ। वेयर हाउस सप्लाई चेन, देखो मुझे लगता है कि वेयर हाउस में जो सप्लाई का काम होता है वो काम ले सकता है, सिस्टम में डालना है। बाकी अगर दो चार कंपनीज ऐसी हैं जो कनेक्ट हो गई सिस्टम से तब तो फिर हाँ, ये है कि लेबर का कुछ काम ऐसा है जिसमें लेबर ही तो कर नहीं सकता है, तो ऐसे में लेबर का काम जो है वो AI नहीं ले सकता है ना। माल आ रहा है, लोड कराना अनलोड कराना, ये कहाँ से AI कर लेगा भाई, कितना भी आप लगा दो सिस्टम। क्योंकि अब ऐसा भी सुनने को आ रहा है कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा ऑटोमेशन कर लिया था उनको परेशानी हो रही है, क्योंकि जितने पार्ट्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, पार्ट्स रिप्लेस करने में पैसे लगते हैं, फिर लेबर जो चार्ज करता है वो अलग लगता है। तो जितना भी AI से कंट्रोल हो रहा था या फिर ऑटोमेशन था जहां पर मशीनों का इस्तेमाल हो रहा था, तो वो एक्चुअली ज्यादा महंगा पड़ रहा है बजाय लेबर की, है ना। तो ये अच्छी बात भी है। लेकिन ठीक है, ये आपके हिसाब से, क्योंकि आप ज्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे, वेयर हाउस सप्लाई चेन AI नहीं ले सकता, ये ऐसा लिखा है। फिर उसके बाद एक और मैसेज है सुफियान साहब का, कहते हैं सलाम सर, और फिर लिख दिया डायरेक्ट बार्बर। अरे मैं ये कौन सा तरीका है मैसेज करने का, ऐसा लग रहा है बार बार कह रही है भाई।
1: भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है।
0: ये कौन सा तरीका है कि बार बार लिख दिया, आप बाकायदा लिखिए भाई, AI की जॉब जो है या बार बार की जॉब AI नहीं लिख सकता, AI नहीं ले सकता, तो ऐसा बोलो मेरा भाई, बार बार लिख के छोड़ दिया, दिल दुख दिया, दुख गया मेरा। फिर एक और मैसेज है, लुकमान शिनवर इनका नाम है, आए मैं पहली बार सुन रहा हूँ यार, लुकमान तो सुना है, शिनवर ये ना सुना मैंने। मैसेज है, गुड इवनिंग डियर FM 107, यार अगर एक पश्तो वाला सॉन्ग लगाएं, मेहरबानी के साथ, अगर मैंने ये पश्तो वाला सॉन्ग लगा दिया तो भाई कोड़े वाले बंदे जो है ना उस पार बैठे रहते हैं, तो वो कोड़े वाला बंदा मेरी शक्ल जो है वो बदल देगा, तो माजरत के साथ मैं आपके मर्जी का गाना प्ले नहीं कर सकता। अगर आपको अपने मर्जी का गाना लगवाना है तो शाम को 4 से 5 आप ट्यून इन कर सकते हैं, जहाँ पर अमिता आपकी मर्जी के गाने प्ले करेगी, और इसके लिए शो है जिस शो का नाम है द रिक्वेस्ट शो, है ना। अगर आपको डिटेल चाहिए तो सुनो फिर।
2: म्यूजिक सिर्फ आवाज नहीं, एक एहसास है। कभी हमें पुरानी यादों में ले जाता है,
3: नजर यूं झुकाना मेरे लिए है बस, मेरे लिए है।
2: तो कभी नए सपने दिखाता है, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता, और मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ द रिक्वेस्ट शो। चाहे वो किसी की याद में एक दर्द भरा गाना हो,
3: तो बदला नहीं है,
2: या दोस्तों के लिए एक मस्ती भरा ट्रैक, हम बनेंगे आपकी आवाज। डेडिकेट कीजिए अपनी फेवरेट हिट सॉन्ग्स अपने अपनों को, और बनाइए हर पल को खास।

0: सिर्फ आपके लिए संडे टू थर्सडे शाम 4 बजे से ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: हाँ जी दिल से देसी। और अमिता अगर तुम सुन रही है तो कल लुकमान भाई तुमको रिक्वेस्ट करेंगे एक पश्तो सॉन्ग प्ले कर देना और इसी के साथ शर्मा लेकर आना कल है हल्के हाथ से प्रमोशन भी कर दिया मैंने तुम्हारा। 6 बज कल 40 मिनट हो रहे ले और अपन को अभी जो है खत लिखवाना है आपसे। और आज हमने AI को लेकर बात करी कि ऐसी कौन सी जॉब है जिसे AI टेक ओवर नहीं कर सकता। ऐसे में आपने बहुत सारे जवाब दे दिए। अभी फिलहाल 666-22-107 पे 666-22-107 पे आपको खत लिखना है और ये खत लिखना है AI को कि अगर बेटा तुमने मेरी जॉब ली तो क्या परेशानी आ सकती है। कि AI को डराना भी तो है ना बाबा। तो AI अगर आपकी जॉब करे तो क्या टेंशन का सामना उसे करना पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी जो AI फेस करेगा और इसके वजह से शायद वो आपकी जॉब नहीं ले सकता। एक छोटा सा भी लिख सकते जैसे मेरे जॉब में AI को सबसे बड़ी टेंशन आएगी इतने सारी चीजों को एक साथ संभालना है ना। जैसे अब उसने कोई जोक मारा, जोक मारने के बाद उसको प्ले क्या करना है क्योंकि यहां पर लिस्ट बहुत सारी होती है, कॉन्सोल में 8 बटन है भाई साहब और ये 8 बटन के अलावा और भी 20 बटन और है, कब किसको कैसे हैंडल करना है, कहीं पता चला उसको हैंडल करते हुए उनने कुछ और दबा दिया या हो सकता है सिस्टम में उनको समझ नहीं आया किसी और ने कुछ और हॉटकीज, ये हॉटकीज वाला हमारा लफ्ज है पता हमको है लेकिन अगर यहां पर लगा दिया तो क्या होगा। तो AI की थूत बन जाएगी भाई साहब, AI रोएगा और फिर ये कोड़े वाला बंदा तो AI को मार नहीं पाएगा क्यों, AI ने अगर हमारी जॉब ली तो कोड़े वाले की भी जॉब जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो कोड़े वाले भैया ऐसा होने नहीं देंगे, मैं बता रहा हूँ। कोड़े वाले भैया कहेंगे फजील भाई तुम आगे रहो हम तुम्हारे साथ है, मेरे को डर भी लगेगा कहीं पीछे से चपका ना दे, लेकिन लड़ाई तो होगी अगर AI ने हमारी जॉब ली तो झगड़ा तो होगा। फिलहाल 6:42 हमारे स्टूडियो की घड़ी में और मदरुद्दीन साहब ने अभी कुछ लिखा, सलाम अलैकुम फजील भाई, AI सैलरी नहीं लेता और सैलरी नहीं दे सकता, AI कमांड का भूखा होता है, यही तो एक नुकसान की बात है, अगर सैलरी ले रहा होता तो ये कॉरपोरेट दुनिया जो है हम लोगों को ना हटाती, समझ रहे हो। लेकिन भाई बहुत दूर की बात है, मुझे लगता है कि AI 70% तो जॉब ले ही नहीं सकता है, 30% मैं मान सकता हूँ, 70% जॉब ऐसी है जिसमें तो रहना है, ऐसा नहीं हो सकता कि 70% जॉब ले ले 30% रहे, ला मुमकिन नहीं है ना। क्योंकि देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है कम्युनिकेशन, इंसान बगैर इंसान के तो काम होगा भी नहीं कितना भी AI आ जाए, और जब तक इंसान है तो इंसान को कम्युनिकेशन चाहिए, डीप कनेक्शन चाहिए। कई बार दो बिजनेसमैन सिर्फ इसलिए बिजनेस करते हैं क्योंकि वो कनेक्ट बहुत अच्छे होते हैं, AI क्या ठेंगा कनेक्ट करेगा। दिल से दिल की बात तो इंसान ही समझते हैं ना मियाँ। फिलहाल मजरुद्दीन भाई ने बिल्कुल बात वैसे सही कही है, सैलरी नहीं लेता और ना सैलरी देता है, बस AI जो है वो कमांड लेता है, हम कमांड को ही तोड़ देंगे। बाकी आप खत लिखें और बताएं कि डियर AI अगर तुमने मेरी जॉब ली तो क्या तकलीफें तुम्हारे सामने आ सकती हैं, 666-22-107 पे आप बता सकते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आपके जवाब।

0: देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का। 6:48 हमारे स्टूडियो की घड़ी में भाई जबान लड़खड़ा रही है। एसी जल रहा है, एसी 18 पे चल रही है, लड़खड़ा तो नहीं चाहिए यार। गर्मी तो अभी भी इतनी हो रही है कि 18 पे चल सके। खैर, आते हैं लोगों के जवाब पे, लोगों के खत पे। आज खत लिखना था AI को कि वो आपकी जॉब क्यों नहीं ले सकता, आपकी जॉब टफ है और क्यों नहीं ले सकता। मैसेज है राज का, और राज कहते हैं, गुड इवनिंग सर जी, माय जॉब आई गिव कमांड एंड AI टेक्स कमांड, फर्स्ट स्टेप ही फेल हो गया। अरे भाई साहब तो यानी कि हमें राज को ही पकड़ना है। आगे लिखा है, और मेरे बंदे लोग कमांड देने में इतने उस्ताद लोग हैं कि AI की वाट लग जाएगी। ठीक है, देखो मैं आपको इनको संभालने का तरीका यह है कि इनको ही किडनैप कर लो। यही देखो मेन कोर जो है ना, उस कोर को ही खराब कर दो तो फिर AI जो है वो नहीं पकड़ पाएगा। मैं तो इसी की हिमायत करूंगा, यही कहने को कहूंगा कि भाई इन्हीं को पकड़ दो। मजहरुद्दीन कहते हैं, फजील भाई आप शायद खुद को तसल्ली दे रहे हैं, जैसे एक्सेल में फॉर्मूलाज और कंडीशन से एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं वैसे ही AI भी सही कमांड पर पूरा शो रन कर सकता है। कल एक सेमिनार में मैंने देखा कि कैसे एक कंपनी ने AI को कॉन्फिगर किया जो इंसानों से भी बेहतर कूल और कामली प्रोडक्ट सेल कर रहा है। लिटरली AI डूइंग अ फेबुलस जॉब, सिर्फ सीखने की देर है फजील भाई। लेकिन कुछ डिटेल्स है ना, वो डिटेल्स मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा हमारी जॉब में। AI जो है ऑब्वियसली काफ़ी जॉब तो ऑलरेडी ले ही चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना वहाँ पर फंस जाएगा। और फिर RJ की अगर जॉब में देखें तो मुझे लगता है कि जो छोटी डिटेलिंग है ना वहाँ पर आप कितना भी उसे तैयार कर दें, है ना, कई बार हमें पता है कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं जो फिजिकल करनी पड़ती हैं, तो मशीन आप यहाँ पर थोड़ी लगा सकते हो। और एक मशीन ख़राब हुई तो पता चला 6 घंटे के लिए बंद। इंसान तो जगरिया है ना भाई, कई बार रातों में हमें जाग के आना पड़ता है भाग दौड़ करके। AI का एक बटन स्विच ऑफ दबा के भाग जाऊंगा मैं घर। ले बेटा कर। और ज्यादा स्मार्ट बनेगा कि अपने आप को स्विच ऑन भी कर ले रहा है, तो प्लग ही निकाल के भाग जाऊंगा। अब बताओ। बेटे हमसे ना खेलना, हम भी हेवी ड्राइवर हैं। बाकी मजाक से हटके मुझे लगता है कि AI ऑब्वियसली 80% जॉब ठीक है, लेकिन 20% जो है वो हर जगह इंसानों की जरूरत तो होती ही है। बाकी ऑब्वियसली जैसे ये सिस्टम है, ये सिस्टम मैं AI तो नहीं कहूंगा ऑब्वियसली, लेकिन ये सिस्टम में काफी चीजें तैयार करके रखी गई। पहले ऐसे सिस्टम थोड़े लगते थे कि 3 कंप्यूटर लगे हुए हैं, उनको हैंडल कर रहे हैं, है ना, दर्जनों चीज लगी हैं, फिर कॉन्सोल भी लगे। पहले जमाने में ऐसे नहीं होता था, पहले जमाने में बाकी काम भी हुआ करते थे, वो इंसान करते थे, बट वो वाला काम अब ये सिस्टम कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जॉब गई है, बट RJ जिंदा है भाई। आगे बढ़ते हुए एक भाई की कॉल आ रही है, जल्दी से रिसीव करते हैं। हेलो, सलाम अलैकुम।
2: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू, कैसा है मेरा भाई?
1: मैं बहुत चकाचक भाई, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जल्दी से बताएं क्योंकि अजान का वक्त होने वाला है। नाम क्या है भाई?
2: फजल भाई मेरा नाम है। आपने जो टॉपिक लिया है उस पर मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं अपनी राय देना चाहूंगा। AI 80% आपने जो कहा बिल्कुल सही है, ऑटोमेशन जॉब खा जाएगा।
1: ऑटोमेशन, ओके। हाँ,
2: अब देखिए आपका जो काम है उसका मैं बताता हूँ। दीजिए, आप जो है दिन में आप काम कर सकते हैं, आप रात में काम कर सकते हैं, जब आपको काम नहीं करना हो तो ऑटो पायलट पे डाल के निकल लें।
1: करेक्ट, हाँ सही है। अच्छा, ये भी तो है, जैसे अकाउंटेंट्स की जॉब भी तो आसानी से जा सकती है, क्योंकि उसमें क्या है कि जितने भी
2: ऑटोमेशन, ये वर्ड याद रख चुके, ऑटोमेशन, जिधर ऑटोमेशन है वहां पे जाएगी जाएगी। जहाँ इंसान की इंटेलिजेंस लाजिम है, इंसान की यानी ह्यूमन डिसीजन मेकिंग लाजिम है, वो ऑटोमेशन 100 साल भी नहीं खा सकता।
1: आई भाई ये परफेक्ट है भाई, क्योंकि आप फील्ड में उसी में है ना।
2: अभी देखिए हमारी जो फील्ड है, जो मेरी जो यानी वेबसाइट वगैरह की जो फील्ड है, इसमें मैं अच्छा एक फ्री टूल आपके लिसनर्स को मैं देना चाहूंगा, बिल्कुल फ्री, 1 रुपये का खर्चा।
1: जल्दी भाई जल्दी। हाँ
2: हाँ, व्हाट्सएप पे मेटा जो फूल वाला आता है, फूल वाला मेटा, ये भाई 75% मेरी मदद करता है।
1: अच्छा,
2: कुछ भी पूछ लीजिए इससे, कुछ भी, लेकिन याद रखिए 75% बोला है मैंने, 25% गलत भी देता
1: है। हाय हाय, ये भी देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, समझने वाली बात है। और मुझे लगता है कि अभी तो मतलब आने वाले 20 साल तो सेफ है, कि नहीं?
2: नहीं सर, नहीं सिर्फ तो आप भूल जाएंगे अगर आप अपडेट नहीं करेंगे अपनी जो साइकी है ना, अपनी जो साइकी, हम तो ट्रेडिशनल रहेंगे तो बेटा तुम उड़ जाओगे,
1: उड़ जाओ यार,
2: शॉर्ट सर्किट की तरह उड़ जाओगे।
1: तो एआई भी सीख ही लेना सबसे समझदारी वाला काम है,
2: लाजिम, ऑप्शन नहीं है मेरा भाई, ऑप्शन नहीं है। आप भाई मैं आपको कहता हूँ, बड़ा फ्री टूल है व्हाट्सएप, आज कौन नहीं यूज करता।
1: Correct.
2: आप शुरू करो वो फूल वाले बटन को दबाओ, सवाल करो बिंदास।
1: चले भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पास वक्त बहुत कम है, अजान का वक्त हो गया। फजल साहब बहुत अच्छा लगा, अब जो कोर था वो तो आपने बता ही दिया, थैंक यू सो मच मेरा भाई, थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी लोगों के जल्दी से मैसेज पढ़ लेते हैं वरना फिर सुनना ही पड़ेगा मेरे को कि मेरा मैसेज नहीं लिया। सलाम है आतिक भाई का, कहते हैं डियर एआई तुम फ्री में कितना भी काम करो लेकिन बॉस को झूठ और मक्खन कैसे लगाओगे इंसानों की तरह। फजल भाई आपके लिए है, देखो आतिक भाई ने यहाँ तो बचा लिया है। फिर उसके बाद अबीर साहब का कहना है, डियर एआई मैं कॉल सेंटर में कॉल करता हूँ, काम करता हूँ, सॉरी, कस्टमर की गाली से हैंग हो जाओगे। अरे ये तो हाँ, अगर अगर एआई ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कॉल तो कस्टमर इतनी सुना देगा कि ये खत्म हो जाएंगे। फिर एक और है काशी भाई का, डियर एआई टीचर की जॉब बहुत मुश्किल है, बच्चों की राइटिंग कैसे समझोगे और एग्जाम में अगर काम कम नंबर दिया तो पेरेंट्स व्हाट्सअप करके जान लेंगे। ये वाला समझ नहीं आया, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अजान का वक्त है, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल शाम 6 बजे, सुनते रहे एफएम 107 दिल से देसी।
3: उर्दू रेडियो एफएम 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में इशा की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाहु

0: इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ सुनिए प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल हर संडे रात 8 बजे से आरजे सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल, जहां हम बात करते हैं जिंदगी के उन पहलुओं पर जो अक्सर हमारी नजर से छुप जाते हैं। मैं हूं आपका दोस्त सरवर मिर्जा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लीडरशिप विदाउट अथॉरिटी एंड हाउ इन्फ्लुएंस इज बिल्ट इवन विदाउट अ मैनेजेरियल टाइटल। यानी कि आज हम बात करेंगे असर और रसूख सिर्फ डेजिग्नेशन का मोहताज नहीं होता, कभी कभी आपके लफ्ज, आपका रवैया और आपका छोटा सा कदम लोगों की जिंदगी बदल देता है। आज हम मिलकर ये समझेंगे कि हम कौन हैं, भाई अपने काम से बाहर अपनी पहचान को कैसे मजबूत बनाएं और बिना मैनेजेरियल टाइटल के भी रहनुमाई यानी लीडरशिप कैसे की जा सकती है। तो दोस्तों, प्रोग्राम में हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी पहचान को जॉब टाइटल से अलग करके देखें। भाई अपनी स्किल्स, जज्बात और सेल्फ बिलीफ का सफर कैसे शुरू करें। जानेंगे कि इन्फ्लुएंस कैसे बनता है जब आप बॉस नहीं हो, और कुछ उन बातों को मद्देनजर रखेंगे जो हमें सेल्फ बिलीफ पे फोकस करना सिखाती हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सफर। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, ऑफिस शिफ्ट पे जा रहे हैं या रात की ड्यूटी से वापस आ रहे हैं, आज हम मिलके तय करेंगे कि भाई टाइटल के बिना भी तालीम और तामीर का सफर कैसे चलता है। तो दोस्तों, सवाल सीधा है, मैं कौन हूँ जब मेरी नौकरी का कार्ड मेरे पास नहीं है। अक्सर हमारी सोसाइटी सेल्फ वर्थ को जॉब टाइटल से जोड़ देती है। भाई मैनेजर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लेकिन जिंदगी सिर्फ डेजिग्नेशन का नाम नहीं है। दोस्तों, आप एक बेटा, बेटी, वालिद, वालदा, दोस्त, हमसाया, भाई वॉलंटियर ही सही या फिर किसी के साथ ही बहुत कुछ हो सकते हैं। दोस्तों, आइडेंटिटी को सिर्फ एक रोल तक महदूद कर देना उसी तरह है जैसे किसी किताब का सिर्फ कवर देख लेना। जिंदगी की कहानी अंदर के सफहों पर लिखी होती है। आपकी वैल्यूज, आपकी आदतें, आपकी दौलत और आपका वक्त पर खड़े रहना, और बेशक मुआशरे के लिए आपका छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें अहमियत रखती हैं। चलिए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। भाई घर की मिसाल ले लेते हैं। एक घर में नन्ही सी बच्ची अपनी दादी को स्मार्टफोन चलाना सिखाती है, कोई टाइटल नहीं, मगर रहनुमाई पक्की है। यही लीडरशिप है, नॉलेज शेयर करना, सब्र रखना और दूसरों को एम्पावर करना। वहीं मोहल्ले की मिसाल ले लीजिए। मोहल्ले में कचरा अलग करने का आइडिया एक पड़ोसी स्टार्ट करता है। भाई हर अगले दिन 3 लोग मिलकर सफाई को ऑर्गेनाइज करते हैं। ना कोई ऑफिस, ना कोई मैंडेट, लेकिन असर पूरे इलाके पर। तो दोस्तों, सोसाइटी कभी कभी ये तसव्वुर देती है कि जॉब टाइटल ही आदमी की औकात है, और इस गलत फहमी को ही तोड़ना जरूरी है। आपका कैरेक्टर, आपकी जिम्मेदारी निभाना और लोगों के साथ इज्जत का रवैया रखना, ये सब मिलकर आप

पहचान बनाते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं कि हाउ टू क्रिएट वैल्यू बियॉन्ड वर्क। भाई घर में नॉलेज शेयर सर्कल्स बनाएं, बच्चों को रीडिंग आर, बुजुर्गों को टेक हेल्प वगैरह, कम्युनिटी में माइक्रो इनिशिएटिव्स लीजिए, ब्लड डोनेशन वगैरह है, रोड सेफ्टी अवेयरनेस या वीकेंड पे बीच क्लीनअप। वहीं डेली 1% इम्प्रूवमेंट रूल को सामने रखिए। रोज एक छोटा काम जो कल से बेहतर हो, किसी को कॉल करके हाल पूछ लीजिए, किसी की रहनुमाई कर दीजिए या अपनी स्किल्स के 15 मिनट प्रैक्टिस कर लीजिए। रेस्पेक्ट कीजिए इकोनॉमी को, हर मुलाकात में इज्जत और तवज्जो, छोटा लफ्ज बड़ा असर। भाई लिविंग मीनिंगफुली विदाउट अ डिफाइंड टाइटल का मतलब है रोजमर्रा जिंदगी को इरादे से जीना। जब आप नियत साफ रखते हैं तो लीडरशिप खुद ब खुद आपके कदम चूमती है। तो दोस्तों चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ, जहां हम पर्पस और ग्रोथ की बात करेंगे, यानी हम अपने अंदर की सलाहियतों को कैसे पहचाने या कैसे उन्हें निखारें। दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बियॉन्ड द जॉब टाइटल सरवर मिर्जा के साथ। कहीं भी मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा और जानेंगे कि कैसे हम अपने टाइटल से बाहर निकलकर दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं।

0: इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ।
1: दोस्तों, कई लोग कहते हैं मेरे पास कोई खास टैलेंट नहीं। यकीन मानिए, हर शख्स के अंदर एक चमक होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग ने उसे पहचान लिया होता है और कुछ लोगों ने अभी तलाश में ही उस सफर को जारी रखा हुआ होता है। चलिए कुछ डिस्कवरिंग स्किल्स और पैशन की अगर बात करें तो तीन चीजें लिखिए। पहली, कौन सा काम आपको वक्त का एहसास नहीं होने देता। दूसरी, लोग आपसे किस चीज पर मशवरा लेते हैं। तीसरी, किस काम के बाद आपको अंदर से सुकून मिलता है। अगर जवाब मुश्किल हो तो 30 दिन का स्किल स्प्रिंट कर लीजिए। हर दिन 20 मिनट एक चीज, पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रॉम्प्ट्स या बेसिक डिजाइन टूल्स सीखना वगैरह, 30 दिन बाद आपको एक अंदाजा जरूर हो जाएगा। दोस्तों, सक्सेस को सिर्फ प्रमोशन से मत नापिए। सक्सेस है बेहतर आदत बनाना, बेहतर सेहत रखना, बेहतर रिश्ते, बेहतर डिसिप्लिन वगैरह वगैरह। कंपाउंड इफेक्ट सिंपल होता है, छोटे कदम मिलकर बड़ा फर्क लाते हैं। भाई, अगर हम कॉन्फिडेंस की बात करें तो प्रोमिसेस टू सेल्फ केप्ट, जो वादा खुद से करें उसे निभाइए, चाहे छोटा ही हो। वहीं तीन एविडेंस पॉइंट्स लिखिए जहां आपने अच्छा परफॉर्म किया हो, उन पर फोकस रखें। सपोर्ट सर्किल की बातें करें तो तीन लोग जिनसे रवैया पॉजिटिव हो, फीडबैक साफ हो जाता है। सोशल मीडिया से कंपैरिजन का काउंटर कीजिए, कंपेयर बैकवर्ड, यानी कल के आप से आज के आप बेहतर हैं या नहीं। अनसर्टेनिटी को हैंडल करने के लिए दो लिस्ट बना लीजिए, या टू लिस्ट मेथड है, उस पे काम कर लीजिए। थिंग्स आई कैन कंट्रोल एंड थिंग्स आई कांट, एक पर एक्शन है और एक पर एक्सेप्टेंस। और वहीं ब्रीदिंग टूल 4-4-6 टेक्निक, 4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड होल्ड एंड 6 सेकंड एक्सहेल, 3 दफा। दोस्तों, एक बात को याद रखिए, सेटबैक्स आर इक्वल्स टू फीडबैक। हर नुकसान से 3 सबक निकालना हैबिट बना दीजिए। भाई, सेल्फ ऑडिट कीजिए अपनी छुट्टी वाले दिन, एक हफ्ते में 1 घंटा, और इससे क्या होगा, गोल्स, एनर्जी ड्रेन्स, एनर्जी गेन्स, फिर शेड्यूल एडजस्ट कर लीजिए। तो दोस्तों, जब आप पर्पस और ग्रोथ को रोजाना की रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं तो लीडरशिप नेचुरली जिंदगी में जगह बनाती है, टाइटल हो या ना हो। लीडरशिप एक सीट नहीं, ये एक सर्विस है। जब आप लोगों को बेहतर बनने का मौका देते हैं, जब आप एनवायरनमेंट ऐसा बनाते हैं जहां हर शख्स की इज्जत हो, तब आप लीडर हैं, चाहे आपके पास कोई फॉर्मल टाइटल हो या ना हो। याद रखें, टाइटल मिलने से पहले अगर आप लीडरशिप दिखा देते हैं तो टाइटल आपके पीछे आता है। अगर ना भी आए तो भी आप कायम रहते हैं, क्योंकि आपने आदत बना ली है असर डालने की, खिदमत करने की और बेहतरी की। दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बियॉन्ड द जॉब टाइटल सरवर मिर्जा के साथ। कहीं भी मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा और जानेंगे कि कैसे हम अपने टाइटल से बाहर निकलकर दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं।

0: इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ।
1: तो दोस्तों, आज हमने देखा कि पहचान सिर्फ जॉब टाइटल नहीं और लीडरशिप सिर्फ कुर्सी का नाम नहीं। आप अपनी फैमिली, अपने दोस्तों, अपने मुआशरे और अपने काम के माहौल में रोज इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि हमने इससे पहले भी बात करी, अगर मेरा टाइटल कल बदल जाए तो मैं अपने तीन बुनियादी वैल्यूज कैसे जिंदा रखूंगा, और वहीं इस हफ्ते मैं कौन सा छोटा कदम उठा सकता हूँ जो किसी और के काम को आसान कर दे, मैं फीडबैक कैसे दूं कि सामने वाले की इज्जत भी बरकरार रहे और मसला भी हल हो जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, खुद से भी नर्म लहजा रखिए। प्रोग्रेस छोटे कदम का खेल है, अपनी कामयाबी को रोज की बेहतरी के साथ उन रवैयों पे नापना शुरू कीजिए। आपकी कीमत आपके इंसानी रवैये से है, सच्चाई, वफा, खिदमत और उम्मीद। बिना टाइटल के भी आप रोशनी फैला सकते हैं। तो दोस्तों, एक बात क्लियर है, हमारी पहचान सिर्फ हमारी नौकरी नहीं है, हमारी वर्थ हमारे जज्बात, एक्शंस और रिलेशनशिप से डिफाइन होते हैं। अपने आप से ये सवाल पूछिए, मैं अपनी जिंदगी को किस तरह मीनिंगफुल बना रहा हूँ। आप जितने भी रोल्स प्ले करते हैं, घर पर, ऑफिस में, सोसाइटी में, सब इम्पोर्टेंट हैं। अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी वैल्यू समझिए और अपनी ग्रोथ पर फोकस कीजिए। याद रखिए, आपकी ह्यूमन वर्थ किसी टाइटल से नहीं, आपकी इंसानियत से है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए। सुनते और देखते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कुछ ऐसी हस्तियां होती हैं जिनका काम बोलता है, उनकी मेहनत उनकी लगन हजारों लाखों को इंस्पायर करती है। पर ऊंची कुर्सी ये पोजीशन के पीछे एक शख्स होता है जिसकी कहानी लोग जानना चाहते हैं, और वही कहानी हम पहुंचाएंगे आप तक। ये बातें होंगी थोड़ी सी प्रोफेशनल और बहुत सारी पर्सनल, तो सुनिएगा जरूर। एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमेरात को शाम 5 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
3: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

टू अ सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी. मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया. दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं मनी एंड रिलेशनशिप्स की. शुड कपल्स हैव ज्वाइंट और सेपरेट फाइनेंसेस? हाँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. देखिए, शादी जब होती है या शादी हो जाती है तो ये सिर्फ दो लोगों का एक इमोशनल रिश्ता नहीं होता, बल्कि ये एक फाइनेंशियल पार्टनरशिप भी है. इसीलिए अक्सर इसे समझना और इस पे गौर करना बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है. इसीलिए अक्सर कपल्स के दरमियान एक इम्पोर्टेंट सवाल भी पैदा होता है, क्या हस्बैंड और वाइफ को अपने फाइनेंसेस जॉइंटली मैनेज करने चाहिए या फिर सेपरेट अकाउंट्स होने चाहिए. देखिए, इस टॉपिक का अगर मैं कोई परफेक्ट आंसर देना चाहूँ तो शायद मैं कोलैप्स करूँ, क्योंकि हर कपल की जो सिचुएशन है उनकी इनकम, उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से, और ये शायद डिफरेंट है. जो सिस्टम एक कपल के लिए काम करेगा जरूरी नहीं कि वो दूसरों के लिए भी इफेक्टिव हो. लेकिन हाँ, जॉइंट फाइनेंसेस ये क्या है ये पहले समझते हैं. देखिए, जॉइंट फाइनेंसेस का मतलब है कि हस्बैंड और वाइफ अपने इनकम को एक कॉमन अकाउंट में रखें और घर के तमाम एक्सपेंसेस उसी अकाउंट से मैनेज करें. और इस सिस्टम का बड़ा फायदा है ट्रांसपेरेंसी. दोनों पार्टनर्स को पता होता है कि कितनी इनकम आ रही है और कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं. इससे होता यह है कि दोनों में एक ट्रस्ट बिल्ट होता है और शायद फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना आसान हो जाता है. मिसाल के तौर पे, अगर कपल घर खरीदना चाहते हैं या फिर बच्चों की एजुकेशन के लिए सेविंग कर रहे हैं तो जॉइंट फाइनेंसेस प्लानिंग को सिंपल बना देते हैं. लेकिन हाँ, कुछ चैलेंजेस भी हैं. अगर एक पार्टनर स्पेंडर हो और दूसरा सेवर तो कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होते हैं. एक को लग सकता है कि दूसरा अननेसेसरी शॉपिंग कर रहा है और दूसरा समझता है कि ये जिंदगी को मुझे एंजॉय नहीं करने देता. वहीं पर सेपरेट फाइनेंसेस का भी इसके बारे में भी समझते हैं. देखिए, सेपरेट फाइनेंसेस में हस्बैंड्स और वाइफ अपने अकाउंट्स अलग रखते हैं और अपने पैसे खुद मैनेज करते हैं. जैसे घर के एक्सपेंस एक अग्रीड फॉर्मूला के मुताबिक शेयर किए जाते हैं. इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. हर पार्टनर को अपनी इनकम और स्पेंडिंग पर कंट्रोल होता है. मिसाल के तौर पे, अगर वाइफ अपने लिए कोई

कोर्स करना चाहती है, खरीदना चाहती है, या फिर हस्बैंड किसी हॉबी पर पैसे स्पेंड कर रहा है, तो उन्हें हर छोटी चीज के लिए एक दूसरे से अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। अब एक और सवाल है कि मनी से ज्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है। देखिए, असल में ज्वाइंट अकाउंट या फिर सेपरेट अकाउंट्स, ये दोनों चीजें इम्पॉर्टेंट नहीं है। असल मसला कम्युनिकेशन है। कई मैरिजेस पैसे की कमी की वजह से नहीं, बल्कि पैसे के बारे में कम्युनिकेशन की कमी की वजह से प्रेशर में आ जाती है। कपल्स को ओपनली डिस्कस करना चाहिए मंथली बजट, सेविंग गोल्स, डेट्स हैं, लोन्स हैं, फ्यूचर प्लान्स हैं, इमरजेंसी फंड्स हैं। जब पार्टनर्स फाइनेंशियल मैटर्स पर ऑनेस्टली बात करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम हो जाती हैं।

0: और कम्युनिकेशन। कोई भी फाइनेंशियल सिस्टम तभी सक्सेसफुल होता है जब दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें और कॉमन गोल्स के लिए मिलकर काम करें। बस जाते जाते एक चीज याद रखिए, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप सिर्फ मोहब्बत से नहीं बल्कि स्मार्ट फाइनेंशियल टीम वर्क से भी बनती है और शायद ये ट्रांसपेरेंसी से भी बनती है। तो बस अपनी फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को कायम रखें, अपने गोल्स को मिलकर डिसाइड करें और कॉमन गोल्स के लिए मिलकर काम करें। वेल, वैसे कहने को और भी बहुत कुछ था लेकिन आज नहीं कल। फिलहाल मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो संतरी एफएम 107 दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों, आप सभी का। ये शो सुन रहे हैं आप फ्रॉड अवेयरनेस, और अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि जब भी इस टाइम पे मैं आता हूँ इसका मतलब ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस का, जहाँ पर आपको जल्दी से एक नए जमाने के नए फ्रॉड या स्कैम के बारे में पता चलता है। और इस हफ्ते हम जिन स्कैम्स के बारे में पता करेंगे या बात करेंगे वो एक्चुअली हर हाल में आपसे रिलेटेड होने वाला है, क्योंकि अभी तक जब हम स्कैम के बारे में या फ्रॉड के बारे में बात करते थे तो होता ये था कि कई बार वो एम्प्लॉयज़ के लिए होता था, कई बार वो बच्चों के लिए होता था, कई बार वो बिजनेसमैन लोगों के लिए होता था। लेकिन अब जिस इस हफ्ते जिस हम बात करेंगे स्कैम के लिए, उसमें कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट या आपसे रिलेटेड वो चीज़ ज़रूर होगी। तो शुरू करते हैं आज जिस हम स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं। ये स्कैम है सप्लायर स्कैम। ये एक बहुत ही चालाकी से भरा और डेंजरस फ्रॉड है, और आजकल आमतौर पर रिटेल बिजनेसेस या फिर हो सकता है कि आप अपने घर में या फिर आप अपने लोगों के लिए सामान मंगवा रहे हो और ये स्कैम आपके साथ हो जाए। ये स्कैम कैसे काम करता है जरा इस पर नजर डालते हैं। इसमें आमतौर पर फेक वेबसाइट आपको देखने को मिलती है। स्कैमर मशहूर ट्रस्टेड होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स की बिल्कुल मिलती जुलती फेक वेबसाइट्स बना लेते हैं। ये देखने में इतनी असली लगती है कि एक आम इंसान फर्क नहीं समझ सकता। उसके अलावा ईमेल हाईजैकिंग भी होती है। वो किसी पुराने और ट्रस्टेड वेंडर का ईमेल अकाउंट हैक कर लेते हैं, फिर उन्हीं के ऑफिशियल ईमेल से आपको मैसेज भेजते हैं, जिस वजह से आपको कोई शक नहीं होता। वेल, अगर तरीके की बात करें तो इसमें होता है ये कि अर्जेंट इन्वेंट्री शॉर्टेज का बहाना बनाया जाता है आपके साथ। स्कैमर्स रिटेल ओनर्स को कॉन्टेक्ट करते हैं और कहते हैं कि मार्केट में माल की बहुत कमी चल रही है, इसलिए जल्दी से जल्दी ऑर्डर करें। सस्ती डील का लालच दिया जाता है, वो आपको बहुत ही कम कीमत पर एक्सक्लूसिव बल्क डील्स ऑफर करते हैं, जो देखकर कोई भी रिटेल ओनर लालच में आ जाता है। या फिर अगर आप आमतौर पे होलसेल में कोई सामान मंगवाना चाहते हैं या कोई भी चीज आप मंगवाना चाहते हैं तो आपके साथ ये चीज हो सकती है। एडवांस पेमेंट का प्रेशर बनाते हैं, फिर वो कहते हैं कि अगर आपने अभी के अभी पैसे नहीं दिए तो माल किसी और को भेज दिया जाएगा, वो आपसे वायर ट्रांसफर, कॉर्पोरेट डिजिटल वॉलेट या क्रिप्टो करेंसी के जरिए फॉरन अपफ्रंट पेमेंट मांगते हैं और गायब हो जाना। जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं वो फ्रॉडलेंट सप्लायर्स अपने फोन और ईमेल बंद कर देते हैं, ना आपको माल मिलता है और ना ही आपके पैसे वापस आते हैं। इससे रिटेल बिजनेस पूरी तरह तबाह हो जाते हैं। कई बार आप अपने घर में कोई सामान फर्नीचर का कोई काम है ना, आपको बेड बनवाना है, आपको टीवी के लिए एक फर्नीचर बनवाना है, आपको कुर्सी बनवाना है, आपको डाइनिंग टेबल बनवाना है, तो आप सामान यानी कि लकड़ी जो है वो बल्क में खरीदना चाहते हैं, भले आपका बिजनेस नहीं है। तो जब आप बल्क में खरीदने की कोशिश करते हैं और आप देखते हैं कि मार्केट में जो है एक किलो की लकड़ी फलाने की लकड़ी जो है वो 10 रियाल पर केजी में मिल रही है, लेकिन आप उस सप्लायर से किसी तरह से कॉन्टेक्ट में आते हैं जो आपको 5 कतरी रियाल, 4 या 3 या 6 कतरी रियाल में पर केजी में आपको दे रहा है, तो आपको लगता है जल्दी से जल्दी इनसे मंगवा लें और फिर मैं अपने मर्जी का कस्टमाइज फर्नीचर बनवाऊंगा घर पे। लेकिन यहां पर होता है सबसे बड़ा स्कैम, क्योंकि इस तरह का स्कैम बहुत ही आसानी से लोगों के साथ किया जा सकता है, लेकिन इससे बचने के कुछ सॉल्यूशंस भी हैं। वेंडर को डबल चेक करना। अगर आपको कोई ट्रस्टेड वेंडर की तरफ से अचानक बैंक डिटेल्स बदलने या पेमेंट का नया तरीका मिले तो फौरन ईमेल पर रिप्लाई ना करें, उनके पुराने और वेरीफाइड फोन नंबर पर कॉल करके कंफर्म कर लें क्या ये ईमेल उन्हीं पे है, उन्हीं के पास है। उसके अलावा अर्जेंसी और लालच से बचें। जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर आप पर फौरन पेमेंट करने का दबाव डाले या मार्केट प्राइस से बहुत ही सस्ता माल ऑफर करे तो समझ जाइए ये कुछ गड़बड़ है। जेन्युइन बिजनेसेस कभी इस तरह अचानक प्रेशर नहीं डालते हैं। उसके अलावा वेबसाइट यूआरएल को लाजमी चेक करना, ये तरीका मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। उसके अलावा सेफ पेमेंट का मेथड हमेशा इस्तेमाल करें, इससे अगर आपके साथ खुदा ना खास्ता गलत पेमेंट आपकी तरफ से हो जाती तो भी आपके पास पैसे वापस आ जाते हैं। कभी भी किसी अनजान सप्लायर को भी एडवांस में क्रिप्टो करेंसी, वायर ट्रांसफर, डिजिटल वॉलेट से पेमेंट ना करें, इससे आप बचे रहेंगे। उसके अलावा स्टाफ की ट्रेनिंग कराएं, अगर आप डायरेक्ट पैसों में इत्तला नहीं होते हैं या फिर आपको इत्तला नहीं किया जाता है, कोई अकाउंटेंट है जिसको आपने रखा है वो पेमेंट करता है, तो अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दें, अपने प्रोक्योरमेंट और अकाउंट्स टीम को इस तरह के स्कैम्स के बारे में सिखाएं, ताकि वो कोई भी बड़ी पेमेंट करने से पहले हर चीज पर अच्छी तरह नजर रखें और वेरीफाई करें। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए और आपको आगाह करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी। स्कैम अलर्ट।

अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, योर हेल्थ मैटर्स। क्या हम बात करते हैं आपकी सेहत से जुड़े ऐसे मौजूदात पर जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा हैं। आज का जो मौजू है बहुत ही सादा सा है, लेकिन हमारी सेहत के लिए बहुत अहम है, यानी डिहाइड्रेशन, यानी जिसमें पानी की कमी। हम में से बहुत से अफराद पानी उस वक्त पीते हैं जब बहुत ज्यादा प्यास लगती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ प्यास लगना ही पानी की कमी की अलामत नहीं है। बाज़ुकात हमारा जिस्म पानी की कमी के बारे में हमें उससे पहले इशारे दे रहा होता है। हमारे जिस्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है पानी पर ही मुश्तमिल है, और पानी जिस्म के तकरीबन हर अहम काम में हिस्सा लेता है, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन हो, हमारे जो जिस्म का टेम्परेचर है उसे बरकरार रखना हो, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हाजमा है, या जिस्म से जो फाजिल मादों का अखराज है, और बहुत से दूसरे काम मुनासिब हाइड्रेशन के साथ ही जुड़े हुए होते हैं। जब जिस्म से पानी ज़्यादा मकदार में खारिज हो जाए तो उसके मुकाबले में पानी की मकदार पूरी ना हो तो फिर डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो सकती है। मसलन गर्मी में, यानी मौसम गर्म है और आजकल जैसे कि हम जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर जो है गर्मी ज़्यादा है, तो गर्मी में स्वेटिंग ज़्यादा होती है, पसीना आता है, और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो तब भी इसी तरह अगर टेम्परेचर है या वॉमिटिंग हो रहा है, या फिर ये कि आप कोई जो दस्त हैं, या फिर दिन भर बहुत कम पानी पीना, उसकी आम वजूहात में शामिल हो सकते हैं। मगर अब सवाल यह है कि हमें कैसे मालूम हो कि हमारे जिस्म को पानी की ज़रूरत है। सबसे जो आम अलामत है वो तो प्यास है, लेकिन इसके अलावा मुंह का खुश्क हो जाना, बहुत ज़्यादा थकन महसूस करना, चक्कर आना, सर दर्द, कमज़ोरी, और इसी तरह जो यूरिन है उसका रंग ज़्यादा गहरा होना भी जिस्म में पानी की कमी की तरफ इशारा कर सकते हैं। बाज़ अफराद को पानी कम पीने की वजह से कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी हो सकती है। गर्मी के मौसम में पानी की ज़रूरत ख़ास तौर पर ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि स्वेटिंग के ज़रिए जिस्म में पानी जो है वो ज़्यादा खारिज होता है, और इसी तरह से अगर आप बाहर काम करते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं या फिर धूप में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो पानी और फ्लूइड्स का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बात याद रखिए कि सिर्फ एक ही असूल सब अफराद पर लागू नहीं होता, हर शख्स को लाजमन इतना ही पानी पीना चाहिए। पानी की ज़रूरत उम्र, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, मौसम है या ग़िज़ा है, और सेहत की हालत के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है। अपने जिस्म के सिग्नल्स पर तवज्जो देना बेहद ज़रूरी है। एक आसान आदत यह है कि पानी को सिर्फ प्यास लगने के बाद पीने के बजाय दिन भर मुनासिब वक्फों से लिया जाए। सुबह उठकर पानी पीना, खाने के दौरान और दिन के मुख्तलिफ औकात में मुनासिब मकदार में पानी लेना, और एक्सरसाइज या फिर ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है या ज़्यादा पसीना आ रहा है तो उसके दौरान अपने फ्लूइड्स का, अपने पानी का जो है वो ख्याल रखना, ये बहुत ही अच्छी आदत में शामिल है। अब हम बात करेंगे कुछ बच्चों और बुज़ुर्गों की। बच्चे हमेशा खुद ये नहीं बता पाते कि उन्हें पानी की ज़रूरत है, खेलते हुए वो पानी पीना भूल सकते हैं, इसलिए वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को वक्फे वक्फे से पानी पीने की आदत डालें। इसी तरह से बाज़ बुज़ुर्ग अफराद को प्यास का एहसास पहले की नस्बत कम हो सकता है, इसलिए उनमें जो हाइड्रेशन है उसकी तरफ ख़ास तवज्जो देना बेहद ज़रूरी है। अगर किसी शख्स को वॉमिटिंग हो या ये है कि डायरिया हो तो उसकी वजह से जिस्म से पानी के साथ साथ जो नमकियात हैं वो भी ज़्यादा मकदार में खारिज हो रहे होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ सादा पानी काफ़ी नहीं होता। ऐसी सूरत में डॉक्टर या किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल के मशवरे से ORS इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक अहम बात भी है कि पानी ज़्यादा पीना हमेशा बेहतर नहीं होता। बहुत ज़्यादा पानी एक ही वक्त में पीना बाज़ हालात में नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए

0: ये मकसद भी यही है कि जिसको मुनासिब मकदार में जो फ्लूइड्स हैं वो मिलते रहें, ना कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी पिया जाए। अब ज़रा हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर नज़र डालें तो क्या आप सुबह घर से निकलते हुए पानी की बोतल अपने साथ रखते हैं? क्या आप काम में मसरूफ होकर कई घंटे पानी पीना भूल जाते हैं? क्या आपको अक्सर सर में दर्द या थकन महसूस होती है? और आपने कभी सोचा कि शायद आपने आज पानी नहीं पिया? अगर जवाब हाँ है तो फिर एक छोटी सी तब्दीली कीजिए। अपनी काम की जगह पर पानी रखिए, अपने सफर के दौरान पानी रखिए, बच्चों को भी पानी की बोतल दीजिए और गर्मी में एक्सरसाइज के दौरान अपने जिस्म की जरूरत को नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर शदीद चक्कर, बेहोशी, बहुत कम यूरिन का आना और कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए मेडिकल हेल्प जो है वो लेना बेहद ज़रूरी है। तो लिसनर्स, आज का आसान सा जो हेल्थ मैसेज है वो ये है कि प्यास का इंतज़ार ना कीजिए, अपने जिस्म के सिग्नल्स को समझिए, अपने जो वाटर बॉटल है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए, ख़ासतौर पर गर्मी, सफ़र और फिज़िकल एक्टिविटी के दौरान। हम फिर मिलेंगे किसी और मुफीद मौजू के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रखिए और याद रखिए, योर हेल्थ मैटर्स।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

दोस्तों आज हम बात करेंगे अमेरिकन टेनिस के एक ऐसे लेजेंड की जो अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल्स लेफ्ट हैंडेड सर्व ब्रिलियंट वॉलीज और कोर्ट पर जज्बाती अंदाज की वजह से दुनिया भर में मशहूर हुआ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। अंदाजा लगा लिया होगा आपने, जहां मैं बात कर रहा हूं जॉन मैकेनरो। जो मॉडर्न जनरेशन के स्पोर्ट्स लवर्स शायद जॉन मैकेनरो को याद ना कर पाए, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं सोशल मीडिया पर जाइए, नाम सुनिए और थोड़ा सर्च करिए। जॉन मैकेनरो 16 फरवरी 1959 को बस जर्मनी में पैदा हुए, लेकिन वो अमेरिका के लिए टेनिस खेलते रहे। उन्होंने बहुत कम उम्र में टेनिस दुनिया में अपनी पहचान बना ली। 1977 में सिर्फ 18 साल की उम्र में विंबलडन के सेमीफाइनल तक पहुंचा और ये उनके करियर का एक अर्ली ब्रेक थ्रू माना जाता है। मैकेनरो का गेम ट्रेडिशनल पावर टेनिस से काफी मुख्तलिफ था। उनका सबसे बड़ा जो वेपन रहा है उनका लेफ्ट हैंडेड सर्व था, जबकि नेट पर उनकी टच और वॉलिंग एबिलिटी लाजवाब थी। कोर्ट पर वो बहुत तेजी से मूव करते और एंगल्स क्रिएट करने में माहिर थे। उनका स्टाइल देखने में सिंपल लगता था दोस्तों, लेकिन ओपोनेंट के लिए उनके शॉट्स को रीड करना बहुत मुश्किल होता था। दैट वाज जॉन मैकेनरो। बंडाना लगा के मैदान पे यानी टेनिस कोर्ट पर उतरना एक अजीब एक वो जो कैरेक्टर जो हमें टेनिस कोर्ट में हमें बहुत नजर नहीं आती इस तरह के कैरेक्टर्स, लेकिन जॉन मैकेनरो वो सच अ कैरेक्टर। 1978 में प्रोफेशनल बनने के बाद मैकेनरो ने बहुत तेजी से सक्सेस हासिल की। 3 मार्च 1980 को वो पहली बार वर्ल्ड नंबर 1 बने। ATP यानी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स के मुताबिक जॉन मैकेनरो ने अपने करियर में टोटल 170 हफ्ते वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन पर रहे। वो 1981 से 1984 तक लगातार 4 सीजन्स के ईयर एंड वर्ल्ड नंबर 1 भी रहे। ग्रैंड स्लैम लेवल पर भी जॉन मैकेनरो का रिकॉर्ड शानदार रहा। उन्होंने अपने करियर में 7 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल जीते। विंबलडन में उन्होंने 3 मरतबा 1981, 1983 और 1984 ट्रॉफी हासिल की। US ओपन में उनका रिकॉर्ड और भी इम्प्रेसिव था, जहां वो 1979, 1980, 1981 और 1984 में चैंपियन बने। दोस्तों मैकेनरो का 1984 सीजन टेनिस हिस्ट्री के सबसे रिमार्केबल सीजन में से एक है। उस साल उन्होंने 82 मैचेस जीते और सिर्फ 3 मैचेस हारे। एंड मैकेनरो को हराना बड़ा मुश्किल था। एंड ऑन द डे व्हेन ही वाज इन द टॉप फॉर्म उनका विनिंग परसेंटेज 96.5 था, और जो कि ATP टूर के ओपन एरा में एक सिंगल सीजन सिंगल्स रिकॉर्ड है। इसी सीजन में मैकेनरो ने 13 सिंगल्स टाइटल्स भी जीते। उनके ओवरऑल सिंगल्स स्टैटिस्टिक्स भी इंप्रेसिव हैं। मैकेनरो ने करियर में 77 टूर लेवल सिंगल्स टाइटल्स जीते और उनका ATP सिंगल्स रिकॉर्ड 883 जीत और 198 हार के करीब रहा। लेकिन मैकेनरो सिर्फ सिंगल्स के चैंपियन नहीं थे, डबल्स में भी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी खिलाड़ी थे। उन्होंने 78 डबल्स टाइटल्स जीते, जिसके साथ उनके कंबाइन सिंगल्स और डबल टूर लेवल टाइटल्स की तादाद 155 बनती है दोस्तों। ATP के मुताबिक ये ओपन एरा का एक रिकॉर्ड है। अच्छा, मैकेनरो की पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा बता। उनकी पर्सनैलिटी भी उनके टेनिस करियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अंपायर्स के फैसलों पर उनका गुस्सा और कोर्ट पर उनकी फेमस आर्ग्यूमेंट्स ने उन्हें टेनिस के सबसे रिकॉग्निजेबल कैरेक्टर्स में शामिल कर दिया, बागी जिसको हम कहते हैं। तो ये थे जॉन मैकेनरो। लेकिन इन कॉन्ट्रोवर्सीज के बावजूद उनकी टेक्निकल एबिलिटी और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट पर कोई सवाल नहीं था। नोबडी कुड क्वेश्चन हिज टैलेंट, हिज एबिलिटी, हिज टेनिस एक्यूमेन, हिज ब्रिलियंस ऑन द टेनिस कोर्ट। उनकी राइवलरीज भी टेनिस हिस्ट्री का हिस्सा बन गई। जिमी कॉनर्स के खिलाफ मैकेनरो ने 20 ऑफ 34 मीटिंग्स जीती, जबकि बियॉन बॉक के खिलाफ दोनों खिलाड़ियों ने 14 मैचेस में 7-7 विक्ट्रीज हासिल की। इवान लेंडल के साथ भी उनकी राइवलरी टेनिस के गोल्डन एरा की सबसे इंपॉर्टेंट राइवलरीज में शुमार होती है। जॉन मैकेनरो का करियर हमें एक ऐसे टेनिस प्लेयर की कहानी सुनाता है जो सिर्फ ट्रॉफीज की वजह से नहीं, बल्कि अपनी यूनिक स्टाइल, क्रिएटिविटी, टेम्परमेंट और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट की वजह से भी याद रखा जाता है।
7 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल, 77 सिंगल्स टाइटल्स, 78 डबल्स टाइटल, 170 हफ्ते वर्ल्ड नंबर वन, और 1984 का हिस्टोरिक 82 विन एंड 3 लॉसेस। ये नंबर्स जॉन मैकेनरो के एक्स्ट्रॉर्डिनरी करियर की कहानी खुद बयां करते हैं। जॉन मैकेनरो एक चैंपियन, एक आर्टिस्ट और टेनिस कोर्ट पर एक ऐसा कैरेक्टर जिसे फैंस आज भी नहीं भूले। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये सेगमेंट पसंद आया हो। अगली बार एक और इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स कैरेक्टर के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इमाम अदमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: नगर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन।

अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें। कतर की सकाफत में रिवायती किले और बुर्ज बहुत अहम मकाम रखते हैं। ये इमारतें सिर्फ पत्थर और दीवारों का मजमुआ नहीं, बल्कि माजी की जिंदगी, हुनरमंदी और माशरे की यादों की निशानियां हैं। इन्हें देखकर अंदाजा होता है कि पुराने जमाने में लोग अपने घरों, पानी के जराए और बस्तियों की हिफाजत के लिए किस तरह मुनज्जम इंतजाम करते थे। कतर के किले मुख्तलिफ इलाकों में बनाए गए। कुछ किले साहिली बस्तियों के करीब थे और कुछ सहराई इलाकों में। हर किले का ताल्लुक अपने माहौल और जरूरियात से होता था। इनकी तामीर में मकाम, मौसम और आसपास के वसाइल का खास ख्याल रखा जाता था।

0: अपने किलों में मोती और समुद्री वर्षे के साथ साथ देखने को मिलने वाली बुनियादी अशिया भी अहम थी। मोती हासिल करने और मछली पकड़ने वाली बस्तियों में रहने वाले लोग अपने इलाके की हिफाजत और निगरानी के लिए मजबूत इमारतों की जरूरत महसूस करते थे। सहराई इलाकों में किले सफर करने वालों और मकामी आबादियों के लिए पहचान भी होते थे। किले का सबसे नुमाया हिस्सा उसका बुर्ज होता था। बुर्ज ऊंची जगह होती थी जहां से दूर तक नजर रखी जा सकती थी। पुराने दौर में ये निगरानी के लिए इस्तेमाल होता था। आज के बुर्ज हमें पुरानी सोच और तामीराती महारत का दिलचस्प नमूना दिखाते हैं। किले की दीवारों को इस तरह तैयार किया जाता था कि वो मजबूत रहें। पत्थर, मट्टी और प्लास्टर जैसे मौसम के मुताबिक मौजू वसाइल इस्तेमाल किए जा सकते थे। सख्त गर्मी और हवा का सामना करने के लिए इमारत का नक्शा और बनावट सोच समझ कर रखी जाती थी। किले के अंदर जगह को भी खास तरतीब से बनाया जाता था। इसमें बैठने, सामान रखने, पानी महफूज करने या फिर रोजमर्रा जरूरियात के लिए मुख्तलिफ हिस्से हो सकते थे। अंदर का इंतजाम इस बात को जाहिर करता था कि पुराने लोग कम वसाइल में भी बेहतरीन तरतीब और सहूलत पैदा करना जानते थे। कतर के किले अक्सर मकामी पत्थर और रिवायती तामीरी तरीकों से बनाए जाते थे। हुनरमंद दीवार की मजबूती, दरवाजों की बनावट और सजावटी काम पर बहुत तवज्जो देते थे। इन इमारतों में सादगी के साथ साफ सोच और महारत नजर आती थी। किला सिर्फ हिफाजत की जगह नहीं होता था बल्कि किसी इलाके की मरकजी पहचान भी बन सकता था। इसके आसपास लोग अपनी रोजमर्रा के काम अंजाम देते थे, बाजार लगते या खानदानी जिंदगी के मामला चलते थे। इसी तरह किला जिंदगी और वर्से दोनों से जुड़ा हुआ था। आज के दौर में कतर के पुराने किलों की हिफाजत और देखभाल पर तवज्जो दी जाती है और इन्हें इसी तरह महफूज रखा जाता है ताकि नई नस्ल अपने मुल्क के तामीराती वर्से को देख और समझ सके। तामीर की शक्ल, दीवार की बनावट और जगह का इंतखाब हमें पुराने वक्त की जिंदगी के बारे में मालूमात देते हैं। म्यूजियम और सकाफती मकामात में किलों से मुतालिक नुमाइशें भी देखी जा सकती हैं। यहाँ पुराने औजार, तस्वीर, सकाफती अशिया और तामीराती मालूमात पेश की जाती हैं। ये कोशिशें लोगों को विरसे के मुख्तलिफ पहलुओं से जोड़े रखती हैं। किले बच्चों के लिए भी सीखने का दिलचस्प जरिया है। जब वो किसी किले को देखते हैं तो उनके जहन में सवालात पैदा होते हैं। ये कब बना होगा, इसे किस तरह तैयार किया गया होगा और यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी कैसी होती होगी। ऐसे सवालात उनकी मालूमात और दिलचस्पी को बढ़ाते हैं। रिवायती किले हमें पुरानी जिंदगी की सादगी और मुनज्जम सोच का एहसास दिलाते हैं। आज हमारे पास जदीद सहूलियात हैं लेकिन पुराने हुनरमंदों की मेहनत और उनकी तामीराती समझ अब भी काबिले कदर है। उन्होंने मकामी माहौल को समझकर ऐसी इमारतें बनाई जो वक्त के सफर में अपनी पहचान कायम रख सकें। किले सिर्फ गुजरे हुए जमाने की निशानियां नहीं बल्कि हमारे लिए जिम्मेदारी भी है। उनकी हिफाजत करना, उन्हें साफ रखना और उनकी तारीखी अहमियत को समझना वर्से की कदर है। जब हम किसी सकाफती इमारत का एहतराम करते हैं तो हम उन लोगों की मेहनत और हुनर को भी इज्जत देते हैं जिन्होंने उसे बनाया। आज का कल्चर मोमेंट इसी पैगाम के साथ मुकम्मल करते हैं कि कतर के किले सिर्फ पुरानी इमारतें नहीं बल्कि हमारे वर्से के जिंदा सफात हैं। उन्हें देखना, माजी को समझना, हुनरमंदी की कदर करना और अपनी सकाफत को मुस्तकबिल तक पहुँचाना है। तो लिस्टनर्स, आज के कल्चर मोमेंट को यही मुकम्मल करते हैं। याद रखिए, सकाफत सिर्फ गुजरे हुए वक्त का नाम नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। मैं हूँ आपकी आरजे महाविश। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए और कतर की खूबसूरत सकाफत को हमेशा इज्जत और मोहब्बत के साथ याद रखिए। अल्लाह हाफिज।
1: Maximum music, maximum fun.
2: On FM 107, Dil Se Desi.

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: सुनिए कतर 2026 आरजे फजील के साथ रहिए अपडेटेड सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का मेरा नाम है फजील और ये शो है कतर 2026 तो कतर 2026 में क्या होता है अब तक तो आपको पता चल गया होगा चाहे वो कतर के मेजर अनाउंसमेंट को लेकर किसी अशगाल के बारे में बात हो इवेंट के बारे में बात हो सोशल मीडिया कम्युनिकेशन मतलब कुछ भी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो सबसे बेस्ट शो जो हो सकता है आपके लिए वो है कतर 2026 तो चलिए शुरू करते हैं कि कतर में इस हफ्ते क्या कुछ स्पेशल है कैसे कैसे इवेंट्स हैं कौन से इवेंट्स अपने इख्तिताम को पहुंच चुके हैं और कौन से इवेंट्स शुरू होने वाले हैं मेजर अनाउंसमेंट में आज सबसे पहले हम अशगाल के बारे में बात करेंगे फिर आने वाले इवेंट के बारे में और वीकेंड को लेकर क्या माहौल है एंड देन कॉन्सर्ट कैसा होने वाला है क्या कोई फूड फेस्टिवल आ रहा है कुछ स्पेशल मॉल एक्टिवेशंस है फैमिली इवेंट्स एग्जीबिशन सब कुछ बात हम करेंगे और फिर स्पोर्ट्स और सीजनल एक्सपीरियंस आप क्या ले सकते हैं एंड देन कतर के 2030 से रिलेटेड कुछ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स स्मार्ट सिटी के अपडेट्स और बहुत सी ऐसी चीजें जो बड़ी जरूरी हैं रिलेटेड टू कतर 2030 का विजन तो सबसे पहले जो मेजर अनाउंसमेंट है उस पर हम बात कर लेते हैं ये प्रोजेक्ट जो शुरू होने वाला है वो है कतर का पब्लिक वर्क अथॉरिटी का प्रोजेक्ट विच इज अशगाल और अशगाल ने कहा है कि उन्होंने देश के नए और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन फ्रेमवर्क को मंजूरी दे दी है ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है जिसमें मल्टी बिलियन कतरी रियाल खर्च किए जा रहे हैं इस मेगा इनिशिएटिव का मेन मकसद पूरे कतर देश में तीन बड़े बदलाव लाना है पहला बदलाव यह है कि पूरे देश में स्मार्ट सिटी अपग्रेड्स किए जाएंगे ताकि डिजिटल और मॉडर्न फैसिलिटीज बढ़ सके दूसरा काम यह होगा कि जीरो एमिशन म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरहॉल्स किया जाएगा यानी ऐसा पब्लिक सिस्टम और ट्रांसपोर्ट तैयार होगा जिससे पॉल्यूशन बिल्कुल जीरो हो जाए और एनवायरमेंट सेफ रहे तीसरा इंपॉर्टेंट काम है लोकलाइज्ड रिसाइकलिंग प्लांट्स का सेटअप जगह जगह रिसाइकलिंग प्लांट्स लगाए जाएंगे ताकि कचरे को सही तरीके से मैनेज किया जा सके और एक सस्टेनेबल कम्युनिटी आर्किटेक्चर तैयार हो सके जो आने वाली जनरेशन के लिए फायदेमंद होगी वेल ये प्रोजेक्ट 1 अक्टूबर 2026 को ऑफिशियली अप्रूव किया जाएगा इस पूरे प्लान का टारगेट और कम्प्लीशन ड्यूरेशन जो है वो 2029 तक है तो इसमें अभी टाइम है लेकिन अप्रूवल मिलना सबसे मैंडेटरी जो कि मिल चुका है अब बात कर लेते हैं कि इस अक्टूबर में आने वाले दिनों में क्या होने वाला है इवेंट सबसे जबरदस्त जो इवेंट होने वाला है वो है इंटरनेशनल आइसक्रीम शो कतर के स्पेशलाइज्ड कन्वेंशन पवेलियंस में एक बहुत ही बड़ा और मशहूर इवेंट होने वाला है जिसका नाम है द इंटरनेशनल आइसक्रीम शो ये पूरी तरह से एक फैमिली फोकस्ड गैदरिंग है जहां पर बच्चे और बड़े सभी एंजॉय कर सकते हैं इस शो का मेन मोटिव दुनिया भर के टॉप क्लास डेजर्ट आर्टिशंस जो है वो मौजूद होंगे लोकल क्रीमरी इनोवेटर्स जो है वो भी मौजूद होंगे उनको भी जगह दी जाएगी इसके साथ ही यहाँ बहुत सारे स्वीट टूथ एंथुजियास्ट जो है वो भी आ सकते हैं यानी कि जो बहुत ज्यादा मीठे को पसंद करते हैं वो भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं इस इवेंट में आने वाले लोगों को लगातार कई दिनों तक इमर्सिव डेयरी टेस्टिंग का मजा मिलेगा जहां नए नए फ्लेवर्स भी ट्राई करने को मिलेंगे इसके साथ ही यहां इंटरैक्टिव फ्रोजन कल्नरी मास्टर क्लास भी होती है तो आपके लिए सब कुछ और फैमिली गैदरिंग्स को अगर देखा जाए तो सारी चीजें यहां अवेलेबल होंगे बड़े शेफ लाइव आइसक्रीम और फ्रोजन आइटम्स बनाने की एडवांस्ड टेक्निक्स भी सिखाएंगे आपको यहां पर तो बहुत कुछ होने वाला है आने वाले महीने में उसके अलावा पिछले हफ्ते भी आपको एक जबरदस्त इवेंट के बारे में बताया था कतर के मशहूर फवारत काइट बीच रिजॉर्ट में एक बड़ा इवेंट जो है वो होने वाला है ये रिजॉर्ट अपने सबसे ज्यादा पॉपुलर और कोस्टल यानी कि फवारत ब्रेक सीजनल एक्सपीरियंस को स्पॉटलाइट करने जा रहा है ये बीच फ्रंट डेस्टिनेशन लोगों के लिए परफेक्ट और एक्सेप्शनल वीकेंड

केप जो है वो बनने वाला है यहाँ आने वाले अटेंडीज यानी कि मेहमानों के लिए प्रीमियम एक्टिविटीज का एक मिक्स ब्लेंड देखने को मिलेगा और एंजॉय करने को मिलेगा। इस इवेंट के मेन अट्रैक्शन में विंडी काइट सर्फिंग डिस्प्लेज होंगे, प्रिस्टीन शोर्स यानी कि साफ सुथरे और खूबसूरत समंदर के किनारे आपको देखने को मिलेंगे और स्पेशलाइज्ड ओशियन फ्रंट डाइनिंग ऑप्शन भी आपके लिए मौजूद होगा, यानी कि समंदर के सामने खास खाने के साथ बैठे होंगे, रेस्टोरेंट का मजा आ रहा होगा और यू नो व्यूज तो होंगे होंगे और कैंडल लाइट डिनर हो जाए तो क्या ही बात है। अगर आपको एक बेहतरीन और रिलैक्सिंग वीकेंड चाहिए, बीच वीकेंड चाहिए, तो यार ये जगह इस कह सकते हैं महीने में सबसे परफेक्ट होने वाली है और ये है फोवेरत काइट बीच। तो ये पूरा इवेंट उसके लिए डिजाइन किया गया है ना कि पूरी फैमिली आकर बैठे, मजे ले, काइट सर्फिंग देखे, तेज हवा भी चल रही होगी, तो ये सब डिजाइन किया गया अपने हिसाब से। भाई साहब आपको जाना जरूर चाहिए ये खूबसूरत से इवेंट में। उसके अलावा अब हम बात करेंगे कॉन्सर्ट के बारे में, है ना, और अल हज्म गैलेरिया में क्या आ रहा है, मॉल एक्टिवेशंस क्या है आपके लिए इस महीने यानी कि आने वाले महीने में। एफएम 107 पे बने रहिए हमारे साथ और आपको सारी जानकारियां मिलती रहेंगी। तो दोस्तों अगर हम बात करें कॉन्सर्ट के बारे में तो 2 अक्टूबर 2026 ये डेट तो आपको लिख लेनी चाहिए। कतर के मशहूर कटारा ओपेरा हाउस एक बहुत ही शानदार और मैजेस्टिक म्यूजिकल इवेंट होस्ट करने जा रहा है। इस कॉन्सर्ट में ट्रेडिशनल अरेबिक अकूस्टिक डायनामिक्स और क्लासिकल ऑर्केस्ट्रल सिम्फनीज का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन पेश किया जाएगा आपके लिए। ये पूरा परफॉर्मेंस रीजनल यानी कि इलाके के बड़े संगीतकार जो मास्टर्स हैं वो आएंगे, उनके साथ मिलकर तैयार किया जाएगा माहौल और म्यूजिक तैयार किया जाएगा। ये लोकल ऑडियंस और विजिटर्स के लिए वीकेंड पर एक बेहतरीन कल्चरल एक्सपीरियंस होगा। इस कॉन्सर्ट की सबसे खास बात कटारा ओपेरा हाउस की प्रिस्टीन आर्किटेक्चरल साउंड क्वालिटी है, जहां बिना किसी एको के या डिस्टॉर्शन के म्यूजिक का हर एक सुर आपको बिल्कुल साफ सुनाई देगा। तो डेट और टाइम लिख लीजिए, ये प्रोग्राम 2 अक्टूबर 2026 की शाम को होगा और टाइमिंग अभी जो है, आपको ज्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो ऑब्वियसली इसके लिए आपको विजिट कतर की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें फूड फेस्टिवल के बारे में तो ये जो अल हज्म गैलेरिया है यहाँ पर कुछ खास खाने वालों के लिए है। कतर के सबसे प्रोमिनेंट और पोश एरिया अल हज्म गैलेरिया में एक अपस्केल ओपन एयर कल्नरी मार्केट प्लेस लग रहा है जिसका नाम मीना डब्ल्यू फेना है। ये फूड फेस्टिवल बहुत बड़ी भीड़ यानी कि जबरदस्त क्राउड को अट्रैक्ट करता है हर साल। यहाँ आने वाले फूड लवर्स खुले आसमान के नीचे जो माहौल का मजा लेंगे वो तो गजब ही होने वाला है। तो आप जरूर पहुंचिए इस जगह पे। उसके अलावा आउटडोर प्रोमेनेड्स पर पैदल घूमते हुए अलग अलग तरह के खाने को एंजॉय करते हुए जो मजा है वो आपको सिर्फ यहीं पर मिलेगा। इस मेले में कह लीजिए, ये मेले जैसा फील आएगा जैसे अपने वहां पर होता है ना, वहां पर बस क्या है कि थोड़ा धूल वूल उड़ती है, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर मेले वाला एंजॉय पूरा मेले वाला होगा। और तो इसको मेला नहीं कह सकते यार, ये तो आपको कहना पड़ेगा मॉल में एक्टिवेशंस है भाई साहब, वहां जा रहे हैं। तो इस जगह पे जब आप जाएंगे तो आपको लोकल डेजर्ट मिलेगा खाने को, गवर्नमेंट फ्यूजन डिशेस भी हैं। फिर उसके बाद सबसे अच्छी बात यह है कि लोग इस शानदार फूड एक्सपीरियंस को कंफर्टेबली मजे लेकर खा सकते हैं क्योंकि मौसम भी धीरे धीरे चेंज हो रहा होगा और शाम का मौसम कोई भी मतलब किसी भी तरह से बहुत परेशानी से भरा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि यार हवा चलेगी, हल्की ठंडी ठंडी हवा, इंतजार कर रहे हैं यार इस मौसम का, तो न जाने कब से इंतजार कर रहे हैं कतर वाले। उसके अलावा बात कर लेते हैं कि दोहा फेस्टिवल सिटी ई स्पोर्ट ये क्या चीज है। ये एक मॉल एक्टिवेशन है। दोहा फेस्टिवल सिटी के अंदर एक बहुत ही मशहूर वर्चुअल बैटल ग्राउंड अरीना है जिसका नाम है वर्चुअल सिटी, और इसे पहले वाले हफ्ते में भी हमने इस पर बात करी है। ये अरीना अपने सबसे बड़े और इंटेंसिव ई स्पोर्ट टूर्नामेंट के ग्रैंड फिनालेज को स्टेज करने जा रहा है। अब इस इवेंट के दौरान हजारों की भीड़ इकट्ठा होने वाली है और उम्मीद तो ये भी है कि मजा जो है वो डबल ट्रिपल होने वाला है क्योंकि कुछ तो सरप्राइजिंग यहाँ पर होगा। उसके अलावा इस जगह पे टेक सेवी शॉपर्स जो है वो होने वाले हैं जो गैजेट्स और टेक को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हाईली कॉम्पिटिटिव गेमिंग क्राउड्स शामिल होंगे यहाँ पर और सभी लोग इस मॉल कॉम्प्लेक्स में जमा होकर हाई स्टेक मल्टीप्लेयर शोडाउन्स को लाइव अपने आंखों के सामने देखेंगे। इस टूर्नामेंट का मेन मोटिव लोकल गेमिंग कम्युनिटी में डोमिनेंस और लोकल ब्रैगिंग राइट्स यानी कि शहर का सबसे बेहतरीन गेमर बनने का जो रुतबा है लोगों में वो हासिल करना है। अगर आपको गेमिंग का शौक है तो ये वीकेंड आपके लिए बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। 29 और 30 सितंबर ये डेट आपके लिए बिल्कुल यू नो लिख लेना चाहिए आपको क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ नया एक्सपीरियंस होने वाला है। उसके अलावा कतर 2026 में हम फैमिली के

के बारे में भी बात करते हैं और 29 सितंबर यानी कि 29th ऑफ सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक एक फैमिली एक्सपीरियंस आप जूरी एक्सपीरियंस थिएटर जिसका नाम है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस फैमिली इवेंट्स के बारे में बात करें जिसका नाम जूरी एक्सपीरियंस थिएटर है तो फैमिलीज और क्राउड्स के लिए यू वेन्यू पर एक बहुत ही यूनिक और इमर्सिव अट्रैक्शन चल रहा है जिसका नाम है जूरी एक्सपीरियंस इंटरैक्टिव थिएटर। ये एक आम बोरिंग ड्रामा नहीं है बल्कि ये एक कोलैबोरेटिव ग्रुप एक्सपीरियंस है जो घर यानी कि जो बड़े लोग हैं और टीनेज फैमिली मेंबर्स हैं दोनों को एक साथ चैलेंज करता है। इस इंटरैक्टिव गेम या थिएटर में पूरी फैमिली को एक जूरी पैनल की तरह बैठना होता है जहां उन्हें कॉम्प्लेक्स एविडेंस को ध्यान से देखना और परखना पड़ता है। इसके बाद सभी लोग आपस में डिबेट करते हैं, फैक्ट्स पर बात करते हैं और आखिर में एक लाइव कोर्टरूम वर्डिक्ट सुनाते हैं। ये फैमिलीज के लिए एक बेहतरीन बॉन्डिंग इवेंट है जहां दिमाग का इस्तेमाल और फन एक साथ होगा। तो असल में आपके बच्चों के बीच, आपकी फैमिली मेंबर्स के बीच है ना कितना अच्छा बॉन्ड है ये इस खास इवेंट से आपको पता चल जाएगा। तो 29 से लेकर 5 अक्टूबर तक यू वेन्यू में आप जा सकते हैं और ये है फैमिली इवेंट जूरी एक्सपीरियंस थिएटर 29 से 5 अक्टूबर। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं एग्जीबिशन के बारे में। कतर में एक बड़ा ही जबरदस्त एग्जीबिशन जो है या बहुत ज्यादा इंतजार किया जाने वाला एग्जीबिशन है वो है बिग फाइव कंस्ट्रक्ट कतर एग्जीबिशन। इसकी डिटेल में अगर आए तो ये एग्जीबिशन ऑफिशियली दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में शुरू होने जा रहा है। ये एक बहुत ही बड़ी और मेजर कंस्ट्रक्शन ट्रेड एग्जीबिशन है। ये इवेंट इंडस्ट्री के टॉप स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, मॉडर्न आर्किटेक्ट्स और इंटरनेशनल टेक सप्लायर्स को एक ही छत के नीचे लेकर आता है। इसका मेन मकसद नेक्स्ट जनरेशन बिल्डिंग सॉल्यूशन को शोकेस करना है। अगर आप रियल एस्टेट डिजाइन या इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हैं तो नए टूल्स और हैवी टेक देखने के लिए ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। 6 अक्टूबर ये एग्जीबिशन ऑफिशियली शुरू होगा और इसके लिए आपको ज्यादा जानकारी अगर चाहिए तो विजिट कतर की वेबसाइट पर जा सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और अब स्पोर्ट्स के दीवानों के लिए भी कुछ बात कर लेते हैं। 3 अक्टूबर को एक जबरदस्त मैच होने वाला है और फुटबॉल के शौकीन के लिए जो बड़ी खबर है वो है 3 अक्टूबर को होने वाला कतर स्टार्स लीग का फिक्स्चर। यहाँ सारे डोमेस्टिक सॉकर प्लेयर्स जो हैं वो मौजूद होंगे, सॉकर लीग मैचेस खेलेंगे और जबरदस्त कांटे की टक्कर होने वाली है। मैचेस के लिए सुहेम बिन हमद स्टेडियम जैसे बड़े और मॉडर्न एथलेटिक वेन्यूज को चुना गया है। कतर की पैशनेट लोकल स्पोर्ट्स क्राउड इन वेन्यूज को पूरा पैक करने वाली है ताकि वो अपनी फेवरेट लोकल टीम्स को फुल जोश के साथ सपोर्ट कर सके। तो स्पोर्ट्स के जितने भी दीवाने हैं वो तैयार हो जाएं क्योंकि कतर स्टार्स लीग लेकर आ रहा है जबरदस्त कांटे की टक्कर वाला मैच और इसका तो इंतजार स्पोर्ट्स के फुटबॉल के जो दीवाने वो लगातार करते रहते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कतर के 2030 विजन को लेकर। कतर नेशनल विजन 2030 को लेकर सस्टेनेबल प्रोजेक्ट को लेकर अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने बताया है कि कतर ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है। देश की 73% से ज्यादा पब्लिक ट्रांजिट बसेस को अब पूरे इलेक्ट्रिक ऑपरेशन पर सक्सेसफुली कन्वर्ट या ट्रांजिशन कर दिया गया है। इसके साथ ही अल अफजा रिसाइकलिंग जोन में नए ऑटोमेटेड ऑपरेशन अपडेट्स शुरू किए गए हैं। ये हाईटेक सिस्टम हजारों टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जैसे कि कंप्यूटर्स, मोबाइल्स और गैजेट्स को प्रोसेस करते हैं और उन्हें यूज करके म्युनिसिपल ग्रिड एनर्जी में बदल दिया जाता है। इससे कचरा भी साफ हो रहा है और शहर को नई एनर्जी भी मिल रही है। इसी के साथ स्मार्ट सिटी की भी अपडेट्स है। कतर का सबसे मॉडर्न एरिया यानी कि मुशरिफ डाउनटाउन दोहा अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बहुत ही एडवांस्ड एआई पावर्ड म्युनिसिपल मैनेजमेंट एरे यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला सिस्टम जो है वो डेवलप कर लिया है। तेजी से इंस्टॉल भी किया जा रहा है और स्केल अप भी किया जा रहा है। इसमें एडवांस्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स अपग्रेड्स का यूज किया जा रहा है जो 3 बड़े काम करेगा। पहला, ये कंटिन्यूअस स्मार्ट लाइटिंग यानी कि ऑटोमेटिक और जरूरत के हिसाब से जलने वाली जो लाइट्स है उसको चलाएगा। दूसरा, ये ऑटोमेटेड क्लाइमेट कूलिंग नेटवर्क्स ऑटोमेटिक एसी और टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा, उनको मैनेज करेगा। तीसरा, इसमें जमीन के अंदर अंडरग्राउंड वेस्ट सॉर्टिंग पाइपलाइंस यानी कि कचरा अलग करने वाली ऑटोमेटिक अंडरग्राउंड पाइप्स काम करेंगी।
ये सारी चीजें मिलकर इस पूरे टेक ड्रिवन रेसिडेंशियल एन्क्लेव के अर्बन एनर्जी कंजप्शन को बहुत

0: बहुत ज्यादा कम कर देगी, यानी कि जो वहां पर लोग रहते हैं और अभी तक अगर यू नो 10 किलोवाट इस्तेमाल हो रहा है एनर्जी, तो वो बहुत घटके कम हो जाएगी क्योंकि यहां पर AI पावर्ड म्युनिसिपल मैनेजमेंट एरे का सिस्टम लगा दिया गया है। इसके साथ ही एडुकेशन इनिशिएटिव भी लिया गया है। कतर फाउंडेशन ने 4 अक्टूबर को एडुकेशन सिटी के बड़े यूनिवर्सिटी कैंपसेस में स्पेशल रिसर्च वर्कशॉप शुरू करने का फैसला किया है। इसका मेन मकसद लोकल स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल टेक लीडर से कनेक्ट करना है ताकि वो सब मिलकर एथिकल AI फ्रेमवर्क बना सके। साथ ही अगर ट्रांसपोर्ट चेंजेस पर बात करें तो दोस्तों कतर रेल 1 अक्टूबर 2026 से सभी एक्टिव दोहा मेट्रो लाइंस पर प्रेडिक्टिव डिजिटल ट्रांजिट रूट अपडेट शुरू कर रहा है। ये स्मार्ट ट्रांजिट सिस्टम एडवांस्ड एल्गोरिथम्स का यूज करेगा ताकि मेट्रो स्टेशंस पर पैसेंजर को ज्यादा वेट करना ही ना पड़े। जब भी सिटी में बड़े इवेंट्स या एग्जीबिशन होंगे, ये सिस्टम भारी भीड़ को बिना किसी दिक्कत के हैंडल कर लेगा और इसका फायदा ये होगा कि सफर आसान हो जाएगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहले से ज्यादा फास्ट और स्मूथ चलेगा। तो दोस्तों ये था कतर 2026, जहां पर आपको कतर की तमाम डिटेल्स मिली। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में कतर के तमाम इवेंट्स के बारे में और एग्जीबिशन से लेकर कॉन्सर्ट के बारे में बात करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: कतर 2026 RJ फजील के साथ रहिए अपडेटेड सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: marketing@qmc.qa. कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिने किराम, प्रोग्राम तहफीमुल कुरान में आप सबका खैर मकदम है। आज हम कुरान करीम के एक नहायत अहम पहलू पर गुफ्तगू का आगाज कर रहे हैं और वो है कुरान की तासीर, उसकी समात का असर और एक मुसलमान पर कुरान का हक। तारीख इस्लाम का एक नहायत ईमान अफरोज वाकया बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से मुतालिक है। जब मक्का में हालात सख्त हो गए, कुरैश ने मुसलमानों पर ज़मीन तंग कर दी और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरादा किया कि वो किसी दूसरी जगह जाकर अपने रब की इबादत करें, तो रास्ते में इब्न दगना नामी एक सरदार से मुलाकात हुई। उसने पूछा, ए अबू बकर, कहाँ जा रहे हो? आपने फरमाया, मेरी कौम ने मुझे मेरे रब की इबादत से रोक दिया है, इसलिए मैं ज़मीन में कहीं निकल जाना चाहता हूँ ताकि अपने रब की इबादत कर सकूँ। इब्न दगना ने कहा, आप जैसे शख्स को न खुद निकलना चाहिए और न निकाला जाना चाहिए, आप बेसहारा लोगों का बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, कमज़ोरों की मदद करते हैं और हक के रास्ते में तआवुन करते हैं। आप वापस चलिए, मैं आपको अपनी पनाह देता हूँ। चुनांचे वो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को वापस मक्का ले आया और कुरैश के सामने ऐलान किया कि अबू बकर मेरे अमान में हैं। कुरैश ने कहा, ठीक है, मगर एक शर्त है, अबू बकर अपने घर के अंदर नमाज पढ़ें, कुरान भी अंदर ही पढ़ें, खुले आम न पढ़ें, क्योंकि हमें डर है कि हमारी औरतें और हमारे बच्चे उनकी तिलावत सुनकर मुतासर हो जाएंगे। समझने के नाम, यहाँ एक बहुत बड़ा नुक्ता है। कुरैश को अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की तिजारत से खौफ नहीं था, उनके माल से खौफ नहीं था, उनकी तलवार से खौफ नहीं था, उनकी कुरान की आवाज़ से खौफ था, क्योंकि वो जानते थे कि कुरान जब दिलों तक पहुंचता है तो इंसान बदल जाता है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु नहायत नरम दिल थे, जब कुरान पढ़ते तो रो पढ़ते, फिर उन्होंने अपने घर के सहन में छोटी सी जगह नमाज के लिए बना ली। वो वहाँ नमाज पढ़ते, कुरान पढ़ते, रोते और कुरान की तिलावत की आवाज़ बाहर तक पहुँचती। कुरैश की औरतें और बच्चे जमा हो जाते, हैरत से देखते, सुनते और मुतासर होते। अब कुरैश फिर घबरा गए, क्योंकि वो जानते थे कि कुरान की तासीर को रोका नहीं जा सकता। समझ कराम, कुरान खुद अपने बारे में फरमाता है, अल्लाह नज़ल अहसन الحديث, अल्लाह ने बेहतरीन कलाम नाजिल फरमाया। दुनिया में अच्छे कलाम बहुत हैं, शायरी है, अदब है, खिताबत है, फलसफा है, कहानियाँ हैं, हिकायात हैं। अरबी अदब में जाहिज, जमख्शरी, हरीरी और बड़े बड़े उदबा की तहरीरें हैं। दूसरी जबानों में भी बड़े बड़े मुसन्निफीन गुजरे हैं, लेकिन कुरान उन सब से बुलंद है। कुरान इंसान का कलाम नहीं, वो तो रब्बुल आलमीन का कलाम है, इसलिए कुरान को बार बार सुनने से भी दिल नहीं उकताता। इंसान कोई शेर बार बार सुने तो एक वक्त के बाद उसकी लज्जत कम हो जाती है, कोई नसर बार बार पढ़े तो उसका असर कम हो जाता है, मगर कुरान जितना पढ़ा जाए उतना नया महसूस होता है। रमज़ान में हम तरावी में बार बार कुरान सुनते हैं, मगर दिल नहीं भरता। क्यों? क्योंकि ये अहसनुल हदीस है, ये बेहतरीन कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुनो और खामोश रहो

0: मेहमान की तरफ से कबूल कीजिए सलाम व तहियात। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कुरान फॉर किड्स। इस प्रोग्राम में हम कुरान के हवाले से बात करते हैं। अच्छा, जी कुरान की बात आ गई तो ये कुरान सिर्फ कोई किताब नहीं, ये तो बच्चों आपका दोस्त है, दिल का दोस्त बन जाता है। बच्चों, क्या आपने कभी किसी को बहुत याद किया? अम्मी को, अब्बू को, या किसी ऐसे दोस्त को जो आपको बहुत अजीज हो? जब हम किसी को याद करते हैं तो हमारा दिल क्या चाहता है? कि वो भी हमें याद करे ना। तो कुरान हमें एक बहुत ही प्यारी बात बताता है। अल्लाह फरमाते हैं, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। फज़कुरूनी अज़कुरकुम। सोचो बच्चों, रब्बे कायनात, जमीन व आसमान का मालिक हमें याद करेगा। ये कोई हाँ वादा नहीं, ये अल्लाह का वादा है। तो हम अगर दिल से कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह, अल्लाहुम्मा, सुबहानअल्लाह, तो अल्लाह हमें नज़रअंदाज नहीं करते बल्कि हमें अपने ख़ास बंदों में याद करते हैं। बच्चों, अल्लाह को याद करना सिर्फ ज़बान से नहीं, दिल से भी होना चाहिए। जब दिल और ज़बान दोनों मिलकर अल्लाह को याद करेंगे तो ये सबसे खूबसूरत ज़िक्र होता है। ये ज़िक्र अल्लाह की मोहब्बत पैदा करता है, दिल को सुकून देता है और हमें शुक्रगुजार बनाता है। इसलिए कुरान में अल्लाह ने पहले फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, और फौरन बाद फरमाया वश्कुरूली, मुझे याद भी करो और मेरी नेमतों का शुक्र भी अदा करो, क्योंकि शुक्र करने वाला दिल अल्लाह को बहुत पसंद है। शुक्र का मतलब है दिल में मानना कि सब नेमतें अल्लाह की हैं। जबान से कहना या अल्लाह तेरा शुक्र है, अमल से दिखाना अच्छे बच्चे बनकर। तो बच्चों, आज की आयत हमें ये सिखाती है कि अल्लाह को याद करना अल्लाह की दोस्ती है, यानी अल्लाह अगर किसी का दोस्त बन जाए वो कभी अकेला नहीं रहता। अल्लाह को याद करो, अल्लाह तुम्हें याद करेंगे। अल्लाह का शुक्र करो, अल्लाह तुम्हें और नेमत देंगे। यही है कुरान की सबसे प्यारी दोस्ती। तो बच्चों, अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होगी आप सबसे।
1: कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। यह हमें बताता है क्या सही है, कौन सा रास्ता बेहतर है, और मुश्किल वक्त में कैसे सब्र और उम्मीद रखी जाती है। बचपन से हमने कुरान पढ़ा, तिलावत की, लफ्ज दोहराए, लेकिन अक्सर उसे समझने के लिए रुककर सोचा नहीं, जबकि कुरान अल्लाह की तरफ से हर मोमिन के लिए खास तोहफा है जो सिर्फ पढ़ा नहीं समझा भी जाना चाहिए।
0: तो जी हाँ, ब्रेक के बाद एक मतलब फिर आप सबको खुश आमदीद है प्यारे बच्चों। इस हिस्से की इब्तदाही में मैं आपको एक बहुत जरूरी बात आपसे शेयर करता हूँ, वो ये कि अल्लाह को याद करना क्या सिर्फ जबान से ही कह देना है कि हाँ भाई अल्लाह को याद के लिए? नहीं नहीं, ये तो भाई जब तक ये बात दिल तक न उतरे तब तक बात नहीं बनेगी। दिल का अल्लाह की तरफ झुक जाना है, दिल में एहसास पैदा होना है कि अल्लाह बहुत बड़े हैं और हम बहुत छोटे हैं। जब हम अल्लाह को याद करते हैं तो हमें अल्लाह की अजमत महसूस होती है और ये एहसास हमें अच्छा बच्चा बनने पर आमादा करता है। अब जरा सोचो बच्चों, हम एक छोटी सी दुनिया में रहते हैं और अल्लाह पूरी कायनात के मालिक हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह फरमाते हैं तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। यानी अल्लाह हमें वैसा ही जवाब देते हैं जैसा हम देते हैं। हम उन्हें याद करें, वो हमें याद करें, हम उनसे बात करें, वो हमसे मोहब्बत करें। ये अल्लाह की तरफ से सबसे खूबसूरत तरबियत है। अब जरा सुकून से बैठ जाओ, खामोशी के साथ मेरी इस तिलावत को सुनो। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, मेरे साथ दोहरा सकते हो एक बार फिर आहिस्ता से, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का नाम लेना ये दिल को रोशन कर देता है, दिल में सुकून भर देता है। जब आप उन्हें याद करते हैं तो अल्लाह भी आपको याद करेंगे ज़रूर। जब तुम अल्लाह को याद करो, अल्लाह तुम्हें याद करते हैं, यही है इस आयत का मतलब, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। जब तुम कहते हो या अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहानअल्लाह, तो अल्लाह खुद भी कहते हैं कि अरे मेरा छोटा सा बंदा मुझे याद कर रहा है। तो हमें इस तरह बार बार अपने रब को याद

0: याद रखना है, याद करना है, हम अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह तो हमारे मोहताज नहीं, हमें अल्लाह की ज़रूरत है हर सांस में, हर कदम में, हर दुआ में। और अल्लाह हमें ये सिखा रहे हैं कि अगर तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें अपनी नेमतों से याद रखूँगा, मैं तुम्हें नेमत दूँगा, शुक्रगुजार बनो तो मैं नेमतों के सैलाब बरसा दूँगा तुम पर। अल्लाह को याद कर रखोगे तो अल्लाह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे बल्कि तुम्हारी हिफाजत फरमाएंगे, तुम्हें सुकून की नेमत अता करेंगे, तुम्हें कामयाबी देंगे। यही है अल्लाह की सबसे प्यारी तरबियत और यही है फज़कुरूनी अज़कुरकुम का असल मतलब। मेरे प्यारे बच्चों, अब एक दूसरी बात की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अल्लाह को याद करना, चूँकि इस आयत के हवाले से हमारे जो आज मुज़ाकरात हैं, जो भी गुफ्तगु है, तो फज़कुरूनी यानी अल्लाह को याद करो, अगर तुम मुझे याद करते हो, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तो मैं भी तुम्हें याद करूँगा। अच्छा, अल्लाह को याद करना क्या कोई छोटी बात है? नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी कि अल्लाह खुद फरमाते तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। वह अल्लाह हमें सिखा रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ वैसा ही सलूक करूँगा जैसा तुम मेरे साथ करोगे। मैं रब हूँ, तुम मेरे बंदे हो, मैं बेनियाज हूँ, तुम हर लम्हा मेरे मोहताज हो। ये अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरीन तरबियत है। अगर तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें अपनी नेमतों से याद रखूँगा, अपनी रहमत से ढांप लूँगा, अपने फजल से नवाजूँगा। अगर कोई मुझे भूल जाए तो वो खुद को नुकसान देता है, क्योंकि फिर वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। बच्चों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कुछ लोग मिलकर अल्लाह को याद करते हैं तो फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं, रहमत उन्हें ढांप लेती है, दिल में सुकून उतरता है और अल्लाह खुद उनका जिक्र अपने खास बंदों में करते हैं। क्या सोच सकते हो, जब हम अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह गोया अपने खास बंदों में हमारा जिक्र कर रहे होते हैं। एक और बहुत प्यारी बात यह है बच्चों, अल्लाह को याद करना ये सिर्फ सुभान अल्लाह कहना नहीं, हर अच्छा काम जो अल्लाह के लिए किया जाए वो भी जिक्र है। अम्मी अब्बू की बात मानना, सच बोलना, किसी को तकलीफ न देना, किसी की मदद करना, ये सब अल्लाह को याद करने की सूरतें हैं। अब एक मतलब फिर वो आयत पढ़ो, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, एक मतलब फिर आहिस्ते से, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, सही तलफ़ुज़ है आप लोगों का भी, और जो कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी दुआ है कि अल्लाह सुब्हान व तआला उनके लिए आसान कर दे। तो बच्चों, अल्लाह का नाम कसरत से लेना, उसका जिक्र करना, ये हमारा फरीज़ा है। ये हमें इस ज़ौफ़ ईमानी के दौर में, हमारा सबका ईमान कमज़ोर है, तो इस वक्त जो है ना हमारे लिए बहुत बड़ा एक हथियार है मुनाफ़क़त के इलाज के हवाले से, कि हम हर वक्त दवा में ज़िक्र इलाही से मुतसिफ रहें कि अल्लाह सुबहान व तआला के जो है ना बात को अपने दिल में हाजिर रखें कि हाँ अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमें देख रहे हैं। तो दोस्तों, जब आप अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, और शुक्र भी करना है ज़िक्र के साथ साथ, शुक्र का मतलब है जो नेमत मिली है उसे अच्छे काम में इस्तेमाल करना है। आँख मिली है, अच्छा देखो, ज़बान मिली है, अच्छा बोलो, दिल मिला है, अच्छा सोचो। इस तरह याद रखो बच्चों, अगर हम शुक्र करते हैं तो अल्लाह वादा करते हैं, अगर तुम शुक्र करोगे मैं तुम्हें और दूंगा और दूंगा। लेकिन अगर कोई नेमतों को भूल जाए और अल्लाह को याद न करे तो खुद को अंधेरे में ले जाता है। कुरान हमें खबरदार करता है कि पिछली कौमें अल्लाह की नेमतों को भूल गई तो उनसे सुकून छीन लिया गया, खौफ आ गया। तो बच्चों, इस तरह आज की आयत हमें सिखाती है, अल्लाह को याद करो दिल में सुकून आएगा, अल्लाह का शुक्र करो नेमतें बढ़ेंगी, और जो अल्लाह को याद रखे अल्लाह उसे कभी नहीं भूलता। अल्लाह हमें अपने ज़ाकिरीन और ज़ाकिरात में शामिल कर लें, आमीन या रब्बल आलमीन। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा बच्चों मुलाकात होती है, मिलते हैं ब्रेक के उस पार बिइज़्निल्लाह ताला।
1: कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। यह हमें बताता है क्या सही है, कौन सा रास्ता बेहतर है, और मुश्किल वक्त में कैसे सब्र और उम्मीद रखी जाती है। बचपन से हमने कुरान पढ़ा, तिलावत की, लफ्ज दोहराए, लेकिन अक्सर उसे समझने के लिए रुककर सोचा नहीं, जबकि कुरान अल्लाह की तरफ से हर मोमिन के लिए खास तोहफा है जो सिर्फ पढ़ा नहीं समझा भी जाना चाहिए।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: एनीवेयर।
1: यस, एनीटाइम, एनीवेयर।
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। लॉग इन टू आवर वेबसाइट urduradio.qa और डाउनलोड द ऐप QMC नाउ।
2: हेलो,
3: क्या आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? क्या हो रहा है कतर की बिजनेस में? क्या हलचल है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस की स्ट्रेटेजी, मार्केट का हाल, करेंसी अपडेट,
2: सुनिए कतर बिजनेस न्यूज विद आरजे सरवर मिर्जा, डेली लाइव विद मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
4: दोस्तों, गाड़ियों के ड्राइवर्स और दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों को अर्जेंट इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे के सिविल डिफेंस, एम्बुलेंसेस, फायर इंजन्स और पुलिस की गाड़ियों को गुजरने के लिए रास्ता देना चाहिए। इन गाड़ियों के ड्राइवर्स मल्टी टोन साइरन्स और मखसूस लाइट डिवाइसेस के जरिए आपको बताते हैं कि उस वक्त इन्हें अर्जेंट इमरजेंसी है और इस इमरजेंसी कॉल के दौरान इन गाड़ियों को ओवरटेक करने से या इमरजेंसी व्हीकल्स के पीछे 50 मीटर से कम फासला बनाए रखने से आपको ट्रैफिक वायलेशन का सामना करना पड़ सकता है। ड्राइविंग के वक्त सतर्क रहिए और दूसरों का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। FM 107 आप सबकी खुशगवार जिंदगी का ख्वाहिशमंद है।

हमने इंसान को पैदा किया है और उसके दिल में उभरने वाले वसवसों तक को हम जानते हैं। हम उसकी रगे गर्दन से भी ज्यादा उससे करीब हैं और हमारे इस बराह रास इल्म के अलावा दो कातिब उसके दाएं और बाएं बैठे हर चीज सब कर रहे हैं। कोई लफ्ज उसकी जबान से नहीं निकलता जिसे महफूज करने के लिए एक हाजिर बाश निगरान मौजूद ना हो। फिर देखो वो मौत की जानकनी हक लेकर आ पहुंची। ये वही चीज है जिससे तू भागता था और फिर सूर फूंका गया। ये है वो दिन जिसका तुझे खौफ दिलाया जाता था। हर शख्स इस हाल में आ गया कि उसके साथ एक हांक कर लाने वाला है और एक गवाही देने वाला। इस चीज की तरफ से तू गफलत में था, हमने वो पर्दा हटा दिया जो तेरे आगे पड़ा हुआ था और आज तेरी निगाह खूब तेज है। उसके साथी ने अर्ज किया, ये जो मेरी सपुर्दगी में था हाजिर है। हुक्म दिया गया, फेंक दो जहन्नम में हर कट्टे काफिर को जो हक से ऐनात रखता था, खैर को रोकने वाला और हद से तजावज करने वाला था, शक में पड़ा हुआ था और अल्लाह के साथ किसी दूसरे को खुदा बनाए बैठा था। डाल दो उसे सख्त आजाब में। उसके साथी ने अर्ज किया, खुदावंदा मैंने इसको सरकश नहीं बनाया बल्कि ये खुद ही परले दर्जे की गुमराही में पड़ा हुआ था। जवाब में इरशाद हुआ, मेरे हुजूर झगड़ा न करो, मैं तुमको पहले ही अंजामे बद से खबरदार कर चुका था। मेरे हां बात पलटी नहीं जाती और मैं अपने बंदों पर जुल्म तोड़ने वाला नहीं हूं। वो दिन जबकि हम जहन्नम से पूछेंगे, क्या तू भर गई, और वो कहेगी क्या और कुछ है, और जन्नत मुत्तकीन के करीब ले आई जाएगी, कुछ भी दूर ना होगी। इरशाद होगा, ये है वो चीज जिसका तुमसे वादा किया जाता था हर उस शख्स के लिए जो बहुत रुजू करने वाला और बड़ी निगहदाश्त करने वाला था, जो बेदेखे रहमान से डरता था और जो दिले गर्वीदा लिए हुए आया है। दाखिल हो जाओ जन्नत में सलामती के साथ। वो दिन हयात अबदी का दिन होगा, वहां उनके लिए वो सब कुछ होगा जो वो चाहेंगे और हमारे पास उससे ज्यादा भी बहुत कुछ उनके लिए है।